मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। आज गुरुवार है। शिक संवत 1948 के अश्विन माह की 16वीं तिथि तदनुसार 8 अक्टूबर सन 2026 स्टूडियो की घड़ी में 5:57 होने को है। आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है। अब आप दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। ये आयोजन 10 तारीख तक चलेगा। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही ये सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए वैश्विक मंच उपलब्ध कराएगा। IMC 2026 का विषय है स्केल विदाउट बाउंड्रीज, यानी सीमाओं से परे विस्तार। ये डिजिटल नवाचार अगली पीढ़ी की कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी आधारित विकास में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। इसका आयोजन संयुक्त रूप से दूरसंचार विभाग और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की है। श्री मोदी ने नई दिल्ली के सरोजिनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के माध्यम से भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को अवश्य पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का समय है।
2: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य। हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में

0: तिरंगा शान से लहराए।
1: जापान, भूटान, फिलीपींस, बेल्जियम, नेपाल, नाइजीरिया और बोत्सवाना सहित कई देशों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसके लिए सभी का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर को गुजरात के वडनगर से शुरू हुई बाइक सेवा यात्रा भी कल काशी में संपन्न हो गई है। महिला और बाल विकास विभाग का 2 दिन का शिखर सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित होगा। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आयोजित विभागीय सम्मेलनों की श्रृंखला का दूसरा कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाना और महिला तथा बाल विकास से जुड़े कामों को और प्रभावी बनाना है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में जीएसटी विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर एक संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने तथा वैश्विक बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजार नीतियों पर रोक लगाने के उपायों का आह्वान किया गया है। 15 भागीदार देशों द्वारा हस्ताक्षरित ये संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय USTR ने कल रात जारी किया। बयान में देशों ने बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजार नीतियों को समाप्त करने सहित संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन को खत्म करने के उपाय करने का आह्वान किया। आज वायुसेना दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष वायुसेना दिवस की थीम है इंडियन एयरफोर्स इनफेलेबल इम्प्रेटेबल एंड प्रिसाइज, यानी अचूक, अभेद्य और सटीक। वायुसेना दिवस की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी के माध्यम से अपने संदेश में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना सतर्कता और दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ देश की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार है। चाइना ओपन टेनिस प्रतियोगिता में आज महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। कैरोलिना मुचावो का सामना निकोला बार्तुनकोवा से होगा, वहीं मीरा एंड्रीवा का मुकाबला एकातेरिना अलेक्जेंड्रोवा से होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेकाल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम को न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कहते हैं ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हर उस हृदय में विराजमान है जहाँ करुणा, प्रेम और मानवता का वास है। हम उस परम शक्ति को नमन करें जो हर इंसान में अपनी एक झलक दिखाती है।

माँ के दरबार में जो भी श्रद्धा से आता है, माँ उसकी झोली खुशियों से और आशीर्वाद से भर देती हैं। माँ करुणामयी है, वरदायिनी है। उनके चरणों में सच्ची श्रद्धा से किया गया नमन जीवन में नई आशा जगाता है। आइए भक्ति और श्रद्धा के साथ माँ का स्मरण करें।

गुरु केवल ज्ञान देने वाले नहीं बल्कि हमारे जीवन को सही दिशा दिखाने वाले प्रकाश पुंज हैं। गुरु का आशीर्वाद जीवन में विश्वास, संस्कार और नई राह का संचार करते हैं। गुरु को नारायण का स्वरूप माना गया है क्योंकि गुरु अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं।

कभी कभी मन की व्याकुलता शब्दों से नहीं बल्कि भक्ति में सुरों में अपना रास्ता खोजती है। जब हृदय अपने आराध्य के दर्शन के लिए तरस उठे तो मन में प्रभु का नाम सुनाई देता है।

0: अभी आप महेंद्र कपूर, नरेंद्र चंचल, देवाशीष दास गुप्ता और मोहम्मद रफ़ी के स्वर में ये भक्ति रचनाएं सुन रहे थे। इसी के साथ ही भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त तो होता है।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
2: 8700001424।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: मीटी वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। आप हमारे कार्यक्रम को न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। प्रस्तुत है विचार विंदु कार्यक्रम, आइए सुनते हैं कला और जीवन।
4: कला जीवन रस को ग्रहण कर अपनी महानता और सार्थकता का सच्चा प्रमाण देती है। पाश्चात्य मनीषी भले ही बार बार उद्घोषणा करते रहे हैं कि कला का लक्ष्य मात्र कला है, परंतु जीवन से असंपृक्त रहकर कला का धरातल बहुत उदात्त और आदर्शमूलक नहीं हो पाता। वस्तुतः कला साधक सच्चे अर्थों में योगी और अंतर्दृष्टि संपन्न एक महान चिंतक के रूप में परिगणित किया गया है। इस संबंध में कलागुरु अवींद्रनाथ ठाकुर का ये कथन विचारणीय है। शिल्पी की अनुसंधिस्त दृष्टि केवल बाह्य रूप से टकराकर नहीं लौट आती, वो उसके भीतरी रहस्य का भी पता लगा लेना चाहती है। समस्त कला साधकों की दृष्टि अज्ञात, अज्ञेय और अगोचर से आंख मिलाने की दुनिर्वार इच्छा लेकर साधना पथ पर अग्रसर होती है। शिल्प के इस रहस्य को हृदयंगम करके जब कोई प्रतिभावान शिल्पी रचना करता है तो वो रस सृष्टि करने का अधिकारी होता है। मानव शिल्पी के जीवन काल में ऐसी घटना विरल होने पर भी समय पर नहीं घटती, ऐसी बात नहीं। सत्य तो ये है कि सत्यम शिवम सुंदरम का पृष्ठाधार जीवन ही तो है। जीवन को ही आधार बनाकर कला सब प्राणता ग्रहण कर

0: सकती है और जीवन को खोकर कला प्रकृत रूप में सर्वथा विकलांग और अपूर्ण है। और क्या यह सत्य नहीं है कि मानव स्वभाव ही मानव का आदर्श बनकर अपूर्णता को पूर्णता की संज्ञा देता है और असुंदर को सुंदरतम सृष्टि के रूप में ग्रहण करता है। पंडित सुमित्रानंदन पंत ने इसी तथ्य का उद्घाटन अपनी इस रचना में किया है। मानव स्वभाव ही बन मानव आदर्श सुकर, करता अपूर्ण को पूर्ण, असुंदर को सुंदर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने समस्त अनुभवों के आधार पर यह सिद्ध किया है कि जीवन की पवित्रता ही सबसे बड़ी कला है। इस संबंध में उनका विचार है कि अपने समस्त अनुभवों के उपरांत मैं ये कह सकता हूँ कि जीवन की पवित्रता सबसे बड़ी और सच्ची कला है। जिसकी पृष्ठभूमि पवित्र नहीं है वो वास्तविक कला नहीं। कला जीवन को स्पर्श करती है और कलाकार उसे पाकर अपनी सृष्टि को मंगल विधायक बनाने की पूर्ण चेष्टा करता है। कवि और कलाकार की दृष्टि इसी से सामान्य मानव से सर्वथा भिन्न रही है। वो मानवीय संवेदना को ऐसी दिशा देता है जो जीवन को नए आलोक से मंडित कर देती है। इस संबंध में डॉक्टर संपूर्णानंद का ये विचार कितना सटीक और सार्थक है। मेरा ऐसा मत है कि पारिभाषिक शब्द में योगी न होते हुए भी सच्चा कलाकार विवर्त का अतिक्रमण करके विचार और आनंद की भूमिकाओं के बीच पेंगे मारता रहता है। साधना के अभाव के कारण वो किसी एक जगह टिक नहीं सकता, परंतु थोड़ी देर के लिए उसको सत्य की जो आभा दिख पड़ती है, जड़ चेतन के अनावरण के पीछे अर्ध नारीश्वर की जो झलक मिलती है वो उसको इस जगत के ऊपर उठा देती है, उसके जीवन को पवित्र और प्रकाशमान बना देती है।
1: अभी आप विचार बिंदु कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम को न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। प्रस्तुत है कृषि जगत कार्यक्रम। आइए सुनते हैं आलू की बुआई है तो खेतों की तैयारी विषय पर अवधेश कुमार से श्वेता श्रीवास्तव की बातचीत।

0: किसान भैया, देखा अपन खेती किसानी के काम में जरूरत पड़त है कि समय समय पर जागरूकता होए। ओकरे लिए अपने कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ भैया आवत हैं और जौन बतावत हैं कि कैसे अपने खेती में अपन उत्पादन के अच्छा कर सकी। आज अपने कार्यक्रम में प्रतापगढ़ के कृषि वैज्ञानिक केंद्र के वैज्ञानिक भैया डॉक्टर अवधेश कुमार सिंह आवा हैं, जौन बताइए कि आलू की खेती के लिए खेत की तैयारी कैसे की जा सकत है। भैया आपके बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो अपने किसान भैया की तरफ से हम ये जानने चाहब कि जोन खेती के लिए खेत का चुनाव करते हैं उस समय किसान भैया के किन किन बातन का ध्यान रखे चाहिए।
1: जी, सबसे पहले तो नमस्कार किसान भाइयों। किसान भाइयों, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि खेत की तैयारी करने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि कौन सी खेत में हमें आलू की खेती करनी होती है। तो ये ध्यान देना है कि प्राकृतिक रूप से जितने भी खेत होते हैं, जो मिट्टी है, जो उत्पादन के लिए बढ़िया है, वो सभी मिट्टियों में आप कर सकते हैं। लेकिन अगर वो मिट्टी बलुई हो या बलुई दोमट मिट्टी हो, तो उसमें सबसे बेहतर आलू की खेती होती है। और जिसका पीएच 5.5 से लेकर के 7.5 तक हो, वो सबसे बेहतर मिट्टी होती है खेती करने के लिए आलू की।
0: खेत तैयार करते हैं तो एमा जुताई कौन तरह से कीन जा सकते हैं।

0: जी बिल्कुल। देखिए किसान भाइयों, जुताई करने से पहले हमें ये भी ध्यान देना होता है कि जुताई के पहले उसमें कौन सी फसल लगी हुई है। तो अगर फसल उसमें बहुत ज़्यादा जिसके खरपतवार नहीं है या फसलों के अवशेष नहीं हैं, तो उस स्थिति में किसान भाई पहली जुताई जब करें तो मिट्टी पलटने वाले हल से करें और गहरी जुताई करें। जुताई करने के बाद उसको छोड़ दें, फिर उसमें 2 दिन के बाद फिर उसको कल्टीवेटर से 2 जुताई करें। जुताई करने के बाद उसमें पाटा लगा दें, उसके 2 दिन बाद फिर उसमें जुताई करें। और उस जुताई के बाद जब यह देख लें, वो सुनिश्चित हो जाए कि मिट्टी एकदम भुरभुरी हो गई है, उसको हाथ से उठा के देखें और गहरी भी जुती हुई है, अगर ये दोनों स्थितियां हो गई हैं तो किसान भाई समझ लें कि अब हमारी मिट्टी एकदम बढ़िया आलू बोने के लिए तैयार है। तो जुताई कम से कम 5 बार आपको करनी है, पहले 1 बार, फिर 2 बार, फिर अंत में 2 बार। तो 3 चरण में 5 जुताई आपको करनी है कम से कम।
1: डॉक्टर साहब, आप बताएं कि बार बार जुताई करे के मट्टी पलटे के चाहिए, लेकिन जब हम कोनो नई फसल लगावत हैं तो ओके पहले हमका लागत है कि माटी की जांच कराए के चाहिए सब किसान भैया के, तो ओकरे बारे में कैसे का करें ओके बारे में बताएं।
0: जी बिल्कुल। देखिए कोई भी किसान जब भी आलू की खेती करना चाहे तो ये कहावत होती है कि 70% आलू तैयार हो जाता है जब हम मिट्टी की तैयारी कर लेते हैं, यानी खेत की तैयारी कर लेते हैं। तो तैयारी करने के लिए जब उसमें हम खाद डालते हैं तो
1: हाँ
0: खाद डालने से पहले हमें मिट्टी की जांच करानी चाहिए होती है। उससे ये पता चल जाता है कि मौजूदा स्थिति में मिट्टी में कौन से पोषक तत्व तो कितनी मात्रा में उपलब्ध हैं, जिससे कि जो आपको पोषक तत्व तो आलू के लिए देने होते हैं वो सारे पोषक तत्व तो आप उसी अनुसार दे देते हैं।
1: काहे से कि कैसे मिट्टी की जांच हो से पता चल जाता है कि कौन से खाद की जरूरत है, कौन रासायनिक खाद वहाँ डाले की जरूरत है। तो किसान भैया इस सब पे ध्यान दें कि जैसे ही अपन आलू बोना कर लें जुताई, ओके बाद सबसे पहले आप मिट्टी की जांच करावें जैसे खेत तैयार करे के बाद। डॉक्टर साहब, खेत में उर्वरक प्रबंधन किस प्रकार करे के चाहिए कि खेत की तैयारी अच्छी हो सके?
0: जी बिल्कुल। देखिए अगर वो मिट्टी की जांच के बाद वो करा लेते हैं तो उसे पता चल जाता है कितना ज़रूरत होती है। अगर कोई किसान भाई मिट्टी की जांच नहीं करा पाते हैं तो आलू के खेत में जो है जो नत्रजन की आवश्यकता होती है वो लगभग 180 किलोग्राम नत्रजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि आलू जो होता है वो कंद वाली फसल होती है तो उसमें नत्रजन ज़्यादा आवश्यक होता है, और उसमें लगभग 80 किलोग्राम फास्फोरस की आवश्यकता होती है और साथ ही साथ 100 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। ये तीनों पोषक तत्व तो बहुत ही ज़रूरी हैं। जिन किसान भाई को ज़्यादा बेहतर और मिट्टी में उनकी मिट्टी थोड़ी कमज़ोर है, उस स्थिति में किसान भाइयों को लगभग 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से जिंक की आवश्यकता होती है और लगभग 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से फेरस सल्फेट की आवश्यकता होती है, जिससे कि उनकी आलू की फसल बहुत बेहतर हो सके। और ये जितने भी मैंने मात्रा बताई वो सभी हेक्टेयर के अनुसार हैं।
1: डॉक्टर साहब, एक हमारे किसान भैया ने सोचा था कि जैसे खेत की तैयारी जो उन करते हैं उसमें गोबर की खाद ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हरी खाद?
0: जी बिल्कुल। देखिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि किसान भाइयों से भी आग्रह करता हूँ कि आप लोग जो है अपने खेत की उर्वरा शक्ति को बेहतर बनाने के लिए आपको गोबर की खाद का भी इस्तेमाल करना चाहिए और लगभग 8 से 10 टन गोबर की खाद अपने 1 हेक्टेयर के खेत में डालनी चाहिए। और अगर वो कोई फसल पहले से नहीं लिए हुए हैं, खेत परती पड़ा हुआ है जिसमें आलू लगाना है, तो उसमें आप 2 महीने पहले कोई चाहे ढैंचा या सनई का आप उसमें छिड़काव कर दें उनके बीजों का, जिससे कि वो फसल तैयार हो जाए, और उसको उसमें मिट्टी में मिलाने से वो भी बहुत कारगर होती है। तो जो मैंने मात्रा बताई है नत्रजन की 180 किलोग्राम, जब आप सनई या ढैंचा का इस्तेमाल करते हैं तो ये मात्रा आपको कम देनी पड़ती है, लगभग आप मान के चलिए 20 से 25% कम मात्रा आपको उर्वरक से देनी पड़ती है।
1: काहे का मतलब है कि गोबर की खाद भी डालें, हरी खाद भी ओमा होए के चाहिए जिससे फसल अच्छी हो सके।
0: जी बिल्कुल।
1: डॉक्टर साहब, रोग और जो कीटनाशक दवाएं होते हैं छिड़काव करा जाते हैं, लेकिन खेत की तैयारी में एक बड़ी का सावधानी रखी जाए?
0: जी देखिए आलू जो होता है इसमें बहुत सारी बीमारियां आती हैं और ज़्यादातर फंगस वाली बीमारियां आती हैं। तो मिट्टी की तैयारी के समय दो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से किसानों से आग्रह करता हूं कि वो ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करें। ट्राइकोडर्मा एक फंजीसाइड होता है जो कि मिट्टी में मिलाया जाता है और ये लगभग आपको हर कृषि विभाग में भी मिल जाएगा, आप कृषि विज्ञान केंद्र जाएंगे वहां मिल जाएगा, या बहुत सारे जो दुकानदार इनपुट बेचते हैं उनके यहाँ पे भी मिल जाएगा, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी जगहों पर दीमक की समस्या होती है या कीड़े लग जाते हैं, उसके लिए ब्यूवेरिया बैसियाना नाम से एक बायोफर्टिलाइजर आता है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो दीमक वगैरह की

0: समस्या होती है, ये समस्या खत्म हो जाएगी।
1: काहे से कि भी चाहे जितनी अच्छी फसल हो है, हमारे किसान भैया मेहनत करत हैं, ओमा खाद पानी डालत है, लेकिन जब खर पतवार हो जाते हैं, कीट हो जाते हैं, तो उनमें जो रोग लगत है उससे पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाते हैं। तो जैसे हमारे डॉक्टर साहब बताए ने, ऐसे अगर हमारे किसान भैया अरे करी हैं तो उनकर फसल भी अच्छी हुई। डॉक्टर साहब, बुआई से पहले जो उन्हें खेत कौन तरह से क्यारी और मेड़ में बांटा जाते हैं?
0: जी देखिए, आलू की खेत के लिए क्यारियों में बांटना जो है बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आलू जो है पानी के प्रति बहुत ससेप्टिबल फसल होती है। अगर उसमें पानी लग जाता है तो आलू की फसल ख़राब हो जाती है, और ज़्यादा पानी हो जाता है तो क्या होता है, आलू जो होता है वो मेड़ों पे लगाया जाता है। जब पानी मेड़ों के ऊपर चढ़ जाता है तो मिट्टी आपस में दब जाती है, जिससे आलू में ग्रोथ नहीं हो पाता है। तो इसलिए सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि जिस खेत में आलू की फसल लगाई जा रही है उसमें एकदम उस खेत को लेबल कर लें, या लेबल नहीं कर पा रहे हैं तो जिस तरफ ढलान है उस तरफ निकास अपने पानी का बनाएं, और उसको इस तरह से क्यारियों में बांटें कि जिस तरफ ढलान है उसी तरफ पानी पूरा निकलता हुआ चला जाए। और जब वो सिंचाई करें तो सिंचाई करने के बाद छोटे छोटे जब बरही बनाएंगे, उसको बरही बोलते हैं,
1: हाँ,
0: छोटी छोटी अगर बनाएंगे तो सिंचाई करने में उनको आसानी होगी और पानी ज़्यादा लगेगा भी नहीं। अगर असमय बरसात भी हो जाती है तो उस स्थिति में भी पानी जो है ढलान की तरफ बहता हुआ चला जाता है और पानी आसानी से निकल जाता है, जिससे कि आलू की फसल भी बेहतर होती है और वो छोटे कंद नहीं होते, कंद भी एकदम बढ़िया हो जाते हैं।
1: मतलब ये है कि अगर बीचों बीच मौसम खराब हो गए और बरसात हो गए तो निकासी की व्यवस्था उचित रखें, जैसे आलू के फसल खराब ना हो सके। डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल ये बाटे, उचित समय का होत है आलू की बुआई के?
0: जी देखिए, उचित समय अगर हम अगेती फसल की बात करेंगे तो 15 सितंबर के समय जो होता है वो उचित समय माना जाता है अगेती फसल के लिए, लेकिन मध्यम के लिए हम 15 से 25 अक्टूबर का समय जो होता है वो बहुत बेहतर होता है। इस दौरान अगर कोई किसान भाई बोते हैं तो उनके लिए बढ़िया उत्पादन मिलता है।
1: लेकिन एक बात और जानने चाहा, किसान भैया चाहत हैं कि उनकर आलू की अच्छी खेती होए, तो उनमें एक दो कौन अच्छी किस्म हो सकत हैं बताए दे?
0: जी देखिए, किस्म अगर बात करेंगे तो अगर चिप्स बनाने के लिए उनको करना है तो कुफरी चिप्स होना एक दो आता है, कुफरी बादशाह आता है, कुफरी लालिमा आता है, जो अपने यहाँ बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा उत्पादन इनका है।
1: डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इतनी अच्छी जानकारी दिए, और हमका उम्मीद है कि हमारे किसान भैया लोग इनसे लाभ लेंगे। डॉक्टर साहब, आपके बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे आलू की बुआई हेतु खेतों की तैयारी विषय पर डॉक्टर अवधेश कुमार सिंह से श्वेता श्रीवास्तव की बातचीत। कृषि जगत कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। आइए सुनते हैं डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव से अभिनव प्रज्ञा पांडे की बातचीत। विषय है स्तनपान बच्चों के लिए कितना आवश्यक।
1: डॉक्टर अर्चना, मैं 2-3 प्रश्न एक साथ जोड़ करके पूछ रहा हूँ। आजकल हम देखते हैं कि माँ और बाप अमूमन दोनों ही वर्किंग होते हैं, क्या ऐसे में इतनी जिम्मेदारी के साथ बच्चे को स्तनपान कराना संभव हो पाता है? अगर हाँ तो कैसे? और दूसरा प्रश्न कि अगर किसी माँ को दूध कम बन रहा है तो क्या वो कुछ ऐसे आहार विहार साथ में ऐसे ले, कोई जीवन शैली में बदलाव करे जिससे उसका काम और उसका उसकी जो एक जिम्मेदारी है उसके बच्चे के प्रति वो दोनों प्रभावित ना हो और बच्चे को जो भोजन मिल रहा है दूध के रूप में वो पूरी मात्रा के साथ मिले।
2: पहली चीज़ तो ये है कि जैसे वर्किंग, बेसिकली वर्किंग पेरेंट्स के लिए हो गया, और आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स बोथ आर वर्किंग
1: जी।
2: उसमें क्या है, फादर के ऊपर तो इतनी जिम्मेदारी नहीं पड़ती क्योंकि फीडिंग तो नेचुरली मदर का ही काम है। फीडिंग के लिए उनको सबसे पहले खुद को एक तो तैयार रखना है, मेंटली फिट रखना है कि हमको कराना है। तो मदर शुड बी मोटिवेटेड एवरी टाइम, जब भी डॉक्टर्स के पास आते हैं तो उनको मोटिवेट करना चाहिए कि यू आर डूइंग वेरी गुड और आपको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग आप करा सकते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑफिस में अगर आप देखेंगे तो 6 महीने की मैटरनिटी लीव होती है। प्राइवेट सेक्टर में लीव कम होती है पर फिर भी 2-3 मंथ्स की लीव मिलती है। 3 मंथ्स के बाद जैसे मदर का एक वर्किंग एटमॉस्फेयर है कि आपको 6 घंटे के लिए जॉब पे जाना है, आपको 10 घंटे के लिए जाना है, दैट डिपेंड्स कि मदर को कितने घंटे की जॉब करनी है।

0: तो आप उसको जो है ऊपर से अपना दूध आप स्टोर करके जा सकते हैं। जैसे आप
1: अच्छा
0: ऑफिस में आप 6 घंटे के लिए बैठे हैं तो एक रूम आप अपना वहां पे ले सकते हैं, और हर जगह ऑफिस में होना भी
1: होता
0: चाहिए,
1: जी
0: होना भी
1: बिल्कुल
0: चाहिए, और
1: होना
0: कहीं
1: भी
0: कहीं
1: चाहिए।
0: होता भी है नर्सिंग मदर के लिए, कि आप स्टरलाइज तरीके से आप अपना मिल्क स्टोर कर लें, उसको आप डायरेक्टली फ्रिज में रख सकते हैं। उसके बाद आप उसको, बस ये कि सेफ्टी से रखना है कि कहीं से उसमें इन्फेक्शन ना हो। उसके बाद उसको आप घर में ला करके फ्रिज में ही अगर आप रखते हैं उसको, तो नेक्स्ट डे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इन द एब्सेंस की मदर जब ऑफिस गई है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मदर का प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है
1: जी
0: तो घर में भी बच्चे के पीने के बाद या 2 घंटे के बाद, बच्चा अगर 4 घंटे सो रहा है, इन बिटवीन मदर अगर चाहे तो वो 1 घंटा 2 घंटा स्क्वीज करके मिल्क निकाल सकते हैं। बेसिकली क्या है कि जैसे बच्चे को कहा जाता है हर 2 घंटे पे दूध पिलाइए, लेकिन हर 2 घंटे पे नहीं, ये डिपेंड करता है बच्चे का वेट कितना है। जैसे प्रीमेच्योर बच्चे में तो हम कहते हैं कि 2 घंटे में उठा उठा के पिलाइए, कई बार स्मॉल फ्रीक्वेंट बच्चे लेते हैं तो कई बार 1 घंटे 1.5 घंटे में भी हम कहते हैं उठा के पिलाइए।
1: जी
0: बच्चा कमज़ोर है, वजन से कम है, कई बार बच्चा वो सुस्त भी हो सकता है बिना दूध पिए। लेकिन जो बच्चे पूरे समय में पैदा हुए हैं उन बच्चों को हम कोई टाइमिंग नहीं देते, ऑन डिमांड फीडिंग कहते हैं, कि
1: जी
0: जब बच्चा उठे और रोए या दूध मांगे उसी समय दूध पिलाना है आपको। ओवर फीडिंग कई बार हो जाती है मदर से, उसका रीज़न ये है कि जैसे उनको ये समझ नहीं आता कि बच्चा भूखा कब है। बच्चा शुशु करेगा तो भी रोएगा, बच्चा पॉटी करेगा तो भी रोएगा, तो मदर हर कंडीशन में उठा के उसको फीड करा देती, तो ये ओवर फीडिंग की भी केसेस आते हैं कई बार।
1: कुछ एक ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं जब माँ को मना करते हैं डॉक्टर्स आप लोग की इस समय फीडिंग ना कराएं।
0: हाँ, अगर जैसे मदर को अगर लोकल ब्रेस्ट में कोई एब्सेस है, कुछ इस तरह की बीमारी है, तो हम लोग मना करते हैं। अदरवाइज़ कंडीशनल होता है, जैसे HIV पेशेंट में भी हम लोग मना करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के लिए,
1: जी
0: लेकिन हमारे इंडिया में सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि कई बार हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग हम लोग प्रोवाइड भी करते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग कराना ही है। तो कुछ बीमारियाँ होती हैं जिनमें हम मना करते हैं, या मदर बहुत सिक है तो उस कंडीशन में मना करते हैं।
1: डॉक्टर साहब, दो बातें हैं। एक तो ये कि समाज की इसमें क्या भूमिका हो सकती है, खासकर जहाँ पर परिवार बड़े हैं या छोटे हैं या बच्चे छोटे हैं, बाकी माँ बाप आ जाते हैं अपने बच्चों के पास, कि वो अपने बच्चों का ख्याल रख सकें। दूसरा एक चीज़ इसमें और है, बहुत सारी भ्रांतियाँ भी हैं स्तनपान को लेकर के, जो ज़्यादातर महिलाओं में ही है। वो क्या है, आपके पास ऐसी बातें आती रहती होंगी, आप बताएं क्या ये सच है, ऐसा होना चाहिए?
0: भ्रांतियों के बारे में जैसे आपने पूछा, सिंपल सा होता है कि जैसे बच्चों को पीलिया होता है, यूजली पीलिया जो होता है बच्चों को फिजियोलॉजिकल होता है। फिजियोलॉजिकल का मतलब कि ये होना ही है ड्यू टू इमेच्योरिटी, कुछ लिवर इमेच्योर होता है इसके कारण होता है बच्चों को, जो कि कुछ समय के बाद अपने आप ठीक भी हो जाता है। समटाइम्स इतना होता है कि पीलिया एक लेवल से ज़्यादा होता है तो उसको हम लोग पैथोलॉजिकल कहते हैं, कि उसका कुछ कारण होता है जिसमें हमें इलाज करना पड़ता है।
1: जी
0: उसमें भ्रांति होती है कि मदर्स हमारे पास आती हैं कि अगर बच्चे को पीलिया है तो हम पीली चीज़ें नहीं खाएं, हम हल्दी बंद कर दें खाना, जबकि ये सब मिथ है, खाना चाहिए, क्योंकि हल्दी से आपको जो है नेचुरली कर्कुमिन मिलता है, आपकी जो है इम्यूनिटी बढ़ती है,
1: जी
0: तो वो खाने में कोई परहेज नहीं है। आप बच्चे को जितनी चीज़ें, मतलब मेरा तो ये मानना है, आप
1: जी
0: जितना चाहते हैं कि बच्चे को पोषक तत्व आप देना चाहें मदर को, वो सब चीज़ें खानी चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये चीज़ खाने से बच्चे को नुकसान होगा, ऐसा नहीं है।
2: अभी आप सुन रहे थे अर्चना श्रीवास्तव से अभिनव प्रज्ञा पांडे की बातचीत। विषय था स्तनपान बच्चों के लिए कितना लाभदायक। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। शाम 4 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 7 बजे सुनिएगा श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। 7:10 पर फिल्मों से भजन प्रसारित किया जाएगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर, दिन में 12:15 पर और रात 10:30 पर उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का गायन प्रसारित किया जाएगा। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर वर्षा तिवारी के स्वर में भजन सुनिएगा।

फिल्म संगीत आप सुनेंगे सुबह 10:05 पर। 10:30 पर लोकगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे बाबूलाल दिवाकर, सावित्री श्रीवास्तव और मोतीलाल और साथी। 11 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही कलाकार।

11:30 पर बोलते नगमे कार्यक्रम दिन में 12:30 पर आप सुनेंगे आपकी पसंद प्रस्तुति होगी मधु कुमार की। दिन में 1:15 पर बहनें सुनेंगी पनघट कार्यक्रम में सशक्त महिलाएं कैसे बने, माफ कीजिएगा, महिलाएं सशक्त कैसे बने विषय पर शुभी मालवीय से कंचन श्रीवास्तव की बातचीत। दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। शाम 5:00 फिल्म संगीत। शाम 5:15 पर युवा श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। शाम 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे राम सिंह पटेल के स्वर में लोकगीत। शाम 6:50 पर प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा किसान वाणी, जिसे हम लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। शाम 7:31 पर आशीष कुमार मिश्र से काव्य पाठ प्रसारित किया जाएगा। रात 8:30 पर सबरस कार्यक्रम और रात 9:30 पर गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशा प्रसारित किया जाएगा। ये थी जानकारी हमारे चैनल पर प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों की।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने को हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ता। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना प्रशासनस्य प्रमुखरूपेण निरन्तरजनसेवां कुर्वता 25 वर्षाणि पूर्णानि कृतानि। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री नवदिल्ल्यां विकसितभारतसङ्कल्पसभां सम्बोधितवान्। सः उक्तवान् यत् भारतं दूरदर्शीनीतिभिः अथ कठिनपरिश्रमेण च 47.5 वर्षपर्यन्तं विकसितराष्ट्रस्य स्वप्नं निश्चितरूपेण साकारयिष्यति। विकसितभारतसङ्कल्पसभां सम्बोधयन् श्रीमोदी उक्तवान् यत् वर्तमानप्रशासनस्य नीतयः सर्वेषां नागरिकाणां कृते समाधानोपायानां प्रदाने केन्द्रिताः सन्ति।
2: सबका साथ सबका विकास, यही मेरे लिए सुशासन का आधार रहा है। समस्या सबकी है तो समाधान भी सबके लिए होना चाहिए, और इसलिए हमने सुशासन को सैचुरेशन से जोड़ा। सैचुरेशन यानी हर लाभार्थी जुड़े, कोई पात्र छूटे नहीं, कोई हकदार पीछे रहे नहीं, और किसी के हक पर कोई डाका न डाल सके।
1: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां यशो भूमि इत्यत्र इंडिया मोबाइल कांग्रेस इत्यस्य दशम संस्करणस्य उद्घाटनं करिष्यति। ह्यः आरब्धः ह्यः अयं चतुर्दिवसीय कार्यक्रमः दूरसंचार विभागेन अथ सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया इत्यनेन च संयुक्त रूपेण आयोज्यते। अस्मिन् कार्यक्रमे दूरसंचारस्य अंकीय संपर्कस्य तथा प्रौद्योगिकी नवोन्मेषस्य क्षेत्रेषु भारतस्य उल्लेखनीय प्रगतिं प्रदर्शयिष्यते। सहैव वैश्विकस्तरे सहकाराय निवेशाय तथा ज्ञानविनिमयाय अयं कार्यक्रमः मञ्चं प्रदास्यति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
3: अद्यतनाः तिष्ठन्तु, अग्रेसराः भवन्तु। एक्सपटले @AIR News Hindi अथ इंस्टाग्राम।

0: आम माध्यमे AIR न्यूज अलर्ट्स इत्यत्र अस्मान् अनुसरन्तु।
1: वस्तु सेवा कर परिषदः सप्तपञ्चाशत्तमं उपवेशनम् अद्य नवदिल्ल्यां भारत मण्डपम् इत्यत्र आयोजयिष्यते। वित्तमन्त्रिणः निर्मला सीतारमण इत्येतस्याः अध्यक्षतायां भविष्यमाने उपवेशने वस्तु सेवा कर सम्बद्ध विवादानां समाधानाय तथा क्रय सम्बद्ध कर समायोजनस्य प्रवाहं सुदृढीकर्तुं नीति सम्बद्ध परिष्काराणां विषये चर्चा भविष्यति। अस्य उद्देश्यम् अनुपालनाय अपेक्षितं समयं व्ययञ्च न्यूनीकरणमस्ति। वित्तमन्त्रालयस्य सूत्रानुसारं प्रशासनं वस्तु सेवा कर व्यवस्थायाम् आगामि परिष्काराणां कृते पञ्च सूत्र सम्बद्ध योजनायाः प्रस्तावं प्रस्तोष्यति। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः जन्मदिवसस्य अवसरात् सितम्बर मासस्य 17 दिनाङ्के गुजरातस्य वडनगरात् काशीपर्यन्तं प्रारब्धा सेवा संकल्प बाइक यात्रा ह्यः सफलतया सम्पन्ना। उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः भाजपा दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षस्य नितिन नवीनस्य उपस्थितौ गुजरातस्य वडनगरात् काशी पर्यन्तम् आयोजितायाः अस्याः सेवा यात्रायाः समापन समारोहं सम्बोधितवान्। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उक्तवान् यत् वडनगरात् काशी पर्यन्तम् इयं यात्रा प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः 25-वर्षीयं सेवा संकल्पं सम्मानयितुम् एकः अवसरः अस्ति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य केरल माहे तमिलनाडु पुडुचेरी कराईकल उत्तराखण्ड पश्चिम बंगाल सिक्किम चेत्येतेषां स्थलानां केषुचित् क्षेत्रेषु प्रबलवृष्टेः पूर्वानुमानं कृतमस्ति इति वार्ताः।
2: मीटरवेव 292.4 मीटर यानी 26 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। आप हमारे कार्यक्रम को न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

राजा जनक की नगरी देखने के क्रम में पुरवासियों के मन मोहते हुए श्रीराम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ नगर के पूर्व भाग में पहुंचते हैं, जहां धनुष यज्ञ की रंगभूमि की रचना की गई है। जनकपुर के बालकगण बड़े उत्साह तथा आदर के साथ दोनों भाइयों को यज्ञशाला की रचना दिखा रहे हैं। श्रीराम ने अपनी मधुर मनोहर वाणी में अनुज लक्ष्मण को यज्ञ भूमि का परिचय दिया और दोनों भाई सारा कौतुक देख गुरु के पास लौट चले।

अभी आप श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्मों से भजन। लीजिए सुनिए भाभी की चूड़िया फिल्म का ये भजन। लता मंगेशकर की आवाज़ में, संगीत दिया है सुधीर फड़के ने और रचना है पंडित नरेंद्र शर्मा की।

आप सुन रहे हैं फिल्मों से भजन। लीजिए अब सुनिए चार धाम फिल्म में हरिहरन को। संगीत सुरेंद्र कोहली का है, रचना है उदय शंकर की।

0: अभी आपने सुना चार धाम फिल्म का ये भजन, और अब फिल्मों से भजन का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: सिद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प सभा को किया संबोधित, कहा वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का सपना जरूर पूरा करेगा भारत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेवा ज्योति यात्रा के तहत विकसित भारत संकल्प सभा में लिया हिस्सा। गाजियाबाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ग्रेटर नोएडा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी कार्यक्रम में हुए शामिल। मुख्यमंत्री ने वाराणसी में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय शिंजो आबे की पत्नी अकी आबे के साथ आबे मेमोरियल कॉरिडोर का किया अनावरण और भारतीय रिजर्व बैंक ने रद्द किया पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के प्रमुख के रूप में कल निरंतर 25 वर्ष की जनसेवा पूरी कर ली। इस मौके पर उन्होंने नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इन 25 वर्षों में जनता से मिला विश्वास और इस दौरान हासिल किया गया अनुभव उनकी सबसे बड़ी पूंजी है।
1: 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए। ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाधान पर केंद्रित दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के बल पर भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का अपना सपना जरूर पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को विकसित भारत 2047 का सामूहिक संकल्प भी दिलाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में आयोजित सेवा ज्योति यात्रा के अंतर्गत विकसित भारत संकल्प सभा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत के हर नागरिक के मन में विश्वास पैदा करके एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में नए भारत के निर्माण में सफलता प्राप्त की है।
2: प्रधानमंत्री के रूप में पिछले 12 वर्ष में उन्होंने भारत को दुनिया के सामने एक समर्थ और सशक्त देश के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने भारत के हर नागरिक के मन में एक विश्वास पैदा करके एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में इस नए भारत का निर्माण करने में सफलता प्राप्त की।
0: इसके बाद मुख्य

0: मंत्री वाराणसी में गुजरात के वडनगर से काशी तक निकाली गई बाइक सेवा यात्रा के समापन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी उपस्थित रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल गाजियाबाद में सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित सेवा ज्योति यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का लक्ष्य भारत को विकसित देश बनाना है। उन्होंने कहा कि वैश्विक संकट के बावजूद भारत दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है।
1: इतना बड़ा आर्थिक संकट पैदा होने के बावजूद भी हमने देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार को रुकने नहीं दिया है। दुनिया के बड़े बड़े देश की अर्थव्यवस्था जहां 2%, 1.5% और 3% की रफ्तार से बढ़ रही है, वहीं पर विश्व में इतना बड़ा संकट पैदा होने के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था आज भी 7.4% की दर से बढ़ रही है।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने ग्रेटर नोएडा में सेवा ज्योति कलश यात्रा में करीब 1 किलोमीटर तक पैदल चलकर कार्यकर्ताओं और लोगों का उत्साह बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर लिए। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। विशेष श्रृंखला की आज की इस कड़ी में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए इस विजन को हकीकत में बदला गया है।
2: प्रगति प्लेटफॉर्म का उद्देश्य विकास परियोजनाओं, सरकारी योजनाओं और लोगों की शिकायतों का तेजी से समाधान करना है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए प्रधानमंत्री खुद केंद्र सरकार के मंत्रालयों और राज्यों के साथ सीधे समीक्षा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विस्तृत निगरानी के कारण 85 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं में तेजी लाने में मदद मिली है।
3: हमने एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया, हर महीने बैठा और लगातार काम करते करते और संबंधित राज्यों को भी बैठाया, और आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि इस प्रगति के इम्प्लीमेंटेशन को बारीकी से प्रधानमंत्री के स्तर पर देखे जाने के कारण 85 लाख करोड़ रुपीज का काम प्रगति मिली।
2: UPSTC के CEO मनोज सिंह ने बताया कि प्रगति की बैठकों के कारण जवाबदेही तय होती है।
4: PM प्रगति जो मीटिंग होती है उसमें प्रोजेक्ट्स के नाम होते हैं और एक ब्रीफ होता है कि भाई ये प्रोजेक्ट पिछले 10 साल से चल रहा है और आज तक कंप्लीट नहीं हुआ, जबकि इसे 4 साल में पूरा होना था। तो ये जब चीजें सभी डिपार्टमेंट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट में आती हैं तो लोगों को पता होता है कि उनका रोल क्या है। मीटिंग होने के पहले 80-90% प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाती
2: है। प्रगति प्लेटफॉर्म सहकारी संघवाद का भी एक उदाहरण है, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और केंद्र के विभिन्न मंत्रालय एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलकर काम करते हैं। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वाराणसी में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय शिंजो आबे की पत्नी अकी आबे के साथ आबे मेमोरियल कॉरिडोर का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने इसे 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से स्वर्गीय आबे को विनम्र श्रद्धांजलि बताया। उन्होंने कहा कि जापान की टेक्नोलॉजी और भारत की युवा ऊर्जा दोनों देशों के विकास को गति देगी।
5: आज लगभग 1400 जापानी कंपनियां भारत में कार्य कर रही हैं। अब भारत जापान की साझेदारी भविष्य के क्षेत्रों सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन हाइड्रोजन और क्रिटिकल मिनरल्स तक पहुंच चुकी। जापान के पास टेक्नोलॉजी है और भारत के पास टैलेंट, जापान के पास अनुभव है और भारत के पास युवा ऊर्जा।
0: कार्यक्रम में जापान की पूर्व प्रथम महिला अकी आबे ने कहा कि काशी में आबे मेमोरियल का निर्माण इसलिए अहम है क्योंकि शिंजो आबे के मन में वाराणसी आने की प्रबल इच्छा थी। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है और इसे अनुसूचित बैंकों की सूची से हटा दिया है। RBI ने कहा कि इस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने

0: विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के अंतर्गत 375 अनुमत कार्यों की सूची अधिसूचित कर दी।
1: इन कार्यों को चार विषयगत स्तंभों जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका से संबंधित बुनियादी ढांचा तथा अत्यधिक मौसम की घटनाओं और आपदा तैयारी के लिए विशेष कार्य के तहत पुनर्गठित किया गया है। प्रत्येक कार्य की शुरुआत विकसित ग्राम पंचायत योजना के तहत जमीनी स्तर पर होने वाली विकेंद्रीकृत नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से होगी, जिसे ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और इसे विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण बुनियादी ढांचा स्टैक के माध्यम से ट्रैक किया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: बीते 24 घंटे के भीतर प्रदेश के कई जिलों में हुई बारिश से लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत मिली है। हालांकि राज्य में कल कुछ जगहों पर तेज आंधी के साथ हुई बारिश से जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने आज और कल बारिश का पूर्वानुमान जताया है। विभाग ने राज्य में कहीं कहीं बिजली गिरने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। विभाग के मुताबिक प्रदेश के पूर्वी जिलों में कल भी यही स्थिति रहेगी। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प सभा को किया संबोधित, कहा वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का सपना जरूर पूरा करेगा भारत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेवा ज्योति यात्रा के तहत विकसित भारत संकल्प सभा में लिया हिस्सा। गाजियाबाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ग्रेटर नोएडा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी कार्यक्रम में हुए शामिल। मुख्यमंत्री ने वाराणसी में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय शिंजो आबे की पत्नी अकी आबे के साथ आबे मेमोरियल कॉरिडोर का किया अनावरण। और भारतीय रिजर्व बैंक ने रद्द किया पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम को न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम, लीजिए सुनिए उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का ख्याल गायन, राग है जौनपुरी।

ಮಾಡಿದ

अभी आप सुन रहे थे उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का ख्याल गायन, राग था जौनपुरी। शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: मीटिंग वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम को न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं, अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली की यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर नहीं रहे, 75 वर्ष की आयु में आज गोवा में निधन। केरलम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज तेज बारिश की संभावना। और मानुष शाह और दिया चिताली की भारतीय जोड़ी ने इतिहास रचते हुए पहली बार चाइना ग्रैंड स्मैश टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। कल शुरू हुआ ये आयोजन 10 अक्टूबर तक चलेगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का विषय है स्केल विदाउट बाउंड्रीज, यानी सीमाओं से परे विस्तार। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। इसका आयोजन संयुक्त रूप से दूरसंचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष का आयोजन 9 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है।
2: इस वर्ष के आयोजन में 5G और 6G, AI, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा, क्वांटम कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और पर्यावरण से जुड़े तकनीकी समाधान जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर भी चर्चा की जाएगी। ये कार्यक्रम 4 नए क्षेत्रों स्मार्ट मोबिलिटी, स्टेडियम एक्सपीरियंस, औद्योगिक रोबोट और परिवहन तकनीक पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। कार्यक्रम में इस वर्ष 100 से अधिक देशों से 1.5 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। साथ ही 500 से अधिक साझेदार और प्रदर्शक, 600 स्टार्टअप और 900 विशेषज्ञ भी भाग ले रहे हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। हमारे संवाददाता ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में GST से जुड़े विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी।
3: इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य कर अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। वित्त मंत्रालय के अनुसार सरकार GST व्यवस्था में सुधार के अगले चरण के लिए एक 5 सूत्री योजना का प्रस्ताव रखेगी। इन प्रस्तावों में प्रशासनिक अड़चनों को स्वचालित और आसान बनाना शामिल है, जिससे खासकर छोटे कारोबारियों पर अनुपालन का बोझ कम हो सके। इस योजना के तहत प्रक्रिया और संरचनात्मक सुधार, जीवन और कारोबार को आसान बनाना तथा सेवाओं के निर्यात और ई कॉमर्स से जुड़े बदलाव शामिल हैं। प्रस्तावित प्रमुख बदलावों में खरीदार और विक्रेताओं के बीच इनवॉइस का स्वतः मिलान, कागजी कार्रवाई कम करना और छोटे कारोबारियों के लिए कई राज्यों में पंजीकरण की आवश्यकता को समाप्त करना शामिल है। आनंद

0: की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी। भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए एक संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय द्वारा जारी इस साझा बयान का मुख्य उद्देश्य वैश्विक बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजारी नीतियों पर रोक लगाना है। ये कदम हाल ही में अमेरिका के विस्कॉन्सिन राज्य के मिलवाकी शहर में हुई G20 देशों के व्यापार मंत्रियों की बैठक के बाद उठाया गया है। बयान में कहा गया है कि दुनिया के कई देश अपनी स्थानीय उद्योगों, श्रमिकों और अर्थव्यवस्थाओं को ऐसी व्यापारिक विकृतियों से बचाने के लिए कदम उठा रहे हैं। सभी देशों ने जोर दिया है कि आपसी सहयोग, सूचनाओं के आदान प्रदान और मिलकर की गई कार्रवाई से इन प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इस महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले 15 भागीदारों में भारत और अमेरिका के अलावा अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, पोलैंड, तुर्की और ब्रिटेन शामिल है। समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: जालिम लोशन। दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहे बेदाग जालिम लोशन।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे किए हैं। उनकी ये यात्रा सेवा और सुशासन के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता की मिसाल रही है। आज की हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको ऐसी ही एक पहल के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिसमें सेवा और सुशासन की ये सोच धरातल पर दिखाई देती है। ये पहल है केरलम में शुरू की गई कोच्चि वाटर मेट्रो सेवा।
2: कोच्चि के जलमार्ग हमेशा से शहर की पहचान रहे हैं। आज वही जलमार्ग कोच्चि वाटर मेट्रो के जरिए यात्रियों की एक नई पीढ़ी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अप्रैल 2023 को इसका उद्घाटन किया और अगले ही दिन वाटर मेट्रो ने यात्रियों के लिए सेवा शुरू कर दी। तब से ये शहरी सार्वजनिक परिवहन में एक नई पहल के तौर पर उभरी है जो कोच्चि के द्वीपों को मुख्य भूमि से जोड़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वाटर मेट्रो से कोच्चि में ट्रैफिक कम करने में मदद मिलेगी।
3: वाटर मेट्रो से कोच्चि के इर्द गिर्द के अनेक द्वीपों में रहने वाले साथियों को सस्ता और आधुनिक ट्रांसपोर्ट मिलेगा। ये जेटी, बस टर्मिनल और मेट्रो नेटवर्क के बीच इंटर मॉडल कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगी। इससे कोच्चि की ट्रैफिक समस्याएं भी कम होगी और बैक वाटर टूरिज्म को भी नया आकर्षण मिलेगा।
2: कोच्चि के लेखक टीएन वेणुगोपाल ने बताया कि वाटर मेट्रो ने शहर में जल परिवहन को बदल दिया है।
4: वाटर मेट्रो ने कोच्चि में जल परिवहन की व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया है। ये अलग अलग द्वीपों और मुख्य भूमि के बीच पहुंच प्रदान करती है। परिवहन के किफायती साधन के तौर पर वाटर मेट्रो धीरे धीरे आम आदमी के लिए एक लग्जरी सुविधा के रूप में उभर रही है। इसने पर्यटन क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है क्योंकि अब देश विदेश के पर्यटक कोच्चि के बैकवाटर्स में वाटर मेट्रो की यात्रा को अपनी यात्रा की योजना का अहम हिस्सा मानते हैं, जिससे सड़कों पर यातायात की समस्या काफी हद तक कम करने में सहायता मिलेगी।
2: कोच्चि भारत का पहला शहर है जहां वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। ये वाटर मेट्रो 15 रूटों पर चलाई जा रही है। वाटर मेट्रो एयर कंडीशनड और बैटरी से चलने वाली नाव है जिनमें चार्जिंग की खास सुविधाएं और यात्रियों के लिए आधुनिक टर्मिनल बने हैं। यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस साल 2 अक्टूबर तक वाटर मेट्रो में 77 लाख से ज्यादा यात्रियों ने सफर किया। 2 अक्टूबर को ही 11,670 यात्रियों ने इस सेवा का लाभ उठाया। तिरुवनंतपुरम से स्मिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात आबुधाबी में कोटे डी आइवर के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री

बिरहामिया में आउत उतारा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी विश्वास, क्षमता निर्माण और साझा हितों पर आधारित बढ़ती रक्षा साझेदारी पर चर्चा की। उन्होंने प्रशिक्षण और संस्थागत स्तर पर आदान प्रदान बढ़ाने सहित रक्षा और आतंकवाद निरोध के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने के अवसरों पर भी विचार विमर्श किया। आबिजान में हुई ये बैठकें डॉक्टर जयशंकर की घाना, कोटे डी आइवर और इथियोपिया की 5 दिन की आधिकारिक यात्रा का एक हिस्सा है। इस यात्रा का उद्देश्य इन तीनों अफ्रीकी देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करना है। रूस ने यूक्रेन के कीव और करीब 12 अन्य क्षेत्रों को निशाना बनाते हुए 70 मिसाइलें और दर्जनों ड्रोन दागे। यूक्रेन पर किए गए हमले में कल 25 लोगों की मौत हो गई और 100 लोग घायल हुए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के अनुसार यूक्रेन की सेना ने 44 मिसाइलों को रोक दिया और 117 ड्रोन को निष्क्रिय किया, लेकिन वह पूरे हमले को रोकने में सफल नहीं रही। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने हमले की निंदा करते हुए इसे हिंसा के जानबूझकर किए गए प्रदर्शन का रूप बताया। ईरान समर्थित सशस्त्र समूह हुती ने सऊदी अरब के 2 हवाई अड्डों पर हमला किया।

0: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के अनुसार यूक्रेन की सेना ने 44 मिसाइलों को रोक दिया और 117 ड्रोन को निष्क्रिय किया, लेकिन वह पूरे हमले को रोकने में सफल नहीं रही। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हमले की निंदा करते हुए इसे हिंसा के जानबूझकर किए गए प्रदर्शन का रूप बताया। ईरान समर्थित सशस्त्र समूह हूती ने सऊदी अरब के 2 हवाई अड्डों पर हमला किया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। इस बीच हूती अधिकारियों ने दावा किया है कि विद्रोहियों ने यमन के दक्षिण पश्चिमी तट के प्रमुख इलाकों धुबाब अल जदीद और बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य के कुछ हिस्सों पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया है। हालांकि यमन सरकार के एक अधिकारी ने इन दावों को खारिज किया है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर हमारे बीच नहीं रहे। आज सुबह गोवा स्थित उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से 75 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। एक श्रद्धांजलि।
1: मैं इंडस्ट्री का हूँ नहीं, मैं यहाँ आता हूँ, काम करता हूँ, वापस भाग जाता हूँ। मैं गांव खेड़े का हूँ और वहीं का रहूंगा और वहीं अच्छा लगता है। जरूरतें सीमित होना तो बहुत आसान हो जाता है, एसी है नहीं, बड़ा बड़ा मजा आता है। सिर्फ अपने यहाँ शहर में जैसे दीवारें होती है ना घर में, हमारे यहाँ पहाड़ है, इस तरफ पहाड़ी बीच में हम रहते हैं।
2: अपनी काबिलियत और दमदार अभिनय से सबके दिलों पर राज करने वाले नाना पाटेकर आज हमारे बीच नहीं हैं। सबकी आंखें नम है, फिल्म उद्योग से लेकर उनके फैंस के बीच शोक की लहर है। अभिनेता नाना पाटेकर ने 1978 में आई फिल्म गमन से फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। नाना ने करीबन 8 वर्षों तक फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष किया। फिल्म परिंदा में अन्ना की भूमिका को लोगों ने काफी सराहा।
3: न भाई न बहन न बीवी न बेटा,
4: कोई किसी का भाई नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं। जा अब्दुल।
2: फिर आई 1994 में क्रांतिवीर, जहां उनके दमदार अभिनय को नई पहचान मिली। इसके बाद अग्नि साक्षी, तिरंगा, डॉक्टर प्रकाश, बाबा आमटे द रियल हीरो, नट सम्राट और वेलकम जैसी फिल्मों ने उनकी विरासत को और मजबूत किया। फिल्म अग्नि साक्षी में उनके नेगेटिव किरदार को खूब सराहा गया।
5: क्यों भाई इतना शोर क्यों मचा रहे हो, किस बात के लिए खुश हो इतने? अगर खुश हो तो खुश रहो, ढिंडोरा क्यों पीट रहे हो? तो कौन सा तीर मारा, ऐसा कौन सा एहसान किया दुनिया पर पैदा होकर, और तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें?
2: अभिनेता नाना पाटेकर फिल्मों में अभिनय से 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं।
4: कलम वाली भाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर पर काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी। कौन समझा उसकी बात को, किसे जगाती वो? मैं जाग गया, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूँ, सुकून है। लेकिन ध्यान में रखना, तुम्हारी ये खामोशी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी।
2: इसी के साथ उन्हें 3 बार अपनी एक्टिंग के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं।

0: नाना पाटेकर ने हिंदी फिल्मों के अलावा मराठी सिनेमा में भी अपना लोहा मनवाया। और अब मौसम का समाचार। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। साथ ही आज बिहार, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर और झारखंड में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहने की संभावना है। खेलों में पेइचिंग में मानुष शाह और दिया चिताली ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए WTT चाइना ग्रैंड स्मैश टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। मानुष और दिया सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय मिक्स डबल्स जोड़ी बन गई हैं। आज भारतीय वायुसेना दिवस है और इस वर्ष का विषय है अचूक, अभेद्य और सटीक। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 साल पूरे होने का समाचार कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री का संकल्प प्रकाशित किया है, भारत के विकसित होने तक ना थकूंगा ना रुकूंगा। दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने प्रधानमंत्री मोदी की वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात का भी चित्र प्रकाशित किया है। RBI द्वारा त्योहारों से पहले रेपो दर बढ़ाने का समाचार भी कई अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, रेपो दर में 0.25% की वृद्धि, कर्ज की किश्त बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने आज भारतीय वायुसेना दिवस पर खबर दी है, जहां हौसलों की उड़ान वहीं भारतीय वायुसेना, 94 साल में बदली वायुसेना की रणनीति। दैनिक जागरण लिखता है, छठी कक्षा में देखा सपना और ऑपरेशन सिंदूर से फलक पर छा गई व्योमिका। नाम के अनुरूप आकाश में उड़ान भरने वाली, देश का गौरव है लखनऊ की बेटी, बनी फौजियों के गांव की बहू। ठंडे इलाके के बजाय गर्म क्षेत्र में आ रहे जीव जंतु अमरीका

0: Math star Mahesh Kakre clinches Ramanujan Prize for fundamental work in algebraic number theory. And with that, it's back to you, Shagun.
1: Thank you, Sarabjit. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to inaugurate 10th India Mobile Congress at Yashobhoomi in New Delhi this morning. 57 GST Council meeting to be held at Bharat Mandapam in New Delhi today. Veteran actor Nana Patekar passes away in Goa. India joins US and 13 other economies in signing joint ministerial statement to address global excess capacity and production in key manufacturing sectors. IMD forecast heavy rain in Kerala, Tamil Nadu, Puducherry, Uttarakhand, West Bengal and Sikkim today. And in table tennis, Manu Shah and Diya Chitali create history, become first Indian mixed doubles pair to reach Grand Smash semi-final at China Smash in Beijing. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह नई दिल्ली में यशोभूमि के मुकाम पर 10वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस का इफ्तिताह करने वाले हैं। जीएसटी काउंसिल की 57वीं मीटिंग आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। सरकर्दा अदाकार नाना पाटेकर का गोवा में इंतकाल हो गया है। भारत ने अमेरिका और 13 दीगर मुल्कों के साथ मिलकर मैन्युफैक्चरिंग के कलीदी शोबों में आलमी सतह पर इजाफी सलाहियत और पैदावार के मामले से निमटने के लिए मुश्तरका वजारती बयान पर दस्तखत किए हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज केरला, तमिलनाडु, पुदुचेरी, उत्तराखंड, मगरबी बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश होने की पेशगोई की है। और टेबल टेनिस में मानुष शाह और दिया चिताली की भारत की मिक्स्ड डबल्स की जोड़ी तारीख साज कारनामा अंजाम देते हुए पहली बार चाइना ग्रैंड स्मैश के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस का इफ्तिताह करेंगे। ये इंडिया मोबाइल कांग्रेस कल शुरू हुई है और इस महीने की 10 तारीख तक जारी रहेगी। इसमें टेलीमवासिलात, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी इख्तरा के शोबों में भारत की शानदार पेशरफ्त की अक्कासी की जाएगी और साथ ही इश्तराक, सरमायाकारी और एक दूसरे को मालूम फराहम करने का एक आलमी प्लेटफॉर्म भी दस्तियाब होगा। डिजिटल इख्तरा नए सिलसिले की कनेक्टिविटी और तकनीक पर मबनी तरक्की के शोबों में भारत की बढ़ती हुई सलाहियत की अक्कासी करते हुए 2026 की इंडिया मोबाइल कांग्रेस का खास मौजू है सरहदों के बगैर तरक्की। इस चार रोजा तकरीब का एहतमाम टेलीमवासिलात के महकमे और भारत की सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने मुश्तरका तौर पर किया है। हमारे नामनिगार ने बताया है कि इसमें इख्तरा और नए सिलसिले के डिजिटल बुनियादी ढांचे, तकनीक पर मबनी मुआशी तरक्की, जामे डिजिटल रसाई नीज महफूज और मजबूत डिजिटल इको निज़ाम के फरोग पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
3: इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 के तहत डिजिटल इको निज़ाम में उभरते हुए मौके तलाश करने के लिए टेक्नोलॉजी के आलमी रहनुमा, पॉलिसी साज अहलकार, सनती माहरीन, स्टार्टअप्स, सरमायाकार और इख्तराकार यकजा हुए हैं। इस साल की इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 5G और 6G, नए सिलसिले के AI नेटवर्क्स, सेमीकंडक्टर्स, साइबर सिक्योरिटी, क्वांटम मवासलात, एंटरप्राइज तब्दीली, सर्कुलर मईशत और ESG, नीज, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग समेत 9 अहम शोबों पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। इसके अलावा 4 नए शोबों स्मार्ट मोबिलिटी, सनदी रोबोटिक्स और ट्रांसपोर्ट तकनीक पर भी खास जोर दिया जाएगा। इसमें 100 से ज्यादा मुल्कों के 1.5 लाख से ज्यादा मंदूबीन, 500 से ज्यादा साझेदार कंपनियां और नुमाइशकार, 600 स्टार्टअप इदारे और 900 माहिरीन हिस्सा ले रहे हैं। दिल्ली से दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
2: जीएसटी काउंसिल की 57वीं मीटिंग आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में होगी। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन की सदारत में इस मीटिंग में जीएसटी तनाजात को हल करने और जीएसटी के नफाज के ताल्लुक से वक्त और लागत को कम करने के मकसद से इनपुट टैक्स क्रेडिट की आमद को बेहतर बनाने की खातिर पॉलिसी इसलाहात पर तबादला ख्याल किया जाएगा।

0: खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह नई दिल्ली में यशो भूमि के मुकाम पर 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का इफ्तिताह करने वाले हैं। जीएसटी काउंसिल की 57वीं मीटिंग आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। सरकर्दा अदाकार नाना पाटेकर का गोवा में इंतकाल हो गया है। भारत ने अमेरिका और 13 दिगर मुल्कों के साथ मिलकर मैन्युफैक्चरिंग के कलीदी शोबों में आलमी सतह पर इजाफी सलाहियत और पैदावार के मामले से निमटने के लिए मुश्तरका वजारती बयान पर दस्तखत किए हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज केरला, तमिलनाडु, पुदुचेरी, उत्तराखंड और मगरबी बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश होने की पेशगोई की है। और टेबल टेनिस में मानुष शाह और दिया चिताली की भारत की मिक्स्ड डबल्स की जोड़ी तारीख साज कारनामा अंजाम देते हुए पहली बार चाइना ग्रैंड स्मैश के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। सभी सुनने वाले श्रोताओं को सोनम का प्यार भरा नमस्कार। हेलो श्रोताओं, कैसे हैं आप? श्रोताओं, आज का हमारा विषय है वायुसेना दिवस, लेकिन उससे पहले आपको पढ़कर सुना रहे हैं जिन्होंने हमें प्यारे प्यारे संदेश भेजे हैं। विष्णु मिस्किन जी का ये सुविचार हमें प्राप्त हुआ है, जिंदगी में हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि समय बदलने में देर लग सकती है, लेकिन अच्छे कर्म, सच्ची मेहनत और सकारात्मक सोच कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो इंसान मुश्किल में भी मुस्कुराना सीख लेता है, उसके लिए कोई भी मंजिल दूर नहीं रहती। विष्णु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नीरा त्रिपाठी जी का सुविचार हमें प्राप्त हुआ है, जो आने वाला है वह हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा, या एक सोच आपको जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। जीवन एक बड़ी जिम्मेदारी है, जब कुछ ना हो तो धैर्य की परीक्षा होती है, और जब सब कुछ हो तो व्यवहार की परीक्षा होती है। इसी पंक्ति में इन्होंने एक सुविचार और हमें भेजा है, हर सुबह केवल सूरज का उगना नहीं होती, यह जीवन का एक और अवसर है कल की गलतियों से सीखने का, बीते हुए को स्वीकार करने का और आने वाले कल के लिए मन में नई उम्मीद जगाने का। नीरा त्रिपाठी जी, आपने हमें इतना प्यारा और अच्छा सुविचार भेजा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, अब आते हैं अपने विषय पर। हमारा आज का विषय है वायुसेना दिवस। आकाश की ऊंचाइयों को छूते हुए देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले हमारे वीर वायु योद्धाओं को नमन। श्रोताओं, आज है 8 अक्टूबर। प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारतीय वायुसेना की स्थापना और उसकी गौरवशाली यात्रा को याद करने का अवसर है। भारतीय वायुसेना केवल आसमान में उड़ने वाले लड़ाकू विमानों का नाम नहीं, बल्कि यह साहस, अनुशासन, तकनीक, देशभक्ति और त्याग का प्रतीक है। जो देश चैन की नींद सोता है, तब हमारे वायु योद्धा आकाश की निगरानी करते हुए राष्ट्र की सुरक्षा में अपना योगदान देते हैं।

भारतीय वायुसेना की स्थापना 1932 को हुई थी। शुरुआत में भारतीय वायुसेना स्वरूप आज की तुलना में काफ़ी छोटा था, लेकिन इसमें आधुनिक तकनीक, अत्याधुनिक विमान और प्रशिक्षित जवानों को शामिल किया गया। भारतीय वायुसेना ने देश के इतिहास में अनेक महत्वपूर्ण अवसरों पर अपनी क्षमता और वीरता का परिचय दिया है। वायुसेना के जवानों ने केवल युद्ध के समय ही नहीं बल्कि प्राकृतिक आपदाओं और राहत कार्यों में भी देश की सेवा की है। बाढ़, भूकंप, अन्य आपदाओं के समय वायुसेना के विमान और हेलीकॉप्टर राहत सामग्री पहुंचाने, लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने तथा आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

वायुसेना की पहली परिचालन उड़ान 1 अप्रैल 1933 को हुई थी। वायुसेना अपनी 94वीं वर्षगांठ मना रहा है। वायुसेना 2026 की थीम है अचूक, अभेद और सटीक अनुभव। इस दिन देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों और वीर योद्धाओं के साहस को याद किया जाता है और उन्हें सम्मानित किया जाता है। वायुसेना के जवानों का जीवन चुनौतीपूर्ण होता है। कठिन प्रशिक्षण, अनुशासन और हर परिस्थिति के लिए तैयार रहने की भावना उनके जीवन का हिस्सा है। इसलिए वायुसेना दिवस हमें याद दिलाता है कि देश की सुरक्षा के पीछे हमारे सैनिकों का अथक परिश्रम और त्याग छिपा है। आज के समय में युद्ध केवल सैनिकों और हथियारों तक सीमित नहीं, आधुनिक तकनीक, संचार प्रणाली, ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियां और सटीक रणनीति भी राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारतीय वायुसेना लगातार आधुनिक तकनीक को अपनाने और क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। आधुनिक लड़ाकू विमान, परिवहन विमान और हेलीकॉप्टर इसकी ताकत को बढ़ाते हैं। यह दिन देश के वीर योद्धाओं के साहस, बलिदान और उनकी सेवाओं को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है।

नाना पाटेकर जी अब हमारे बीच नहीं रहे। 75 वर्ष की आयु में गोवा में उनका निधन हो गया। उन्होंने फिल्म क्रांतिवीर, परिंदा, नट सम्राट, अग्निसाक्षी, अब तक 56 और वेलकम जैसी कई यादगार फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया। उन्हें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 4 फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्रोताओं, इन्हीं पंक्तियों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ हमारा आज का कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे व्हाट्सएप नंबर 8004926250 पर। कार्यक्रम अब समाप्त होता है। प्रस्तुति थी अभय कांत तिवारी की। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अन उपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700-001-4242।
3: ओ, 8700-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700-001-4242 पर।
5: बदलो बदलो आदत बदलो।
6: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
5: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत, लीजिए सुनिए।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कासगंज और शामली जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कासगंज जिले की हलचल। आलेख और स्वर है चंद्रशेखर मिश्रा का।
2: कासगंज में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पर्यावरण, कौशल विकास, स्वरोजगार और उद्यमता सहित विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में कासगंज के युवाओं और विद्यार्थियों के लिए मेरे सपनों का भारत, स्टार्टअप, प्रोफेशनल एवं कॉरपोरेट इनोवेशन जैसे विषयों पर विशेष कार्यक्रम एवं व्याख्यान भी आयोजित किए जा रहे हैं। अभियान के दौरान जरूरतमंद और पात्र लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं से जोड़ने तथा स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। जिलाधिकारी प्रणय सिंह ने बताया कि महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए भी गतिविधियां संचालित की जा रही है।
3: 17 सितम्बर से लेकर 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान का संचालन किया जा रहा है। इसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम समस्त विभागों द्वारा कराए जा रहे हैं, जैसे कि वर्तमान में 5 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक 5 दिवसीय लाभार्थी मेला प्रत्येक ब्लॉक में लगाया जा रहा है।
2: 2 से 8 अक्टूबर तक मनाए जा रहे वन्य जीव सप्ताह के क्रम में जिले में विश्व प्रकृति निधि भारत, WWF इंडिया और जिला गंगा समिति के संयुक्त तत्वावधान में विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यालयों में विद्यार्थियों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों आदि को वन्य जीव संरक्षण, जैव विविधता, पर्यावरण संतुलन और नदियों के संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। कार्यक्रमों में विद्यार्थियों और ग्रामीणों को वन्यजीव तथा पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी दिलाई जा रही है। कासगंज की पारुल बंसल का कहना है कि बदलते मौसम और सिकुड़ते जंगलों के बीच वन्यजीवों की रक्षा करना अब केवल सरकार की ही नहीं बल्कि हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है।
4: पर्यावरण का संरक्षण केवल सरकार की ही नहीं बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी और हम सभी को मिलकर इसके लिए प्रयास करना चाहिए। हमारा कर्तव्य वन्य जीवों और उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करना है।
2: कासगंज में अवैध खनन पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है। प्रशासन की ओर से अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर निगरानी बढ़ाते हुए संबंधित विभागों की टीमों को नियमित रूप से जांच और कार्यवाही के लिए निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन का कहना है कि जनपद में किसी भी स्थिति में अवैध खनन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिना अनुमति खनन करने, निर्धारित मानकों का उल्लंघन करने अथवा अवैध रूप से खनन सामग्री का परिवहन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाएगी। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण आदेश के क्रम में जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कासगंज के निर्देशन में विभिन्न न्यायालयों में लंबित वादों के शीघ्र निस्तारण के लिए मध्यस्थता अभियान 3.0 चलाया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव शालिनी विधेय ने समस्त वादकारियों से अपील की है कि वे अभियान का लाभ उठाएं। कासगंज में अपराधियों के विरुद्ध पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। पुलिस अधीक्षक OP सिंह ने बताया कि सभी क्षेत्राधिकारियों सहित संबंधितों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि पुलिस मित्र वाली छवि को बनाए रखने एवं पीड़ितों की समस्याओं को गंभीरता से सुनकर तत्काल उनका गुणवत्तापूर्ण समाधान किया जाए। जिले में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और दिमागी बुखार जैसी संक्रामक बीमारियों की रोकथाम और प्रभावी नियंत्रण के लिए विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान 31 अक्टूबर तक पूरे जनपद में व्यापक स्तर पर चलाया जाए।

अभी आपने सुना ओमकारा फिल्म का ये गीत, और इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारे

0: रहा है। वहीं अभियान के अंतर्गत 12 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक विशेष दस्तक अभियान संचालित होगा। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर पहुंचकर लोगों को संक्रामक रोगों के बचाव के प्रति जागरूक करेंगी और संभावित मरीजों की पहचान कर उन्हें आवश्यक उपचार एवं जांच के लिए स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुँचने का कार्य करेंगी। अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ नगर विकास, पंचायती राज, ग्राम्य विकास, पशुपालन, शिक्षा, बाल विकास एवं पुष्टाहार, कृषि, सिंचाई और अन्य संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों से अपील की गई है कि बुखार आने पर स्वयं दवा लेने के बजाय नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जांच और उपचार कराएं। घरों के आसपास साफ सफाई रखें, पानी जमा न होने दें।
1: कासगंज जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं शामली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अनुज सैनी का।
2: शामली जिले के जिला अस्पताल में लंबे समय से अटकी अत्याधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की शुरुआत का रास्ता साफ हो गया है। थ्री फेस विद्युत कनेक्शन की मंजूरी मिलने के बाद केबल बिछाने का कार्य तेजी से चल रहा है और अगले सप्ताह ओटी का संचालन शुरू हो जाएगा। इसके शुरू होने से प्रथम तल पर हड्डियों, ENT और सामान्य सर्जरी की आधुनिक सुविधाएं मिल सकेंगी, जिससे मरीजों को दूसरे अस्पतालों में रेफर करने की आवश्यकता कम होगी। वहीं भूतल पर स्थित ओटी के नेत्र रोगों के ऑपरेशन किए जाएंगे। CMO TK सक्सेना ने बताया कि उत्तर प्रदेश निर्माण एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा अपग्रेड किए गए इस मॉड्यूलर ओटी में HEPA फिल्टर आधारित एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम, नियंत्रित तापमान और आधुनिक मेडिकल गैस की सप्लाई की सुविधा है, जिससे संक्रमण का खतरा काफी हद तक कम होगा। शामली के कांदला क्षेत्र स्थित गांव इसोपुर टील में RKPG कॉलेज के कीट विज्ञान विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद प्रायोजित परियोजना के तहत एक किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र के पादप संरक्षण वैज्ञानिक अजय कुमार ने किसानों को फसल के अनुरूप सही कीटनाशी के चयन और संस्तुत मात्रा के बारे में बताया। कृषि अभियांत्रिकी वैज्ञानिक डॉक्टर साकिब परवेज ने छिड़काव यंत्रों व नोजल के उचित उपयोग की जानकारी दी। वही परियोजना प्रभारी डॉक्टर रोहित राणा ने निजी सुरक्षा वस्त्रों के उपयोग और समेकित कीट प्रबंधन अपनाने पर जोर दिया। शामली में आगामी 2026-27 पेराई सत्र को लेकर चीनी मिलों की तैयारियां तेज हो गई है। ऊन और सिरमौर चीनी मिलों ने अपने अपने क्षेत्रों में गन्ना तौल केंद्र स्थापित करने का काम शुरू कर दिया है। ऊन शुगर मिल के तहत 89 तौल केंद्र बनाए जाने हैं, जिनमें से मजदूरों की कमी के कारण पहले चरण में टोड़ा, खोड़समा और चौसाना समेत 7 केंद्र स्थापित किए गए हैं। वहीं सिरमौर मिल द्वारा अपने क्षेत्र के कुल 62 केंद्रों में से शामली जिले के भड़ी, नईनगला और सपुती समेत 9 केंद्रों पर स्थापना क्रिया शुरू कर दी गई है। शामली में परिवहन वाहनों की पुरानी UP-19Y पंजीयन सीरीज के पूरा होने के बाद अब परिवहन विभाग ने नई UP-19Z शुरू कर दी है। इस नई सीरीज के तहत वाहन स्वामियों को अपने पसंदीदा और आकर्षक पंजीयन नंबर हासिल करने का बेहतरीन अवसर मिलेगा। इसके लिए सामान्य नंबरों की बुकिंग प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा चुकी है, जबकि फैंसी और महत्वपूर्ण VIP नंबरों की ऑनलाइन बुकिंग के लिए ई नीलामी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर व्यवस्था बनाई गई है। शामली में आगामी 8 अक्टूबर को जिला मुख्यालय स्थित VV स्नातकोत्तर महाविद्यालय में उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के तहत एक वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। जिलाधिकारी आलोक यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में मेले की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। इस मेगा जॉब फेयर में 50 से अधिक प्रतिष्ठित स्थानीय व बाहरी कंपनियां शिरकत करेंगी, जिनके माध्यम से 2000 से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। शामली में त्योहारों के मद्देनजर बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने और बार बार होने वाले मनमाने शटडाउन पर रोक के लिए 31 अक्टूबर तक मरम्मत अभियान शुरू कर दिया गया है, ताकि उपभोक्ताओं को बिना बाधा विद्युत आपूर्ति मिल सके। अब किसी भी तकनीकी खराबी या फॉल्ट का सटीक आकलन कर एक ही बार में योजनाबद्ध तरीके से सभी समस्याओं का स्थायी समाधान किया जाएगा। इस अभियान के तहत जिले के 92 बिजली घरों के 1200 कर्मचारी युद्ध स्तर पर ट्रांसफार्मर ओवरलोडिंग करने, ढीले तार कसने और जम्पर बदलने, लाइनों की ओवर हालिंग में जुटे हैं। अधिकारियों को मैदानी स्तर पर भौतिक सत्यापन के निर्देश दिए गए हैं। शामली जिले में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना बालिकाओं के जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक उनके लिए बड़ा आर्थिक संबल बन रही है। वर्तमान में जिले की 21,000 बेटियों बेटियां इस योजना का लाभ उठा रही है। इस योजना के क्रियान्वयन और बालिकाओं के सशक्तिकरण को लेकर जिला प्रोबेशन अधिकारी मुस्फेकीन ने कहा कि शासन की मंशा अनुरूप जिले की पात्र बालिकाओं को पारदर्शी तरीके से समयबद्ध

0: सहायता राशि दिलाई जा रही है, जिससे न केवल बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा मिल रहा है बल्कि समाज में उनके प्रति सोच में भी सकारात्मक बदलाव आ रहा है। जिला प्रोबेशन अधिकारी मुस्फिकीन ने बताया।
1: 21,000 से अधिक बालिकाओं को अब तक लाभान्वित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न 6 चरणों में बालिकाओं को 25,000 रुपए की धनराशि दिए जाने का प्रावधान है। नियमित रूप से कैंप कराकर बालिकाओं का चयन किया जा रहा है तथा पात्रों तक पहुंचा जा रहा है।
2: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

अभी आप देशगान सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेश खिदमत है उर्दू कार्यक्रम।
1: उर्दू प्रोग्राम के साथ आज आपके दरमियान फिर हाजिर है आपका मेज़बान मोहम्मद उमैर। आदाब कबूल फरमाएं। सामाइन, आज का दिन हमारे लिए बेहद ख़ास है। आज है भारतीय योम फ़िज़ाइया यानी इंडियन एयरफोर्स डे। इंडियन एयरफोर्स वो फ़ौज है जो मुल्क की आसमान से हिफाजत के साथ साथ हमारे मुल्क को महफूज रखने में अहम किरदार अदा करती है। सामाइन, हर बरस 8 अक्टूबर को भारतीय योम फ़िज़ाइया यानी इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। ये दिन इंडियन एयरफोर्स की शानदार तारीख, उसके बहादुर जवानों और अफसरान की कौमी खिदमात को याद करने का मौका देता है। सामाइन, आज हमारे दरमियान इंडियन एयरफोर्स डे की दो मुअज्जिज़ शख्सियात, रिटायर्ड फ्लाइंग ऑफिसर जनाब अजमेर बहादुर सिंह साहब और रिटायर्ड वारंट ऑफिसर जनाब श्रीराम शिवहरे साहब मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि इंडियन एयरफोर्स की जिम्मेदारियां क्या हैं, मुल्क की हिफाजत में उनकी क्या अहमियत है, साथ ही बदलते वक्त के साथ इंडियन एयरफोर्स में किस कदर बदलाव आया है और हमारे नौजवान इसमें कैसे कैरियर बना सकते हैं। जनाब अजमेर बहादुर सिंह साहब और जनाब शिवहरे साहब, आपका आकाशवाणी लखनऊ के उर्दू प्रोग्राम में खैर मकदम है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सबसे पहले सवाल ये है कि जो भारतीय फिजाइया यानी कि इंडियन एयरफोर्स की क्या अहमियत है और 8 अक्टूबर को ये दिन क्यों मनाया जाता है?
2: देखिए मोहम्मद उमैर साहब, ये भारतीय वायुसेना की जो अहमियत है, ये मैं आपको यही बता सकता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान की जो आसमान से अगर किसी प्रकार के खतरे का अंदेशा होता है तो ऐसे में भारतीय वायुसेना ही है जो हमारे देश को सुरक्षा महफूज कराती है। तो इस वजह से भारतीय वायुसेना की अहमियत हमारी सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा है और आसमान की तरफ से दुश्मन किसी प्रकार का हमला न कर सके हमारे ऊपर, उसकी उसको रोकने के लिए, और साथ ही साथ हम दुश्मनों पर आसमान के जरिए किस प्रकार से हमला कर सकते हैं, इसके लिए भारतीय वायुसेना काम करती है। और दूसरा जो
1: 8 अक्टूबर को ये
2: 8 अक्टूबर क्यों मनाया जाता है, देखिए ऐसा है कि 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना की, और इसकी स्थापना उस समय जब की गई थी तो इसका नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स रखा गया था। और 1932 से आज 94 वर्ष हो गए हैं और लगातार तब से हम 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं और बड़े ही गर्व के साथ, बड़े ही गौरव के साथ सभी भारतीय वायुसेना के जवान और अधिकारी इस दिन को अपने परिवारों के साथ पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं और गौरव का अनुभव करते हैं।
1: दूसरा सवाल यह है कि जो इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू और जो उसके अधिकारी या अफसरान जो हैं, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी क्या होती है? क्योंकि देखने में तो बहुत ग्लैमरस जॉब लगती है इंडियन एयरफोर्स की, तो जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो कैसी होती है और कितनी जिम्मेदारी आप लोगों को निभानी पड़ती है अपनी सर्विस के दौरान?
2: देखिए काफ़ी जिम्मेदारी वाला काम होता है, और रही बात रोज़मर्रा की ज़िंदगी, तो ज़िंदगी बस एक तरह से हम लोग वायुसेना में नौकरी नहीं करते बल्कि उस वायुसेना को जीते हैं, वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। सुबह उठते ही जनरली हमारे स्क्वाड्रनों में जो फाइटर स्क्वाड्रन्स होते हैं उनकी रिपोर्टिंग टाइम आपको बताऊँ मैं 4:30 बजे और कभी कभी तो 4 बजे के पहले भी हुआ करती है सुबह तड़के, और उस समय वहाँ पहुँच करके अपने प्लेस ऑफ वर्क पे वहाँ पर हम हवाई जहाज़ों को निकलवाते हैं, तैयार करते हैं, और उसके बाद जो भी हमारा फ्लाइट शेड्यूल प्लान बना होता है उस दिन का, तो कभी कभी क्या होता है कि फर्स्ट टेक ऑफ सुबह सुबह सूर्य की किरण निकलते ही फर्स्ट टेक ऑफ होता है। तो इस तरह से एक बहुत ही व्यस्त ज़िंदगी रहती है, लेकिन उस व्यस्त ज़िंदगी में भी लोग अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने शारीरिक व्यायाम के लिए भी समय निकालते हैं और एक बहुत ही व्यवस्थित

0: जिंदगी चलती रहती है, जिसमें जिम्मेदारी भी है और साथ साथ अपनेपन का एहसास भी है और अपने लिए कुछ समय भी है जिसमें हम अपने और अपने परिवार को भी कुछ समय दे पाते हैं।
1: जनाब शिवरे साहब, आप बताइए, क्योंकि आपका काम थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आप लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी क्या होती है? जो एक फ्लाइंग ऑफिसर से इतर आप लोगों की जिम्मेदारियां वही हैं या कुछ अलग हैं, और किस तरीके से आप लोगों को डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता
2: बहुत अच्छा जनाब, बहुत
1: है?
2: अच्छा प्रश्न है आपका। ये भारतीय वायुसेना, जैसे कि सर ने बताया कि हमारा एक चले से ये पैशन है, और वहाँ पर जितने स्मार्टली आपको दिखाई देते हैं लोग, उनका चयन प्रक्रिया से लेके आखिर उनकी तरबियत, उनकी जो ट्रेनिंग और उसके बाद का जो वातावरण है, वो सचमुच एक जोशीला वातावरण रहता है। और ज़्यादातर एयरफोर्स के बारे में कहा जाता है कि इसके पायलट, इसके जहाज़ और इसके टेक्नीशियन और इन सब के लिए सपोर्टिंग स्टाफ होता है। तो जो हम जो होते हैं सब टेक्निकल स्टाफ होते हैं, हम लोग एयरवर्दीनेस सर जहाज़ का देते हैं। और सुबह सुबह से सर ने बताया कि सुबह सुबह हमारा काम शुरू हो जाता है और फिर शाम तक चलता है, ज़रूरत पड़ने पर रात के नाइट फ्लाइंग भी होती है, क्योंकि सभी मौसम में सभी कंडीशन में पायलट्स को उड़ने के लिए आकाश सुरक्षित रखना हमारी जो प्राथमिक जिम्मेदारी है, उसको पूरा करने के लिए हम लोग रहते हैं। पारिवारिक जीवन भी बड़े अच्छे से जीते हैं और परिवार अपने साथ रहते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं और एक बड़ा हंसी खुशी का माहौल रहता है।
1: एक सवाल ये है कि दबाव आम दिनों में भी रहता है, और जब कोई ख़तरा मौलाता है, कोई ऑपरेशन होने वाला होता है, तो उन दिनों में सबसे पहले आप बताएं एबी सिंह साहब, किस तरीके से जो वो वक्त होता है उसमें आप किस तरीके से जो हमारे लड़ाकू हैं या और जो अफसरान या और जो वर्कर हैं, उनको किस तरीके से आप मेंटली तैयार करते हैं उन हालात से निपटने के लिए?
0: देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वायुसेना में जितने भी लोग हैं वो हाईली मोटिवेटेड होते हैं और हमेशा किसी भी तरह के चैलेंज को टेक ऑन करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जैसा कि आपने पूछा है, तो मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि आम तौर पर वायुसेना में जो नियमित उड़ान होती रहती हैं, वो भी एक तरह से युद्ध की तैयारियां ही करते रहते हैं हम। निरंतर निरंतर एक तैयारी की जाती है और उसी के तहत हमेशा काम होता रहता है। लेकिन जब कभी कोई ऐसा ऑपरेशन आ जाता है, तो चीज़ें पहले से तो मालूम नहीं होती, वो एकाएक होता है। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा, मुझे याद आ रहा है जब ये कारगिल युद्ध हुआ था, तो उस समय उस दिन मैं आफ्टरनून ड्यूटी के लिए, मेरी डिटेलमेंट थी, मुझे दोपहर जाकर के ज्वाइन करना था ड्यूटी के लिए, और घर में बस नॉर्मल तैयारी अपनी चल रही थी कि हाँ अभी निकलेंगे। तब तक वहाँ से सूचना आती है कि आज ओआरपी के लिए जाना है, आप अपना सामान वगैरह लेकर के आएंगे। और हम फटाफट अपना जो है किट पैक करते हैं टेम्परेरी ड्यूटी का, और लेकर के जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं हेलीकॉप्टर पर ऑलरेडी सामान लोड किया जा रहा है और वहाँ से मूव करना है। उस समय तक हमें ये नहीं पता था कि हम एक्चुअली टेक ऑफ करने के बाद कहाँ लैंड करेंगे। और जब वहाँ से हम हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और जब टेक ऑफ करते हैं और जाकर लैंड करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम तो श्रीनगर में आकर के लैंड किए हैं। और लैंड करने के बाद हमें पता चलता है कि कुछ कारगिल की पहाड़ियों में घुसपैठ हुई है, जिसको हमारी आर्मी जो है वो काउंटर कर रही है, और उसकी मदद के लिए एयरफोर्स को एंगेज किया गया है और हम इस काम के लिए यहाँ पर आए हैं। तो इस तरह से जब कोई ऑपरेशन होता है तो एक तरह से एक सरप्राइज सा ही आता है, लेकिन उस सरप्राइज के लिए हम सदैव तैयार रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है।
1: एबी सिंह साहब, आप बताएं, नई टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आ गई है, टेक्नोलॉजी का दौर है, तो जो हमारी इंडियन फोर्स है उसमें क्या क्या तब्दीलियां आई हैं नई टेक्नोलॉजी की वजह से, और कितनी आसानी नई टेक्नोलॉजी के आने की वजह से एयरफोर्स में हुई है?
0: जी, देखिए, नई टेक्नोलॉजी से आसानी भी हुई है और चैलेंजेस भी बढ़े हैं, दोनों चीज़ें हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी जब एडवांस होती है तो वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे दुश्मनों के पास भी वो एडवांस टेक्नोलॉजी हो सकती है और होगी, तो इस लिहाज से वो चैलेंजिंग भी होता है। लेकिन हमारी भारतीय वायुसेना उस एडवांस टेक्नोलॉजी को एडाप्ट करने में बहुत ही कुशलता से उसको एडाप्ट कर रही है। इसका परिचय अभी हाल के ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने दिखाया है। जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना के जो अत्याधुनिक विमानों ने अपना कौशल दिखाया है, तो आप ये समझ लीजिए कि यदि काश वो 24 घंटे और चला होता तो कुछ परिणाम बिल्कुल इतर होते। लेकिन वो तो अच्छा हुआ कि उधर से कुछ कहीं गुहार हुई और किसी ने मदद की और ये हुआ कि हाँ इसको रोक दिया जाए। अदरवाइज ये एडवांस

0: टेक्नोलॉजी का ही है। आजकल अभी अत्याधुनिक हमारे पास लड़ाकू विमान हैं, हमारे पास मिसाइल्स हैं, जो जो है मतलब हमारे Su-30 जैसे विमानों पर जो है हम इवन हमारी जो एटॉमिक जो मिसाइल हैं उनको भी हम वहाँ से लॉन्च कर सकते हैं, और एयर टू एयर, सरफेस टू एयर, हर तरह की टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, ड्रोन के द्वारा जो है युद्ध। इसीलिए आजकल जो है युद्ध में आपको वन टू वन इंगेज होने की ज़रूरतें कम हैं। पहले आपको अपनी इस एडवांस जो हमारे वेपन हैं उनके द्वारा हमें दुश्मन को के जो अड्डे हैं उनको हमें क्षति पहुंचा सकते हैं और उनको कमज़ोर कर सकते हैं, तब उसके बाद फिर हम आगे के उसमें चल सकते हैं। इस ऑपरेशन सिंदूर के समय की बात जब याद आती है तो दो लाइनें जरूर कहने का दिल करता है। आसमान से जब हिंद की वीरता ने अपना रंग दिखाया, ऑपरेशन सिंदूर ने दुश्मन को भारत का संदेश सुनाया।
1: बहुत खूब।
0: यह सिर्फ उड़ान नहीं, शौर्य और संकल्प की पहचान है। भारतीय वायुसेना हर हिंदुस्तानी का अभिमान है।
1: अभिमान है, बहुत उमदा।
0: जी
1: अगला सवाल ये है कि क्योंकि नौजवान जो हैं वो बहुत मुतासिर हैं इंडियन एयरफोर्स से, किस तरीके के अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए एयरफोर्स में हैं? सिर्फ पायलट बनकर ही यहाँ पे खिदमत दी जा सकती है या और भी मौके हैं उनके लिए, नौजवानों के लिए?
0: देखिए, भारतीय वायुसेना में नौजवानों के लिए अलग अलग तरह की एंट्रीज हैं और उनमें वो अलग अलग तरह से शामिल होकर के और अपनी सेवाएं दे सकते हैं। पायलट बनने के लिए NDA के थ्रू वो जा सकते हैं और वहाँ पर फाइटर स्ट्रीम में जिस प्रकार से उनकी शुरुआती ट्रेनिंग होगी NDA में, और उसके आधार पर फिर उनको ब्रांच अलाट होती है उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर, और उसमें फाइटर ब्रांच मिलती है या हेलीकॉप्टर ब्रांच मिलती है, ट्रांसपोर्ट ब्रांच मिलती है, तो उस हिसाब से वो फाइटर या हेलीकॉप्टर या ट्रांसपोर्ट के पायलट बन करके अपनी सेवाएँ देते हैं। उसके अलावा उन सभी वायुयानों को या जितने भी टेक्निकल इक्विपमेंट हैं उनको मेंटेन करने के लिए टेक्निकल स्टाफ की आवश्यकता होती है। तो एक टेक्निकल स्टाफ के तौर पर, एक टेक्नीशियन के तौर पर भारतीय वायुसेना में शामिल होकर के लोग इंजीनियरिंग ब्रांच में इंजीनियरिंग ऑफिसर्स के रूप में जा सकते हैं, जो बीटेक करने के बाद जाते हैं लोग, और इवन जो इंटरमीडिएट के बाद जो एज ए एयरमैन सिलेक्शन होता है तो वो भी एज टेक्नीशियन के रूप में शामिल हो करके और इन भारतीय वायुयानों को उनकी रख रखाव में अपना योगदान देते हैं। और इसके साथ साथ एडमिन ब्रांच भी है जिसमें एडमिन ऑफिसर्स के रूप में अधिकारी के रूप में काम कर सकते हैं, और जो एडमिन स्टाफ है वहाँ पर भी एज ए एयरमैन लोग भर्ती होकर के और अपनी सेवाएं दे सकते हैं। तो इस तरह से वायुसेना में इवन मेडिकल ब्रांच भी, भारतीय वायुसेना की अलग से एक मेडिकल ब्रांच है जिसमें जो MBBS डॉक्टर्स जो हैं MBBS करके उसमें जा सकते हैं लोग, और जो आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में दाखिला पा करके और वहाँ से लोग जा सकते हैं एज ए डॉक्टर, उसमें सेवाएं दे सकते हैं, एज ए मेडिकल असिस्टेंट लोग भर्ती होकर के उसमें सेवाएं दे सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं भारतीय वायुसेना में शामिल होकर के युवाओं को जो है अपनी सेवाएं देने के लिए।
1: अच्छा, जो नौजवान एयरफोर्स में आने का ख्वाब देख रहे हैं उनको किन किन चीज़ों पर अपना जो माइंड है उनको सेंटर्ड करना चाहिए?
0: बच्चों को,
1: जी
0: जी बच्चों को सबसे पहले तो ये जो CBSE बेस्ड स्कूल होते हैं उनकी जो तैयारी होती है बच्चों को, अगर कक्षा 6 से लेकर के 12वीं तक, जो मैं पहले इंट्री लेवल की बात करूंगा, चाहे NDA में भी जाना हो या चाहे ऑफिसर्स बनना हो या MN बनना हो, तो उनमें आपको कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एकाग्रता जिसको बोलना चाहिए, या वही चाहिए कि काग चेष्टा बको ध्यानम स्वानि निधा तथैवच, इन सब का अगर आप पालन करते हुए अच्छे से पढ़ेंगे और अपने आप को, सबसे पहली चीज़ क्या है कि मेंटली और मतलब कि एजाइल रखें अपने आप को, दुनिया के साथ जुड़े रहें, समाचार पढ़ते रहें, और अपनी जो शिक्षा है उसको, अब पहले तो अंग्रेजी बोलते थे अंग्रेजी जरूरी है, अब जरूरी भी उतनी नहीं है, परंतु हाँ अंग्रेजी इसका मुख्य है, चूंकि बहुत से विषय हैं जो अंग्रेजी में ही पढ़ाए जाते हैं, इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि जब यदि बच्चा और या लड़की जो भी है शुरू से अच्छी तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते रहें, अपने पर विषय पाठ्यक्रम को ध्यान देते रहें। CBSE बोर्ड का पाठ्यक्रम अब तो 12वीं तक का ही बहुत है, यही उसका मूल है, चयन का आधार यही है, और बाकी तो आगे बढ़ने पर आगे है ही है।
1: एबी सिंह साहब, हर अफसर की खिदमत में एक ऐसा लम्हा होता है जिसे वो कोई अपनी ज़िंदगी भर उनसे नहीं भुलाया जा सकता है। आपकी सर्विस लाइफ का कोई ऐसा वाकया हो, कोई ऐसा अनुभव हो जो हमको बताएं जो आज तक आप ना भूले हों?
0: देखिए, एक बात, ऐसे तो बहुत सारे वाक्य रहते हैं, लेकिन मैं आज एक चीज़ बताना चाहूँगा कि
1: जी
0: जब भारतीय वायुसेना ने हॉक मार्क 132 ब्रिटेन से खरीदा था, एडवांस जेट ट्रेनर,

0: तो उसके डेली सर्विसिंग सेक्शन जहाँ से उड़ानें होती हैं नियमित डेली, तो उसको सेटअप करने का कार्यभार हमको सौंपा गया था। बहुत उत्साह था और ऐसा लग रहा था कि नया एयरक्राफ्ट है, उसको हमें बेहतर ढंग से सेटअप करना है और हमारा डीएसएस हमारी वायुसेना के अलग अलग डीएसएसओ में भी नंबर एक होना चाहिए, क्योंकि हमेशा यूनिटों में प्रतिस्पर्धा होती है, सब चाहते हैं कि हमारी यूनिट बहुत बेहतर रहे। तो इसी उद्देश्य से काम कर रहे थे और काम अभी शुरू ही हुआ था और थोड़ा सा फ्लाइंग पिकअप हुई थी और बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन एकाएक एक दिन हमारा एक जो हाक मार्क 132 है वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। तो उस समय मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगा कि हमने कोई बहुत बड़ी चीज खो दी हो। ये एक लगाव होता है अपने काम से
1: काम
0: और
1: से
0: अपनी चीजों से, तो उस लगाव की वजह से उस दिन वास्तव में हमारे लिए बहुत ही मतलब खराब दिन था। और उससे वापस निकल करके फिर से एक रिदम में लाने में मुझे लगता है कि कम से कम एक हफ्ते का समय हमको लग गया था यार।
1: सुनहरे साहब, आप बताएं आपका क्या तजुर्बा या कोई वाकया ऐसा हो जो अभी तक आपको याद है और जिंदगी में शायद आप उसको भूल ना पाए सर्विस के दौरान का।
2: जी, वैसे तो ऐसे बहुत से वाकयात हैं, परंतु मैं एक बार कांगो गए थे हम लोग विदेश में, यूएन मिशन के अंतर्गत हम लोग गए थे। तो हमारे कमांडर थे ग्रुप कैप्टन अजीत कुमार सर, वहाँ पर मॉड्यूल्स मिले हुए थे हम लोगों को, ऑफिसर्स को अलग और जो एयर वॉरियर्स हैं सभी एयर वॉरियर, तो एयरमैन को अलग। तो हमारे कमांडर साहब का मुझे आज भी वो टच याद है, जब उन्होंने उनको अलग अलग मॉड्यूल्स दे दिए तो उन्होंने बोले नहीं, हम विदेश में आज धरती पे आए हैं, हमारे सबके मॉड्यूल्स आसपास ही रहने चाहिए, मेस हमारी एक ही होनी चाहिए। और वो पल जब वो हम लोग वहाँ इकट्ठा हुए, नहाने की भी उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, और मैं बताऊंगा कि वो स्वयं जब कभी आते तो ऐसा लगता था, कई बार ऐसा हुआ कि बाल्टी लेके खुद चल पड़े, तो हमको भी लगता था यार जब हमारा साहब ऐसे कर सकते हैं, हमारे कंटिजेंट कमांडर ऐसे कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। भोजन हम लोगों के साथ, मतलब कहने का हमने जो कॉमरेडरी सीखी है एट द क्रॉप्स, सचमुच भारतीय वायुसेना में ये सच्ची अर्थों में दिखाई देती है। हमारे अधिकारी, हमारे चाहे गेट टुगेदर हो, रमपंच हो, तो हम लोग सब ऐसे परिवार की भांति रहते हैं।
1: आज इंडियन एयरफोर्स डे है, क्या पैगाम आप मुल्क के आवाम को देना चाहेंगे? सबसे पहले आप एबी सिंह साहब।
0: देखिए, आज वायुसेना 94 वर्ष पूरी कर चुकी है और आज तक के इस लंबे वायुसेना के इतिहास में इसने बहुत अच्छे अच्छे मुकाम हासिल किए हैं, देश के लिए बहुत अच्छे काम भी किए हैं। और आज भारतीय वायुसेना अपनी जो क्षमता है उसके आधार पर विश्व की तीसरी सबसे ताकतवर वायुसेना है। तो इस पर हमारे पूरे देशवासियों को गर्व है और गर्व होना भी चाहिए। और साथ ही साथ मैं यही कहूंगा नौजवानों से कि वो पूरी मेहनत से तैयारी करें और वायुसेना में शामिल होने का प्रयास करें, और वायुसेना में जा करके देश की सेवा करने का अवसर मिलेगा, साथ में एक बहुत ही रोमांचक जिंदगी जीने का भी अवसर मिलेगा। और देशवासियों से इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए, राष्ट्र प्रथम की भावना से सभी वायुकर्मी वायुसेना कर्मी अपने जीवन का बहुमूल्य समय वहां लगाते हैं, और आपसे जितना भी हो सके उनको हर संभव सहयोग प्रदान करने का प्रयास करें। यही एक सच्चे मायने में एक तरह से वायुसेना के प्रति आपकी निष्ठा होगी।
1: शिवहरे साहब, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे आज के मौके पर?
2: जी, मैं तो बड़ा भावुक हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे लिए तो तीन माताएं एक तरह से हैं, एक मेरी माँ जिसने मेरे जीवन दिया, एक माँ धरती माँ, और तीसरी जिसने मेरा लालन पालन किया, मेरी भारतीय वायुसेना। मैं एक थोड़ा से कवि हृदय व्यक्ति हूँ, तो मैं कविता के माध्यम से देना चाहूँगा कि वायुसेना अपने सैनिक विकास में रहे हमेशा तत्पर, पढ़ा लिखा कर ज्ञान बांटती जैसे कि एक गुरुवर, ज्ञान ज्योति की अनुपम आभा जो बनती मील का पत्थर, पथिकों को यह छाया देती जैसे कि शीतल तरुवर। वायुसेना अपने सैनिक को देती है नित नया विकास, जीवन को पंख लगाकर उड़ने को देती है बृहद आकाश,
1: बहुत बहुत सुंदर,
2: इसके मजबूत सहारे से मिलता है नित नूतन एहसास, जीवन का तिमिर मिटाने को मिलता सदा नया प्रकाश। 94 स्थापना दिवस के अवसर पर मैं यही भावना रखता हूँ, वायुसेना के गौरव गरिमा में मैं शब्द समर्पित करता हूँ, यह दुनिया में बने यशस्वी बस यही कामना करता हूँ, यह छुए बुलंदी चढ़े शिखर तक प्रभु से विनती करता हूँ,

0: मैं प्रभु से विनती करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
1: बहुत सुंदर
2: जनाब एबी सिंह साहब और जनाब श्री राम शिवहरे साहब, आपने हमारे साथ कीमती वक्त साझा किया और भारतीय फिजाइयत से मुतालिक हमारे सामईन को बहुत सी अहम और दिलचस्प बातें बताईं, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। वक्त की तंगी है, आगे फिर किसी और मौके पर आपसे मुलाकात होगी। तो सामईन, आपको रिटायर्ड फ्लाइंग ऑफिसर जनाब अजमेर बहादुर सिंह और रिटायर्ड वारंट ऑफिसर जनाब श्रीराम शिवहरे के साथ ये खास गुफ्तगू कैसी लगी, अपने तासुरात से हमें मुत्तला ज़रूर करें। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारा ईमेल है kklsurdu@gmail.com। आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भी अपनी राय बता सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7991778157। तो सामईन, इसी के साथ आज का ये उर्दू प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। अपने मेज़बान मोहम्मद उमैर को दें इजाज़त, आदाब।
3: उर्दू प्रोग्राम ख़त्म हुआ। मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोकगीत का कार्यक्रम लोक रंग। कार्यक्रम में आज लीजिए सुनिए संतोष राय के गाए। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: प्रस्तुत है सुगम संगीत। आज के कलाकार हैं वर्षा तिवारी। आइए सुनते हैं इनके स्वर में मीरा भाई का ये भजन।

अभी आप वर्षा तिवारी के स्वर में ये गीत सुन रहे थे। संगत कलाकार थे, तबला वादक थे। आपके साथ तबला संगत कर रहे थे डॉक्टर नीरज कुमार, हारमोनियम पर महेश्वर दयाल, ऑर्गन पर दुर्गेश कुमार, ऑक्टोपैड आकाश पटेल। सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। सुबह के 10 बजने को है, अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। कल शुरू हुआ यह आयोजन 10 अक्टूबर तक चलेगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 का विषय है स्केल विदाउट बाउंड्रीज, यानी सीमाओं से परे विस्तार। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष का आयोजन 9 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है।
2: इस वर्ष के आयोजन में 5G और 6G, AI, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा, क्वांटम कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और पर्यावरण से जुड़े तकनीकी समाधान जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर भी चर्चा की जाएगी। ये कार्यक्रम 4 नए क्षेत्रों स्मार्ट मोबिलिटी, स्टेडियम एक्सपीरियंस, औद्योगिक रोबोट और परिवहन तकनीक पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। कार्यक्रम में इस वर्ष 100 से अधिक देशों से 1.5 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। साथ ही 500 से अधिक साझेदार और प्रदर्शक, 600 स्टार्टअप और 900 विशेषज्ञ भी भाग ले रहे हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में GST से जुड़े विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। सरकार ने सिक्किम में रंगपो और रानीपुल के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 10 के विकास के लिए 993.64 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि इस परियोजना के तहत इस मार्ग को पक्के किनारे वाले 2 लेन के राजमार्ग में उन्नत किया जाएगा। भारत ने अमरीका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए एक संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय द्वारा जारी इस साझा बयान का मुख्य उद्देश्य वैश्विक बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजार नीतियों पर रोक लगाना है। ये कदम हाल ही में अमरीका के विस्कॉन्सिन राज्य के मिलवॉकी शहर में हुई G20 देशों के व्यापार मंत्रियों की बैठक के बाद उठाया गया है। रूस ने यूक्रेन के कीव और करीब 12 अन्य क्षेत्रों को निशाना बनाते हुए 70 मिसाइलें और कई ड्रोन दागे। यूक्रेन में कल हुए इस हमले से 25 लोगों की मौत हो गई और 100 लोग घायल हो गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने हमले की निंदा की है। आज भारतीय वायुसेना दिवस है। इस वर्ष का विषय है अचूक, अभेद्य और सटीक। वायुसेना दिवस की पूर्व संध्या पर कल आकाशवाणी से अपने संदेश में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना सतर्कता और दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार है।
3: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वायुसेना के प्रदर्शन ने हमें गौरव से भर दिया है। हमने दुनिया को दिखाया है कि कैसे वायु शक्ति का उपयोग कर कुछ ही दिनों में निर्णायक सैन्य परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। साहसिक और सटीक हमलों ने राष्ट्र को उसकी ताकत और हवाई शक्ति के आक्रामक इस्तेमाल के महत्व को दिखाया है।
1: त्योहारों के सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे नई दिल्ली और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच आरक्षित विशेष रेलगाड़ियों के 2 फेरे चलाएगा। रेल संख्या 04083 नई दिल्ली कटरा 9 और 16 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे नई दिल्ली से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 3 बजे कटरा पहुंचेगी। वापसी की रेल 04084 कटरा नई दिल्ली 10 और 17 अक्टूबर को सुबह 10 बजे कटरा से रवाना होगी और उसी दिन रात 11:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज सुबह गोवा में उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। नाना पाटेकर हिंदी और मराठी सिनेमा के जाने माने अभिनेताओं में शामिल थे। कई दशकों के फिल्मी करियर में उन्होंने विभिन्न भूमिकाओं में अपनी पहचान बनाई। 1978 में आई फिल्म गमन से नाना पाटेकर ने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। फिल्म परिंदा में अन्ना की भूमिका को और अग्निसाक्षी में उनके नकारात्मक किरदार को लोगों ने काफी सराहा।
4: क्यों भाई इतना शोर क्यों मचा रहे हो? किस बात के लिए खुश हो इतने? अगर खुश हो तो खुश रहो, ढिंडोरा क्यों पीट रहे हो? तो कौन सा तीर मारा, ऐसा कौन सा एहसान किया दुनिया पर पैदा होकर, और तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें? आवाज कर रहे हैं परेशान कर।

0: रहे हैं, लोगों की नींद हराम कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिवंगत नेता को निधन पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत कम अभिनेताओं में वो गहराई, अलग पहचान और दमदार मौजूदगी थी जो श्री नाना पाटेकर में थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन के निधन पर दुख व्यक्त किया है। पेचिंग में मानुष शाह और दिया चिताले ने इतिहास रचते हुए WTT चाइना ग्रैंड स्मैश टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। आप हमारे कार्यक्रम को न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए देश की सीमाओं की हिफाजत करने वाले हमारे वीर योद्धाओं को सलाम, उनके साहस और समर्पण को नमन। देशभक्ति सिर्फ शब्द नहीं बल्कि वो जज्बा है जो तिरंगे को देखकर दिल में उमंग भर देता है। जहां हमारे जवान धरती पर देश की रक्षा करते हैं, वहीं वायु योद्धा आसमान की ऊंचाइयों से भारत की सुरक्षा का संकल्प निभाते हैं। उनके हौसलों को हमारा नमन, सलाम उन पंखों को जो सिर्फ आसमान नहीं नापते बल्कि करोड़ों भारतीयों के सपनों और विश्वास को ऊंचाई देते हैं। जी हां श्रोताओं, आज है 8 अक्टूबर, आज है भारतीय वायुसेना दिवस।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत और अभी आपने सुना स्वदेश फिल्म का ये गीत। एआर रहमान ने इसे गाया था, संगीत दिया था एआर रहमान ने और रचना थी जावेद अख्तर की। लीजिए अब सुनिए बागी फिल्म का ये गीत। अभिजीत की आवाज़ में संगीत आनंद मिलिंद का है और रचना है समीर की।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए अब सुनिए जन्नत फिल्म का ये गीत। गायक हैं के, संगीत प्रीतम का और रचना है सईद कादरी की।

लीजिए, अब सुनिए 36 चाइना टाउन फिल्म का ये गीत हिमेश रेशमिया और अलका याग्निक की आवाजों में। संगीत हिमेश रेशमिया का है और रचना है समीर की।

अभी आपने सुना फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: आकाशवाणी एट 90
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम को न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम। कलाकार हैं बाबूलाल दिवाकर, सावित्री श्रीवास्तव और मोतीलाल और साथी। पहले आपको सुनवाएंगे बाबूलाल दिवाकर के स्वर में ये देवी गीत।

अभी आपने सुना बाबूलाल दिवाकर और साथियों के स्वर में ये पूर्वी गीत, और अब लीजिए सुनिए सावित्री श्रीवास्तव के स्वर में ये गंगा गीत।

0: आप सुन रहे हैं लोकगीत, कलाकार हैं मोतीलाल और साथी। लीजिए अब सुनिए दादरा।
1: सारी सारी

अभी आप मोतीलाल और साथियों के स्वर में ये दादरा सुन रहे थे। लोकगीतों का ये कार्यक्रम अब समाप्त तो होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हमारे कार्यक्रम को न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज, FM 100.3 मेगा हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार। श्रोताओं, आपको बता दें, आज नाना पाटेकर जी हमारे बीच नहीं रहे और हमारा आज का ये कार्यक्रम उन्हीं पर केंद्रित है। आपको बता दें, आज 75 वर्ष की आयु में गोवा में उनका निधन हो गया। उनके फिल्मों की बात करें तो क्रांतिवीर, परिंदा, नट सम्राट, अग्नि साक्षी, अब तक 56 और वेलकम जैसी फिल्में उन्होंने दी।

कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो, कैसे बताऊं, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत हो, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, तुम हर खुशी, तुम प्यार हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, आंखों में तुम, यादों में तुम, सांसों में तुम, आहों में तुम, नींदों में तुम, ख्वाबों में तुम हो, मेरी हर बात में तुम हो, मेरे दिन रात में तुम, सुबह में तुम, शाम में तुम, सोच में तुम, काम में मेरे लिए पाना भी तुम, मेरे लिए खोना भी तुम, मेरे लिए हंसना भी तुम, मेरे लिए रोना भी तुम, और जागना सोना भी तुम, जाऊं कहीं देखूं कहीं तुम हो वहां, तुम हो मैं, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम बिन तो मैं कुछ नहीं, कैसे बताऊं मैं।

ये जो तुम्हारा रूप है ये जिंदगी की धूप है। चंदन से तरसा है बदन, बहती है जिसमें एक अगन। ये शोखियां ये मस्तियां तुमको हवाओं से मिली, जुल्फे घटाओं से मिली, होठों में कलियां खिल गई, आंखों को छीले मिल गई, चेहरे में सिमटी चांदनी, आवाज में है रागिनी। शीशे के जैसा अंग है, फूलों के जैसा रंग है, नदियों के जैसी चाल है, क्या हुस्न है क्या हाल है। ये जिस्म की रंगीनियां जैसे हजारों तितलियां, बाहों की ये गोलाइयां, आंचल में ये परछाइयां, ये नगरियां हैं ख्वाब की। कैसे बताओ मैं तुम्हें हालत दिले बेताब की, कैसे बताओ मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो, कैसे बताओ।

कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम धर्म हो, मेरे लिए ईमान हो, तुम ही इबादत हो मेरी, तुम ही तो चाहत हो मेरी, तुम ही मेरा अरमान हो। तकता हूं मैं हर पल जिसे, तुम ही तो वो तस्वीर हो, तुम ही मेरी तकदीर हो, तुम ही सितारा हो मेरा, तुम ही नजारा हो मेरा। यू ध्यान में मेरे हो तुम, जैसे मुझे घेरे हो तुम, पूरब में तुम, पश्चिम में तुम, उत्तर में तुम, दक्षिण में तुम, सारे मेरे जीवन में तुम, हर पल में तुम, हर चिन्ह में तुम, मेरे लिए रास्ता भी तुम, मेरे लिए मंजिल भी तुम, मेरे लिए सागर भी तुम, मेरे लिए साहिल भी तुम। मैं देखता बस तुमको हूँ, मैं सोचता बस तुमको हूँ, मैं जानता बस तुमको हूँ, मैं मांगता बस तुमको हूँ, तुम ही मेरी पहचान हो। कैसे बताओ मैं तुम्हें, देवी हो तुम मेरे लिए, मेरे लिए भगवान हो।

दोस्तों, नाना पाटेकर साहब को 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 4 फिल्म फेयर पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है, जिनमें शामिल है परिंदा फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, क्रांतिकारी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अंगार फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ खलनायक।

दोस्तों, जब नाना पाटेकर साहब बोलते थे तो सिनेमा हॉल की दीवारें कांप उठती थीं, और जब वो खामोश होते थे तो खामोशी फिल्म की तरह हर आंख नम हो जाती थी।

श्रोताओं, हमारे आज के एक ही कलाकार कार्यक्रम में हमने हमारे एक और सुपरस्टार को शामिल किया है। जानी, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। कड़क अंदाज, भारी भरकम आवाज और आंखों में बेबाक चमक, कुछ याद आया? पहचान तो आप गए ही होंगे कि आज हमारा एक ही कलाकार कार्यक्रम किस कलाकार के नाम सजा है। वो कलाकार जिनके डायलॉग पर सिनेमा हॉल में तालियां गूंज उठती थीं।

जी हाँ, बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया आपने। आज 8 अक्टूबर को हम मना रहे हैं सिनेमा के उस बेमिसाल शहंशाह का जन्मदिन जिनका नाम है राजकुमार। अभिनय की दुनिया में कदम रखने से पहले राजकुमार साहब थे सब इंस्पेक्टर कुलभूषण पंडित। शायद इसीलिए खाकी वर्दी का वो अनुशासन उनके हर किरदार में झलकता है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म मेरे हुजूर का गीत, जो 1968 की एक शानदार फिल्म थी। इस फिल्म में राजकुमार साहब ने एक ऐसे नवाब का किरदार निभाया जिसके चेहरे का नूर और संगीत का ज्ञान बेमिसाल था। बात है साल 1970 की, फिल्म हीर रांझा, एक ऐसी फिल्म जिसकी पूरी पटकथा, हर एक संवाद शायरी और कविता के रूप में पिरोया गया था। राजकुमार साहब ने जब इस मखमली दास्तान में रांझा का किरदार जिया तो उनकी गंभीर आवाज़ ने हर दिल को

फिल्म पाकीज़ा। डायरेक्टर कमाल अमरोही की वो मास्टरपीस फिल्म जिसे बनने में पूरे 14 साल लग गए थे। इस फिल्म में राजकुमार साहब के किरदार सलीम का एक संवाद आज भी हर प्रेमी की जुबान पर रहता है, जब वो ट्रेन में सोई हुई अभिनेत्री के पैरों को देखकर कहते हैं, आपके पांव देखें, बहुत हसीन हैं, इन्हें ज़मीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। रोमांस को इतनी ऊंचाई पर ले जाना सिर्फ राजकुमार साहब के बस की बात थी।

श्रोताओं, राजकुमार जी की कला, उनका बेमिसाल व्यक्तित्व लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स, FM 100.3 मेगा हर्ट्स और न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्मी संगीत और उनके किस्सों पर आधारित कार्यक्रम बोलते नगमे। नेहा गुप्ता और वंदना राठौर का वाचन स्वर है और प्रस्तुति नेहा गुप्ता की है।

0: बोलते नगमे। दोस्तों नमस्कार वंदना जी, नमस्कार।
1: नमस्कार नेहा जी, और सभी सुनने वाले श्रोताओं को भी हमारा नमस्कार।
0: देखिए कई बार क्या होता है कि हवाएं तो वही होती हैं जिसे हम वेवलेंथ बेतार के तार के जरिए हम श्रोताओं से मुखातिब होते हैं, है ना।
1: हाँ, ध्वनि तरंगे हमारी जो होती हैं वो सीधे दिल तक तरंगित होती हैं।
0: हाँ, जहन को निखारती हैं, सवारती हैं। ऐसे ही कुछ मुलाकात एक इंसान की और खुद से भी होती है। और जरा देखिए इस जीवन में हमारे कितने रूप बदलते जाते हैं ना,
1: और खास तौर पर ये तब ज्यादा होता है कि अगर हम कोई गीत सुन रहे हों, उस दौरान गीत क्या कुछ कह रहा है, उसके भीतर कौन से ऐसे जज्बात हैं जो हमारे दिल को छू रहे हैं, तो वो सिर्फ छूते नहीं हैं बल्कि हमारी कैफियत का भी जो रूप रंग होता है उसमें भी कई बदलाव दिखाई पड़ते हैं।
0: सच कह रही हैं। और जब हम लोग बोलते नगमे कार्यक्रम रिकॉर्ड करने बैठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सिल्वर स्क्रीन जगमगाने सा लगता है और वो ब्लैक एंड वाइट कैमरे से, मैं कहूँ सिल्वर स्क्रीन से, इस तरह से कुछ भावों को बयां करते हैं, लगता है कि ओह दिल थाम कर बैठते हैं और गवाह बनते हैं भावों के सुंदरतम रूप की। तो वंदना जी, मैं आपको ये बात नहीं बताने वाली हूँ
1: जी,

0: मैंने पहला गाना कौन सा सिलेक्ट किया है।
1: गायक का भी नाम नहीं बताऊंगी और बोल भी किन्होंने लिखा है नहीं बताऊंगी।
2: मतलब कुछ नहीं बताएंगी
1: कुछ
2: आप?
1: नहीं, कुछ नहीं।
2: चलिए फिर ठीक हो जाए
1: हो जाए।

0: ओहो,
1: अब ये दंगल है,
0: सुरों का,
1: सुरों का दंगल है
0: सुरीला दंगल।
1: और पहचानने का दंगल है।
0: नेहा जी, जब रफी साहब की ये जो गुनगुनाहट निकली है, इसने सारे रहस्य से पर्दा उठा दिया है, क्योंकि मैं इस गीत के बहुत करीब हूँ।
1: श्योर, लॉक
0: बिल्कुल,
1: कर दें?
0: लॉक कर दीजिए।
1: अगर हारी तो फिर क्या,
0: जो भी आप कहेंगी।
1: दूसरा गाना भी मेरी पसंद का होगा।
0: अच्छा, तो अगर मैं जीत गई तो दूसरा गाना मेरी पसंद का होगा।
1: ठीक है, तो आप ये कह रही हैं कि इसमें रफ़ी साहब हैं।
0: हाँ
1: रफ़ी साहब बहुत सारे गानों में हैं।
0: बिल्कुल, इसमें तो जरूर ही है नेहा जी।
1: अच्छा,
0: और बंगाल का जादू, उसकी खुशबू भी है, साथ में घुली मिली सी।
1: दोस्तों देखिए, वंदना जी को आधा ही जीतने देते हैं, आधा मैं जीत जाती हूँ। तो ये गाना जो है ना, मिस्टर एंड मिसेस 55 का है। और बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने, आवाज़ जैसा कि वंदना जी ने पहचान ही लिया कि रफ़ी साहब की है, और जो फीमेल वॉइस है वो गीता दत्त की है।
2: उधर तुम हंसी हो, इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों की एक दास्तां है। उधर तुम हंसी हो, इधर

0: उधर तुम हंसी हो, इधर दिल जवां है, क्या कहने। रफ़ी साहब की आवाज़ का जादू और उसमें गीता दत्त जी की चंचलता शोखी, और उस शोखी चंचलता को धारण कर रही है मधुबाला। खूबसूरती तो बेमिसाल है ही है, लेकिन जिस तरह से वो शब्दों को चेहरे के एक्सप्रेशन से निभा रही हैं, वो दिल पर जादू सा असर कर रहा है। और गुरुदत्त साहब की तिर्यक मुस्कान, आह क्या कहने उसके, और गीत के एक एक शब्द, ऐसा लगता है कहीं हमारी ही मन के भीतर छुपी हुई बहुत सारी जो भावनाएं होती हैं, जिन्हें हम बहुत छुपा कर रखते हैं, उसको व्यक्त कर रहा हो।
1: और वी के मूर्ति साहब का जो ये
2: छायांकन है,
1: छायांकन है
2: बहुत सुंदर। जरा देखिए, बहुत सारा अंधेरा है और कुछ हल्की सी ही रोशनी है और उसमें जादू है। एक छोटा प्यारा सा घर है, उसमें बांस दिखाई पड़ते हैं और छाजन है
1: जी।
2: और उस सन्नाटे में जब प्रेम उभर रहा है, दिल की हलचल को महसूस किया है मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने, और बोल को इस कदर उन्होंने लिखा है कि जो ये रंगीन दास्तां है, फिल्म बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट है, और उस ब्लैक एंड वाइट में मुझे लगता है कि प्रेम ही वो भाव है जिसने रंगीनियत को पहचाना है और लोगों को जगाने का काम किया है।

क्या बात है, कयामत की तरह से बहार है और इंतजार करने की बेबसी है, मुश्किल है। और जो माथे पर बल पड़ रहे हैं गुरुदत्त साहब के, वो भी अपने आप में बड़े पुरकशिश से नजर आते हैं। और निर्देशन भी, प्रोडक्शन भी गुरुदत्त साहब का ही है। अबरार

0: अलवी साहब की ये कहानी है, स्क्रीन प्ले भी उन्हीं का है। और नेहा जी, लेकिन
1: जी
0: ये जो सारी मधुरता सरसता हमारे चारों तरफ तरंगित हो रही है, उसे क्रिएट किया है ओपी नैयर साहब ने अपने संगीत के जरिए। क्या जादू की तरह से गीता दत्त गाती हैं, क्या तरंग है, कितनी खूबसूरती के साथ उन्होंने एक एक शब्द को महसूस किया है।
1: ये कुछ ऐसा है जैसे ऐसा लग रहा है कि कोई सम्मोहन है। और मैं जब रफ़ी साहब को इस गाने में सुनती हूँ, रफ़ी साहब बहुत खुल के गाते हैं, लेकिन इसमें जब वो गा रहे हैं तो उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि सिर्फ ये बात उनको और जो उनकी प्रेमिका हैं उनको ही पता चले। कई बार इस गहराई से गाते हैं कि ये बात सिर्फ दो लोगों के बीच ही रहे। मुझे लगता है कि जो संगीत के साधक हैं गीता दत्त जी और मोहम्मद रफ़ी साहब, दोनों की आवाज़ बाकमाल बहुत सुंदर उभरी है और तभी तो आज भी जीवंत है ये गाना।

0: नेहा जी, जी कितनी खूबसूरती का एहसास करा गया ये गीत, बहुत सारे भावनाओं से भी हम रूबरू हुए
1: जी।
0: लेकिन हाँ, अभी आपने टेस्ट लिया था थोड़ी देर पहले।
1: हाँ, मैंने सोचा कि ले लिया जाए,
0: ले लिया जाए ना। आप बीच बीच में लेती रहती हैं, सोचती हैं कि कब थोड़ा सा कमजोर विद्यार्थी साबित हो जाए। लेकिन फिल्मों के बारे में, फिल्मी गीतों के बारे में तो शायद अभी आप भी थोड़ा सा
1: कच्ची है
0: नेहा जी।
1: पता है, मैंने एक कथन, हमारे वहाँ पे बड़ा प्रचलित है, गुरु गुड़ हो गया और चेला चिन्नी हो गया। लेकिन कमबख्त एवरी पर्सन हैज हिज डे, ये कहावत है।
0: तो अच्छा, चलिए आपको एक मौका देते हैं।
1: अच्छा, ओ वाह,
0: ये एक तबले की धुन है, आपको सुनाते हैं। अगर आप संगीतकार का नाम बता दें,
1: अब मुझे ऑप्शंस मिलेंगे, मुझे ऑप्शंस मिलेंगे।
0: देखिए, ये रेट्रो सिनेमा का युग है, 78 में ये फिल्म आती है और बड़े ही संवेदनशील विषय को लेकर इस फिल्म का निर्माण किया गया। और हाँ, उस रेट्रो सिनेमा के युग में ये जो संगीतकार हैं, इन्होंने अपना परचम लहराया है। जब कभी भी उनके संगीत से सजा हुआ कोई गीत हमें सुनाई पड़ता है तो मन हमारा भी किसी और दुनिया में खो जाता है। तो बहुत कुछ हमने बता भी दिया है, तो चलिए ये थोड़ी सी झलक तबले की सुनाते हैं और फिर देखते हैं कि आप पहचान पाती हैं कि नहीं। दोस्तों, आप सब भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा
1: और देखिए, चोरी तो नहीं कर रही,
0: नहीं चोरी नहीं, कि हमारे दोस्त क्या वहां तक पहुंच पाए हैं कि ये गीत कौन सा है, किस फिल्म का है। जी नेहा जी, जरा बताइए, क्या आप पहचान पा रही हैं ये किस संगीतकार का जादू है?
1: मैंने पहचाना। ओ, पहचाना,
0: बताइए।
1: ये आपने संगीतकार का ही नाम पूछा है सिर्फ ना
0: जी,
1: पंचम दा।
0: वाह, क्या

0: वाह,
1: चेला चिन्नी हो गया है,
0: शक्कर बन गई आप तो।
1: घर फिल्म का गाना है रेखा। ऐसा लगता है जैसे खूबसूरती उन पर खुद को लुटा रही हो और ये कह रही हो कि हाँ तुमने मुझे पा लिया है।
0: तो चलिए अब स्क्रीन आपके सामने कर देते हैं और थोड़ा सा वॉल्यूम को तेज कर देते हैं और दोस्तों को भी सुनाते हैं इसका मुखड़ा।

0: ये जो खिलखिलाहट बरबस मेरे चेहरे पर बिखर गई है, बिखर जीत की, ये कहते हैं कि इस तरह की खिलखिलाहट का असर आपने गालों पर रोज नहीं लगाया है तो रोज लग जाता है।
1: क्या बात है, बिल्कुल
0: ऐसा ही कुछ। देखिए ना, रेखा को जब हम देख रहे हैं बहुत सुंदर नजर आ रही है, ऐसा लगता है जैसे लाल रंग जो उनके श्रृंगार का रंग है वो अपनी ओर खींच रहा है, और एक ठहराव भी है इसमें। एक ऐसे प्रेम की बात हो रही है जो कहीं जाने की बात नहीं करता, छूटने या बिछड़ने की बात नहीं करता। वो ये कह रहा है कि बस महसूस करते हैं और किसी का होना कितना महत्वपूर्ण है जीवन में। उसको जो फिल्माया गया है, जिस तरह से दिखाया गया है, वो अप्रतिम है।
1: नेहा जी
0: जी,
1: गृहिणी का जो एक रूप होता है जो हम सब अपने मन में जहन में बिठाए रखते हैं, उस पर एकदम रेखा खरी उतरती हैं। कितनी तन्मयता के साथ वो पूरी तरह से डूबी हैं, एक प्रतीक्षा का जो रंग होता है उसमें कितनी सरसता घुली हुई है, क्योंकि वो प्रतीक्षा जब समाप्ति की ओर होगी तो किस कदर हसीन दिलकश ये शाम होने वाली है। तो वो जो एक उसका जो एक सौंदर्य होता है वो रेखा की आंखों में नजर आ रहा है। तो ये गीत इतनी सुंदरता के साथ गुलजार साहब ने, लगता है कि जज्बात की कलम को उन्होंने डुबोया है एहसास की स्याही में, और ऐसा कुछ लिख दिया है दिल के कागज पर कि जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्यार ही प्यार नजर आ रहा है दूर तक। और क्या ही दिलकश बात है, दिल का अंदाज है कि बस किसी को याद भर किया और ख्यालों में उसकी खुशबू समा गई।

जब हम इस गाने की कुछ लाइनों को ज़रा गौर से देखें तो ये मालूम पड़ता है कि गुलजार साहब ने डिक्शनरी से सिर्फ कुछ ही शब्दों को लिया।

0: तेरे बिना बिन तेरे ही, तेरे बिना, मतलब ये दो शब्द हैं वो उलटते हैं पलटते हैं और इतना प्यारा सा गाना निकल पड़ता है। ये वही कर सकता है जिसको ये पता है कि भावों के प्रदर्शन के लिए सिंप्लिसिटी बहुत ज़रूरी है और कुछ चीज़ों से कमाल दिखा देना ही तो जादूगर होता है वो।
1: बिल्कुल सच कह रही हैं। और लता जी की आवाज़ को हम कैसे भूल सकते हैं, पवित्रता पावनता का अद्भुत मिश्रण नज़र आता है, वो सीधे हमारी रूह को छू जाता है, आत्मा को छूता है और दिल के करीब, बहुत करीब इस गीत को हम लोग बसा लेते हैं सदा के लिए। जब जब ये रेडियो से धुनें सुनाई पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि इनके साथ हमारा जीवन कितना सरस हो जाता है। लेकिन नेहा जी, जब लास्ट में किशोर दा
0: गाते हैं वो भी सुनते चले
1: जी।

0: कुछ गाने ऐसे होते हैं जो आपको जीने के लिए प्रेरित करते हैं और खुश रहने के लिए कहते हैं, ये गाना वैसा ही कुछ है ना
1: जी।
0: अब चलिए बोलते हैं नगमे में तीसरा गाना भी अपने दोस्तों को सुनवाएं, नहीं तो कहेंगे अरे हर बार तीन गाने बजते हैं और आज दो ही गानों पर क्यों बात हम लोग रुक गए हैं।
1: बिल्कुल नेहा जी, और तीसरा जो गीत है वो आपकी भी पसंद का है, हमारे भी पसंद का है, और कोई भी ऐसा शायद ही मुश्किल से मिले नेहा जी जो हिंदी गीतों का प्रेमी हो और ये गीत उसके फेवरेट लिस्ट में ना हो, तो ये एक जो आवाज उभरेगी जिसने पूरे फिल्म इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया, एक एंग्री यंग मैन जब वो कोई बात वो भी इस शायराना अंदाज में करते हैं तो वो छवि धूमिल हो जाती है और प्रेमी का जो एक रूप होता है वो उभर कर सामने आता है। तो सुनते चलें।
2: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

0: बहुत सुंदर। मुझे लगता है जब इस गीत की कल्पना यशराज फिल्म के बैनर तले जब ये फिल्म लिखी जा रही थी, सोची जा रही थी, और जावेद अख्तर साहब को बुलाया जाता है कि भाई आपको एक प्रेम पूर्ण गीत लिखना है, और वो जो समय है वो बिल्कुल एक खास तरह का कन्वेक्शन नज़र आता है नायक और नायिका के बीच। आपको ध्यान रखनी है ये बात कि एक तरफ समाज है और एक तरफ नायक और नायिका की मोहब्बत है। जावेद अख्तर साहब कुछ शायरियों को लेते हैं और कुछ जो रिदमिक अंदाज है वो लता जी के लिए। ये प्रयोग इतना सुंदर, अनूठा, इसकी मिक्सिंग, जब आपने कहा कि आप एंग्री यंग मैन की आवाज़ सुनिए, मैं बिल्कुल सचेत हो गई थी। मुझे लग रहा था कि आप कुछ ऐसा जादू तो कर ही देंगी क्योंकि गुरु गुरु ही होता है।
1: अरे नहीं नहीं नहीं आजी, देखिए जादू तो हमारे जो गीतकार संगीतकार होते हैं वो रचते हैं, और इस समय जो जादू जो देख रहे हैं हम, सिलसिला फिल्म का ये गीत है, और सबसे ज़्यादा फिल्म अगर मैंने देखी होगी कोई एक से ज़्यादा बहुत बहुत बार, तो उस फिल्म में ये सिलसिला फिल्म आती है। बहुत ही खूबसूरती के साथ इस फिल्म की कहानी बुनी गई थी। अमिताभ बच्चन, जया बादली और रेखा का कॉम्बिनेशन जो कि थोड़ा सा दुर्लभ था, लेकिन जो अलग सा संयोग बना उसके पीछे स्मिता पाटिल का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने मनाया जया भादुड़ी को भी, अमिताभ बच्चन को भी और रेखा को भी।
0: बहुत सुंदर।
1: सुनिए आगे क्या ये गुफ्तगू हो रही है दो दिलों की।
2: ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं। ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है। ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।

0: तू बदन है, मैं हूँ साया, तू नहीं तो मैं भी कहाँ। मतलब एक बहुत सुंदर रूप है। आपने गुलजार साहब का एक बार जिक्र किया था
1: जी जी
0: कि प्रेम हमेशा दो लोगों के बीच पनपता है।
1: हाँ, प्रेम एक तरफा नहीं होता,
0: एक तरफा नहीं होता
1: जी।
0: है। और इसमें जावेद अख्तर साहब, जो कि गुलजार साहब और अख्तर साहब दोस्त ही हैं
1: जी,
0: कितनी करीबियत की बात है कि उनकी लेखनी एक एक मोड़ पर आकर मिल रही है, बहुत सुंदर।
1: लेकिन ये जो पहाड़ी धुन सुनाई पड़ रही है,
0: हाँ,
1: संतूर जो एक वाद्य यंत्र और बांसुरी
0: जी,
1: इसका जो समन्वय है इतना खूबसूरत बन पड़ा है। और ये जादू इसलिए क्रिएट हो रहा है क्योंकि संगीतकार हमारे शिव हरि साहब हैं। 1981 की ये फिल्म है सिलसिला, इसी में ये जोड़ी उभरती है और बहुत सालों तक लोगों के दिलों को झंकृत करती है।

कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: सच में दिल झंकृत हो गया, समय बड़ा कम बचा है
1: जी।
0: कुछ चंद बातें और रह गई हैं दोस्तों। जब लता जी की आवाज़ में ये बात हो रही है कि शाम ढल रही है, कोई चंदन कोई खुशबू नहीं है, लेकिन ये प्रेम ही है जो सारी कुरूपता को बहा ले जाती है, उसको बदल देती है। वो जो सूरज ढल रहा है उसकी जो लालिमा है, जब प्रेमिका के चेहरे पर कैमरा आता है वही लालिमा नज़र आ रही है। और लता जी, आहा, ऐसा लगता है जैसे माँ सरस्वती बैठी हुई हों और बड़े करीने से उन्होंने उनके गले को रचा हो और आशीर्वादित किया हो कि जाओ धरा पर, तुम राज करोगी।
1: बिल्कुल सही करी है नेहा जी। और आज की हमारी ये जो प्रस्तुति थी वो बहुत दिलकश थी, दिलफरेब थी, मिठास से भरी हुई थी। ज़रूर हमारे दोस्तों ने भी पसंद की होगी, लेकिन फ़िलहाल दोस्तों अब बात करने का समय नहीं है, क्योंकि समय हो गया है अब आप सबसे इजाज़त लेने का। तो दीजिए हमें विदा।
2: नमस्कार, बोलते नगमे।
3: आप सुन रहे थे कार्यक्रम बोलते नगमे। वाचन स्वर नेहा गुप्ता और वंदना राठौर का था और प्रस्तुति थी नेहा गुप्ता की। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स और FM 100.3 मेगा हर्ट्स और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी नवाचार में भारत के उल्लेखनीय प्रगति को दिखाया जा रहा है। 4 दिवसीय इस सम्मेलन की शुरुआत कल हुई थी। इस वर्ष का विषय है सीमाओं से आगे विस्तार। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस मंच ने भारत में दूरसंचार क्षेत्र और डिजिटल कनेक्टिविटी के विकास को देखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशन हैं। प्रधानमंत्री

0: कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने में सुविधा दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार लगभग 25 करोड़ विद्यार्थियों को विभिन्न डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा मंचों से जोड़ने का प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने दीक्षा प्लेटफॉर्म के जरिए भारत में डिजिटल शिक्षा के बढ़ते महत्व के बारे में जानकारी दी।
1: ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमारा एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है। कोविड के दौरान जुलाई 2022 तक इस प्लेटफॉर्म पर 500 करोड़ से ज्यादा लर्निंग सेशन और करीब 6000 करोड़ लर्निंग मिनट दर्ज हुए। अब हमारा प्रयास है हमारे जितने भी डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम है उनसे करीब 25 करोड़ स्टूडेंट्स को जोड़ सके। यानी साथियों, टेलीकॉम के क्षेत्र में जो रेवोल्यूशन आई है इसका भारत के नागरिक को सीधा सीधा फायदा हुआ है।
0: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि प्रौद्योगिकी न केवल सिर्फ अंतिम गांव तक बल्कि हर एक नागरिक तक पहुंचनी चाहिए। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। बैठक में जीएसटी विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज फिजी में 31वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP31 के वार्ताध्यक्ष क्रिस बोवन के साथ मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने कहा कि बैठक में उन्होंने संतुलित और सार्थक परिणामों के लिए भारत की प्रतिबद्धता और COP31 के वार्ताध्यक्ष के साथ मिलकर काम करने की पुष्टि की। भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर इनाम की घोषणा करके आतंकवादी गुटों को अपने समर्थन की बात छिपाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने कहा कि दुनिया 9/11, 26/11 और पहलगाम आतंकवादी हमलों को नहीं भूली है। देश आज भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ मना रहा है। 8 अक्टूबर 1932 को इसका गठन किया गया था। इस महत्वपूर्ण अवसर ने वायु शक्ति के एक ऐसे दृष्टिकोण की शुरुआत की जिसने आने वाले दशकों के लिए देश की रक्षा प्रणाली को आकार दिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी वायु योद्धाओं, अनुभवी सैनिकों और उनके परिवारों को बधाई दी है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज सुबह गोवा में उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। नाना पाटेकर हिंदी और मराठी सिनेमा के जाने माने अभिनेताओं में शामिल थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत कम अभिनेताओं में वो गहराई, अलग पहचान और दमदार मौजूदगी थी जो श्री नाना पाटेकर में थी।
1: वो एक बेहतरीन कलाकार थे जिन्होंने अलग अलग किरदारों के माध्यम से दर्शकों का दिल जीता। नाना पाटेकर जी का जीवन तिरंगे की आन बान और शान के लिए समर्पित रहा। वो बंधनों में नहीं रहे, परिंदे की तरह फिल्मों के आसमान में उड़े।
0: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi today inaugurated the 10th edition of the India Mobile Congress IMC at Yashobhumi in New Delhi today. The four-day event, which began yesterday, showcasing India's remarkable progress in telecommunications, digital connectivity and technological innovation. The theme of IMC 2026 is Scale Without Boundaries, reflecting India's growing capabilities in digital innovation, next-generation connectivity and technology-led growth. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi said, The Indian Mobile Congress platform has witnessed the evolution of the telecom sector and digital connectivity in India.

1:15 पर पनघट कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण बहनें सुनेंगी प्रीति मिश्रा से लोकगीत और शुभि मालवीय से कंचन श्रीवास्तव की बातचीत। विषय होगा महिलाएं सशक्त कैसे बने। 2:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। शाम 5 बजे सुनिएगा फिल्म संगीत। 5:15 बजे

शाम 5 बजे सुनिएगा फिल्म संगीत, 5:15 बजे युवा श्रोता सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी, शाम 6 बजे पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे राम सिंह पटेल और साथियों से लोकगीत। प्रायोजित कार्यक्रम 6:50 पर किसान वाणी लखनऊ केंद्र से। हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत शाम 7:31 पर आप सुनेंगे आशीष कुमार मिश्र का काव्य पाठ।

शाम 7:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में वर्षा तिवारी से गीत और भजन सुनिएगा। रात 8 बजे फिल्म संगीत, रात 8:30 सबरस।

रात 9:30 पर सुनिएगा गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशां। रात 10 बजे फिल्म संगीत। ये थी हमारे आज के शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। उदय भान पुत्र छेदीलाल सूचित करते हैं, अंजलि देवी जिनकी उम्र 30 वर्ष है, चेहरा गोल, रंग गोरा और आंखें काली हैं और कद 4.5 फीट और काले लंबे बाल हैं। इनका पहनावा साड़ी है। ये 15 जून 2026 से केशव नगर से लापता हैं। इनके विषय में कोई भी जानकारी मिलने पर उदय भान पुत्र छेदीलाल वार्ड नंबर 20 केशव नगर चमंधा भरवारी पोस्ट कोखराज पर सूचना दीजिए। आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 8574129497।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का राग हिंडोली सारंग में ख्याल गायन।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का राग हिंडोली सारंग। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, प्रस्तुत है आपकी पसंद। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं मधु कुमार।

आपकी पसंद। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मधु का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम का आरंभ मैं करना चाहती हूँ रामधारी सिंह दिनकर की इन खूबसूरत सी पंक्तियों के साथ। ये आपने सुनी भी होंगी। नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख के जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ ना दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। मन कटुवाणी से आहत हो भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बाद कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। दोस्तों, ये खूबसूरत सी पंक्तियां हमें यही बता रही हैं कि अगर समय पे रहकर आपने अपनी आंखें नहीं खोली, समय रहते हुए अगर आपने किसी का सम्मान नहीं किया, उनकी भावनाओं को नहीं समझा, फिर आप चाहे जितनी भी बातें बाद में बोल लें, उसका कोई अर्थ नहीं है। अगर किसी की विपत्ति के समय अगर आप नहीं उनके संग खड़े हुए और फिर वो परिस्थितियां सुलझ गईं, ठीक हो गईं और आप जाएंगे उनके पास और कहेंगे हम आपके साथ हैं, तो फिर कोई अर्थ नहीं। इसीलिए देखिए ना, जब हम अपने पितरों को श्राद्ध के रूप में कुछ भी समर्पित करते हैं, लेकिन जब वो जिंदा थे तो उनके संग क्या व्यवहार किया, ये क्या याद रखते हैं? जब वो जीवित थे तो क्या उनके मनपसंद भोजन को हमने कभी प्यार से बनाकर उनको खिलाया? उनके ना रहने पर उनके पसंदीदा भोजन को बनाना और उनके फोटो के सामने समर्पित करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। बस कहने का अर्थ ये है कि जब तक व्यक्ति जिंदा है, जब तक आपके सामने है, तो उसकी कदर कीजिए, फिर वरना आप भी यही कविता गुनगुनाते रह जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने कार्यक्रम के पहले गीत की तरफ। और जो गीत आ रहा है वो है, फिल्म का नाम है आपकी कसम। और इस गाने में जो पंक्तियां हैं वो भी यही बात कह रही हैं कि जो जिंदगी के सफर में गुजर गया वो फिर वापस नहीं आएगा। तो बता देते हैं आपको, इस गीत की फरमाइश हमें जो की है वो है राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान। गांव भूपिया से रोशनी, संदीप, मनदीप, रंजीत, पूजा और इनके बहुत सारे मित्र। पुलिस लाइन जहां चौराहा से मधु कनौजिया, गोविंद कनौजिया, हनी कनौजिया, गौरी कनौजिया और शिव शंकर कनौजिया। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: साहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी
1: ये लिखते हैं कि आदरणीय मधु दीदी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और हम आपके ये कार्यक्रम बेहद ध्यान से और बेहद चाव से सुनते हैं। 12:30 बजते ही हम ट्यून कर लेते हैं आकाशवाणी प्रयागराज, और हमें आपकी पसंद कार्यक्रम बेहद पसंद है, और हमारे गीतों को सुनवाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं, ये कार्यक्रम हमारे श्रोताओं के लिए ही है ताकि उनके मनपसंद गानों को हम सुनवा सकें। और ये हमें प्रयागराज से लिख रहे हैं हर्ष त्रिपाठी। इन्होंने भी फरमाइश की है एक गीत की, जिस गीत की फरमाइश छुन्नू जी ने भी की है, और गीत है दूसरा आदमी फिल्म से। बहुत ही खूबसूरत सा गीत है, आवाज़ है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। तो इस गीत को सुनवाने से पहले मुंबई से भी हमें लिख रहे हैं अहमद भाई फूलवाले, दुखना सदफ, जूही इकबाल, इमरान अहमद फूलवाले, आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया और आशु अहमद। आइए सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, मैंने एक किताब में पढ़ा है कि अन्याय और बदतमीजी को हर बार सहते रहना खुद के साथ धोखा करने जैसा है। और इसको पढ़ने के बाद ये बात मेरे जहन में घर कर गई। बात तो सही है दोस्तों, हम अक्सर रिश्ते बचाने के नाम पर अपनी खामोशी को समझदारी और सहनशीलता को संस्कार समझ लेते हैं, लेकिन हर बार चुप रहना रिश्ते बचाना नहीं होता। कभी कभी ये सामने वाले को गलत लगातार करते रहने की छूट देना भी होता है। जो गलत है उसे उसी वक्त अपनी भाषा में जवाब दीजिए, उनको समझाइए कि आपके इन शब्दों से, आपके इन कृत्यों से मुझे तकलीफ हो रही है, कृपया करके इसको दोबारा ना दोहराएं। और अगर आपने टोका नहीं तो बार बार वो आपकी इस सहनशीलता को, आपकी इस चुप्पी का गलत अर्थ लगाएंगे कि मैं इनको कुछ भी कह दूं ये सुन लेंगे। और हाँ, हर टूटते रिश्ते को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ एक अकेले की नहीं होती है। दवा वहीं काम करती है जहां शरीर में जिंदगी बाकी हो। तो चलिए, अब हम चलते हैं अपने कार्यक्रम के अगले गीत की तरफ। और इस गीत की फरमाइश आई है काले गांव से, सुधाकर राजे जाधव देशमुख, प्रशांत जाधव देशमुख, जगुताई जाधव देशमुख, कुमार संचित, प्रथमेश सर्वत, कल्पना और सानवी, गुजरात से धीरज वी रबारी, कौशाम्बी से शिवराज, जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह, सुनीता सिंह, फतेहपुर उत्तर प्रदेश से राजीव सिंह चौहान, अजय सिंह चौहान और इनके परिवार के अन्य सदस्य, शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, राजू ताम्रकार, रज्जन रजक, संजीव वर्मा, विपिन गुप्ता, अरुण कनौजिया, संजय सोनी, पवन यादव, सुनील जैन, मोना हनी, सौम्या और उनके मम्मी पापा। और इन्होंने जिस फिल्म का गाना सुनना चाहा है वो फिल्म है हम दिल दे चुके सनम। इस फिल्म का ये बहुत ही खूबसूरत से गाने की फरमाइश आप सबने की है, तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद और मैं हूं मधु। आपकी फरमाइश को लेकर कितनी सही पंक्तियां हैं कि रोटी पर घी और नमक के साथ जी लगाने से स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाते हैं। इंसान जन्म के 2 वर्षों के बाद बोलना सीख ही जाता है, पर बोलना क्या है ये सीखने में पूरा जन्म लग जाता है। जी हाँ, कितनी सच्ची लाइन है ये, बिल्कुल सही पंक्तियां लिखी हैं। और अब हम आ गए हैं अपने कार्यक्रम के अगले गीत की तरफ। तो भाई ये कौन सा गीत आ रहा है? ये तो आ रहा है जहरीला इंसान फिल्म का गीत। इस गीत की फरमाइश आई है हमीरपुर बुंदेलखंड से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल, दिव्यांशी विश्वकर्मा, संजय नगर ऐशबाग से वारिस अली खान, इस्लामुन्निशा, शकील अहमद, शहनाज खान और दानिश, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोर्ड, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोर्ड और अंकित कांगड़ा। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का जहरीला इंसान फिल्म का।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी मधु कुमार। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स, FM 100.3 मेगा हर्ट्स और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 1 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी नवाचार में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को दिखाया जा रहा है। 4 दिवसीय इस सम्मेलन की शुरुआत कल हुई थी। इस वर्ष का विषय है सीमाओं से आगे विस्तार। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस मंच ने भारत में दूरसंचार क्षेत्र और डिजिटल कनेक्टिविटी के विकास को देखा है। उन्होंने कहा कि इस मंच ने दूरसंचार क्षेत्र में भारत की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: बीते वर्षों में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के माध्यम से बहुत कुछ हासिल किया है। हमारे सामने विकसित भारत का एक विराट संकल्प है, इसलिए हमें अपने प्रयासों को निरंतर व्यापक करते रहना है। हमें IMC को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जो टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट और आइडिया का एक जंक्शन बन सके।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है।

0: मोदी ने कहा कि भारत में ही 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशन हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने की सुविधा दी है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रौद्योगिकी का व्यापक प्रसार तभी हो सकता है जब वो किफायती और समावेशी हो। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। बैठक में जीएसटी विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और घाना लंबे समय से साझेदार हैं। दोनों देश ग्लोबल साउथ के प्रमुख देशों के रूप में स्वास्थ्य, कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, खनन, रक्षा, रेलवे और डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। दोनों देशों ने कृषि अनुसंधान और शिक्षा, जैव विविधता, वैज्ञानिक अनुसंधान और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में समझौते किए। भारत ने आगामी 31वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP31 में महत्वाकांक्षी और संतुलित परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लचीलापन, व्यावहारिक दृष्टिकोण और आपसी सम्मान की आवश्यकता पर जोर दिया है। सम्मेलन से पहले फिजी में आयोजित एक बैठक के दौरान राजनीतिक समझौते के संभावित क्षेत्र और परिणाम विषय पर पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों के मद्देनजर अब केवल बयानबाजी से आगे बढ़कर कार्रवाई और आपसी सहमति की दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर इनाम की घोषणा करके आतंकवादी गुटों को अपने समर्थन की बात छिपाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने कहा कि दुनिया 9/11, 2008 के मुंबई और 2025 के पहलगाम आतंकवादी हमलों को नहीं भूली है। देश आज भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ मना रहा है। 8 अक्टूबर 1932 को इसका गठन किया गया था। इस महत्वपूर्ण अवसर ने वायु शक्ति के एक ऐसे दृष्टिकोण की शुरुआत की जिसने आने वाले दशकों के लिए देश की रक्षा प्रणाली को आकार दिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी वायु योद्धाओं, अनुभवी सैनिकों और उनके परिवारों को बधाई दी है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज सुबह गोवा में उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। नाना पाटेकर हिंदी और मराठी सिनेमा के जाने माने अभिनेताओं में शामिल थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 883 अंक गिरकर 71,756 पर और निफ्टी 308 अंक कम होकर 22,295 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has said digital connectivity has powered education, healthcare and government services. Mr. Modi today inaugurated the 10th edition of the India Mobile Congress at Yashobhoomi in New Delhi. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi said today even children in remote villages and from poor families are able to access quality knowledge. Mr. Modi said, over the past 10 to 12 years, the mobile phone has emerged not only as a medium of modern communication, but also as a crucial tool for good governance. He said today, hundreds of government services are available on mobile phones. The Prime Minister said, the Indian Mobile Congress platform has witnessed the evolution of the telecom sector and digital connectivity in India.
2: बीते वर्षों में भारत ने कंज्यूमर से क्रिएटर बनने की यात्रा तय की। अब भारत उस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है जहां प्रोडक्ट डिजाइन भी भारत में होगा, उसकी टेक्नोलॉजी और आईपी भी भारत की होगी इसके लिए हर जरूरी इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, हर जरूरी रिफॉर्म

0: वजीर आला योगी आदित्यनाथ को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के लोक भवन ऑडिटोरियम में हुनरमंद खिलाड़ी कोटा के तहत मुंतखब 470 खेलों के हुनरमंदों को तकरीरी खत पेश करेंगे। वो पुलिस फोर्स के लिए खेलों की तौसी सहूलियात समेत कई तहफ का भी ऐलान करेंगे। मालियात और पार्लिमानी उमूर के वजीर सुरेश कुमार खन्ना और खेल और नौजवानों के बहबूद के वजीर मुमलकत गिरीश चंद यादव भी इस तकरीब में मौजूद होंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर लिए, जिसकी तारीफ जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और उनके अटल अज़्म से होती है। खिदमत और गुड गवर्नेंस के इस विज़न से कारफरमा हुकूमत 2047 तक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के हदफ को हासिल करने के लिए अनथक मेहनत कर रही है। एक खसूसी सीरीज में आज हम बताते हैं कि प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए इस विज़न को हकीकत में कैसे तब्दील किया गया।
1: प्रगति प्लेटफॉर्म का उद्देश्य विकास परियोजनाओं, सरकारी योजनाओं और लोगों की शिकायतों का तेजी से समाधान करना है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए प्रधानमंत्री खुद केंद्र सरकार के मंत्रालयों और राज्यों के साथ सीधे समीक्षा करते हैं।

0: आज हम बताते हैं कि प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए स्वीजन को हकीकत में कैसे तब्दील किया गया।
1: प्रगति प्लेटफॉर्म का उद्देश्य विकास परियोजनाओं, सरकारी योजनाओं और लोगों की शिकायतों का तेजी से समाधान करना है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए प्रधानमंत्री खुद केंद्र सरकार के मंत्रालयों और राज्यों के साथ सीधे समीक्षा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विस्तृत निगरानी के कारण 85 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं में तेजी लाने में मदद मिली है।
2: हमने एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया, हर महीने बैठा और लगातार काम करते करते और संबंधित राज्यों को भी बिठाया और आज मैं गर्व से कैसे हूँ कि इस प्रगति के इम्प्लीमेंटेशन को बारीकी से प्रधानमंत्री के स्तर पर देखे जाने के कारण 85 लाख करोड़ रुपीज का काम को गति मिली।
1: यूपीएसटीसी के सीईओ मनोज सिंह ने बताया कि प्रगति की बैठकों के कारण जवाबदेही तय होती है।
3: पीएम प्रगति जो मीटिंग होती है उसमें प्रोजेक्ट्स के नाम होते हैं और एक ब्रीफ होता है कि भाई ये प्रोजेक्ट पिछले 10 साल से चल रहा है और आज तक कम्प्लीट नहीं हुआ, जबकि इसे 4 साल में पूरा होना था। तो ये जब चीजें सभी डिपार्टमेंट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट में आती हैं तो लोगों को पता होता है कि उनका रोल क्या है। मीटिंग होने के पहले 80-90% प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाती
1: है। प्रगति प्लेटफॉर्म सहकारी संघवाद का भी एक उदाहरण है, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और केंद्र के विभिन्न मंत्रालय एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलकर काम करते हैं। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: कौम आज हिंदुस्तानी फिजाइया की 94वीं सालगिरह मना रही है। ये 8 अक्टूबर 1932 को तश्कील दिया गया था। इस अहम मौके ने फिजाई ताकत के एक विजन का आगाज किया जिसने आने वाली दहाइयों तक मुल्क के दिफाई निजाम को तश्कील दिया। इस मौके पर सदर द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर सीपी राधाकृष्ण, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने तमाम फिजाई जंगजुओं, साबिक फौजियों और उनके अहले खाना को मुबारकबाद दी। गाजियाबाद में हिंदुस्तानी फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ए पी सिंह ने हिडन एयर बेस पर यौम की तकरीबात में परेड का मुआयना किया। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार नाना पाटेकर आज 75 साल की उम्र में गोवा में वाकई अपनी रिहायशगाह पर दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। नाना पाटेकर अपने घर पर बेहोश पाए गए और उन्हें फौरी तौर पर करीबी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने तकरीबन 45 मिनट तक उन्हें जिंदा करने की कोशिश की लेकिन वो बच न सके। रियासत के कई अजला में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान होने वाली बारिश से गर्मी से राहत मिली। ताहम कल रियासत के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश ने मामूल की ज़िंदगी को दरहम परहम कर दिया। इधर महकमे मौसमियात ने आज और कल बारिश की पेशेंगोई की। यह महकमे ने रियासत के कुछ इलाकों में येलो अलर्ट भी जारी किया। महकमे के मुताबिक रियासत के मशरकी अजला में कल भी यही सूरत हाल रहेगी। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
4: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स, FM 100.3 मेगा हर्ट्स और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है ग्रामीण बहनों का अपना कार्यक्रम पनघट।

0: गंगा। अरे ए गंगा बहिनी, हम कहतों से राम राम।
1: राम राम चंपा बहिनी, अपन गेट सुने बैठी सब बहिनी हरन के गंगा और
0: चंपा के
1: राम
0: राम राम।
1: राम।
0: और बताओ गंगा बहिनी, घरे दुआरे का हाल चाल?
1: देखा हाल चाल तो ठीक हो, लेकिन अब लागत वो सवेरे संझा के सहलावन लागे शुरू हुई ना।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: हम तो काल सोचत रहे कि अब ठंडी के कपड़ा जोन बा निकाल के घाम उम दिवाए दे,
0: बिल्कुल सही
1: है ना। कहे से कि देखा अब इकट्ठे निकाल के पहने उठना चाहिए तुरंत, इतना दिन से धरा बाटे।
0: हाँ कुछ धोख पड़ी,
1: हाँ
0: कुछ तो
1: कुछ
0: खाली
1: धो एक पड़ी।
0: घाम दिखाई दो तो चले पहने लायक हुई जाए।
1: नहीं हम तो देखा धोए धोए धरी थे और निकाल के घाम दिखाई दे थे ठंड जाड़ा आवे से पहले। तो अब देखा सवेरे सारी जब सहलावन होते ना, तब अब मौसम बदलत बा तो ये सर्दी
0: बिल्कुल
1: जुकाम के मतलब हो जात है
0: सही कहती,
1: गदेलन के या बूढ़ फुरन के, तो बहुत ध्यान दे के जरूरत बा।
0: बिल्कुल।
1: और देखा ये सब तो करहिन के पड़ी, लेकिन आज हम आवत रहे तो देखे सरला काकी की यहाँ बहुत भीड़ भाड़ दिखात रही।
0: अच्छा,
1: तो
0: जो
1: हम
0: तेरे
1: सोच
0: बगलिया माई ना।
1: हाँ, तो
0: अच्छा।
1: हम सोचे कहे से कि देखा उनकर सेहत ठीक ना रहा था आजकल तो।

0: हमें थोड़ा डर लग गया कि का भवा, लेकिन देखा आजकल रोजा ही उनके यहाँ सब आवत जात हैं, कहे से कि उनका
1: हाँ देखा
0: सेहत
1: है।
0: जौन बा थोड़ी ठीक ना चलत बा। अब
1: बिल्कुल
0: देखा बहनी सेहत के कहा जाए कि बूढ़ जवान लड़का सब के कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ धरेन रहा थे,
1: बिल्कुल सही
0: लेकिन
1: कहा थी।
0: सरला काकी इतनी नीक बा नहीं हैं कि जब जा तब बुलाए के बैठा ले, बहनी आवा बैठा कहाँ जात हो कैसे का हो। तो बड़ा हमें लगा कि देखा यही उम्र में इनके कितनी दिक्कत होगी बाटे, तो अपने सेहत के बहुत ध्यान देवे के चाहिए और अपने
1: बिल्कुल
0: घर
1: सही
0: के
1: कहा तू गंगा
0: परानी
1: बहनी।
0: के भी। तो हम सोचे कि आज पनघटी पे चलब तो यही पे चर्चा बतकही हम और चंपा करब कि उम्र बढ़ने के साथ महिलाओं के सेहत के बदलते मायने,
1: मायने
0: कहे से कि
1: बिल्कुल
0: देखा बहुत ज़रूरी होते हैं आजकल सेहत तो सबई के गड़बड़ रहा था, है
1: बिल्कुल
0: ना।
1: सही कहा तू गंगा बहनी। और देखा गंगा बहनी, उम्र बढ़ब जीवन के स्वाभाविक प्रक्रिया होए, और इतने नहीं उम्र बढ़े के साथे चेहरे पर अनुभव के रेखा भी आवे लागत है, सब कहते हैं
0: बिल्कुल
1: झुर्री आवे
0: बिल
1: लागे चेहरे पे।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और सोच में परिपक्वता भी आवत है, और जीवन के देखे के जो नजरिया होए वो भी बदले लागत है।
0: वो बदल जाते हैं। जब हम देखा स्वास्थ्य की बात करी थे तो अक्सर हमारे दिमाग में एक स्वस्थ शरीर की तस्वीर आवत है,
1: बिल्कुल
0: कोनो बीमारी ना होए, वजन सामान्य होए और चेहरे पे चमक होए, और
1: बिल्कुल
0: जन
1: सही कहा तू
0: रोजमर्रा के काम है ना अपन वो आसानी से मने कर
1: कह
0: ले,
1: ले।
0: है ना।
1: जब कोनो का दुख ना रहे, कोनो परेशानी, तो अपने
0: हाँ
1: आप काम तो
0: अपने आप काम हो
1: रोज
0: जाए,
1: करते रही।
0: लेकिन का सिर्फ बीमारी के ना हो भी स्वास्थ्य है नहीं। खास करके महिलाएं महिलाएं जो बहनी हरे हैं उनके लिए उम्र के हर पड़ाव पे स्वास्थ्य के अर्थ बदलत है।
1: बिल्कुल सही कहा तू गंगा बहनी। और देखा अक्सर महिला अपने परिवार के जिम्मेदारी निभावत निभावत अपने सेहत के पीछे छोड़ देती।
0: छोड़ देते हैं
1: और देखा
0: बिल्कुल।
1: बचपन में पढ़ाई, युवावस्था में व्यवसाय और परिवार, फिर मातृत्व और घर गृहस्थी के जिम्मेदारी, इस सब के बीच महिला अपने शरीर और सेहत के नज़रअंदाज कर देती।
0: बिल्कुल सही
1: मुना
0: कहो।
1: उन्हें याद रखे के चाहिए कि स्वस्थ महिला ही स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज के नींव होती।
0: नींव होते हैं। देखिए एक लड़की के स्वास्थ्य के मतलब कुछ और हो सकत है, एक युवा महिला के लिए कुछ और, माँ बने के दौर में कुछ और 40, 50 या 60 के उम्र के बाद स्वास्थ्य के अर्थ जोन बा एक नए रूप में सामने
1: बिल्कुल
0: आवत
1: सही
0: है।
1: कहा थी। देखा गंगा बहनी, बचपन जोन होता है, बचपन और किशोरावस्था जोन स्वास्थ्य रहे के नींव होता है, और महिला के स्वास्थ्य के शुरुआत बचपन से हो जाता है।
0: हाँ
1: किशोरावस्था में शरीर तेजी से विकसित होता है,
0: बिल्कुल
1: इस समय पोषण की जरूरत बढ़ जाता है।
0: हाँ
1: आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन और अन्य पोषक तत्व शरीर के विकास
0: बहुत
1: के लिए
0: जरूरी
1: बहुत
0: हो
1: महत्वपूर्ण
0: जाता
1: हो
0: है।
1: जाता है। और देखा किशोरावस्था में क्या होता है कि मासिक धर्म के शुरुआत हो जाता है,
0: शुरुआत हो जाते हैं, हार्मोनल
1: और
0: बदलाव होते हैं और शरीर के आकार बदलत है,
1: और देखा
0: तो
1: मासिक
0: भावना
1: धर्म
0: में
1: जोन
0: देख
1: है
0: हाँ
1: वो कोनो बीमारी ना ही होते, बल्कि
0: हाँ
1: शरीर में होए वाला एक प्राकृतिक प्रक्रिया होते है। इस दौरान स्वच्छता के ध्यान रखा और पौष्टिक भोजन ले बहुत जरूरी होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही। और देखा ये उन्हें सबके समझाई भी जरूरी है, कहे से कि देखा उनके भावना में भी उतार चढ़ाव आवत है,
1: बिल्कुल
0: तो उन्हें ही बताई भी जरूरी है कि उनका शरीर गलत ना होए, ये कोनो शर्म की बात ना होए, दर्द के हमेशा सहब कोनो सही बात ना हो, बहुत
1: बिल्कुल
0: ज़्यादा
1: दर्द का
0: अगर
1: हमेशा छुपावे नहीं
0: कमजोरी
1: चाहिए।
0: होत व ज़्यादा दर्द होत व अनियमितता व तो एक नज़रअंदाज ना
1: हाँ, या
0: करे
1: फिर
0: चाहिए।
1: लगातार चक्कर आवत है, या फिर
0: हाँ
1: रक्तस्राव ज्यादा होता है, तो
0: हाँ
1: तुरंत डॉक्टर की सलाह लें।
0: बिल्कुल, कहे से कि देखा स्वस्थ लड़की आगे चल के एक स्वस्थ महिला बन सकत है ना।
1: बिल्कुल
0: तो देखा युवावस्था हो गया, अब जब महिला सबका जिम्मेदारी उठावत है कहूँ ना भाई, तो ये वो समय होते जब बहुत सी महिला पढ़ाई करत थी, नौकरी करत थी, करियर अपन बनावत मतलब अपन वो बनावत थी,
1: हाँ व्यवसाय पे
0: रिश्ता
1: ध्यान
0: हाँ
1: देती हैं।
0: व्यवसाय पे ध्यान देती हैं, रिश्ता
1: अब
0: निभावत
1: ये
0: थी,
1: व्यवस्था है कि विवाह और परिवार के अनेक जिम्मेदारी भी संभालत हैं।
0: बिल्कुल, और यहीं से शुरू होता समस्या। तो देखा
1: बिल्कुल शादी होते समस्या शुरू हो जाते
0: शुरू हो जाता है, महिला अक्सर सबका ख्याल रखत रखत आपन ख्याल रखा भूल
1: भूल
0: जाती,
1: जाती हैं।
0: और ये
1: बिल्कुल
0: भुला
1: सही।
0: जाती हैं कि जब बुखार हो चलो ठीक बाबा है
1: हाँ,
0: देखो
1: और
0: दवाई
1: काल
0: खा
1: देती
0: ले
1: हूँ, चल
0: ठीक हो जाए,
1: और
0: लेकिन
1: नहीं चला
0: अगर
1: 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा देख, एक दिन देख लेती कि चला
0: हाँ
1: क्या पता आज सजवा तक ठीक हो जाए, सुबह तक ठीक हो जाए,
0: सबे
1: यही में
0: रोज,
1: लगा।
0: लेकिन वह महिला अगर घरे के कोनो और परानी के कुछ हो जाते
1: हाँ,
0: तो
1: तो एकदम
0: दिन रात एक
1: परेशान हो
0: कई
1: जा।
0: देते
1: हाँ
0: इनका
1: परेशान
0: खड़ा
1: हो जाली।
0: बिल्कुल। तो यही नाते देखा अपने लिए जरूर निकाला, हाँ देखा गदेलन के पति के अपने सास ससुर या माई बाप के ध्यान रखब जरूरी है, लेकिन अगर अपने भी कुछ दिक्कत हो तो तुरंत
1: बिल्कुल
0: डॉक्टर
1: वही के
0: से
1: साथ साथ
0: परामर्श
1: अपनों
0: ले
1: भी
0: के
1: ध्यान
0: चाहिए।
1: देवे के चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, उनका ये समझे के चाहिए कि अपनी सेहत के ख्याल रखब स्वार्थ न हो बल्कि ज़रूरत है।
1: बिल्कुल सही कहा तू गंगा बहनी। और देखा महिला के जीवन में गर्भावस्था और मातृत्व बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव होता है।

0: बिल्कुल
1: काहे कि इस दौरान महिला के शरीर में अनेक शारीरिक और भावनात्मक बदलाव होते हैं।
0: हाँ।
1: गर्भावस्था में देखा संतुलित आहार, चिकित्सीय देखभाल और आवश्यक जो जांच वांच होते ना ओका बराबर करावत रहे।
0: बिल्कुल, और देखा शरीर के वजन भी बढ़त है और नींद प्रभावित होते है।
1: बिल्कुल,
0: तो देखा प्रसव के बाद तो महिला की जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाते है।
1: बिल्कुल,
0: देखा अपन जो समाज में ये अक्सर कहा था कि पूरा ध्यान बच्चे पे था, बच्चा ठीक
1: गलत
0: है,
1: लेकिन
0: बच्चे ने दूध पी लिया, बच्चा सोवत हुआ, लेकिन सवाल हो एक चाहिए माँ कैसी है।
1: बिल्कुल
0: ठीक है, काओ का पर्याप्त नींद मिलत माँ, काओ ठीक से खाना खा दो।
1: बिल्कुल, लेकिन कुछ लोग होता ना कि बच्चे में एकदम लीन हो जाते हैं।
0: हाँ,
1: कि सब कुछ अभी है
0: और
1: लेकिन महिला के भूल जाते हैं, लेकिन ऐसा कब नहीं करेगी।
0: हाँ बिल्कुल सही, और यह समय में उनके मानसिक रूप के भी ध्यान दे के पड़ता है कि मानसिक उनका मानसिकता मतलब मन स्थिति कैसन बा,
1: सही कहते हुए
0: मन स्थिति खराब हो जाता है, कुछ उदास रहा था, जैसे ये सब बच्चा होए के बाद आम चीज़ है कि होता है, तो एक ध्यान दे के बहुत जरूरत होता है।
1: बिल्कुल, और देखा उम्र बढ़े के साथ शरीर का जरूरत भी बदलत है। लगभग 40 के उम्र जब हो जाता ना तो उसके बाद महिला के शरीर में अनेक बदलाव होते हैं।
0: हाँ।
1: इससे वजन में बदलाव, नींद में परेशानी, ऊर्जा में कमी,
0: कुल मिलाए के कुल में थोड़
1: मासिक धर्म चक्र में परिवर्तन,
0: कुछ चीज वही होते है, बस ये है कि शरीर के सहाय के क्षमता जो
1: धीरे
0: धीरे
1: कम
0: वो कम ज्यादा होते है, तो शरीर जैसे जैसे बढ़त है वो वैसे वैसे वो सब चीज के
1: हर चीज
0: झेल ना पावत।
1: बिल्कुल, और देखा जब 50-60 की उम्र में आवत है ना महिला, तो ये उम्र में मांसपेशी के जो ताकत होते है और हड्डी की मजबूती उनका बनाए रखना बहुत जरूरी होता है।
0: बिल्कुल,
1: और उन्हें ताकत मतलब अपन समय समय पर टहले के चाहिए, थोड़ा बहुत चल लें, इना ही कि एक जगह बैठ जाए तो मतलब अगर चले फिरे लायक हैं तो नहीं।
0: बिल्कुल,
1: थोड़े
0: ही
1: चल
0: मत सोच ला कि हमारे इतनी उम्र होगी तो अब हमें
1: अब
0: बस
1: हम
0: एक जगह बैठ जाएगी,
1: हम कुछ हिलब डोलब नहीं, ऐसा
0: हाँ,
1: नहीं करे चाहिए।
0: खटिया पे एक जगह बैठ जा भैया, हमें पानी ले आए, एक दाना ले आए, एक ना ये सोचा कि अब तो जिंदगी शुरू होत बा।
1: बिल्कुल, अगर
0: नहीं
1: हम चल के पानी ले सके तो खुद लेके पी लेगी।
0: ये मैं तो देखा बहनी, हमार सास वो बैठ के पानी ना पीती, वो चलत फिरत रहा थी, वो कुछ ना कुछ जरूर करत
1: अच्छा।
0: रहा थी, चाहे वो
1: कुछ
0: जीरे भी नहीं लगी है, कुछ ना है काम बा, तो
1: कुछ बुजुर्ग होते हैं कि जो कुछ ना कुछ करते रहते हैं।
0: हाँ।
1: हम सब बैठे लेकिन वह उठ के हम लोग से तेज उठ के कई लेते हैं,
0: कई लेते हैं, लेकिन ये देखा हमारे सब के लिए
1: बैठ जाएंगे तो हमें पानी यही चाहिए, हमें खाना यही चाहिए, ये होता है।
0: बिल्कुल, और देखा ये उनके लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। आज कुछ जने उदाहरण है देखा कि कितना कितना भार उठावत है, इतना स्वस्थ है, दौड़त है, योगा करत है।
1: बिल्कुल,
0: तो हमें अच्छा लगा था देखे कि आज के बुजुर्ग भी मतलब इतना ज्यादा अपनी सेहत के लिए तत्पर है।
1: बिल्कुल सही कहा,
0: तो यही नाते उम्र कोनो देखा न हो, मतलब बस नंबर है कि हम 20 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, 40 साल के, 50, 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, अगर आदमी अंदर से मजबूत बा तो उम्र कोनो मायने ना रखे।
1: बिल्कुल सही कहा तू बहनी,
0: और सक्रिय बा तो देखा सबसे महत्वपूर्ण बा कि अपना फैसला खुद ले मने।
1: सही
0: हर उम्र में देखा संतुलन और मांसपेशी की ताकत बनाए रखे, सब कुछ समय समय पे करे, पोषण वाली चीज खाए, बाहर की चीज कम
1: मौसमी
0: खाए,
1: फल खाए।
0: हाँ,
1: मौसम के
0: हिसाब से
1: जो फल
0: मिलते हैं, इतना कुछ हम सब अपने पनघटे पे पतिया है। अब हमार मन ही कहत बा कि एक गौनी होए के चाही।
1: बिल्कुल, चला हम तुम्हें एक ठुनी के गौनी सुनवा दी प्रीति मिश्रा बहनी से कहारवा।
0: चला
1: तुम सुना बहनी हरे भी सुने।

0: गंगा बेनी,
1: हाँ बेनी
0: इतना नीक तू हम गाँव नहीं सुनो कैसे
1: देखा ये घरे घरे के खेला है सास और
0: बिल्कुल
1: ननद के एक के घरे के ना है सबके घरे के वही हाल
0: बिल्कुल सही कहा था। लेकिन सास ननद घर में ना हुए तो घर अच्छा भी
1: तो
0: नहीं लागत
1: बिल्कुल देखा वो तो जरूरी है सास ननद रही है तबे तो खेला होई
0: बिल्कुल

0: तो देखा भाई, हम सब बात करते रहे, उम्र बढ़े के साथ साथ सेहत के बदलते मायने, है ना।
1: बिल्कुल।
0: तो अब अपने पनघटे पे एक बातचीत पर, महिलाएं सशक्त कैसे बने, शुभी मालवीय से कंचन श्रीवास्तव के बातचीत। तो चलो सुना जाए।
2: बनी एक कहावत कहा गया बाटे कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। मूला देखा जाता है कि आज समाज में हमारे बहनियां बहुत आगे निकल चुकी हैं, पढ़ के लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, शिक्षिका आदि पद पे निहित यहाँ। मूल कहूँ कहूँ सा देखा जाए तो बहुत से ऐसे क्षेत्र गांव में हैं कि जहाँ बहनी हरे के मन में ये भावना वा कि बेटी यहाँ इनका कार्य पढ़ाई लिखाई के ये घर में रहें, तो वहाँ पर देखा बहनी वो पढ़े लिखे नहीं तो अशिक्षित रह जाती हैं, तो उनके अंदर सशक्तिकरण नहीं आ पावत बटे, सशक्त नहीं बन पावत यहाँ। तो आज देखा यही पे हमारे पनौती में एक बातचीत है कि महिलाएँ सशक्त कैसे बने। और बहनी आइया सुभी मालविया, तो सबसे पहले बहनी आपका हमारे पनौती में बहुत बहुत स्वागत है। बहनी हम जानना चाहे भाई आपसे कि महिला सशक्तिकरण का है, एक बारे में आप बतावें।
3: महिला सशक्तिकरण में महिलाओं को शक्तिशाली बनाना होता है, जिससे वे अपने जीवन से जुड़े हर महत्वपूर्ण फैसलों को स्वयं लेने में सक्षम बन सके, वे परिवार और समाज में अच्छे से रह सके। यह वह तरीका होता है जिसके द्वारा महिलाएं भी पुरुषों की भांति अपनी हर इच्छाओं आकांक्षाओं को पूरा कर सकें, वे समाज में एक सम्मानजनक स्थिति में रह सकें।
2: सुभी बहनी आप बिल्कुल सही कहती हैं, जो बहनी हर यहाँ उनके अंदर ये इच्छा होता है कि स्वतंत्र रूप से हम रह सके, अपने हर एक काम काज करी, हर जगह आ जा सके और अपने मन के मुताबिक कोनो भी काम कर सके, और साथ साथ यहू बटे अपने अधिकार के बारे में भी जान सकें, यही हो तो सशक्तिकरण, मैंने सशक्त महिला।
3: हाँ, आप सही कह रही हैं। भारत जो हमारा पुरुष प्रधान देश है, यहाँ प्राचीन काल में तो महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, लेकिन मध्यकाल से आते आते आज के समय में महिलाओं की स्थिति काफी गिरावट है। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ महत्वपूर्ण पद चाहे वो राजनीतिक हो या सामाजिक, उसमें महिलाओं को उच्च पद पर नियुक्त किया गया है, लेकिन उनकी संख्या आज भी पुरुषों की अपेक्षा काफी कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो महिलाओं की स्थिति और भी निम्नतर है, उन्हें पढ़ने और रोजगार के लिए घर से बाहर निकलने की इजाजत भी नहीं मिलती है।
2: बनी यह देखा जाता है कि यह समाज में जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र बैठे हुआ के बनी, बिल्कुल आप सही कह दिया, क्योंकि घर के अंदर रखा हुआ कि वो बाल बच्चा की देख रेख कर सकें, घर के काम काज करें, खेती बाड़ी काम करें। मूला आज देखा जाता है कि देखा जो तरह तरह की जो बाधाएँ रहीं उकरे पीछे भी बहुत कारण बटे, जैसे कि अज्ञानता या अशिक्षा।
3: बहुत सारी बाधाएं हैं, जैसे सामाजिक मानदंड, कार्य क्षेत्र में होने वाला शोषण, लैंगिक मतभेद, भुगतान में असंतुलन, बाल विवाह और महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध।
2: जी बिल्कुल आप सही
3: देखा गया है कि बहुत सारे पुरुष अपने महिलाओं के साथ कई सारे शारीरिक शोषण भी करते आते हैं।
2: जी बिल्कुल, देखा बहनी तो जो आप कहती हैं कि कहीं कहीं ऐसा है कि जहाँ पर बहनी रे असक्षम हैं या अशिक्षित हैं, कहे कि आज के समय देखा बदला है पहले से, अब लोग पढ़ लें लिख लें, अपने अच्छे बुरे के बारे में उनका जानकारी बटे, और देखा समाज में सरकार द्वारा भी बहुत सारी उनके सशक्त करे खाती योजनाएँ भी चली हैं, तो उनके बारे में भी कुछ आप बतावें।
3: हमारे समाज में लड़कियों को एक पराया धन समझकर का जल्द से जल्द विवाह कर दिया जाता था, जिससे कि कारण वे अपने कर्तव्य से विमुक्त हो जाएं। सरकार द्वारा बहुत सारे ऐसे प्रभावी फैसले किए गए हैं जिसमें बाल विवाह को रोका गया है, लेकिन यूनेस्को द्वारा 2018 की रिपोर्ट के आधार पर देखा गया है कि प्रतिवर्ष लगभग 15 लाख बालिकाएं अब 18 वर्ष की कम उम्र में ही विवाह कर दी जाती हैं, जिसके कारण वे शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम नहीं हो पाती हैं।
2: देखा बहनी, पहले चीज रहा कि बहनी हरे कहा रही जैसे घर में गांव में अगर लड़कियां राहत रहने तो लोग कहें कि पढ़ाई लिखाई का कर भी, इनके शादी ब्याह कर दी जाए, इनकी जिम्मेदारी पूरा हो जाए, और तब बाल विवाह की प्रथा रही है। मोर बहनी देखा अब समय तो काफ़ी बदल चुका बाटे, अब लोग हर एक माँ बाप चाहता है बेटी पढ़ावें लिखावें शिक्षित करें, और यहू कहा गया कि शादी जन उम्र आ बताएं कि 18 साल से 21 साल तक, मानी अब तो हम देखा थे कि खूब पढ़त यहाँ लिखत हैं तब शादी ब्याह होता है। मूल यहू देखा जाता है कि जो लड़की लड़का में भेद भी रहा, भेद की जो भावना रही कि ये बेटा है ये बेटी है, अब तो हर माँ बाप चाहता कि हमारी लड़की पढ़े, हमारा लड़का पढ़े, आगे समाज में आवे, तो एक बारे में आप क्या कहा चाहते हैं?
3: हाँ, अभी सोच बदली है, लेकिन उतनी अभी भी नहीं बदल पाई है। आज भी आंकड़ों के आधार पर देखा जा रहा है कि पुरुषों की जहां शिक्षा

0: 80.8% है, वहाँ महिलाओं की अभी मात्र 64% है। अभी बहुत बड़ा पैमाना है जो आज भी अशिक्षित है। गांव में कुछ महिलाएं स्कूल तो जाती हैं, बालिकाएं, लेकिन अब पारिवारिक जिम्मेदारी के कारण मात्र वो 10वीं कक्षा तक भी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती हैं और परिवार की जिम्मेदारी उन्हें संभालनी पड़ रही है। बड़ा है लेकिन अब इतना नहीं बढ़ा कि हम गर्व से कह सकें कि महिलाएं सशक्त हो गई हैं।
1: अब देखा बनी ओके बढ़ावे खातिर तो हमें सब आप आगे हुए ना कि हर अगर माँ चाहिए तो बेटी पढ़ी लिखी हो, सशक्त हुई, मजबूत हुई। तो बहनी हैं आप, शिक्षिका हैं, तो आपके पास जो बहनी हरी आवत हुई तमाम तरह समस्या भी आवत हुई कि भैया हमारे मेरे पास पढ़ाई लिखाई के पैसा नहीं बाटे, माँ बिटिया या घर में काम धाम करी, हर तरह की समस्या आप जो कुछ भी आप तो राय सलाह देत हुई ना कि हाँ पढ़ावें लिखावें, इनका अच्छे से आगे बढ़ावें ताकि आइए अपने घर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए कुछ कर सकें, कुछ तो आप भी बतावत हुई है ना।
0: हाँ बिल्कुल, उनको ये बताना बहुत जरूरी है कि एक समाज के लिए अगर महिला आगे नहीं बढ़ी या बालिका आगे नहीं बढ़ी तो वो समाज को आगे बढ़ा ही नहीं सकती हैं। सबसे आजकल एक बड़ी समस्या जो समाज में है वो कन्या भ्रूण हत्या है
1: जी।
0: लिंग के आधार पर बालिका भ्रूण का पता होने पर गर्भपात कर देना, हमारे देश में हरियाणा और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में तो ये अनुपात बहुत ज्यादा है, जिसके कारण से आज वर्ष 2011 की रिपोर्ट के आधार पर देखा गया है कि जहां पुरुष हमारे समाज में 1000 हैं, वहां लड़कियों की प्रतिशत केवल 940 ही है।
1: बनी आप ही बता में जो सरकार द्वारा निकला कदम उनके बाटे काका है आगे, एक बारे में बता।
0: सरकार ने बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के लिए चलाई हैं, चाहे वो कृषि हो, रोजगार हो, शिक्षा हो या स्वास्थ्य से संबंधित। मुख्य योजनाओं में जैसे मनरेगा है, सर्व शिक्षा अभियान है, जननी योजना है जिसमें मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए चलाई गई योजना है। इसके अलावा महिला और बाल विकास कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भी कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला हेल्पलाइन, ये बहुत ही ज्यादा आज के समय में उपयोगी है। इस योजना के अंतर्गत 24 घंटे किसी भी इमरजेंसी होने के महिलाएं 181 नंबर डायल करने पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकती हैं। ये भारत की हर राज्य में चलाई जा रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भी बच्चियों को बचाना और उनको पढ़ाने के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा उनको आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिससे कि उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें
1: जी।
0: क्योंकि आज हमने देखा है हमारे समाज में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको योजनाएं तो बहुत हैं पर उसकी जानकारी ना होने की वजह से वे आगे बढ़ ही नहीं पा रही हैं। तो ये योजनाएं जो भी भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं उनको इसमें बताया जाता है।
1: सुभी बहनी बिल्कुल आप सही कहते हैं, देखा बहनी सरकार के जो भी योजना बांटे चाहे वो लड़की हो, जैसे आप बताए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेके बहनी आज हर घर घर में हमारे जो बहनी हरे हैं अपने आप में सक्षम होए खातिर देखा तरह तरह के उनके जो भी लघु कुटीर उद्योग बांटे तरह तरह रोजगार है उसे जुड़ के भी देखा अपने स्थिति के मजबूत करती हैं और समाज में आगे बढ़ती हैं। तो यही तरह से बनी हम तो कहा कि अगर हर बहनी के मन के अंदर ये भावना हुई कि हम सशक्त हुई, हम हर चीज अपने मुट्ठी के अंदर रखी कि हम कुछ भी कह सकी थी, तो बनी ये चीज असंभव नहीं बांटे कि हम आगे नहीं बढ़ सकी थी। तो जो सरकार की योजना बांटे एक ही तो लाभ लेवे के चाहिए। तो
0: बिल्कुल सही,
1: और आप ये बताएं कि सशक्त कैसे बने और तरह से बनी है, जैसे कि आज देखा यहाँ कि अपने देश के कितनी सारी महिलाएं हैं जैसे कल्पना चावला वगैरह थी, बनी आपके हिमा दास हैं और मेरी काम बहनी हरी कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुकी हैं, यही तो एक बहनी हरी हैं कि जिन्होंने अपने समाज में अपने देश के लिए कितना कुछ कर दिया, कितना नाम उनके होता है। तो बने यही तो हम लोग को सीख लेवे के चाहिए समाज के लिए।
0: सबसे पहले सशक्त बनाने के लिए महिलाओं को खुद अपने में सशक्त होना पड़ेगा
1: जी, बिल्कुल।
0: खुद अपने में आत्मविश्वास रखना पड़ेगा क्योंकि कोई दूसरा किसी का आत्मविश्वास केवल प्रेरणा दे सकता है। तो पहले महिलाओं को महिलाओं का साथ देना चाहिए और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए, क्योंकि एक महिला ही है जो अगर आगे बढ़ती है तो बच्चों को, परिवार को, देश को, सबको आगे बढ़ाती है। तब महिला सशक्तिकरण तो बहुत ही जरूरी है।
1: देखा बहनी हम तो यही कहते कि अपने जन बहनी हरे हैं चाहे गांव को चाहे शहर को हों, हर एक माँ के चाहिए कि अपने बेटी के या बेटा के सबके पढ़ावें लिखावें ताकि उस अपने आप में सक्षम होएं और हर एक फैसला करें कि उनके अंदर ताकत हो। तो बहनी हमारे पनौती में आप आए, बहुत नीक जानकारी दें, एक बदले आपके बहुत बहुत धन्यवाद।

0: पवनी
1: गंगा बहनी
0: देखा शुभी मालवीय बहनी से कंचन श्रीवास्तव बहनी कितना फरियाए फरियाए के बताए इनकी महिलाएं सशक्त हो कितना जरूरी वो बहनी हरण के सशक्त हो कैसे कि बहनी हरण सशक्त हुई है तो भी तब आवे वाली पीढ़ी साक्षर और सशक्त हो
1: बिल्कुल सही है ना बनी।
0: तो देखा कितनी बढ़िया बातचीत रही है अब एक बाद एक ठो गवनई तो बनत है
1: बिल्कुल नेकियो पूछ पूछ
0: तो चला एक ठो झूमर सुना जाए प्रीति मिश्रा बहनी से
1: चला सुन लिया जाए।

0: चंपा बहनी,
1: हाँ गंगा बहनी,
0: कितनी बढ़िया गौ नहीं रही देखा,
1: एकदम मन खुश हो गया
0: है ना। तो देखो मन खुश हो गया, तो इतनी बढ़िया बढ़िया जानकारी, इतनी बढ़िया बढ़िया गीत गौ नहीं अपने पनघटे पे हो गया। अब कुछ स्वाद के बाद भी हो के चाहिए।
1: बिल्कुल, हम सब पनघटे अपने आए स्वाद के बात ना करें।
0: बिल्कुल, तो आज अपने पनघटे के रसोइया में का ले आया हो? तो
1: आज हम लेके आए पनघटे रसोइया में मकई के कचौड़ी,
0: अरे
1: मक्का।
0: तो चलो बतावा बहनी हरन के कैसे बना था ये।
1: चलो पहले सामग्री बता दी। 2 कप मकई का आटा, 1/2 कप गेहूं का आटा और 2 उबले हुए आलू।
0: अच्छा,
1: अब 1 से 2 हरी मिर्च ले लें बारीक कटी हुई, 1/2 चम्मच अजवाइन,
0: अच्छा,
1: 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ले लें, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला और नमक ले लें स्वाद के अनुसार। अब 1 से 2 चम्मच तेल ले लें या फिर घी, ओका खस्ता करे करती आटा का मोयम देवे के।
0: अच्छा,
1: हाँ। अब बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती, गुनगुना पानी और तले के लिए तेल।
0: अच्छा,
1: अब बनावे की विधि है, 1 बर्तन में मकई का आटा और गेहूं का आटा के ले लें, इनमें नमक अजवाइन जीरा और थोड़ा सा तेल डालें, वो जो 1-2 चम्मच तेल डाली के गुनगुना पानी से आटा के गूंथ लें।
0: अच्छा,
1: हाँ, गूंथे के बाद 10-15 मिनट के लिए उसका ढक के रख दें। अब उबला हुआ आलू में हरी मिर्च, धनिया पत्ती, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और नमक मिलाई के भरावन तैयार कर लें।
0: अच्छा,
1: अब आटे के छोटी छोटी लोई बनाई के हल्का सा बेल लें। हाँ, बीच में आलू के भरावन के रख दें और चारों तरफ से बंद कर दें।
0: अच्छा,
1: उसके बाद हल्के हाथ से कचौड़ी बेलें।
0: जो ने फटे ना,
1: फटे ना, क्या मक्का के आटा बहुत जल्दी फटा था ना। हाँ, बहुत बारी बहुत पतला ना बेलें, नहीं तो आटा बताए ना टूट जाई, फट जाता है। हाँ, मध्यम आँच पे तेल गरम कर लें। ओकरे बाद तेल धीमा और मध्यम आँच पे ही ओका तले, जिससे कुरकुरी और बढ़िया चटपटी बने। और देखा, एक गरम गरम कचौड़ी के दही के साथ, चटनी के साथ, आलू टमाटर की सब्जी के साथ खाएं, कितना निक लागत है।
0: देखा तोहरे बतावत बतावत हमरे मुँह में आएगा पानी।
1: तो आज हम
0: घरे जाब तो घरे जाब तो पहले मकई कचौड़ी बने के खाव।
1: अच्छा। तो अकेले ना खाए लियो।
0: हाँ, अकेले ना खाए, छोड़ के
1: घर वालन के भी खिलाए,
0: घर वालन खिलाए, छोड़ के तो हम बने के भिजवाए दे।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे की तू बनाऊ तो लेना है आऊ हम अभी दा। अच्छा। ये नाते हम बने के तोरे घरे हम भिजवाए दे।
1: बिल्कुल
0: ठीक हुआ। तो चलो इतना बढ़िया मकई के कचौड़ी बताओ तो कब बढ़िया से हम गीत सुनवाई दी मिलन फिल्म से लता मंगेशकर जी की आवाज में। चलो सुना जाए,
1: चला सुन लिया जाए।

0: चंपा वहनी।
1: हाँ गंगा बहनी,
0: कितना नीक गीत रहा।
1: बिल्कुल
0: देखिए तू खोई गए रहो एकदम गीत में।
1: अपने पनगटे पाए इतना अच्छा अच्छा गीत गाने ही होते तो खोई जाही पड़ी।
0: हाँ तो चला अब देखा खोई गए हो तो अब आए जब वापस पनगटे पे और चला एक तो सुना जाए ईमेल संदेश।
1: चला सुन लिया जाए। अपने पन का मिठास, माटी की खुशबू और दिल से दिल का जुड़ाव, जहाँ मिलके हम हंसी थे, बोली थे और आपन सुख दुख बांटी थे। ये हम सब का आपस में जोड़े का एक अदृश्य डोर है बहनी हरिन। हमें बहुत खुशी हुए अगर आप पनघट का हिस्सा बनी है।
2: तो हमका जरूर बतावें कि आप सबके हमारे कार्यक्रम कैसन लागत है, कौन बात आपका ज्यादा पसंद आवत थी और इमा आप नवा का जोड़े चाहत। आपन प्यारी प्यारी प्रतिक्रिया और सुझाव हमका ईमेल संदेश और व्हाट्सएप के जरिए भेजें।
0: हमारा ईमेल एड्रेस है
3: pangatprogram@gmail.com। स्पेलिंग है pangatprogram@gmail.com। pangatprogram@gmail.com। एमा कौनो प्रकार के कोई स्पेस ना हुई, सारे अक्षर छोटी ABCD या स्मॉल लेटर में हुई हैं।
0: हमारा व्हाट्सएप नंबर है 800-49-2625-0। तो सखियन देर कोनी बात के तुरंत उठावें आप।

0: अपन मोबाइल और भेज दें अपने मन के बात, या तो लिख के या अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके। आपके संदेश के हम सबके
1: बेसब्री से इंतजार रही।
0: चंपा बहनी,
2: गंगा बहनी,
0: इंतजार तो रहा था बहुत बेसब्री से कि बहनी भेजे हम सबके कि प्रोग्राम कैसन लागत है, तो हम सबके थोड़ा मनोबल बढ़े।
2: बिल्कुल,
0: है ना। और देखा ये मौसम जोन बदलत बा, है ना, इमे मच्छर उच्छर बहुत होते हैं,
2: बहुत,
0: तो ओके ध्यान दे के चाहिए, चाहे वो गोरु बछरू हो चाहे मनई हो, है ना। कहे से गोरु बछरू भी जीव हैं, तो उन्हों सबके लागत है, तो धुइयर उइयर खूब बढ़िया से, जैसे नीमिक पाती हो गया, हाँ नीमिक पाती हो गया, और वो कंटी से धुइयर सुलगा जाते हैं, दुआरे संजा बेरी ओका जलाए के दह दें, गदेलन खेलत रहा थे, देखा संजा बेरी
2: पूरी वाई कपड़ा पहनाई के भेजे, अगर खेले बाहर भेजे थे तो
0: खेले के बाहर, तो नए तो बहुत नुकसान करे थे ये समय में, तो लड़कियाँ गदेला सब कर ध्यान रखें, अपन आपन भी ध्यान रखें बहनी, जैसे आज हम सब बात किए कि बहनी हरन आपन ध्यान ना रखते, बाकी पूरी दुनिया के ध्यान रखे थे,
2: पूरे परिवार के ध्यान रखे, रिश्तेदार सबका ध्यान,
0: सबके ध्यान रखे,
2: आवत बाकी जात व सबके, लेकिन आपन ध्यान वही बीच में भूल जाती,
0: भूल जाते। तो देखा पहले आपन ध्यान रखिए, तब वो पूरे परिवार के पूरे समाज के ध्यान रख सके थे।
2: बिल्कुल सही कहा
0: चंपा बहनी, देखो अपन घटे पे आए एक बार जाए के मन तो बिल्कुल ना कहा,
2: बिल्कुल सही,
0: लेकिन जाए के तो पड़ी, तो फिर बहनी हरन से मिला जाए, यही बात के साथ बहनी हरन के किया जाए राम राम, राम राम,
2: राम राम बहनी हरे।

ग्रामीण बहनें सुन रही थीं अपना कार्यक्रम पनघट। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 2 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: ट्रेल ऑफ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स।
1: कलम वाली बाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर पर काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी। कौन समझा उसकी बात को, किसे जगाती वो? मैं जाग गया, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूँ, सुकून है।
0: A recipient of 3 National Film Awards, he was acclaimed for films including Parinda, Krantiveer, Agni Sakshi, Nat Samrat, Ab Tak Chappan and Yashwant. He made his Bollywood debut with Gaman in 1978 and went on to deliver notable performances in Shakti, The Power, Abharan, Taxi Number 9211 and Rajneeti. He gained widespread popularity as gangster Uday Shetty in Welcome and reprised the role in Welcome Back. He remained active in cinema until his final years, appearing in Houseful 5, O Romeo and Subedar, which was released recently. Prarthana, Akashwani News, Mumbai.
2: India has accused Pakistan of doublespeak on terrorism, saying Islamabad is attempting to gloss over its support for terror groups by announcing a reward for information on Jaish-e-Mohammed chief Masood Azhar. India said the world has not forgotten the 9/11, 26/11 and Pahalgam attacks. Exercising its right of reply in the UN General Assembly, India's First Secretary Raghu Puri said terrorism cannot be defeated through declarations and called for action against its perpetrators, financiers and sponsors. The Indian Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall conditions over Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Uttarakhand, West Bengal and Sikkim during the day. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says government to connect 25 crore students through digital and online education programs. 5G connectivity reaches every district with over 5,50,000 base stations. GST Council deliberates on policy reforms to resolve disputes and improve input tax credit flow. Supreme Court directs Centre to form committee to curb unethical pharma marketing practices. Veteran actor Nana Patekar passes away. India accuses Pakistan of doublespeak on terrorism, says Islamabad cannot gloss over support to terror groups. And the nation honors sacrifices of air warriors on Air Force Day. With that, we end the midday news.
3: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से 25 करोड़ छात्रों को जोड़ेगी। उन्होंने कहा 5,50,000 से अधिक 20 स्टेशनों के साथ 5G कनेक्टिविटी हर जिले तक पहुंची। वस्तु और सेवा कर परिषद में विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा। सर्वोच्च न्यायालय ने फार्मास्यूटिकल कंपनियों की विपणन पद्धतियों के वैधानिक नियमन की आवश्यकता की जांच के लिए केंद्र सरकार को समिति गठित करने का निर्देश दिया। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का निधन। भारत ने आतंकवाद पर पाकिस्तान पर दोहरे रवैये अपनाने का आरोप लगाया, कहा पाकिस्तान आतंकवादी गुटों को समर्थन देने की बात छुपा नहीं सकता। और देश वायुसेना दिवस पर सेना के जवानों के बलिदान को नमन कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी नवाचार में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को दिखाया जा रहा है। 4 दिवसीय इस सम्मेलन की शुरुआत कल हुई थी। इस वर्ष का विषय है सीमाओं से आगे विस्तार। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस मंच ने भारत में दूरसंचार क्षेत्र और डिजिटल कनेक्टिविटी के विकास को देखा है।
4: बीते वर्षों में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के माध्यम से बहुत कुछ हासिल किया है। हमारे सामने विकसित भारत का एक विराट संकल्प है। इसके लिए हमें अपने प्रयासों को निरंतर व्यापक करते रहना है। हमें IMT को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जो टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट और आइडिया का एक जंक्शन बन सके।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशन हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं तक लोगों को पहुंचाने में सुविधा दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार लगभग 25 करोड़ विद्यार्थियों को

0: विभिन्न डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा मंचों से जोड़ने का प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने दीक्षा प्लेटफॉर्म के जरिए भारत में डिजिटल शिक्षा के बढ़ते महत्व के बारे में जानकारी दी।
1: ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमारा एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है। कोविड के दौरान जुलाई 2022 तक इस प्लेटफॉर्म पर 500 करोड़ से ज्यादा लर्निंग सेशन और करीब 6000 करोड़ लर्निंग मिनट दर्ज हुए। अब हमारा प्रयास है हमारे जितने भी डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम है उनसे करीब 25 करोड़ स्टूडेंट्स को जोड़ सके। यानी साथियों, टेलीकॉम के क्षेत्र में जो रेवोल्यूशन आई है इसका भारत के नागरिक को सीधा सीधा फायदा हुआ है।
0: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में सबसे तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार ऑपरेटरों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की।
2: 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें एक विजन दिया था। उन्होंने कहा था कि भविष्य का भारत कनेक्टेड रहे, भविष्य के भारत में डिजाइन रहे और भविष्य का भारत नेतृत्व करे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस एक दशक में जो संपूर्ण भारत की टेलीकॉम और डिजिटल फ्रेटर्निटी ने करके दिखाया है वो शायद कई और देशों को सदियों लग जाती जो 10 वर्ष की अवधि में भारत ने करके दिखाया है।
0: इस आयोजन में दुनिया भर के तकनीकी क्षेत्र के दिग्गजों, नेतृत्व निर्माताओं, उद्योग विशेषज्ञों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नव प्रवर्तकों को एक मंच पर लाया गया है। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। इसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कर्नाटक के मुख्यमंत्री DK शिवकुमार, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में GST विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा हो रही है। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार स्टार्टअप, शिक्षण संस्थानों, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के व्यापक वर्ग तक AI की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में आज विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि भारत अब उन देशों में शामिल है जिन्होंने AI को अपनाकर इसके वास्तविक लाभ हासिल किए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने डॉक्टरों को दिए जाने वाले उपहारों और अन्य फायदों सहित फार्मास्यूटिकल कंपनियों की विपणन पद्धतियों के वैधानिक नियमन की आवश्यकता की जांच के लिए केंद्र सरकार को 3 सदस्यीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
3: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने ये निर्देश उस याचिका की सुनवाई के दौरान दिए जिसमें दवा कंपनियों और डॉक्टरों के बीच अनैतिक व्यवहारों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई थी। प्रस्तावित समिति संबंधित पक्षों की राय और सुझाव पर विचार करेगी, साथ ही ये देखेगी कि क्या दवा कंपनियों की विपणन पद्धतियों को नियंत्रित करने के लिए किसी वैधानिक ढांचे की जरूरत है या नहीं, और यदि है तो उसकी संरचना कैसी होनी चाहिए। केंद्र सरकार से इस संबंध में हलफनामा दायर करने को कहा क्या है। अगली सुनवाई अगले साल 29 जनवरी को होगी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर इनाम की घोषणा करके आतंकवादी गुटों को अपने समर्थन की बात छुपाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने कहा कि दुनिया 9/11, 2008 के मुंबई और 2025 के पहलगाम आतंकवादी हमलों को नहीं भूली है। एक रिपोर्ट।
5: संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रथम सचिव रघु पुरी ने कहा कि केवल घोषणाओं से आतंकवाद का खात्मा नहीं किया जा सकता। श्री पुरी ने आतंकवादियों, उनके वित्त पोषकों और समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया। उन्होंने मसूद अजहर के अफगानिस्तान में छिपे होने के पाकिस्तान के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि तालिबान सरकार ने इस दावे को खारिज कर दिया है। श्री पुरी ने मसूद अजहर के बारे में सूचना देने के लिए 70 लाख रुपए के इनाम की नई

0: घोषणा को भी दिखावा बताया। प्रमुख आतंकवादी हमलों का उल्लेख करते हुए श्री पुरी ने कहा कि आतंकवादियों को सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध कराना आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को कमजोर करता है। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और घाना लंबे समय से साझेदार हैं। दोनों देश ग्लोबल साउथ के प्रमुख देशों के रूप में स्वास्थ्य, कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, खनन, रक्षा, रेलवे और डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। दोनों देशों ने कृषि अनुसंधान और शिक्षा, जैव विविधता, वैज्ञानिक अनुसंधान और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में समझौते किए। भारत ने पिछले कुछ दिन में रियाद के अबहा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमलों की कड़ी निंदा की है। इसमें आम नागरिकों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हम विशेष श्रृंखला में ऐतिहासिक जलियांवाला बाग स्मारक के पुनर्विकास की जानकारी दे रहे हैं।
2: जलियांवाला बाग का जिक्र होते ही वर्ष 1919 में अमृतसर में अंग्रेजी हुकूमत द्वारा किए जुल्म की दर्दनाक यादें ताजा हो जाती हैं। वह 13 अप्रैल बैसाखी का दिन था जब ब्रिगेडियर जनरल रेजिनल्ड डायर ने अपने सैनिकों से सैकड़ों बेगुनाहों पर अंधाधुंध गोलियां चलवाकर उन्हें मार डाला था। ये लोग रॉलेट एक्ट का शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। उस समय इन शहीदों की याद में बने जलियांवाला बाग यादगार को दशकों बाद पुनर्विकसित कर 28 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित किया। जलियांवाला बाग कॉम्प्लेक्स में विकास के कई काम हुए। पंजाब की अपनी भवन निर्माण शैली के अनुसार इसकी विरासत बहाली का काम बहुत ध्यान से किया गया। उस वक्त पंजाब में घटित ऐतिहासिक अहमियत की घटनाओं को दिखाने के लिए 4 म्यूजियम गैलरियां बनाई गईं और एक साउंड एंड लाइट शो शुरू हुआ। देश के अलग अलग हिस्सों से इस यादगार को देखने और नतमस्तक होने आए सैलानियों ने इसके पुनर्विकास के काम की तारीफ की।
3: जो हमने किताबों में पढ़ा था वो मैंने आज यहाँ पे आकर के खुद ने अपनी आंखों से देखा और मुझे महसूस भी हो रहा है। गवर्नमेंट इंडिया ने बहुत अच्छा किया है जिससे कि यहाँ पे सब कुछ युवा पीढ़ी है जो और आगे की जनरेशन के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि वो आगे आएंगे आने वाली पीढ़ी भी देखेगी यहाँ पे कि पहले कैसे हुआ था और क्या हुआ था। गवर्नमेंट इंडिया को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा।
4: मैं बहुत टाइम पहले आई थी उसमें लेके और अब से बहुत काफी सारे चेंजेस हुए हैं। पहले ये मेंटेन नहीं था, अब काफी अच्छे से मेंटेन किया गया और यहाँ पे गार्डन बहुत अच्छा है, बहुत सफाई है। यहाँ पे इवनिंग में लाइटनिंग भी होती है, पूरा हिस्ट्री के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कैसे कैसे क्या हुआ पहले और क्या क्या चेंजेस अभी आए। आने वाली पीढ़ी जो आगे आ रही है जनरेशन, उनको इसके बारे में काफी अच्छे से डीपली पता चलेगा।
5: मेरा नाम आशीष कुमार मिश्रा है, मैं वाराणसी से आया हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ के बारे में सुना हुआ था अपने दादा परदादा के मुँह से, बट आज हमने ये कुछ चीजें आके यहाँ पे देखे की जैसे लगा कि हमें मतलब अपनी मिट्टी से जुड़े हुए सब चीजें हमको यहाँ पे मिला और काफी चीजें देख को हमको ये लगा कि उस समय जो हुआ था हमारे यहाँ के गवर्नमेंट सरकार ने ऐसा कुछ किया कि ये चीजें देख के जाने बाद हम अपने अगली पीढ़ी को भी बता सकते हैं कि एक बार वो यहाँ पे आए जरूर।
2: जलियांवाला बाग मेमोरियल को आजादी की लड़ाई के दौरान भारतीयों के बलिदान की निशानी के तौर पर हमेशा याद किया जाएगा। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज सुबह गोवा में उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। नाना पाटेकर हिंदी और मराठी सिनेमा के जाने माने अभिनेता थे।
6: कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत हो, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, तुम हर खुशी, तुम प्यार हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो।
7: विश्वनाथ पाटेकर, जिन्हें दुनिया नाना पाटेकर के नाम से जानती है, उनका जन्म 1 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र के मुरुड जंजीरा में हुआ था। नाना पाटेकर उन कलाकारों में से थे जो पर्दे पर आते ही किरदार में जान डाल देते थे।
8: आज तुमने राम और अल्लाह को मारने की कोशिश की है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, हम भले ही ऊपर वाले को अलग अलग नाम से पुकारते हैं लेकिन हमारा धर्म एक है, मजहब एक है, इंसानियत।
7: 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित नाना पाटेकर ने परिंदा, क्रांतिवीर, अग्निसाक्षी, नट सम्राट, अब तक 56 और यशवंत जैसी फिल्मों में अपने अभिनय से अमिट छाप छोड़ी। वर्ष 1900

0: 78 में गमन से बॉलीवुड में कदम रखने वाले नाना पाटेकर ने अलग अलग तरह के किरदारों को पर्दे पर जीवंत किया। शक्ति द पावर, अपहरण, टैक्सी नंबर 9211 और राजनीति जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को खूब सराहा गया। फिल्म वेलकम में गैंगस्टर उदय शेट्टी के किरदार से उन्हें खास तौर पर लोकप्रियता मिली। नाना पाटेकर ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी सिनेमा से अपना रिश्ता बनाए रखा। हाउसफुल 5, ओ रोमियो और हाल ही में रिलीज हुए सूबेदार में भी नाना नजर आए। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज शाम 4 बजे पुणे के पास डोंजे में अंतिम संस्कार किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। देश आज भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ मना रहा है। 8 अक्टूबर 1932 को इसका गठन किया गया था। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी वायु योद्धाओं, अनुभवी सैनिकों और उनके परिवारों को बधाई दी है। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने आज वायुसेना की बढ़ती क्षमताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि वायुसेना की असली ताकत केवल उन्नत उपकरणों और तकनीक में नहीं बल्कि इसके योद्धाओं में निहित है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से 25 करोड़ छात्रों को जोड़ेगी। उन्होंने कहा, 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशनों के साथ 5G कनेक्टिविटी हर जिले तक पहुंची। वस्तु और सेवा कर परिषद में विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा। सर्वोच्च न्यायालय ने फार्मास्यूटिकल कंपनियों की विपणन पद्धतियों के वैधानिक नियमन की आवश्यकता की जांच के लिए केंद्र सरकार को समिति गठित करने का निर्देश दिया। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का निधन। भारत ने आतंकवाद पर पाकिस्तान पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया और देश वायुसेना दिवस पर सेना के जवानों के बलिदान को नमन कर रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज, FM 100.3 मेगा हर्ट्ज और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आज के उमंग कार्यक्रम में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
3: और अजीत का भी नमस्कार।
2: सुनते हैं आज का सुविचार माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल, टेक लाल पटेल जी ने सुविचार भेजा है। वो लिखते हैं
3: समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही नई सुबह का आगाज होता है। बस विश्वास रखिए, अच्छे कर्मों का फल देर से मिलता है लेकिन मिलता जरूर है।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
3: तो पहला संदेश हमें मिला है गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी किरत अवाना। लिखते हैं कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता आदरणीय विमलेश जी और अजीत जी को सादर नमस्कार। आगे लिखते हैं
2: उमंग कार्यक्रम के सितम्बर माह के मासिक श्रोता संवाद में श्वेता तंवर जी के साथ जेंडर समावेशन जैसे महत्वपूर्ण एवं समसामयिक विषय पर चर्चा हुई, जो अत्यंत सार्थक, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रही। समान अवसर, सम्मान तथा बिना किसी लैंगिक भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने के अधिकार पर आधारित ये संवाद हमारी सोच को व्यापक बनाने वाला रहा।
3: आप आगे लिखते हैं आपका यह मासिक कार्यक्रम विद्यार्थियों एवं अध्यापकों के लिए अत्यंत उपयोगी है।
2: जी,
3: इसके माध्यम से उन्हें NCERT द्वारा संचालित विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं की जानकारी प्राप्त होती है तथा वे इसका लाभ उठाने के लिए प्रेरित होते हैं।
2: जी।
3: ऐसे ज्ञानवर्धक कार्यक्रम

0: विद्यार्थियों में जागरूकता, सकारात्मक सोच एवं सीखने की भावना को बढ़ावा देते हैं। इस उपयोगी एवं प्रेरणादायक कार्यक्रम के लिए हार्दिक धन्यवाद एवं हमारा आभार।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल और विशाल सपकाल,
0: और माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी लिखते हैं।
1: विमलेश जी, अजीत जी, नमस्कार। उमंग कार्यक्रम में हमें बेहद रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी सुनने को मिलती है। आविष्कारों के बारे में जानने के साथ साथ भारत के अनमोल ज्ञान, संस्कृति और गौरवशाली विरासत की भी जानकारी मिली। हर प्रस्तुति कुछ नया सीखने और जानने की उमंग जगा देती है
0: जी।
1: ऐसे शानदार ज्ञानवर्धक और रोचक कार्यक्रम के लिए पूरी टीम को हृदय से बधाई और साधुवाद।
0: और अगला संदेश हमें मिला है अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का, तो लिखते हैं, प्रिय विमलेश जी और अजीत जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं पूरी उमंग टीम और सभी श्रोताओं को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हमें दिनांक 14/9/2026 का उमंग कार्यक्रम बेहद पसंद आया, जिसमें आपने एक प्यारे डॉगी के बारे में बताया जो अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक की कक्षा 2 पर आधारित थी। वो कहानी हमें बेहद पसंद आई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी तरह से कार्यक्रम पेश किया।
1: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविंद्र रौनक सेन ने लिखा है,
0: आपका कार्यक्रम उमंग हमें बड़ा सुंदर और शिक्षाप्रद लगता है, साथ ही साथ ज्ञानवर्धक भी। हम इसके नियमित श्रोता हैं। आगे लिखते हैं कि जीवन को खुशहाल और पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए एक पेड़ हर वर्ष अवश्य लगाएं। धन्यवाद।
1: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश देने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं प्रतिष्ठित पुरस्कारों की।
0: जी, तो श्रोताओं, इस क्रम में आज हम बात करेंगे भारत के सर्वोच्च सैनिक वीरता सम्मान परमवीर चक्र की।
1: जी,
0: वैसे परमवीर चक्र का नाम तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानी शायद बहुत कम लोग जानते हैं।
1: तो आइए करते हैं शुरुआत और जानते हैं इसके बारे में। श्रोताओं, परमवीर चक्र की स्थापना हमारे प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को हुई थी। ये सम्मान जल, स्थल और वायु में शत्रु पक्ष का सामना होने पर सैनिकों द्वारा दिखाई जाने वाली असाधारण वीरता और साहस दिखाने वाले भारतीय सैनिकों को प्रदान किया जाता है।
0: यानी ये विशिष्ट रूप से युद्ध भूमि में दिखाई गई सर्वोच्च वीरता को दिया जाने वाला सम्मान है। आपको बता दें श्रोताओं कि इसे सैनिकों को मरणोपरांत भी दिया जाता है, और ये चक्र यूनाइटेड किंगडम के विक्टोरिया क्रॉस और संयुक्त राज्य अमेरिका के मेडल ऑफ ऑनर के बराबर है।
1: जी, तो अजीत जी, अब बात करते हैं इसके डिजाइन की कहानी पर। इस पदक को डिजाइन किया श्रीमती सावित्रीबाई खानोलकर जी ने। वे स्विट्जरलैंड में जन्मी, उनका मूल नाम था एवानोन लिंडा। वहाँ वे रॉयल मिलिट्री अकादमी के भारतीय कैडेट विक्रम रामजी खानोलकर से मिली और उनकी जीवन संगिनी बनी।
0: जी हाँ श्रोताओं, वे भारतीय सैन्य परंपराओं और भारतीय संस्कृति से बहुत प्रभावित थीं।
1: जी,
0: उन्होंने भारतीय संस्कृति और सैन्य परंपराओं का गहरा अध्ययन किया था, और वे एक बहुत अच्छी कलाकार भी थीं।
1: जी,
0: कला कौशल और भारतीय संस्कृति से अनुराग रखने के कारण उन्हें परमवीर चक्र को डिजाइन करने के लिए चुना गया।
1: ये कांस्य का गोल पदक है और इसे बैंगनी रंग के रिबन के साथ पहनाया जाता है। ये जानना बहुत रोचक होगा कि भारतीय सेना के इतिहास में पहला परमवीर चक्र किसे प्रदान किया गया।
0: तो श्रोताओं, आपको बता दें कि श्रीमती सावित्रीबाई खानोलकर जी की बेटी कुमुदिनी शर्मा के देवर मेजर सोमनाथ शर्मा को सन 1947 में बड़गाम की लड़ाई में वीरता दिखाने के लिए सर्वप्रथम परमवीर चक्र प्रदान किया गया।
1: बहुत रोचक। इस सम्मान की मूल भावना है कर्तव्य, साहस और सर्वोच्च बलिदान। अजीत जी, क्या परमवीर चक्र केवल थल सेना के सैनिकों को ही दिया जाता है?
0: नहीं विमलेश जी, ऐसा नहीं है। ये भारतीय सशस्त्र सेनाओं के उन सदस्यों को दिया जाता है जिन्होंने युद्ध के दौरान असाधारण वीरता दिखाई हो। यह भारत का सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता सम्मान है।
1: और इसे प्रदान कौन करता है?
0: परमवीर चक्र भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। परमवीर चक्र केवल एक सैन्य पदक नहीं, बल्कि भारत के उन वीर सैनिकों की स्मृति और सम्मान का प्रतीक है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च योगदान दिया।
1: भारत के वीर सैनिकों को हमारा नमन।
0: जय हिंद। तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र के बारे में। तो अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, परमवीर चक्र पदक को डिजाइन किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: परमवीर चक्र पदक को डिजाइन किसने किया था? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
0: तो आइए अब सुनते हैं।

0: आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है किसान की होशियारी।
1: कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित एक लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम में बताया गया है कि किसान ने कैसे अपने चातुर्य और बुद्धिमत्ता से भालू से पीछा छुड़ाया और अपनी जान बचाई।
2: एक किसान अपना खेत जोत रहा था, अचानक कहीं से एक भालू आ गया। भालू किसान को मारने झपटा। किसान ने कहा,
3: मुझे क्यों मारते हो? उपज होने दो, जो कहोगे वही खिलाऊंगा।
2: भालू ने कहा,
4: भूमि के ऊपर की उपज मेरी और नीचे की तुम्हारी रहेगी।
2: किसान ने आलू बो दिए, उपज हुई तो भालू को पत्ते खाने को मिले। भालू चिढ़कर रह गया। अगली बार भालू ने कहा,
4: इस बार भूमि के नीचे की उपज मेरी और ऊपर की तुम्हारी।
2: इस बार किसान ने गेहूं बो दिया, जब उपज हुई तो किसान को मिले चमकीले गेहूं, भालू को मिली केवल जड़ें। भालू खींच कर रह गया। इस बार भालू ने किसान को पाठ पढ़ाने की सोची। उसने किसान से कहा,
4: भूमि के सबसे ऊपर और भूमि के नीचे की उपज मेरी।
2: किसान मान गया। इस बार किसान ने लगाया गन्ना, जब उपज हुई तो भालू को मिले पत्ते और जड़ें, भालू का सिर चकरा गया।

0: अभी आपने सुना ये हास्य प्रधान कार्यक्रम किसान की होशियारी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती।
1: दोस्तों, कभी सोचा है तुमने कि हमारी सभ्यताओं को किसने पाला पोसा है, किसने संवारी है हमारी दुनिया? माँ की गोद ने और नदियों की घाटियों ने। हजारों हजारों साल से माँ ने हमें सीने से लगाया, हमें जीवन दिया है। यही तो है नदी, जिसने हमारी सभ्यता को सींचा और हरा भरा किया है।

0: नदी मनुष्य के साथ रही है, उसकी हर हंसी हर आंसू में। वो हम सफर रही है मनुष्य के हर सफर में। तभी तो हर सभ्यता ने नदी को माँ कहा है।
1: लेकिन कभी कभी मनुष्य अपनी नासमझी और नादानी में जीवन देने वाली इस माँ के जीवन को ही खतरे में डाल देता है। उत्तराखंड की एक बहुत खास नदी कोसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।
0: लेकिन भारत देश की महिलाएं अपनी प्रकृति की रक्षा के लिए हमेशा ही तैनात रही हैं।
1: हाँ, आज की हमारी नायिका बसंती बहन ने कोसी को बचाया।

0: भला क्यों बचाया बसंती ने कोसी को? क्या नाता है कोसी और बसंती का? आखिर ये बसंती है कौन? ये बसंती भी कुछ खास ही है कोसी की तरह। दोनों ही हिमालय के ऊंचे शिखरों से ही नहीं बल्कि घने जंगलों से निकली हैं। आइए जानते हैं कि उनके बीच कैसे बनता है एक गहरा नाता और कैसे बचाती हैं वे एक दूसरे को।
1: ये कहानी है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के एक छोटे से गांव की।

0: सन 1980 अप्रैल का एक दिन,
1: बावरी है। अरे चार रोज बाद तेरा ब्याह है और आज जंगल में बुरांस के फूल चुन रही है। हाँ चल कर चल। अरे चल, सब खोज रहे हैं तुझे। अरे चल ना जल्दी कर।

0: अभी तो उसने ठीक से अपने गुड्डे गुड़िया का भी ब्याह नहीं रचाया था, और उस छोटी सी गुड़िया का ब्याह हो गया।
1: शादी के लगभग 2 साल बाद एक रोज शाम के समय सर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाए जब बसंती घर पहुंची तो घर का नजारा बिल्कुल बदला हुआ था।
0: सारा गांव उसके घर में इकट्ठा था और बहुत तेज रोना धोना मचा था। बसंती को कुछ समझ में आता, इससे पहले ही मां उसकी ओर तेजी से आई और गले लगाकर रोने लगी।

पसंदी। बेटी तू बर्बाद हो गई, तेरी दुनिया हमेशा के लिए उजड़ गई बेटी। अरे तू विधवा हो गई।

0: और इस तरह इससे पहले कि बसंती ब्याह के मायने समझती, वो विधवा हो गई। वक्त ने धीरे धीरे उसे विधवा होने का मतलब भी समझा दिया। पिता को अपनी मासूम बच्ची के भविष्य की चिंता सता रही थी, लेकिन नियति ने तो उसके लिए कुछ और ही संयोग रच रखा था। बसंती के पिता को उनके एक मित्र से कौसानी के लक्ष्मी आश्रम के बारे में पता चला।
1: आजादी के पहले गांधी जी की शिष्या सरला बहन ने इस आश्रम की शुरुआत पहाड़ की बच्चियों को शिक्षित करने के लिए की थी। बाद में ये आश्रम उन महिलाओं के

0: लिए जीवन की शाला बना, जिन्हें दुनिया विधवा कहकर बेसहारा समझती है, वही महिलाएं दक्ष होकर आज समाज का सहारा बन रही हैं।
1: ये सोचकर कि बसंती का भविष्य सबसे ज्यादा आश्रम में ही सुरक्षित रहेगा, बसंती के पिता ने बसंती को इसी आश्रम में भेज दिया।
0: घर से आश्रम की यात्रा बसंती के लिए एक जीवन से दूसरे जीवन में प्रवेश की यात्रा बन गई। जीवन के 12 बसंतों ने ही उसे एक चहकती बालिका से विधवा और फिर आश्रमवासी बना दिया।
1: ये तो थी कहानी बसंती की, पर बसंती का आखिर क्या नाता है कोसी से? है ना, बहुत गहरा नाता है। उस रोज जब बसंती पहली बार अपने पिता के साथ आश्रम जा रही थी, तो उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी की अंतिम यात्रा है। मगर उसी रास्ते में उसकी भेंट कोसी नदी से हुई।

0: हुआ यूं कि कोसानी जाते हुए मन्नान में बस दोपहर के भोजन के लिए कोसी नदी के निकट रुकी तो उदास बसंती भोजन करने के बजाय कोसी के किनारे जाकर बैठ गई।
1: थोड़ी देर बाद उसे कोसी के निर्मल जल से आवाज आई, मानो कह रही हो, बेटी बसंती, तू उदास मत हो, ये यात्रा तुम्हारे जीवन की अद्भुत यात्रा साबित होगी। इस यात्रा से तुम अपने जीवन को मायने दे सको, तुम अपने जीवन दे सको, मायने दे सको।
0: बसंती घबराकर इधर उधर देखने लगी, पर कहीं कोई नहीं था। फिर ये आवाज किसकी थी? बसंती ने पानी में झांका तो उसे अपनी ही छवि दिखाई दी। अब तक उसकी आंखों से आंसू छलकने बंद हो चुके थे और चेहरे पर संशय की जगह विश्वास अपनी जड़ जमाने लगा था।
1: उसके बाद से बसंती को जब भी बड़े सवाल सालते, वो कोसी के किनारे चुपचाप अकेले जा बैठती और उसे जवाब मिल जाता। दरअसल कोसी उसकी अंतरात्मा की परछाई बन चुकी थी।
0: साल पर साल गुजरते गए। बसंती अपने सामाजिक कार्यों में मगन रही और कोसी भी अपनी जल तरंगों से घाटी को हरा भरा करती रही।

0: लेकिन लोगों की नादानी से कोसी की रस धाराएं तेजी से सूखने लगी। और एक दिन ऐसा भी आया कि उत्तराखंड की सरकार ने कोसी पर पहरा लगा दिया। ये बात सन 2003 की गर्मियों की है।
1: बसंती दीदी, ओ बसी दी, कहाँ हो? गजब हो गया, कुछ सुना तुमने? दीदी,
2: अरे क्या हुआ शांति?

0: क्यों सारा पहाड़ सर पर उठा रखा है? मैं यहाँ गौशाले में हूँ, घास काट रही हूँ।
1: दीदी दीदी, अभी अभी मैं नीचे गांव से आ रही थी। हाँ? वहाँ सरकार ने कोसी पर जगह जगह पुलिस बैठा दी है।
0: क्या?
1: सरकार का हुक्म है कि खेती के लिए कोई भी कोसी का बूंद भर पानी भी इस्तेमाल न करे।
0: अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? कोसी हमारी है या सरकार की?
1: कहते हैं कि कोसी का पानी बहुत तेजी से घट रहा है, इसलिए सारा पानी अल्मोड़ा शहर जाएगा। वहाँ पीने का पानी हमारी कोसी से ही तो मिलता है ना।
0: अच्छा चल, आश्रम चलकर सबको इसकी खबर देते हैं।
1: ठीक है, चल ठीक है दीदी, चलो चलो।
2: उस रोज रात को कोसी नदी के बारे में आश्रम में भोजन के बाद चर्चा हुई।
3: हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब इसका उपाय क्या है, क्या करें? हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं, मेरी तो ऐसा है, हम सबको मिलजुल के कुछ करना चाहिए।
2: कोसी नदी को बचाने की जिम्मेदारी आश्रम की बड़ी दीदी राधा भट्ट ने बसंती को सौंपी।

0: अरे चल ना जल्दी कर ना,
1: जल्दी जल्दी पैर बढ़ा।
2: अरे कहाँ जा रही हो बहनों? क्या तुम सब लेसाल गांव की हो?
3: हाँ, हम सब लेसाल गांव की हैं और जंगल जा रहे हैं लकड़ियां काटने।
2: बहन जरूर जाओ, लकड़ी भी लाओ, लेकिन देखो कच्ची लकड़ियां मत काटना।
0: है? वो भला क्यों? हा? तुम क्या कोई यहाँ की कलेक्टर लगी हो जो हमें ये फरमान सुना रही हो? अरे हम क्यों तुम्हारी बातें सुने? हाँ
2: मेरे लिए नहीं, अपने कोसी के प्राण बचाने के लिए आप सबको मेरी बात माननी चाहिए।
3: तुम्हारी बात से कोसी के प्राण का क्या रिश्ता?
0: हाँ।
3: हमें क्यों मूर्ख बना रही हो?
0: और क्या
3: है? आखिर तुम कौन हो, क्या चाहती हो?
0: हाँ?
2: देखो इन जंगल के पेड़ों में ही तो प्राण बसे हैं कोसी के। आमा तुम तो जरूर जानती होगी, तुम बताओ ना कि क्या रिश्ता है कोसी का हमारे पिनाथ के जंगल से? बताओ ना कि क्या रिश्ता है कोसी का हमारे पिनाथ के जंगल से?
3: आज से 40 साल पहले जब ब्याह कर मैं गांव आई थी, तब तो कोसी अपने उफान पर थी, और आज अब तब में उसके प्राण है। बेटा तू कौन है, कहां से आई है?
2: आमा मैं लक्ष्मी आश्रम से आई हूँ। आप सबने तो सुना ही होगा कि इस बार कोसी के पानी पर सरकार ने पहरा लगा दिया है। गांव का कोई आदमी कोसी के पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए नहीं कर सकता। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम मिलकर कोसी को बचाएं। यही बात समझाने के लिए मैं गांव-गांव घूम रही हूँ।
3: तुम्हारी बात में दम तो है बेटा।
2: हम गांव के बाकी लोगों को ये बात समझा कर अपने जंगल के पेड़ों की जिम्मेदारी स्वयं कर सकते हैं।
3: चलो इसकी शुरुआत हमारे ही गांव से करो।
0: अरे चलो चलो बसंती बहन, हमारे गांव चलो
1: चलो चलो चलो,
0: हाँ जल्दी चलो, हम सबको बताते हैं।
4: और इन औरतों का काफिला एक बार जो चल पड़ा तो रुका नहीं। इस दिन बसंती बहन लेसाल गांव गई और वहां औरतों ने एक सभा बुलाई और झटपट एक महिला मंडल का गठन हो गया। फिर धीरे धीरे 20 गांव में महिला मंडल का गठन हो गया। बरासे घाटी के कफारी, बिजुरिया, धौलरा, गरुड़ा, सैल, खीराकोटा, कांटली आदि गांवों में

0: शुरू में तो पुरुषों ने महिला मंडल का विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी बात समझ में आ गई और वे भी अपना जंगल बचाने के अभियान में लग गए। अगस्त 2003 से आज तक इन गांव के लोगों ने कच्ची लकड़ी और हरी पत्तियां नहीं काटी।
1: पर रास्ता इतना आसान भी नहीं था। कोसी की जीवन रेखा पिनाथ जंगल केवल बरारो घाटी में नहीं पड़ता था, उसका कुछ हिस्सा लोध घाटी और बागेश्वर में भी पड़ता था, और वहां के लोग अब भी जंगल काट रहे थे। तब बरारो घाटी के महिला मंडलों ने फैसला किया कि पूरे इलाके में कोसी बचाओ जुलूस निकाले जाएं, सभाएं की जाएं।

0: बसंती बहन और गांव की संकल्प की धनी जुझारू महिलाओं ने यह साबित कर दिया है कि अगर आप ठान लें तो सब कुछ संभव है। उत्तराखंड की धरती ऐसी ही साहसी महिलाओं की धरती रही है और उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं बसंती बहन।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती। और अब इसी कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
2: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु,
1: अर्षद,
2: चेतना,
1: कुसुमलता,
2: वीरेंद्र
1: और हमारी आज की विशेषज्ञ
2: सहायक आचार्य दीपमाला जी के साथ कल तक के लिए विमलेश को आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3 बजे हैं। ये सभा अब समाप्त होती है। सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 4 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 4 बजे हैं, हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। अगले प्रसारण के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतज़ार।

0: आसमान की बुलंदियों पर जब तिरंगा लहराता है तब दिखता है भारतीय वायुसेना का शौर्य पराक्रम। 8 अक्टूबर 1932 से लेकर आज तक इंडियन एयरफोर्स ने हर चैलेंज, हर चुनौती का साहस और वीरता से सामना किया है, कभी युद्ध भूमि में तो कभी आपदा राहत में। देश सेलिब्रेट कर रहा है आज एयरफोर्स डे, इंडियन एयरफोर्स डे 2026, द डे ऑफ प्राइड एंड ऑनर, जब हम सल्यूट करते हैं अपने वीर जांबाजों को जिनकी उड़ान ने भारत को सेफ एंड सिक्योर रखा है। नवा स्पर्शम दीपतम, टच द स्काई विद ग्लोरी। आप सुन रहे हैं देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो। और आज का संदेश टू सोल्जर्स है एयरफोर्स डे स्पेशल। आप हैं शाहिद के साथ और हमारे साथ हैं वायुसेना मेडल से सम्मानित सीनियर फेलो एट द मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स हेलीकॉप्टर पायलट ग्रुप कैप्टन डॉक्टर राजीव कुमार नारंग। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो संदेश टू सोल्जर्स में आज के इस खास दिन।
1: धन्यवाद, मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आम लोगों से अपनी भारतीय वायुसेना के दिवस के मौके पर आप लोगों से मिल पाया और अपने लोगों से भारत की वायुसेना के एक पुराने सैनिक होने के नाते
0: जी
1: आप लोगों से बात करके कुछ अपने विचार शेयर कर पाऊँ, कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँ और कुछ फ्यूचर भारत को कैसे एरोस्पेस पावर बनना है
0: जी
1: उस पर बात कर पाऊँ।
0: सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला और आपकी जो ये कीमती बातें हैं वो हम आज के अपने शो में करेंगे। और हम चाहेंगे अपने लिसनर से हमेशा की तरह से कि आप हमें मैसेज करें। हमारा नंबर है व्हाट्सएप नंबर 9868107070। मोबाइल ऐप पर आप हमें सुन रहे हैं, न्यूज़ ऑन AIR हमारी मोबाइल ऐप है जिस पर आप हमें लाइव सुन रहे हैं। हमारे साथ हैं आज के हमारे बहुत ही खास मेहमान, आज के बहुत ही खास दिन एयरफोर्स डे स्पेशल शो में ग्रुप कैप्टन डॉक्टर राजीव कुमार नारंग। सर, आज एयरफोर्स डे है, एक बेहद ही स्पेशल दिन, न सिर्फ भारतीय वायुसेना के लिए, उसके पराक्रम शौर्य के लिए, बल्कि साथ ही साथ पूरे देश के लिए और देशवासियों के लिए। तो आप सर आज के दिन को किस तरह से देखते हैं?
1: देखिए, भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर 1932 में कराची, जो आजकल पाकिस्तान में है, एक दिग रोड एयरफोर्स स्टेशन था जहाँ पर सिर्फ केवल 4 वापिती जहाज़ों से बनी थी, जो छोटे से 2 बाइप्लेन होते थे
0: जी।
1: और उसको देख के आपने ऑफ सिंदूर में देखा कैसे भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को एक अपने अच्छा करारा जवाब दिया जब उन्होंने हमारे यहाँ पर एक टेररिस्ट अटैक किया
0: जी।
1: और फिर भारतीय वायुसेना ने अपना संयम दिखाते हुए सिर्फ टेररिस्ट को ही अटैक किया और कोई अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं किया।
0: बिल्कुल।
1: तो ये 94 भारतीय वायुसेना की एनिवर्सरी पर मैं भारतीय वायुसेना के अधिकारी
0: जी,
1: एयरमैन, नॉन कॉम्बेटेंट, सिविलियंस, संगनीज और वो सब लोग जो भारतीय वायुसेना से जुड़े हैं उनको मैं अपनी दिल से शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। जैसे भारतीय वायु सेना अपने देश की सीमाओं, वायु की रक्षा करती रही है, वैसे ही आप लोग करते रहिए और हम चाहे वर्दी छोड़ चुके हैं, हम आपके साथ हैं और हमें आप पे गर्व है। आपको हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही काम करते रहें। और इस साल जो है भारतीय वायुसेना की परेड हिंडन एयरफोर्स स्टेशन में हुई थी
0: जी।
1: ये 3 वर्षों के बाद थी कि हिंडन में दोबारा हुई और

0: इन दिया गया था स्पेशल, जिसे हमने दिया गया इनफॉलिबल, जिसका मतलब है अचूक, और
1: जी
0: ये अचूक हमने दिखाया कि हम कितने अचूक थे जब हमने अटैक किया पिछले मई 2025 को। इम्परवेश अभेद, मतलब जिसे कोई रोक नहीं पाई, दुनिया की
1: बिल्कुल,
0: कोई
1: कोई
0: जो
1: ताकत,
0: डिफेंस नहीं रोक पाई।
1: जी,
0: और प्रिसाइज, आपने देखा होगा कि
1: सटीक,
0: कैसे हमने छोटी सी जगह पर
1: बिल्कुल,
0: जाके बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पे अटैक किया। तो
1: जी,
0: भारतीय वायुसेना का ये जो थीम है, ये
1: जी
0: इंडिकेट करता है कि हम सीरियस हैं। और मैं ऑल भारतीय वायुसेना के जो हमारे एक ही जो परमवीर चक्र विजेता है, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों, उनको
1: जी
0: श्रद्धांजलि भी अर्पित करना चाहूँगा, क्योंकि उनके जैसे कई लोगों के शौर्य की वजह से हमारा
1: जी
0: भारत सुरक्षित है,
1: बेशक,
0: और हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं।
1: बिल्कुल सर, आपने बहुत सर कीमती और बहुत ही खूबसूरत बात कही, और जाहिर है देशभक्ति की जो भावना है वो हर देशवासी में है। और जिस तरीके से आपने कहा कि वर्दी आपने भले ही छोड़ दी या रिटायर हो गया आप, लेकिन उसके बावजूद वो देशभक्ति की भावना है, और जो अपनी एयरफोर्स के लिए जो आपका डेडिकेशन है और जो कंट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल एकदम अनएक्सप्लेनेबल है और बहुत ही स्पेशल है। आप सुन रहे हैं 102.6 देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स। आज का डेडिकेटेड है, एयरफोर्स डे स्पेशल है आज का, और आज के हमारे बहुत ही स्पेशल मेहमान हैं ग्रुप कैप्टन डॉक्टर राजीव कुमार नारंग। तो देशभक्ति की भावना हर देशवासी में मौजूद है। हम आते हैं लौट कर, आप हमें मैसेज करें 9868107070 हमारा है नंबर।

संदेश टू सोल्जर्स का आज का खास प्रोग्राम आप सुन रहे हैं शाहिद के साथ 102.6 देश का नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर। आज है एयरफोर्स डे और एयरफोर्स डे स्पेशल शो में आज हमारे मेहमान हैं ग्रुप कैप्टन डॉक्टर राजीव कुमार नारंग।

0: जी सर, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा हमारे आज के स्पेशल स्पेशल शो में। सर, हमारे पास ऑनरेबल चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह का मैसेज है। हम चाहेंगे कि हम सब हमारे लिसनर्स को भी उनका ये मैसेज सुनाया जाए।
1: दिस इज दिल्ली, प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट प्रोग्राम। दिस इज आकाशवाणी। ऑन द ईव ऑफ द 94th एनिवर्सरी ऑफ इंडियन एयर फोर्स, we now bring you a message by the Chief of Air Staff, Air Chief Marshal Amarpreet Singh, Param Vishisht Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal.
2: भारतीय वायु सेना की 94वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर प्रस्तुत है भारतीय वायु सेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह परम विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल का संदेश।
3: नमस्कार, भारतीय वायु सेना की 94वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर सारे वायु योद्धाओं की ओर से मैं सभी देशवासियों को नमन करता हूं। वायुसेना दिवस हमारी उस गौरवमय यात्रा का उत्सव है जो अटूट निष्ठा, अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान की

0: 94th anniversary of Indian Air Force, we now bring you a message by the Chief of Air Staff, Air Chief Marshal Amarpreet Singh, Param Vishist Seva Medal, Ati Vishist Seva Medal.
1: भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर प्रस्तुत है भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह परम विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल का संदेश।
2: नमस्कार, भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर सारे वायु योद्धाओं की ओर से मैं सभी देशवासियों को नमन करता हूँ। वायुसेना दिवस हमारी उस गौरवमय यात्रा का उत्सव है जो अटूट निष्ठा, अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान की नींव पर रची गई है। सन 1932 में मात्र 4 वापिती विमानों से उड़ान भरने वाली हमारी वायुसेना आज एक अत्यंत सक्षम, नेटवर्क सेंट्रिक और बहुआयामी फोर्स बन चुकी है। आज की दुनिया अस्थिर, अनिश्चित और जटिल दौर से गुजर रही है। हितों और परिस्थितियों के लगातार बदलने के इस माहौल में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में नए संघर्ष उभर रहे हैं। इन संघर्षों में हमने देखा है कि वायु शक्ति राष्ट्र के हितों की रक्षा करने का एक प्रमुख साधन है। देश की वायु शक्ति का प्राथमिक माध्यम होने के नाते भारतीय वायुसेना सतर्कता और दृढ़ संकल्प के साथ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है। लास्ट ईयर ऑपरेशन सिंदूर रीअफर्म्ड द पिवोटल पावर ऑफ इंटीग्रेटेड एयर ऑपरेशंस, डेमोंस्ट्रेटिंग आवर कैपेबिलिटी and capacity to defend our sovereignty. Through major milestones this year, including exercise Vayu Shakti, various bilateral exercises, Dronathon, and the ongoing historic multilateral air exercise Tarang Shakti, we are actively testing our combat readiness and rapidly absorbing niche technologies into our operational plans. Apni marak shamta ke alawa, Bharatiya Vayu Sena ne sankat ke samay mein हमेशा आगे बढ़कर देश और मानवता की सेवा की है। चाहे देश के विभिन्न प्रदेशों में आई भयंकर बाढ़ के दौरान नागरिकों की सहायता हो या जंगलों में लगी भीषण आग पर काबू पाना हो, हमारे वायु योद्धाओं ने हमेशा कौशल और साहस का परिचय दिया है। हमारी यह प्रतिबद्धता हमारी सीमाओं तक सीमित नहीं है। नेपाल और युगांडा से लेकर वेनेजुएला, फिलीपींस, मेडागास्कर, थाईलैंड, क्यूबा और जमैका तक हमारी वायुसेना ने HADR मिशनों के माध्यम से सेवा के इसी संकल्प को निरंतर आगे बढ़ाया है, जो सेवा परमो धर्म एवं वसुधैव कुटुंबकम की सच्ची भावनाओं को दर्शाता है। आत्मनिर्भरता हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अंकुर ट्रेनर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, अस्त्र आकाश तथा ब्रह्मोस जैसी स्वदेशी प्रणालियां इसी संकल्प का प्रमाण है। आत्मनिर्भरता की इस नींव पर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को तेजी से अपनाना भारतीय वायुसेना की सर्वोच्च प्राथमिकता बन चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑलरेडी फाइंडिंग इट्स वे इनटू एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर फंक्शनिंग। आवर विजन इज टू बिल्ड एन AI ऑगमेंटेड फोर्स वेयर टेक्नोलॉजी सपोर्ट्स अस बट ह्यूमंस रिमेन इन कमांड। आवर रोल्स एंड टास्क naturally take us beyond the confines of Earth's atmosphere, as space is a natural extension of the air domain. Our deepening partnership with ISRO, including our contribution to Gaganyaan mission, reflects this commitment. These capabilities form an integral part of our vision for 2047. Technology is only an enabler. The foundation of decisive victory has always been in the unity of purpose. Modern wars are not won by the strength of a single service, but through the combined strength of the entire nation. For Indian Air Force, jointness is the only way forward. Our endeavor is to ensure that the reach, speed, and precision of air power are fully harnessed so that its effects are felt across every dimension of the battle space. Is avsar par main apne aadarniya air veterans ko naman karta hu. आपकी दूरदृष्टि, समर्पण और मार्गदर्शी नेतृत्व ने ही इस सशक्त भारतीय वायुसेना की नींव रखी है, जो आज राष्ट्र की सुरक्षा के लिए पूरी दृढ़ता के साथ खड़ी है। साथ ही मैं अमर शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने कर्तव्य के मार्ग पर अपनी प्राणों की आहुति देकर तिरंगे का मान रखा। आई ऑल्सो टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्नॉलेज दैट थ्रू एवरी चैलेंज The unwavering support and encouragement of our

0: fellow citizens have been a source of strength for the Indian Air Force. Desh ki raksha karna hamara kartavya hai aur aap sabhi ka aashirwad hamari sabse badi taakat hai. Ant mein hum samast vayu yodha bhartiya vayu sena achuk abhed evam satik ki avdharna ka smaran karte hue yah sankalp lete hain ki rashtra ki raksha uski samprabhuta aur akhandta ke liye hum sadaiv samarpit rahenge tatha apne adarsh vakya nabhas prasham deeptam par adig rahenge. Jai Hind.
1: On the eve of the 94th anniversary of Indian Air Force,
2: 102.6 यह देश का नंबर वन रेडियो आपका अपना रेनबो प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स. आज का हमारा स्पेशल शो एयरफोर्स डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज. और हमारे साथ हैं वायुसेना मेडल से सम्मानित सीनियर फेलो एट द मनोहर पारिकार इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स हेलीकॉप्टर पायलट ग्रुप कैप्टन डॉक्टर राजीव कुमार नारंग जी. सर बहुत बहुत एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा आप आज के स्पेशल शो में. और सर इंडियन एयरफोर्स का मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक कोई स्पेशल सॉन्ग भी है
3: जी
2: तो वो क्या कुछ जोश से भर देता है आपको पुराने दिनों की याद दिलाता है.
3: भारतीय वायुसेना का एक अपना सॉन्ग है जिसे वायुसेना सॉन्ग कहते हैं
2: जी,
3: और
2: जी,
3: मैं
2: जी.
3: सुनना चाहूँगा क्योंकि ये हमारी लाइफ से एसोसिएटेड है.
2: बिल्कुल सर
3: यदि आप सुना पाएं तो बहुत
2: बिल्कुल सर जरूर. और हम यहाँ पर एयरफोर्स डे का ये गाना हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं और डेडिकेट कर रहे हैं सर आपको भी.

0: सर कैसा महसूस कर रहे हैं इस सॉन्ग सुन करके?
1: मुझे लग रहा है कि ये भारतीय वायु सैनिकों को
0: जी
1: उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी कर्तव्य निष्ठा और उनका जो कमिटमेंट है भारत के प्रति,
0: जी
1: उसकी याद दिलाता है, उसको सेलिब्रेट करता है और बताता है कि कैसे भारतीय वायु सैनिक किसी भी स्थिति के लिए भारत के साथ खड़ा है, भारत के नागरिकों के साथ खड़ा है, भारत की सुरक्षा में खड़ा है और इस देश को किसी की नज़र ना लगे उसे बचाने के लिए तैयार खड़ा है। ये
0: बिल्कुल
1: भारतीय वायु सेना की अंदर से आई हुई आवाज़ है जो शायद ये कुछ शब्द कहते हैं। और मैं आपको कहना चाहूँगा,
0: जी
1: अभी आज जो हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ, क्योंकि वो हमारे ही चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं,
0: बिल्कुल सर,
1: एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, उन्होंने कुछ बात कही कि हमारी वायुसेना ड्रोन से लेके हाइपरसोनिक सिस्टम्स के लिए तैयार है,
0: बिल्कुल,
1: ज़मीन से लेके स्पेस तक के लिए तैयार है। उन्होंने जॉइंट प्लानिंग की बात की कि भारतीय वायुसेना हमेशा से ही जॉइंट प्लानिंग के लिए हमेशा तत्पर रही है
0: बिल्कुल
1: और हमने ऑप सिंदूर में दिखाया कैसे जॉइंट प्लानिंग की वजह से हम दुश्मन के हर मंसूबे को धराशायी कर पाए। उन्होंने लीडरशिप की बात की, एक लीडर है जो बहुत ही एडवर्स सिचुएशंस को भी अपने फायदे के लिए, अपने सक्सेस को ट्रांसफॉर्म करता है।
0: जी
1: उन्होंने एक दो बात कही कि देश की सुरक्षा हमारा धर्म है। उन्होंने याद कराया भारतीय वायु सैनिकों को कि ये कभी ना भूलें और उन्होंने नागरिकों को धन्यवाद देते हुए कहा कि नागरिकों का सहयोग हमारी ताकत है। कैसे एक आदमी भारतीय वायुसेना की ताकत है, उन्होंने एक्सप्रेस किया। और एक जो इंपॉर्टेंट इशू उन्होंने कहा, आत्मनिर्भरता, जब वो बात कर रहे

0: थे, एल एच अंकुर,
1: जी
0: ट्रेनर, एल सी एच, इन सब के पीछे मैं कुछ बहुत ही कुछ लोगों की बात बताना चाहूँगा
1: जरूर
0: जिन्होंने भारत को आत्मनिर्भरता के लिए कब से प्रयत्न कर रहे हैं। और आप इनमें एक हैं, डॉक्टर एस आर विल्लूरी, जो अमेरिका में अपना जॉब छोड़ के भारत में, जब इंडिपेंडेंट हुआ भारत में
1: जी
0: आए और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के एजेंसी के
1: जी
0: पहले डायरेक्टर बने, और उन्होंने कई शुरुआत दी अपनी भारत में एयरक्राफ्ट डिज़ाइन को
1: अच्छा
0: शुरुआत में। फिर थे डॉक्टर वी एम घाटगे। आप देखिए 1947 में हम इंडिपेंडेंट हुए
1: जी
0: और 4 साल में उन्होंने भारत का पहला ट्रेनर बनाया, जिसको जिसका नाम था हिंदुस्तान ट्रेनर टू। 4 साल में कोई
1: बिल्कुल
0: गुलाम देश अपना खुद
1: अपना खुद का फाइटर
0: जहाज
1: जेट
0: ट्रेनर बनाए,
1: ट्रेनर बनाए जी
0: और जबकि वो उसके पास कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है,
1: बिल्कुल
0: तो ये बहुत ही हमारे जो हैं भारतीय
1: जो
0: वायुसेना की
1: कंट्रीब्यूशन है
0: स्ट्रेंथ है।
1: जी बिल्कुल
0: ऐसे हमारे एक एयर वाइस मार्शल हरजिंदर सिंह है, जिनकी बातें मैं बाद में बताऊंगा,
1: जी
0: और कुछ एक रुस्तम भी दमानिया है जिनके नाम पे हमारे रुस्तम ड्रोन है। हमारे
1: ओके
0: कुछ टेस्ट पायलट्स हैं जैसे सुरंजन दास, विंग कमांडर अशोक, और बहुत सारे भारतीय वायुसेना के टेस्ट पायलट हैं। और अगर मैं अब के ज़माने की बात करूं तो आपका जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है
1: जी
0: उसके जो जनक मैं कहना चाहूँगा वो है डॉक्टर कोटा हरि नारायण। वो अभी जीवित हैं और इतनी उम्र में अभी भी उतने ही जोश से भारतीय भारत की सेवा में लगे हुए हैं।
1: बहुत खूब सर
0: तो बहुत हमारे
1: जी
0: भारतीय वायुसेना को सक्षम बनाने के लिए जो वीर हैं,
1: जी
0: जो
1: जिन्होंने अपना
0: भारत ने
1: कंट्रीब्यूशन दिया
0: कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है,
1: जी
0: शायद वो भी एक ऐसे हैं जिनको हमें इस दिन याद रखना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर टेक्नोलॉजी का है
1: बिल्कुल
0: और फ्यूचर आत्मनिर्भरता का है, फ्यूचर अपने प्रोजेक्ट्स को वर्ल्ड लेवल की टेक्नोलॉजी पर ले जाने का है, तो हमारे
1: बिल्कुल
0: साइंटिस्ट का है, हमारे इंजीनियर्स का है, हमारे इनोवेटर्स का है, हमारे स्टार्टअप्स का है, हमारे एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का है,
1: जी
0: और हमारी भारतीय इंडस्ट्री का है जो भारत में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट करे और वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी बनाए, कि हम सिर्फ अपने देश की रक्षा ना कर पाएं बल्कि एक्सपोर्ट कर पाएं, हमारी इकोनॉमी को अच्छा बना पाएं और भारत को एक विकसित राष्ट्र बना पाएं।
1: सर जैसे आपने बताया, एक तो इंडियन एयरफोर्स ने जिस तरीके से एक आत्मनिर्भर भारत में इतना ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन दिया है, जैसे आपने बताया कि हमारी प्रीवियसली जब से देश आज़ाद हुआ उसके बाद से कितने लोगों ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिए सर, और क्या पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको आप मेंशन करना चाहेंगे, और इंडियन एयरफोर्स का उस आत्मनिर्भर भारत में भी जो योगदान रहा वो भी बताइए।
0: देखिए, भारतीय वायुसेना ने अगर आप देखें जो पहला जो एक दो टू सीट एयरक्राफ्ट बनाया था वो था 1958 में, जिसको कानपुर 1 कहते हैं।
1: अच्छा
0: ये एचएल ने नहीं बनाया था,
1: ठीक है
0: ये भारतीय वायुसेना के इंजीनियर्स ने कानपुर में बनाया, इसलिए इसका नाम कानपुर 1 बना।
1: ओके
0: फिर इन्होंने 4 सीटर बनाया जिसका नाम था कानपुर 2। हालांकि ये लॉन्ग डिस्टेंस नहीं चला,
1: जी
0: लेकिन भारतीय वायुसेना के इंजीनियर्स बहुत कैपेबल थे।
1: जी बिल्कुल बना पाए वो
0: हाँ, और मैं एक और बताना चाहूँगा कि एक एवरो जहाज था जिसकी हमने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी लिया 1959-1960 के बाद,
1: ओके
0: और उस वक्त जो था हमने पूरी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी बनाई और 2 साल में उसको हमने पहला जहाज भारत में बनाया। ये जो इनिशिएटिव था,
1: जी
0: ये एयर वाइस मार्शल हरजिंदर सिंह जो उस वक्त इंचार्ज थे मेंटेनेंस कमांड के, उन्होंने एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग डिपो बनाया कानपुर में, जो उस वक्त के भारतीय वायुसेना चीफ सुब्रतो मुखर्जी, उन्होंने इनॉग्रेट किया। और फिर हमने वो जो बाद में जो फाइटर बनाने के काम आया
1: जी
0: और एयरक्राफ्ट हमने बनाए। तो भारतीय वायुसेना ने आपकी आत्मनिर्भरता में बहुत अच्छा रोल प्ले किया। और अगर मैं रीसेंट इनिशिएटिव्स देखूं
1: जी
0: तो 8 अक्टूबर 2018 को भारतीय वायुसेना ने एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम था मेहर बाबा यूएस स्वॉर्म कॉम्पिटिशन। यूएस इज अनमैन्ड एरियल सिस्टम, या जिसको आजकल हम
1: जी
0: ड्रोन भी
1: ड्रोन
0: कहते
1: कहते हैं
0: हैं,
1: जी जी जी
0: स्वॉर्म की तरह कैसे हम अपनी देश की ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट या डिजास्टर रिलीफ प्रोवाइड कर पाएं या अपने देश की सुरक्षा में उसको इस्तेमाल कर पाएं, ये जो कैपेबिलिटी है भारतीय वायुसेना ने अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया। तो भारतीय वायुसेना बहुत कुछ करती आई है।
1: बिल्कुल।

0: और फ्यूचर में हमें बहुत स्कोप है आगे करने का, मतलब
1: और सर ये भी जैसे आपने बताया कि हमारा जो आजाद भारत का पहला जहाज, जैसे कि आपने बताया
0: HT2
1: बताया जी
0: 1991 में,
1: 1991
0: में
1: में बनाया,
0: चार
1: मतलब
0: साल
1: हमारा
0: बाद,
1: 4 साल बाद
0: जी
1: 1951 में जी
0: 1951 में, सॉरी
1: जी
0: 1951,
1: जी
0: 1947 में इंडिपेंडेंट हुए, और
1: जी
0: चार
1: और
0: साल
1: चार साल
0: में
1: के अंदर अंदर
0: हमने
1: हमने
0: एक टू
1: अपना पहला
0: सीटर
1: जहाज बना
0: ट्रेनर
1: लिया,
0: बना लिया,
1: ट्रेनर बना
0: और ये
1: लिया।
0: बहुत सालों तक हम भारतीय वायुसेना की सेवा में रहा। मैंने
1: बिल्कुल,
0: इसको उड़ते हुए देखा 1990 के करीब,
1: तब तक उड़ता
0: तब
1: था
0: तक
1: ये,
0: उड़ रहा था हूँ,
1: बहुत बड़ी बात है,
0: 1950, इतने साल इसने
1: इतने
0: भारत
1: साल
0: की
1: भी
0: सेवा की।
1: सेवा की। और
0: तो बहुत हमारे केपेबल्स है, हमारे
1: जी जी
0: इंजीनियर्स रहे
1: सर,
0: हैं।
1: यही इसके साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगा सर, जो एयरफोर्स का पहला जहाज वो कब बना?
0: एयरफोर्स का बना जो जो भारतीय वायुसेना ने डिजाइन किया था वो था
1: जी
0: कानपुर वन, जैसे मैंने बोला
1: ठीक है
0: 1958 में।
1: जी
0: और हालांकि बाद में हमारा रोल उस तरीके से नहीं था,
1: जी
0: लेकिन एयरफोर्स एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूटर था जब हम इंडिपेंडेंट हुए। टेक्नोलॉजी में, एविएशन टेक्नोलॉजी में हमने बहुत सारे जो ब्रिटेन और या अमेरिका के पुराने जहाज थे
1: जी
0: उनको कबाड़ खाने से ला के उसको ऑपरेशनल बनाया।
1: ओके
0: और उस वक्त जो था, क्योंकि हमारे इंजीनियर्स जो थे फ्रंट एंड पे नहीं थे, हमारे इंजीनियर्स एक मेंटेनेंस और उन कामों में
1: अच्छा
0: थे, तो उस समय में एयरक्राफ्ट को साल्वेज यार्ड से निकाल के उसको फ्लाइंग ऑपरेशनल बनाना,
1: जी
0: ये एक बहुत बड़ा रोल है।
1: बिल्कुल,
0: इनफैक्ट
1: बहुत बड़ा
0: अगर
1: काम था ये
0: अगर आप हरजिंदर सिंह जी की स्टोरी सुने
1: जी
0: तो वो इंजीनियर थे, उन्होंने 33 वर्ष की उम्र में पायलट की ट्रेनिंग ली और पायलट लाइसेंस लिया
1: अच्छा,
0: उस वक्त। तो वो डिजाइन भी करते थे और उसको
1: पायलट
0: उड़ाते भी
1: उड़ाते
0: थे,
1: भी थे।
0: मतलब नॉट हार्ड टेस्टिंग जहाज, लेकिन वो पायलट थी, तो उन्हें डिजाइन और मेंटेनेंस की अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। ऐसे ही अगर आप रुस्तम भी दमानिया का समय पढ़ें, जो एक नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी में इंजीनियर थे,
1: जी
0: साइंटिस्ट थे, वो भी पायलट थे, वो अमेरिका में पायलट की ट्रेनिंग लेके आए और भारत में आके जब जहाज उड़ते थे तो वो डिज़ाइन के साथ साथ अपने इंजीनियर्स को बताते थे कि ये जहाज़ कैसे डिज़ाइन होना चाहिए, कैसे भारतीय पायलट्स की आवश्यकता है। तो हमारे बहुत एक रिच हिस्ट्री रही है,
1: बिल्कुल,
0: सिर्फ वॉर फाइटिंग में नहीं बल्कि अपने देश को सशक्त बनाने
1: सशक्त
0: में,
1: बनाने में,
0: एरोनॉटिक्स
1: बिल्कुल,
0: केपेबिलिटी बनाने में,
1: और वो मेड इन इंडिया,
0: मेड इन
1: अपने ही
0: इंडिया,
1: लोगों ने बनाया
0: मेरे
1: वो,
0: मेड इन इंडिया में। अगर आप
1: बिल्कुल
0: सुरंजन दास की बात करें तो जब हम अपना फर्स्ट फाइटर एयर का बना रहे थे
1: जी
0: तो वो एक जर्मन साइंटिस्ट थे, तो जर्मन साइंटिस्ट बीच में चले गए
1: अच्छा
0: तो सुरंजन दास ने उनका काम टेक ओवर किया। तो टेस्ट पायलट होते हुए उन्होंने डिजाइन को अपने देश के एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए
1: अच्छा
0: उसको अगले लेवल पर ले जाने की प्रयत्न किया।
1: सर, जिस तरीके से आपसे हम बात कर रहे हैं, इतनी सारी जानकारी हमें मिल रही है, और जैसे आपने बताया कि पहला एयरक्राफ्ट हमारा कब बन गया था, ये हमारे लिए बड़ी ही फख्र की बात है, गर्व की बात है, और ये नॉलेज में हमारी एक तरह से बढ़ोतरी हो रही है। सर यहाँ पर मैं आगे बढ़ते बढ़ते आपसे बहुत सारे सवाल करने हैं और आपसे बहुत सारी बातें करूँ, लेकिन इससे पहले कुछ मैसेजेस जो आ चुके हैं मैं उनको ज़रूर आपको सुनाना चाहूँगा। हितेंद्र दास का असम से है मैसेज, गुड आफ्टरनून कह रहे हैं सर आपको, और उसके बाद ये मैसेज है शाही सर जी और ग्रुप कैप्टन राजीव सर, आपको मेरा सलाम, आज रेडियो पर आपका इंटरव्यू सुन रहे हैं, बहुत गर्व हो रहा है, आज आप हो तभी हम चैन से रह सकते हैं, जय हिंद जय भारत। ये हैं सर चंपावत टनकपुर उत्तराखंड ग्राम गेंडाखाली नंबर 1 अनिल कुमार का सर ये मैसेज आपके लिए।
0: देखिए, हम हमारे चीफ ने बोला है कि नागरिकों का सहयोग
1: जी
0: हमारी ताकत है, तो आप
1: बिल्कुल
0: हमारी
1: सर,
0: ताकत हैं, हमारे जो अभी करंट जनरेशन के योद्धा हैं, वायु योद्धा हैं, तो आप उनकी ताकत हैं, आप ऐसे ही
1: बिल्कुल
0: उनका सहयोग देते रहें, अश्योर्ड रहिए कि वो आपकी वायु की पूरी सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे और
1: बिल्कुल
0: हमें भी उन पर गर्व है।
1: बिल्कुल। और यह है सर यशवंत आठमुठे धाराशिव महाराष्ट्र से, नमस्कार जय हिंद सर जय भारत कह रहे हैं आपसे, और ये मैसेज है मंसूर अली खान, आप सबको नमस्कार, वायुसेना को सलाम कर रहे हैं ये सर, और ये एक बहुत बड़ी कविता लिखकर भेजी है, ये बहुत बड़ी कविता है यश शिंदे की मुंबई से, और मुझे लगता है कि परिंदों से कह दो कि हम अपनी उड़ान और ऊंची कर लें क्योंकि आसमान में अब बाजों का पहरा है, ये भारतीय वायुसेना के जाबाज सिपाही हैं, इनका हौसला समंदर से भी गहरा है, जिनकी हुकूमत से कांपता नीले अंबर का सीना है, देश के उन रखवालों का शान से ही तो जीना है, जिन्होंने सीखा सिर्फ वतन के लिए मरना और जीना है, नीले गगन की ओट में रहकर जो फर्ज निभाते हैं वो तूफानों के रुख को भी मोड़ कर आते हैं, भारतीय वायुसेना के उन वीर सपूतों को सलाम जो आसमान में भारत का मान बढ़ाते हैं, वायुसेना के शेरों को शत शत नमन हमारा वायुसेना दिवस पर।

0: हार्दिक शुभकामना एवं बधाई सर आपके लिए, ये यश शिंदे मुंबई से मैसेज कर रहे हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और सर ये आई एम प्राउड ऑफ ऑल यू सर, लव लाइफ IAF, जय हिंद। दीपांशु भटिंडा से, एयर फोर्स इज द बेस्टेस्ट इन द यूनिवर्स, जय हिंद। दीपांशु का सर ये मैसेज है। और ये मैसेज है रजनीकांत रघुनाथ पाटिल, महाराष्ट्र डहाणु वार्ड वन से, जय हिंद सर जी, आपको ये कह रहे हैं। और ये है सर, जय हिंद टू टुडेज रिस्पेक्टेड गेस्ट सर एंड गुड आफ्टरनून आरजे सर, थैंक यू, माय हार्डेस्ट लव एंड रिस्पेक्ट टू ऑल आवर बिलेवेड इंडियन आर्मी फॉर दी सेल्फ सर्विस एंड इंडियन एयरफोर्स टूवर्ड्स द नेशन, आई बो माय हैट टू देम, माय सेल्फ शंकर लोथ फ्रॉम ककरोला द्वारका सेक्टर 15 सर दिल्ली से ये कर रहे हैं मैसेज, भारत माता की जय, जय वंदे मातरम। और ये सारे मैसेजेस लगातार हमारे पास सर आ रहे हैं, हम बीच बीच में कोशिश करेंगे इनको लेने की। लेकिन सर मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, आपने अपने करियर के दौरान बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे होंगे, क्योंकि आपका काम ही ऊंचाई पर जाना और फिर नीचे आना, तो उन उतार चढ़ाव में कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको आज भी याद तो आता हो लेकिन आपको डराता भी हो, आप सिहर भी जाते हो, कुछ ऐसा?
1: नहीं देखिए, मेरे एक सीनियर कहते थे कि डर लगता है। मैंने कहा यस सर, कहते फिर तुम जियोगे।
0: अरे वाह,
1: डरना चाहिए लेकिन उस डर को ओवरकम करना भी आना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: अगर आप डर को नहीं ओवरकम कर पाते तो हम उड़ नहीं पाते।
0: अगर हम, डर भी जरूरी है।
1: हाँ, क्योंकि वो सैनिटी रखता है आपको सोचने की, ठीक दिशा, ठीक डिसीजन लेने की एक ज्ञान देता है आपको, बार बार याद कराता है कि किसी भी चीज को ग्रांटेड नहीं लेना।
0: Exactly.
1: तो मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस थी, हम जहां पर ऐसी सिचुएशंस में थे कि लगता नहीं था कि निकल पाएंगे
0: जी।
1: लेकिन उस वक्त अपने माइंड को कूल रखना और ठीक डिसीजन लेना, अपनी टीम, देखिए भारतीय वायुसेना में मैं हेलीकॉप्टर पायलट हूँ, दो पायलट होते थे, हमारे टेक्नीशियंस होते थे, तो एक टीम थी हमारा। मैं तो कहता हूँ जो हमारा NC जो सुबह खाना लाता था या पानी लाता था वो भी हमारी टीम का मेंबर
0: है। बिल्कुल।
1: और हमारी वाइफ जो सुबह पता नहीं 4 बजे बेचारे उठती थी या कब उठती थी, हमारे पूरे जो वायुसेना की टीम थी उनकी फैमिली, उनके जो कमिटमेंट, उनके जो सेक्रीफाइस हैं, तो बहुत सारी सिचुएशंस होती थी। हमारा दिल करता था कई बार कि हम घर जाएं लेकिन नहीं जा पाते थे। तो मुझे लगता है ये एक नहीं, बहुत सारी परेशानियां थी लेकिन वो अपनी देश की ड्यूटी से बड़ी नहीं थी।
0: बेशक सर, यही डेडिकेशन जो हम देखते हैं अपने आर्म्ड फोर्सेस के, हमारे सोल्जर्स में, हमारे सिपाही, हमारे सैनिकों में, वो जज्बा, वो देशभक्ति से, मतलब देशवासियों को भी पूरा देशभक्ति से भर देता है वो। सर एक इंसिडेंट आपका
1: जी,
0: मैं आपसे उस पर पूछना चाहूंगा। अगस्त 1998
1: जी,
0: 18,000 फीट की ऊंचाई पर आप फ्लाई कर रहे हैं
1: जी।
0: सर ऐसा क्या हुआ कि उस दिन जिंदगी बदल गई और आज आप हमारे सामने बैठे हैं
1: जी? वो एक ऐसा दिन था जिसमें बहुत अच्छा सा मौसम था
0: जी,
1: और हम नॉर्मल, देखिए मैं नॉर्थ सेक्टर में था
0: जी,
1: ग्लेशियर मतलब ले सेक्टर में अगर आप बोलिए, और हम जो है सब सेक्टर नॉर्थ में दौलत बेग ओल्डी में गए थे।
0: अच्छा,
1: वहाँ पर हमने अपना जो भी अपना ऑपरेशन था किया
0: जी,
1: वापस आ रहे थे और मेरे साथ मेरे को पायलट थे फ्लाइंग ऑफिसर नितिन वेल्डे, हम दोनों फ्लाइंग करके अपना ऑपरेशन करके वापस आ रहे थे, हमारे साथ एक पैसेंजर भी थे। और जब हम वापस आ रहे थे तो एक प्लेस है सासेरला, सासेरला मतलब पास कहते हैं, तो उसको हम जैसे ही क्रॉस किया तो हमारे इंजन फेलियर हो गया। और देखिए हेलीकॉप्टर में जब इंजन फेल होता है तो ये ग्लाइड नहीं करता, नीचे जाता बहुत तेजी से।
0: ओके,
1: तो जब बहुत तेजी से नीचे जाता है तो मैं कहूँगा ये मेरे को पायलट की सूझबूझ थी कि मैं जहाज उड़ा रहा था और वो देख के मुझे बता रहा था कि किस तरफ जाना है।
0: अच्छा,
1: और देखिए
0: आपका उनका कोऑर्डिनेशन था,
1: कोऑर्डिनेशन था। और देखिए हम जो पायलट हैं हमें इंजन की आवाज की आदत है, उस दिन साइलेंस थी।
0: अच्छा,
1: तो वो बहुत डेडली साइलेंस थी, शायद दिमाग में बहुत सारी चीजें घूमी होंगी जो मैं अभी याद नहीं कर पाता हूँ, बट उस वक्त मुझे याद था कि काफी कुछ दिमाग से निकला था। कुछ सेकेंड्स का ये जर्नी थी, हमारा जहाज बहुत तेजी से जमीन की तरफ जा रहा था, 18,000 से करीब, जब मैं, मुझे लगा कि मैं जमीन पे जो नीचे जो 11,000 फुट पे थी
0: जी,
1: वहां नहीं पहुंच पाऊंगा, तो मैंने कोपायलट से बताया कि लैंडिंग की जगह बताओ, तो अच्छा। उन्होंने मुझे बोला दाहिनी तरफ को एक जगह थी, मैं जिस तरफ जा रहा था, तो उन्होंने जैसे ही बोला मैंने उस तरफ देखा, एक ही पॉइंट था, बाग

0: आगे पहाड़ था,
1: अच्छा
0: तो हमने फ्लेयर किया। और हेलीकॉप्टर में क्या होता है, आपके पास एक ही चांस होता है जब आप फ्लेयर करते हो, आप
1: जी
0: जहाज में पीछे करते हो, नीचे से जो हवा आ रही होती है,
1: जी
0: जैसे ही आप डिस्क को टिल्ट करते हो
1: जी
0: तो आपके पास एक ही मौका होता है, या तो आप बच गए या नहीं बचे,
1: अच्छा, दूसरा कोई चांस
0: दूसरा
1: नहीं।
0: वो चांस नहीं। तो वो जो था, आई थिंक बेस्ट ऑटो रोटेशन लैंडिंग मैंने अपनी लाइफ की थी, जिसने बचाया। मेरे जो टीचर्स थे, मेरे जो
1: जी
0: इंस्ट्रक्टर थे,
1: जी
0: जिन्होंने हमें डांट डांट के प्रिसीजन सिखाया, वो इंजन आरपीएम मेंटेन करना सिखाया और फोकस करना सिखाया, और जो ले में जो मेरे जूनियर और मेरे पीयर्स और सीनियर्स थे, उन्होंने बताया कि कैसे आपको
1: इस सिचुएशन
0: आरपीएम
1: में
0: में हैंडल करना है। तो
1: जी
0: मुझे लगता है वो पूरी ज्ञान जो था, वो एक सेकंड में जो हुआ,
1: एक सेकंड में
0: उसने हमारी लाइफ को बचा दिया। आज मेरी जो है ये
1: जी
0: दूसरी लाइफ है, मेरा जो को पायलट है,
1: जी
0: मेरे जो बाकी मित्र हैं जिन्होंने हमें रिकवर किया, हम
1: जी
0: दो जहाज थे, दूसरे जहाज ने आके हमें रिकवर किया।
1: अच्छा
0: तो मुझे लगता है वो प्रोफेशनलिज्म, मेरे सीनियर्स, मेरे पीयर्स, मेरे बाकी सारे
1: कोलिग्स आपके
0: वायुसेना
1: जी
0: के जो थे, उसका एक निचोड़ था। और शायद जो अच्छी काम था, या भगवान की मर्जी थी कि मुझे एक सेकंड लाइफ मिलनी है,
1: बिल्कुल
0: अभी जमीन के से बहुत दूर होते हुए भी पहाड़ के बीच में
1: जी
0: 14,200 फीट, 200 फीट पे जहाज को रिकवर किया, और जहाज टूट गया, लेकिन हम में से किसी को चोट भी नहीं आई। हम तीनों
1: वो क्रैश हो
0: निकले,
1: गया।
0: क्रैश होके टूट गया,
1: ओह
0: फिर हम तीनों बाहर निकले, हमें दूसरे जहाज ने रिकवर किया। तो शायद आई थिंक हमारी जो वायुसेना का प्रोफेशनलिज्म है, कि कैसे आप सिचुएशन को डील करते हो, उसको
1: जी
0: कोई भी सीरियस, मतलब हम बहुत सीरियसली लेते हैं।
1: बिल्कुल
0: और मेरे जो इंस्ट्रक्टर्स ने जिस तरीके से सिखाया, जितनी प्रैक्टिस कराई, एक एवरेज बंदे को भी एक हाईली प्रोफेशनल बना देते हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय वायुसेना की मैं जितनी तारीफ करूं, कि
1: बिल्कुल
0: एक
1: सर
0: आम लड़के को उसको एक प्रोफेशनल पायलट बनाया। और फिर ये जो है, मैं 1998 की बात है,
1: जी
0: उसके बाद 2012-13 तक मैं, 2008-9-7-8 तक रेगुलर फ्लाइंग की।
1: अच्छा
0: तो उतनी देर उसके बावजूद चलते रहना, उसके बाद कितने
1: बिल्कुल
0: लोगों ने जो सिखाया होगा,
1: बिल्कुल
0: और लगभग मैंने 4,700 घंटे उड़ाए। तो मुझे लगता है कि भारतीय वायुसेना के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा।
1: बिल्कुल सर। तो ये अपने आप में बहुत ही यादगार और बहुत ही कमाल की बात है कि जो आपने इंसिडेंट बताया कि वो सर्वाइवल जो था वो लाइफ चेंजिंग रहा। तो इसलिए सर हम आपकी इस बात के लिए तारीफ करते हैं कि आप उस मौके पर किस तरीके से आपने उसको हैंडल किया, उस सिचुएशन को आपने संभाला और सारे लोग बच गए और आज आप साक्षात हमारे साथ हैं और हम इस पर बात कर रहे हैं। तो हम ये कहें कि ये फ्लाइंग जो है वो अपने आप में बहुत ही एक्साइटिंग भी है लेकिन बहुत खतरनाक भी है। तो वो जो सर है ना कि हीर आसमानी, तो जब आसमान में उड़ते हैं तो फिर बस कुछ नजर नहीं आता, हम आसमान में होते हैं।
0: मेरे ख्याल खतरनाक तो नहीं कहूंगा, मुझे लगता है कि अगर आप, जब प्रोफेशनलिज्म आता है तो खतरनाक नहीं होता,
1: जी
0: आप उसको कैसे सिक्योर बनाते हैं, ये
1: बिल्कुल, और साथ में एंजॉय भी करते हैं,
0: एंजॉय तो करना, आई थिंक प्रोफेशनलिज्म में आप पूरा फोकस्ड होते हैं।
1: फोकस्ड होते हैं। हमारे साथ हैं ग्रुप कैप्टन डॉक्टर आर के नारंग। आप सुन रहे हैं आज का एयरफोर्स डे स्पेशल। मेरे साथ, मेरा नाम है शाहिद और ये है 102.6 एफएम नंबर 1 रेडियो, आपका अपना रेनबो, दिल से दिल तक।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो, आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं शाहिद के साथ। आज है एयरफोर्स डे और आज के हमारे खास मेहमान एयरफोर्स डे पर ग्रुप कैप्टन डॉक्टर राजीव कुमार नारंग। सर, हम अगर बात करें ड्रोन टेक्नोलॉजी की, ड्रोन्स जो है आजकल जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसका बड़ा ही इंटेग्रल पार्ट बन चुका है, तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? भारत कहाँ है? हम अपने ड्रोन्स भी डेवलप कर रहे हैं आजकल, हम टेक में भी काफ़ी आगे जा चुके हैं, आप किस तरह से उसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे?
1: देखिए, ड्रोन्स भारत नहीं पूरे विश्व में
0: जी
1: वॉर फाइटिंग को भी बदल रहा है और आम नागरिक के लिए भी बहुत बड़ा चेंज ला रहा है।
0: जी,
1: भारतीय प्रधानमंत्री ने बोला है कि भारत को हम एक ग्लोबल ड्रोन हब देखना चाहते हैं 2030 में। और मिलिट्री में अगर आप देखें, जितनी भी वॉर्स हुई हैं, आर्मेनिया अज़रबैजान वॉर हुई, अगर आर्मेनिया ने तैयारी नहीं की तो वो वॉर फटाफट लूज कर गया, तो इग्नोर नहीं कर सकते। हालांकि ड्रोन अभी मैन्ड एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने की सिचुएशन में नहीं है,
0: लेकिन सर जिस तरीके से हम देख रहे हैं आजकल, तो ड्रोन से ही सब अब तो
1: ड्रोन एक सिग्निफिकेंट पार्ट बनने जा रहा है। और इसमें जो है भारतीय जो स्टार्टअप्स हैं, इनोवेटर्स हैं, और इवन पब्लिक सेक्टर एंटिटीज जैसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट जो है मिलिट्री ड्रोन्स बना रही हैं, नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरी बैंगलोर है वो बना रहे हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है जिसका एक कॉम्बैट एरियल टीमिंग सिस्टम प्रोग्राम है, घातक प्रोग्राम है हमारा जो है, आर्चर प्रोग्राम है
0: जी।
1: और जो स्टार्टअप्स जो हैं वो जो हैं हमारे एग्रीकल्चर के लिए बना रहे हैं।
0: हाँ, बिल्कुल।
1: एक स्वामित्व स्कीम है, ड्रोन दीदी स्कीम है, तो भारत में काफी इनिशिएटिव्स हो रहे हैं। लेकिन यहां मैं कॉशन देना चाहूंगा, अगर आप यूक्रेन वॉर में देखें जो क्रिटिकल ड्रोन इंपोर्टेड कंपोनेंट थे उसकी वजह से हंड्रेड्स ऑफ यूक्रेनियन की डेथ हो गई, वो चाइनीज डीजीआई ड्रोन यूज कर रहे थे और उनके वाइस प्रीमियर ने पब्लिक में जाके एक्स पे वो उस पोस्ट को डाला। सिमिलरली अगर आप देखें पेजर और वॉकी टॉकी में जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं वो 3,000 हिजबुल्ला लड़ाके इंजर्ड हुए उसकी वजह से और 40 से 50 मारे गए। क्यों? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो थे वल्नरेबल थे। तो मुझे लगता है ड्रोन और काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी जब हम आत्मनिर्भरता जो कर रहे हैं तो हमें याद रखना पड़ेगा कि क्रिटिकल कंपोनेंट इंडिया में बने और हमारे जो इंडिजिनस प्रोग्राम है जैसे घातक है, आर्चर एनजी है, या आर्चर एनजी जो है मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, हमारी डीआरडीओ के लेबोरेटरी एडीई बना रही है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स बना रही है कैट्स प्रोग्राम जिसे कॉम्बैट एरियल टीमिंग सिस्टम बना रही है, हमारे स्टार्टअप बना रहे हैं लॉयटरिंग ड्रोन बना रहे हैं, एक हमारी प्राइवेट कंपनी है जो स्वॉर्म ड्रोन बना रही है। तो भारत में इनोवेशन है, हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि क्रिटिकल कंपोनेंट वल्नरेबल ना हो, इंपोर्टेड इतने ना हो कि भारत की वल्नरेबिलिटी बन जाए,
0: हम सेफ सिक्योर भी रहें, प्लस ये कि हमारी टेक्नोलॉजी
1: हम आत्मनिर्भर बने,
0: हमारे मेड इन इंडिया हो सारे वो जो कंपोनेंट्स हमको इंपोर्ट करने पड़ते हैं वो हम खुद बनाए ताकि हम हर तरह से टेक्निकली भी एडवांसमेंट पर जाएं, प्लस सेफ और सिक्योर
1: भी। और हमारा जो है ना

0: जो जिसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी,
1: जी
0: जो कोर डिजाइन है वो
1: कोर
0: हमारा
1: डिजाइन हमारा
0: हो,
1: अपना हो
0: हमारे जो वल्नरेबिलिटीज जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो है जिसकी
1: जी
0: वजह से ये अटैक हुए वो सब भारतीय बने, धीरे धीरे एक सिस्टमेटिक अप्रोच से करें, तो मुझे लगता है भारत में बहुत पोटेंशियल है। मैं बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहना चाहूंगा कि भारतीय स्टार्टअप्स, हमारी प्राइवेट कंपनी, इवन हमारी पब्लिक सेक्टर कंपनी में
1: जी
0: बहुत प्रॉमिस है। हमें प्राइवेट वर्सेस पब्लिक नहीं करना, प्राइवेट वर्सेस यू नो लार्ज कंपनी वर्सेस स्टार्टअप नहीं करना, हम
1: बिल्कुल
0: सबको एक बनना है, एक मुट्ठी बनना है, पांच उंगलियां एक
1: मिल
0: एक
1: करके
0: उंगलियां से
1: मुट्ठी
0: ज्यादा स्ट्रांग बनेंगी।
1: जी
0: और अगर हमने स्टार्टअप्स, एकेडमियां, पब्लिक सेक्टर, डीआरडीओ,
1: जी
0: प्राइवेट इंडस्ट्री, स्टार्टअप, एमएसएमई, ये सब इकट्ठे आ गए तो हम भारत को एक विश्व पटल पर ड्रोन
1: बिल्कुल
0: टेक्नोलॉजी पर स्थापित कर पाएंगे।
1: बिल्कुल सर, आपने एक किताब भी लिखी है, इंडियाज क्वेस्ट फॉर यूएवीज एंड चैलेंजेस, तो वो इसी पर ही फोकस्ड है वो, कि
0: जी
1: यूएवीज जो हैं और ये ड्रोन जो हैं उनकी टेक्नोलॉजी को, और उस पर किस तरीके की सर इसमें जो कंटेंट जो किताब आपने लिखी।
0: देखिए, ये किताब 2014 में मैं सेंटर फॉर एपीआर स्टडीज में गया था।
1: अच्छा
0: जब मैं वहाँ रिसर्च करने गया तो मुझे मुझे गाइड किया गया,
1: जी
0: हमारे वहाँ डायरेक्टर जनरल लय मार्शल पटनी और बाकी जो टीम में बोला गया कि मुझे ड्रोन्स पे रिसर्च करनी
1: जी आपने ऑलरेडी
0: है।
1: एविएशन ड्रोन्स काउंटर ड्रोन सिस्टम सब पर रिसर्च की है आपने।
0: जी,
1: जी
0: तो मुझे लगता है कि ये भारतीय वायुसेना ने और हमारे जो सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज, जिसको
1: ओके
0: आजकल सेंटर फॉर एरोस्पेस पावर
1: जी
0: एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज कहते हैं, कैप्स, वहाँ पर मेरे जो लीडर्स थे और जो मेरे सीनियर्स थे और मेरे जो
1: जी
0: कलीग्स थे, उनमें
1: जी
0: मेरे ग्रुप कैप्टन विवेक कपूर हैं, हमारे एयर मार्शल नौहार हैं, एयर मार्शल पटनी हैं, एवीएम बहुत सारे मेरे जो सीनियर्स
1: जी
0: हैं जिन्होंने मुझे गाइड किया। और मैं उसमें, मुझे याद है कई स्कॉलर्स होते थे जो
1: अच्छा
0: नॉर्मल पीएचडी या एमएससी कर रहे थे और कैप्स में रिसर्च
1: अच्छा
0: कर रहे होते थे, वो
1: जी
0: हमें
1: जी
0: गाइड करते थे
1: ओके
0: कि
1: जी
0: रिसर्च कैसे की जाती है।
1: आप खुद भी सर एक हेलीकॉप्टर पायलट इंडियन एयरफोर्स के, और फिर रिसर्च में आप आए, तो ये भी बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन था।
0: जी, मेरे मुझे इसमें मैं कहना चाहूँगा, ग्रुप कैप्टन विवेक कपूर ने मुझे
1: जी
0: नज किया कि भाई आप पीएचडी कीजिए,
1: ओके
0: तो ये मुझे लगता है कि वो मेरे मेंटर और गाइड रहे। उन्होंने जैसे उन्होंने सिखाया, जैसे
1: जी
0: उन्होंने गाइड किया, अभी भी मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ।
1: जी
0: फिर मैंने जेएनयू में से जब पीएचडी की तो मेरे जो प्रोफेसर थे मैं
1: जी
0: उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरे जो कोलीग्स थे जिन्होंने मेरे साथ पीएचडी की, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, कैप्स में बहुत कुछ सीखा। और अब जो है मैं आईडीएसएम में हूँ, एमपी आईडीएसएम, मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ
1: जी
0: डिफेंस
1: जी
0: स्टडीज एंड एनालिसिस, वहाँ के डायरेक्टर जनरल हैं, एम्बेसडर चुनाव है, और बहुत सारे मेरे जो सीनियर्स और फ्रेंड कलीग्स हैं।
1: जी
0: मुझे लगता है मेरे लिए एक बहुत ही सीखने का समय है, और मुझे लगता है कि ये ज्ञान जो है भारत के फ्यूचर, भारत को एरोस्पेस पावर बनाने के लिए, भारत
1: बिल्कुल
0: को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, भारत को एक सशक्त और विकसित भारत बनाने के कंट्रीब्यूट करे, तब मैं सोचूंगा कि मैंने अपना एक कुछ कंट्रीब्यूट किया।
1: बिल्कुल सर, इसी बात पर मैं भी ये भी जानना चाहूंगा अभी कि अभी जिस तरीके से आपने सब चीजें बताई, आत्मनिर्भर भारत और हम मेड इन इंडिया के थ्रू जिस तरीके से हम अपने आप चीजों को बना रहे हैं और अपने आप को कैपेबल बना रहे हैं, सेल्फ रिलायंस बना रहे हैं, तो 2047 में, 2047 में आप क्या मतलब देखना चाहते हैं, किस तरीके से आप एक्सपेक्ट करते हैं, और खास तौर से इसके साथ ये भी कि जो इंडियन एयरफोर्स की एरोस्पेस पावर बनाने के लिए जो एक विजन होना चाहिए वो किस तरीके से आप देखते हैं।
0: देखिए, भारतीय वायुसेना ने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए। उन्होंने अभी एक
1: जी
0: डायरेक्टरेट ऑफ रिमोट बनाया जो एक बहुत ही प्रोग्रेसिव सेट है। मेहर बाबा सॉन्ग कॉम्पिटिशन है, वो भी एक प्रोग्रेसिव सेट है।
1: जी
0: लेकिन एक पार्ट है जो मुझे लगता है भारतीय वायुसेना एक फैसिलिटेटर है, एनेबलर है,
1: ठीक है
0: जिसकी वजह से हम काफ़ी कुछ कर पाए हैं।
1: जी
0: लेकिन मैं चाहता हूँ कि भारतीय वायुसेना पार्टनर बने डिज़ाइन डेवलपमेंट में। देखिए क्या है, हमारी इंडियन नेवी में शिप बिल्डिंग डिज़ाइन ब्यूरो है,
1: जी
0: तो उससे हमारा शिप बिल्डिंग का इम्पोर्ट बहुत कम हो गया है और
1: ठीक है
0: उसका सक्सेस रेट बहुत बढ़ गया है। तो अगर मुझे भारतीय वायुसेना एक एरोस्पेस डिज़ाइन बोर्ड या एरोस्पेस रिसर्च लेबोरेटरी और एरोस्पेस रिसर्च वर्टिकल बनाएगा,
1: जी
0: तो हमारा जो एरोस्पेस प्रोजेक्ट है उसमें सक्सेस रेट बहुत
1: बढ़ जाएगा,
0: बढ़
1: बिल्कुल
0: जाएगा।
1: बिल्कुल
0: और मुझे लगता है कि मैं चाहूँगा भारत जो है आत्मनिर्भर सशक्त एरोस्पेस फोर्स बने, भारतीय वायुसेना जो है
1: जी
0: आत्मनिर्भर सशक्त एरोस्पेस फोर्स बने 2047 तक।
1: जी
0: हम आत्मनिर्भर हो एरो इंजन में, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में, मैंड अनमैंड फाइटर्स में, स्पेस टेक्नोलॉजी में, एंड क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। ये जो पांच वर्टिकल हैं ये भारत को, भारतीय वायुसेना को सशक्त

0: रियली बना सकते हैं, और जो एरोस्पेस डिज़ाइन ब्यूरो है उसकी
1: जी
0: कमियों को सक्सेसफुल होगा। हमारे जितने भी इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स हैं
1: जी
0: हमें उसको कैसे सक्सेसफुल बनाना है उसमें थ्री प्रॉन्ग्ड अप्रोच करें, टेक्निकल रिव्यू कीजिए, रीओरिएंटेट कीजिए, कोर्स करेक्ट कीजिए और उनको सक्सेसफुल बनाइए। ये
1: बिल्कुल
0: मेरा
1: सर,
0: एक विजन है, मेरा सपना है, ताकि मैं अपने फाइटर्स भारत में बने, भारत में
1: बिल्कुल
0: डिज़ाइन किए फाइटर्स, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर और यूएवीज उड़ाऊं और उन्हीं एयर डिफेंस सिस्टम से देश की रक्षा करूं, उन्हें एक्सपोर्ट करूं और भारत को विश्व पटल पर डिफेंस एंड एरोनॉटिक्स का एक सशक्त एक्सपोर्टर बना पाऊं और भारतीय अर्थव्यवस्था में
1: जी
0: एक कंट्रीब्यूट कर पाऊं।
1: कंट्रीब्यूशन भी हो। बिल्कुल सर, मैसेजेस हमारे पास लगातार आ रहे हैं, मैं आपको कुछ मैसेज यहाँ पर पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। ये मैसेज है राजेश भल्ला, एडवोकेट हैं कंकर खेड़ा मेरठ से। ये कहते हैं सर, डर से डरना नहीं है, डर तो सूझबूझ भी देता है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं इनसे मानता हूं कि वही मेरे सीनियर की बात याद आई कि भाई डर से ही
1: जी
0: आपको,
1: जी
0: डर को पॉजिटिवली यूज
1: जी
0: कीजिए,
1: वही डर आपके लिए
0: ये
1: ताकत बनता
0: ताकत
1: है
0: बनता है अगर आप उसको ठीक से इस्तेमाल
1: अगर
0: करें।
1: आप ठीक से इस्तेमाल करें। जी, और ये मैसेज का इन्होंने रिस्पॉन्ड किया है, एयरफोर्स इज द बेस्टेस्ट इन द यूनिवर्स, दीपांशु भटिंडा से। इसके अलावा ये मैसेज है सर, भारतीय वायुसेना दिवस के अवसर पर आप सबको विनम्र अभिवादन। आज के मेहमान कैप्टन सर से बातचीत सुनना अच्छा लग रहा है, मानसी महास्कर अंधेरी मुंबई। और इसके अलावा ये हैं, वायुसेना दिवस की बहुत बहुत बधाई शबनम बी के दत्त कॉलोनी नई दिल्ली से, धन्यवाद। और ये हैं, काफ़ी लंबा मैसेज है, मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ। क्वीन लक्ष्मीबाई मेट हर एंड वायल सेविंग हर झांसी एट सिंध भूमि लाइक अदर्स तांतिया टोपे बट द नेम रॉयल ओनली दोज गेट सीन वंस ड्यूरिंग कनाडा। और आपको सर ये धन्यवाद और नमस्कार कर रहे हैं आज के इस खास दिन पर जो है इंडियन एयरफोर्स डे। और सर, अब समय हमारे पास कम बचता है, हम यहाँ आपसे ये जानना चाहेंगे, आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस है सर, आपने वायु सेना मेडल से भी आपको सम्मानित किया गया था, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं सर, किस उपलक्ष्य में
0: देखिए,
1: और
0: ये
1: आपकी सर्विसेज के लिए।
0: देखिए वायुसेना मेडल प्रोफेशनलिज्म के लिए दिया गया था। शायद
1: जी
0: इसमें जो मेरा एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट हुआ था,
1: जी
0: हम तीनों लाइफ बची हमारी,
1: बिल्कुल
0: और मुझे लगता है कि वो वायुसेना मेडल मुझे नहीं मेरे इंस्ट्रक्टर्स को दे जाना चाहिए,
1: क्या बात है
0: क्योंकि
1: सर।
0: क्योंकि उन्होंने जो सिखाया ना होता,
1: जी
0: क्योंकि कई लोग हैं जो सर्वाइव नहीं किए हैं ऐसे एक्सीडेंट्स में। और देखिए, मैं बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पर उड़ा रहा था, 18,000 फीट पे, जहाँ पर बहुत ही कम जो है डेंसिटी होती है। तो मुझे लगता है जो मेरे सीनियर्स या जो मेरे कलीग्स थे ले में क्या होता है कि अगर आप
1: जी
0: जूनियर पायलट भी हैं, अगर आप कैप्टन हैं,
1: जी
0: तो अगर आपका वो क्वालिफिकेशन है तो आप कैप्टन हैं।
1: ओके
0: तो मैं उस वक्त को पायलट, उस सॉर्टी से पहले को पायलट था, सिर्फ इस
1: अच्छा
0: सॉर्टी के लिए कैप्टन था। तो मेरे जो जूनियर थे लेकिन कैप्टन थे, तो उनसे जो सीखा, मुझे लगता है कि भारतीय वायुसेना की प्रोफेशनलिज्म को मैं देना चाहूँगा और अपने सीनियर्स को देना चाहूँगा।
1: सर, इसी बात पर मैं आगे आपसे पूछूं कि आपका जो करियर रहा इंडियन एयरफोर्स में, तो आपकी लाइफ का क्या एक्सपीरियंस था, किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा?
0: देखिए, वायुसेना एक एक आम स्कूल के बच्चे को एक एक प्रोफेशनल ऑफिसर बनाता है, उसे लीडर बनाता है, उसे रिस्पॉन्सिबल बनाता है,
1: जी
0: उसे अनफोर्सीन सिचुएशंस में डील करना सिखाता है, उन्हें अपने अपने सबॉर्डिनेट्स को देखना चाह सिखाता है, उन्हें अपने फैमिली अपने को पीछे रख के अपने देश
1: जी
0: को
1: जी
0: आगे
1: देश को
0: रखना
1: आगे
0: से
1: रखना ये
0: अपने
1: सिखाता
0: अपने
1: है।
0: सबॉर्डिनेट्स को आगे रखना चाहता है, उसे कैसे वायुसेना को अगला बनाना है वो सोचना सिखाता है, और कैसे अनफोर्सीन सिचुएशंस हो उसको संभालना है। तो
1: जी
0: ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है।
1: बिल्कुल
0: मुझे लगता है कि आज मैं जो बन पाया हूँ, ये भारतीय वायुसेना की वजह से कर बन
1: जी
0: पाया हूँ।
1: जी
0: एक स्कूल से निकला और कॉलेज से निकला हुआ स्टूडेंट जब
1: जी
0: उसमें आता है,
1: जी
0: कोई इंजीनियर बनता है, चाहे कोई पायलट बनता है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर बनता है,
1: जी
0: वो सब
1: सर, जैसे
0: भारत के
1: आपने
0: एक
1: अपने
0: बहुत अच्छे
1: स्टूडेंट्स स्टूडेंट लाइफ का किस तरीके से आपने वो मोटिवेशन, आप यूथ को, आज का जो नेक्स्ट जो हमारा फ्यूचर पायलट होगा और यूथ होगा, उसको कैसे आप क्या कहना चाहेंगे, कोई मैसेज कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे?
0: मैं चाहूँगा कि जो भारतीय वायुसेना में ज्वाइन करना चाहते हैं, ये बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है,
1: जी
0: ये आपको एक रिस्पेक्ट दिलवाता है, आप भारत की एक्चुअली सेवा कर पाते हैं, आप अपने आप को बहुत अच्छा कैपेबल बनाइए, आप हमारे लिए टेक्नोलॉजी बनाइए।

0: आप भारत को कैपेबल बना सकते हैं, मेडिकल के एडमिनिस्ट्रेटिव, इंजीनियर, पायलट, बहुत तरीकों से आप बन
1: बिल्कुल
0: सकते
1: सर,
0: हैं।
1: सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला और इतनी अच्छी, इतनी काम की और इतनी कीमती बातें आपने आज हमसे की। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आने के लिए आज के एयरफोर्स डे स्पेशल पर। आप हमारे आज के खास मेहमान ग्रुप कैप्टन डॉक्टर राजीव कुमार नारंग, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू
0: सब
1: सर।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है फिल्म संगीत। श्रोताओं, आकाश को स्पर्श करने वाली उस दिव्य दीप्ति को, उन अदम्य हौसलों को और भारत माँ के सच्चे रक्षकों को हमारा कोटि कोटि नमन। आप सभी को वायुसेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का ये दिन केवल एक तारीख ही नहीं, बल्कि ये जश्न है उस अभेद्य साहस का जो हमारी सीमाओं को गगन की गहराइयों से सुरक्षित रखता है। जब नीले आसमान की छांव में हमारे वायु योद्धा गरजते हैं, तो पूरी दुनिया भारत के इस गौरव को एकटक देखती रह जाती है। उनके भीतर सिर्फ एक ही धुन बजती है, मातृभूमि की सेवा और उसका सम्मान।

श्रोताओं, ये संगीत हमें याद दिलाता है कि जब हम अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं, तब कोई सरहद पर गगन की छाँव में रात दिन एक किए हुए हैं। लेकिन वायु योद्धाओं की जिंदगी सिर्फ अनुशासन ही नहीं, बल्कि उस असीम उड़ने की जुनून की कहानी भी है। जब वे लड़ाकू विमान के कॉकपिट पर बैठते हैं, तो उनके लिए सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, मिशन सक्सेस।

श्रोताओं, देश पर जब कोई आ जाती है तो हमारे ये जाबाज पायलट अपने सुखचैन को दरकिनार कर केवल एक ही बात याद रखते हैं, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहें।

0: इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
2: 8700001424।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: और अब युवा श्रोता सुनेंगे युववाणी कार्यक्रम।

हेलो गाइस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हाल है आप सबका? अगर आप सभी अभी कॉलेज से वापस आ रहे हैं या ऑफिस से थक चुके हैं, निकल चुके हैं, या फिर अपने रूम में बस रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, तो बस एक काम कीजिए, फ़ोन हाथ में रखिए, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए, क्योंकि अगले कुछ पल हम साथ बिताने वाले हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त उन्नति, और आप सुन रहे हैं युवाणी। दोस्तों, इमेजिन करिए आप किसी नदी किनारे बैठे हैं, शाम का टाइम है, सूरज धीरे धीरे नीचे जा रहा है, हवा चल रही है और सामने एक नदी बह रही है। बस एक चीज़ नोटिस कीजिए, नदी पानी को रोक कर नहीं रखती, वो बहती है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि नदी के पास जो पानी है उसकी कोई वैल्यू नहीं। यही तो आयरनी है, हम जिस चीज़ को फ्री समझते हैं अक्सर उसकी सबसे ज़्यादा वेस्टेज करते हैं। हमारे घर में अगर नल खुला रह जाता है तो हम कहते हैं, अरे यार 2 मिनट ही तो हुआ है, या फिर ब्रश करते हुए जब नल खुला रहता है तो हम कहते हैं कि बस 2 ही मिनट तो है, 2 मिनट की बात है, उसके बाद फिर काम हो जाएगा, या फिर बॉटल में पानी बचा रह जाता है तो हम कहते हैं चलो सिंक में फेंक देते हैं, और फिर वही जब कहीं पानी की शॉर्टेज हो जाती है तो हम ये कहते हैं कि यार पानी कितना इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है तो बचाना भी ज़रूरी है। और यहीं पर आती है हमारी आज की पहली थॉट, हमारे आज के चर्चा का पहला विषय, नदी न संचय नीर। नदी अपने लिए पानी जमा नहीं करती, वो बहती है, देती है, आगे बढ़ती है। नेचर हमें बहुत सिंपल से लेसन देती है, फ्लो रखो लेकिन वेस्ट मत करो, रिसोर्सेज का रिस्पेक्ट करो, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो तुम्हें मिला है उसकी वैल्यू समझो। अब दोस्तों, यही से हम पानी से उड़ान की तरफ जाते हैं, इंटरेस्टिंग कनेक्शन है ना। अभी हम बात कर रहे थे नेचर की, और अब हम बात करेंगे स्काई की, यानी कि आसमान की, उस खुले आकाश की, क्योंकि आज यानी कि 8 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है इंडियन एयरफोर्स डे, एक ऐसा दिन जब हम इंडियन एयरफोर्स की सर्विस, करेज और डेडिकेशन को सैल्यूट करते हैं। लेकिन हमारे लिए एयरफोर्स डे सिर्फ एयरक्राफ्ट्स को देखने का दिन नहीं है, ये सिर्फ फाइटर जेट्स की स्पीड,

या आकाश में फॉर्मेशंस या उस अमेजिंग यूनिफॉर्म की बात नहीं है, इसके पीछे हैं लोग, यंग मेन एंड वेमेन, जिन्होंने एक नॉर्मल लाइफ के बजाय एक ऐसी लाइफ चुनी है जहाँ ड्यूटी पहले आती है। और दोस्तों, 8 अक्टूबर का दिन सिर्फ कैलेंडर की एक डेट नहीं है, ये दिन है इंडियन एयरफोर्स को सैल्यूट करने का। 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयरफोर्स की फाउंडेशन हुई थी, और आज डेकेड्स लेटर ये सिर्फ एक डिफेंस फोर्स नहीं है बल्कि करेज, डिसिप्लिन और कमिटमेंट का सिंबल है। एयरफोर्स डे हमें याद दिलाता है कि आसमान सिर्फ सपने देखने के लिए नहीं होता, उन ड्रीम्स को प्रोटेक्ट करने वाले लोग भी होते हैं। और इसीलिए आज हम इंडियन एयरफोर्स डे के हर एयर वॉरियर और उनकी फैमिलीज़ को सैल्यूट करते हैं, बिकॉज वाइल हम अपने ड्रीम्स को चेज कर रहे होते हैं, कुछ लोग हैं जो हमारे स्काइज़ को गार्ड कर रहे हैं।

0: वेलकम बैक दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि आज है इंडियन एयरफोर्स डे, तो उसी के खास मौके पर हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ खास। देवार्थो धर की अभिनव प्रज्ञा पांडे से बातचीत, जिसका विषय है नभ स्पर्शम दीप्तम। तो आइए सुनते हैं ये वार्ता।
1: दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एक बहुत ही स्पेशल इंटरव्यू लेकर के आए हैं। स्पेशल इस सेंस में, इस लिहाज से कि हम बात करेंगे वायुसेना दिवस के ऊपर। और हर साल 8 अक्टूबर को हम ये वायुसेना दिवस मनाते हैं। ये हमारे शौर्य का, हमारे गर्व का, हमारे सम्मान का प्रतीक है, हमारी राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। जो हमारी वायुसेना, जो एक तरह से विश्व के सबसे बेहतरीन पायलट्स अगर कहीं मिलते हैं तो भारत उनमें से एक है। कैसे बन सकते हैं ये पायलट? बहुत सारे युवाओं का सपना होता है कि वो किसी भी प्रकार से वायुसेना से या एयरफोर्स से जुड़ें, हवाओं से बातें करें, अपने उन सपनों को जिएं जिनमें उन्होंने हवा को महसूस करना और ऊपर से इस दुनिया को देखना एक बार एज्यूम किया था, सोचा था। बहुत सारे युवाओं का ये सपना होता है। इस बार का जो टाइटल हमने रखा है इस इंटरव्यू का, इस साक्षात्कार का, वो है नभः स्पृशः दीप्तम। जिन लोगों को नहीं पता है कि ये क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ये टैगलाइन है, ये सूत्र वाक्य है, ये ध्येय वाक्य है भारतीय वायुसेना का। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमारे पौराणिक ग्रंथों से लिया गया है। तो इस पूरे विषय पर, भारतीय वायुसेना किस तरह से काम करती है, हम कैसे जुड़ सकते हैं, खासकर जो हमारे युवा साथी हैं, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमने स्टूडियो में अपने आमंत्रित किया है डिफेंस फोर्सेस के PRO यानी कि जन सूचना अधिकारी, पब्लिक रिलेशन अफसर और स्पोक्स पर्सन देवार्थो धर जी को। देवार्थो जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
1: जय हिंद। सबसे पहले तो हमें ये बताएं, आप खुद एक धुरी हैं, एक स्तंभ हैं वायुसेना का, कैसा लगता है भारतीय वायुसेना से जुड़कर?
2: काफ़ी अच्छा ही लगता है वायुसेना से जुड़ के। ये एक ऑनरेबल पोस्ट है, ऑनरेबल करियर है, जॉब है, और ऑब्वियसली वी फील प्राउड, गर्व होता है हमें इस करियर में काम करने का।
1: ये वायुसेना दिवस क्या है, इसका क्या ऐतिहासिक महत्व है, हम क्यों इसे मनाते हैं, ये हमारे दोस्तों को बताएं।
2: देखिए, भारतीय वायुसेना की जो स्थापना हुई थी वो 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इस वर्ष हम इसकी 94th एनिवर्सरी मना रहे हैं। यह दिन हमारे वायु योद्धाओं के साहस, बलिदान और सेवा को नमन करने का अवसर है। युद्ध के देश में आकाश की रक्षा हो या आपदा में किसी परिवार तक राहत पहुंचाना, वायुसेना हमेशा राष्ट्र के साथ खड़ी रहती है। एयरफोर्स डे हमारी गौरवशाली विरासत को याद करने और भविष्य के लिए अपना संकल्प दोहराने का दिन है।
1: बहुत सारे युवाओं का सपना होता है भारतीय वायुसेना से जुड़ना, खासकर बतौर पायलट जुड़ना। भारतीय वायुसेना की गौरवशाली यात्रा में देवर्थो जी, युवाओं की भूमिका को आप किस तरह से देखते हैं?
2: युवा हमारी वायुसेना की ऊर्जा और उसके भविष्य की शक्ति है। हर पीढ़ी नए विचार, नए स्किल्स और कुछ बेहतर करने के उत्साह को लेकर आती है, लेकिन इस उत्साह को दिशा देती है हमारी ट्रेनिंग, डिसिप्लिन और हमारे सीनियर्स का अनुभव। एक विमान के पीछे केवल पायलट नहीं होते, युवा टेक्नीशियंस होते हैं, कंट्रोलर्स होते हैं और अनेक विशेषज्ञ होते हैं, पूरी टीम होती है उनकी। जब युवा अपनी क्षमता को टीम के लक्ष्य से जोड़ती है, तब उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि देश की ताकत बन जाती है।
1: आज का युवा भारतीय वायुसेना को कैरियर, देश सेवा, इन दोनों दृष्टियों से क्यों चुने? उसके पास बहुत सारे विकल्प हैं।
2: देखिए, भारतीय वायुसेना एक ऐसा करियर है जहां आपके काम का उद्देश्य बहुत स्पष्ट है, देश की सुरक्षा और देशवासियों की सेवा। यहां प्रोफेशनल ट्रेनिंग, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ काम करना और लीडरशिप रोल में आपको अवसर मिलता है। साथ ही जिम्मेदारियां, चुनौतियां और सेवा की मांग भी होती है। इसलिए केवल यूनिफॉर्म के आकर्षण से नहीं, बल्कि अपने इंटरेस्ट और कमिटमेंट के आधार पर इस करियर को चुने। यदि आप सीखना चाहते हैं कि जिम्मेदारी सीखना चाहते हैं कुछ नहीं और जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, तो अपने काम से देश को योगदान देना चाहते हैं, तो ये बहुत बढ़िया करियर है जिसको आप चूज कर सकते हैं।
1: जेम्स क्लियर, जो कि विश्व के एक बहुत ही आदत विशेषज्ञ हैं, जिसको हैबिट स्पेशलिस्ट कहा जा सकता है, उन्होंने अपनी किताब द एटॉमिक थॉट्स,
2: द एटॉमिक
1: एटॉमिक
2: हैबिट्स
1: हैबिट्स सॉरी,

0: उसमें जिक्र किया है कि अगर कोई विमान चला जा रहा हो उसमें दशमलव में भी आप डिग्रीज में परिवर्तन करते हैं तो वो विमान हो सकता है जो न्यूयॉर्क जा रहा हो वॉशिंगटन डीसी में हो। ऐसे में अगर मैं आपसे पूछूं क्या कुछ एक विशेष प्रकार की शारीरिक फिटनेस, स्वस्थ होना मानसिक रूप से ये बहुत ज़रूरी होता है, कोई कैसे वायुसेना से जुड़े, खासकर अगर वो बतौर पायलट जुड़ना चाहता है?
1: देखिए, आपने फिटनेस की बात की और डिसीजन मेकिंग की बात की। जो भी इस फील्ड को करियर में चुन रहा है, जो फ्लाइंग करता है, स्पेशली मिलिट्री फ्लाइंग अगर आप देखें तो ये काफ़ी चैलेंजिंग होता है। आपको स्प्लिट सेकंड्स डिसीजन लेने होते हैं, आप डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट में उड़ते हैं और कोई भी आप गलती जो है उससे जान और माल की हानि
0: बिल्कुल
1: हो सकती है। तो आपको शारीरिक रूप से तो स्वस्थ रहना भी है, आपको मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहना है।
0: एक सामान्य व्यक्ति को एक फाइटर पायलट बनने की जो क्षमताएं होती हैं क्या उसमें कुछ विशेष होना चाहिए, वो किस तरह से अलग करते हैं? क्योंकि कई बार जिसको आप हमने कई सारे एयर शोज में देखा कि कई चक्कर गोते लगाता है आसमान में, ग्रेविटी भी एक चीज़ होती है वो अलग अलग तरीके से उतनी ऊंचाई पर प्रभावित करती होगी, तो क्या ये मजबूत दिल के लोगों के लिए ही है?
1: हाँ, ऑब्वियसली आपको फिजिकली एंड मेंटली आपको रेजिलियंट लेना होगा। मेंटल रेजिलियंस बहुत इसमें आपको काम देता है। अदरवाइज बाकी ये सारी चीज़ें जो है आपके अपनी तरफ से आप जो है मेहनत करें, आप फिजिकल फिटनेस पे ध्यान रखें। तो सबसे महत्वपूर्ण सलाह यही है कि अपने डेली रूटीन को आप अपने सपनों के हिसाब से इसको बदलें। केवल ये कहना कि मुझे वायुसेना में जाना है, ये पर्याप्त नहीं है। तो आप अपने रोज़ पढ़ाई करें, फिटनेस पे ध्यान दें, कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करें। इसमें बेसिकली जो भर्ती होती है उसके जो एंट्रीज़ है उस पे ध्यान दें। ऑफिशियल नोटिफिकेशंस पे आप नज़र रखें, कहाँ पे पेपर में आ रहा है।
0: बिल्कुल
1: ऑनलाइन जो ऑफिशियल साइट्स है उसमें आप चेक करें। तो ये छोटी छोटी तैयारी करके यही फाइनली अंतर बनाता है। आप शुरुआत से छोटे छोटे प्रयास करेंगे, डिसिप्लिन रखेंगे और छोटे छोटे प्रयास करके ही आप सक्सीड होंगे लाइफ में।
0: आज का दौर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। क्या आने वाले समय में जिन युवाओं के पास तकनीकी दक्षता है या जो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हैं उनके लिए बहुत सारे अवसर भारतीय वायुसेना में देखने को मिल सकते हैं?
1: आजकल जो है एयर पावर में एयरक्राफ्ट के साथ इंफॉर्मेशन और नेटवर्क्स का भी बहुत बड़ी भूमिका है।
0: जी
1: एआई बड़े डेटा से उपयोगी जानकारी निकालने और डिसीजन सपोर्ट में मदद कर सकता है। ड्रोन्स जो है निगरानी और विभिन्न मिशन रिक्वायरमेंट्स में उपयोगी है, और साइबर सिक्योरिटी हमारे डिजिटल सिस्टम्स और इंफॉर्मेशन की रक्षा करती है। तो स्वदेशी टेक्नोलॉजी हमें अपनी ज़रूरतों को अनुसार समाधान विकसित करने की क्षमता देती है, लेकिन हर टेक्नोलॉजी के साथ टेस्टिंग, रिलायबिलिटी और ह्यूमन जजमेंट ज़रूरी होती है। तो युवाओं को टेक्नोलॉजी का उपयोग ही नहीं, उसकी सीमाएं और जिम्मेदारियां भी पता होनी चाहिए।
0: बिल्कुल
1: जिम्मेदारी से
0: प्रयोग करना
1: आपको
0: आना
1: यूज़ करना
0: चाहिए।
1: चाहिए, समझना चाहिए उसका।
0: बिल्कुल देवार्थो जी, एक बड़ा सामान्य सा प्रश्न उठता है हमारे आसपास जो घटनाएं घटती हैं, हाल में कुछ ऐसी घटनाएं घटी, आपको ऐसा लगता है कि हर युवा के पास एक जो बेसिक नॉलेज होती है आत्मरक्षा की या बाकी सारी चीज़ों की, अगर आप फ्लाइट में जा रहे हैं तो उस फ्लाइट की थोड़ी बहुत नॉलेज, थोड़ा बहुत ज्ञान आपके पास होना चाहिए ताकि आप अगर कुछ ऐसी ज़रूरत पड़े तो आप अपना योगदान दे सकें?
1: हाँ, ऑब्वियसली आपको सेल्फ अवेयर रहना ही चाहिए। आपको यू शुड बी अवेयर कि आपके और आपके आसपास के एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है। तो बेसिकली एज अ सिटीजन एंड ह्यूमन बीइंग यू शुड बी अवेयर आप जिस भी एनवायरनमेंट में हैं वहाँ पे क्या इमरजेंसीज हो सकती है, क्या क्या वेयर थिंग्स कैन गो रॉन्ग, एंड यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दोज थिंग्स।
0: पूरे विश्व में जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, भारत के जो पायलट्स हैं वो बहुत ही उच्चतम स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं, सबसे अच्छे माने जाते हैं भारत के पायलट्स। ऐसा क्या है जो उन्हें इतना अच्छा बनाता है? क्या हमारे पास ट्रेनिंग का ऐसा जो सिस्टम है, तंत्र है, वो इतना अच्छा है, या फिर आप जिस तरह से ट्रेन करते हैं, वायुसेना जिस तरह से ट्रेन करती है, वो एक अंतर उत्पन्न करता है बाकी के पायलट्स में और भारतीय पायलट्स में?
1: देखिए, ये जो सिस्टम इन प्लेस है, जो भी ट्रेनिंग होती है, जो हमको सिखाया जाता है ट्रेनिंग में, तो इट इज़ प्रोवन, वॉर प्रोवन। काफ़ी अच्छी हमको ट्रेनिंग मिलती है ऑब्वियसली, और जो भी सिस्टम इन प्लेस है वो एकदम सही है। वो एकदम पारदर्शिता से लोगों को चयन करती है और जो भी प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो उससे जो है बहुत ही उत्तीर्ण हमारे वायुसेना के वायु योद्धा निकले हैं, और पहले भी निकले हैं, अभी भी निकल रहे हैं और फ्यूचर में भी होंगे।
0: सोशल मीडिया के इस दौर में देवोर्थो जी,

0: मैं दो प्रश्न जोड़ करके पूछूंगा कि देशभक्ति भावना को आप किस रूप में देखते हैं, खासकर युवाओं में देशभक्ति की भावना को? क्या आज इसका जो स्वरूप है वो कुछ बदल रहा है, परिभाषा बदल रही है? और जैसा कि आपने कहा कि वायुसेना अनुशासन सिखाती है, तो इस दौर में अनुशासन का क्या महत्व है युवाओं के लिए?
1: मेरे लिए देशभक्ति का मूल भाव वही है, देश और देशवासियों के प्रति जिम्मेदारी। हाँ, उसे व्यक्त करने के तरीके बदल सकते हैं। कोई युवा यूनिफॉर्म पहनकर सेवा करता है, कोई वैज्ञानिक बनकर, कोई शिक्षक या कोई बिजनेसमैन बनकर। हमको ईमानदारी से काम करना चाहिए, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और समाज की जो समस्याएं हैं उनका समाधान ढूंढ के उसको हम लोग ठीक करना चाहिए। यही देशभक्ति है। तो पैट्रियोटिज्म जो है केवल भावना नहीं है, ये एवरीडे एक्शन में
0: बिल्कुल
1: दिखता
0: दिखना
1: है
0: चाहिए।
1: आपको। जब युवा पूछता है कि मैं अपने देश के लिए क्या बेहतर कर सकता हूँ, वहीं से सार्थक योगदान शुरू हो जाता है।
0: हमने देखा है कि जितने भी एयरफोर्स पर्सनल्स होते हैं वो ना सिर्फ काम करने के दौरान बल्कि रिटायरमेंट के बाद भी उतने ही एक्टिव रहते हैं, उतना ही अनुशासन उनके अंदर रहता है। वायुसेना का प्रशिक्षण ऐसा क्या सिखा देता है, ऐसी कौन सी चुनौतियां आपको पैदा करता है आपके सामने जो आपके व्यक्तित्व को पूरी तरह से बदल देती हैं? क्या ये एक लीडरशिप क्वालिटी या नेतृत्व क्षमता भी विकसित करता है?
1: देखिए, यहाँ पे ट्रेनिंग के समय जो है फिजिकल कंडीशनिंग भी होती है, एकेडमिक लर्निंग भी होती है, टीम रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको लेना पड़ता है और आपको अपने घर से दूर भी रहना पड़ता है।
0: बिल्कुल
1: तो ट्रेनिंग के दौरान ही ये सारी चीज़ें बार बार दोहरा दोहरा के आप में इंग्रेन कर दिया जाता है कि सिर्फ ये बदलाव जो एंड्योरेंस से नहीं होता, ये पंक्चुअलिटी, अकाउंटेबिलिटी और कॉन्फिडेंस में भी होता है। तो उद्देश्य व्यक्ति का होना चाहिए जिम्मेदार प्रोफेशनल बनने का और अपने क्षमता को समझे और टीम के साथ भरोसेमंद ढंग से काम करे।
0: आज हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारी महिला पायलट्स या महिला पर्सनल्स जो भारतीय वायुसेना को आधिकारिक तौर पर प्रतिनिधित्व कर रही हैं, उसका अगर हम बात करें तो ये कुछ चंद लड़कियां या चंद महिलाएं हैं जो वहां पर चली गई हैं अपनी मेहनत से, या बराबर मौके हैं लड़के और लड़कियों दोनों के लिए वायुसेना में?
1: हाँ देखिए, अभी चंद तो नहीं, अभी बराबर मौके ही हैं हर किसी के लिए। बीइंग इट मेल ऑफिसर और वुमेन ऑफिसर, सबके लिए बराबर मौका है। भारतीय वायुसेना में महिलाएं जो हैं फ्लाइंग, ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल क्षेत्रों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रही हैं। युवा महिलाओं के लिए अभी हाल फिलहाल में एनडीए भी खुल गया है। पहले ये सिर्फ बॉयज़ होता था, अभी
0: पेन हो
1: लड़कियों
0: गया
1: के लिए
0: है।
1: भी खुल गया है ये। और एग्जामिनेशन में एनडीए दे के भी आ सकते हैं, वो एफकैट जैसे एग्जाम्स है वो सब दे के भी आप वो आ सकते हैं।
0: बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो भी एयरफोर्स के लोग होते हैं उनके कपड़े एकदम चमकते रहते हैं। क्या आप रोज अपने कपड़े धोते हैं?
1: ऑब्वियसली ये जो है आर्म डिफेंस फोर्सेस में जो है डिसिप्लिन काफ़ी मायने रखता है। आपके यूनिफॉर्म एकदम सही होना चाहिए। ट्रेनिंग के टाइम में ही ये चीज़ इंग्रेन कर दी जाती है कि यूनिफॉर्म एकदम सही हो, कुछ दाग ना हो। तो ऑब्वियसली आप वो आपके इंग्रेन हो जाता है। हम सुबह उठ के हमेशा अपने यूनिफॉर्म सही रखते हैं, उसको आयन करते हैं, सही से आयन करके पहनते हैं। तो आपको देख के ही पता चल जाता है कि ये जो है कि आर्म फोर्सेस, डिफेंस फोर्सेस पर्सनल आपके सामने आ रहे हैं। तो उनका हेयर कट देख लीजिए, चलने का ढंग देख लीजिए या फिर पहनावा देख लीजिए, या पहन के ही आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि
0: जी
1: ये डिफेंस फोर्सेस का पर्सनल आ रहे हैं। तो ये चीज़ भी काफ़ी अट्रैक्ट करता है युवाओं को। तो ये चीज़ें आप पे इंग्रेन हो जाएंगी और अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप भी वैसे ही करेंगे, एंड इट फील्स गुड, आपको भी अच्छा लगता है और आगे वाले को भी अच्छा लगता है।
0: आपके लिए आपकी यूनिफॉर्म क्या है? वो सिर्फ एक ड्रेस है, एक वर्दी है, एक कपड़ा है या फिर एक जिम्मेदारी भी है?
1: नहीं, इट इज़ अ यूनिफॉर्म जो है, यूनिफॉर्म सिर्फ एक ड्रेस नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। जब भी हम इस यूनिफॉर्म को पहनते हैं तो काफ़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आ जाती है, काफ़ी आप प्राउड भी फील करते हैं और आप अपने आप को उस प्रकार से प्रेजेंट भी करते हैं। वेन एवर योर यूनिफॉर्म आप पहनते हैं, आप काफ़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्राइड साथ में रहता है उसका।
0: हमने अक्सर देखा है कि जब स्थिति हाथ से बाहर निकल जाती है, जब सरकार को ये लगता है कि अब शायद कोई और चारा नहीं बचा, तब एयरफोर्स को बुलाया जाता है। हमने बहुत सारी जगहों पर ऐसा देखा है। क्या आपको इसके लिए कोई विशेष ट्रेनिंग दी जाती है, या फिर अगर मैं ये पूछूं कि डर नहीं लगता ऐसा करते हुए, क्योंकि वो कई सारी ऐसी जगहें होती हैं जहां पर ना लैंडिंग हो सकती है, आप लोग किसी तरह से नीचे उतरते हैं और उठा करके लेके जाते हैं?
1: हाँ, ये एयरफोर्स में ये जो बचाव और राहत कार्य होता है, इस सब की ट्रेनिंग मिलती है, प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है।

0: जब नॉर्मली नॉर्मल टाइम में जब सिचुएशन ठीक है वहाँ पे लोग प्रैक्टिस करते हैं, हमारे एयर वॉरियर्स दिन रात प्रैक्टिस करते हैं, उस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं बार बार, चाहे वो फ्लाइंग में हो ग्राउंड में हो। लोग जितनी प्रैक्टिस आप करते हैं उसी तो नहीं आप जो है ऐसे सिचुएशंस में अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो हर चीज़ की ट्रेनिंग मिलती है, काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग मिलती है, इसलिए आप देखेंगे कि जितने भी राहत कार्य
1: जी
0: करते हैं एयरफोर्स जो है, एयरफोर्स के काफ़ी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स भी है, हेलीकॉप्टर्स भी है, और काफ़ी इन्होंने मिशंस किए हैं जो कि काफ़ी अच्छे मिशंस किए हैं, काफ़ी नागरिकों की जान भी बचाई है
1: बिल्कुल
0: उसमें।
1: बिल्कुल। आज की तारीख में अगर कोई युवा वायुसेना से जुड़ना चाहता है तो उसके लिए आपकी तीन सबसे महत्वपूर्ण सलाह क्या होगी?
0: हाँ, तो इसके लिए आपके सबसे पहले तो आपको अपनी एंट्री पता होनी चाहिए कि अलग अलग ब्रांचेस होते हैं वायुसेना में और अलग अलग एंट्रीज होती हैं। तो नो योर एंट्री, सब्जेक्ट्स और क्वालिफिकेशंस के अनुसार ही एंट्री और एंट्री के लिए अप्लाई करें। तो ये सारी चीज़ें जो बेसिकली जो ये लिखित में नोटिफिकेशंस आते हैं तो आपको वो पढ़ना ठीक से है और फॉर्म ठीक से भरना है, तो वो पढ़ के ही आपका इंटरेस्ट के हिसाब से आप उस फॉर्म को भरें, और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आपको किस ब्रांच में जाना है उस हिसाब से आप तैयारी करें। तो फिर क्या होता है कि आपका कोई भी पॉइंट मिस नहीं हो जाता है। पता चला आपने गलत डायरेक्शन में तैयारी करी और सब्जेक्ट्स आपने चूज़ नहीं किया आपके ब्रांच के हिसाब से, तो आप एंट्री के लिए आप यू विल बी वांटिंग। तो आपके पास रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और कम्युनिकेशन भी आप रोज़ काम करें, एक रूटीन तैयार करें फिटनेस का अपना,
1: जी,
0: ठीक है? तो
1: क्या आप ये कह रहे हैं कि किसी भी प्रतियोगी या जो भी छात्र जुड़ना चाहता है उसका असेसमेंट, उसका आकलन फॉर्म भरने के साथ ही शुरू हो जाता है
0: हाँ, दैट इज़ द
1: वायुसेना में?
0: फर्स्ट स्टेप। अगर आप फॉर्म ही अगर ठीक से नहीं भरेंगे तो फिर आप कैसे जाएंगे? लोग ठीक से फॉर्म को पढ़ते नहीं हैं, भरते नहीं हैं, गलत एंट्री कर देते हैं और फिर उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो इसलिए आपको वो फॉर्म को ठीक से पढ़ना है, भरते वक्त ठीक से उसको भरना है।
1: क्या ये भी सच है कि PAT, जिसे हम पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, वो कोई भी अपने जीवन में एक बार अगर उसमें फेल हो गया या डिस्क्वालिफाई हो गया तो वो दोबारा नहीं दे सकता?
0: हाँ, ये सच बात बताई है आपने, वो एक ही बार होता है। जब आप उसमें अगर एक बार फेल हो जाए तो अगली बार आप वायुसेना तो ज्वाइन कर सकते हैं बट एज अ पायलट नहीं कर सकते।
1: अंत में समय हमारे पास लगभग खत्म होने को है देवर्थो जी, अगर मैं पूछूं कि आज के युवाओं को राष्ट्र पहले यानी कि नेशन फर्स्ट की भावना को अपने दैनिक जीवन में अपनाना है तो उसका सबसे सही तरीका क्या है, क्या हो सकता है?
0: राष्ट्र पहले जो रोजमर्रा के छोटे फैसलों में अपनाया जा सकता है, अपना काम ईमानदारी से करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, कानून का पालन करना, ज़रूरतमंद की मदद करना, ये सभी इसके उदाहरण हैं। पर्यावरण की जिम्मेदारी लें, डिजिटल दुनिया में गलत सूचना ना फैलाएं। नेशंस फर्स्ट का अर्थ यही है कि अपने प्रगति को समाज और देश की भलाई से जोड़ें।
1: देश की सुरक्षा केवल आपकी यानी कि डिफेंस फोर्सेस की जिम्मेदारी है या फिर युवा भी, आम युवा भी इसमें अपनी कुछ भूमिका निभा सकते हैं?
0: देखिए, सैन्य सुरक्षा की जिम्मेदारी सशस्त्र सेनाएं निभाती हैं, लेकिन एक जागरूक और जिम्मेदार जो समाज है वो राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करता है। युवा जो है साइबर हाइजीन अपनाएं, अफवाहों को वेरीफाई करें और किसी संदिग्ध गतिविधि की जो सूचना है वो प्रॉपर अथॉरिटीज़ को दें। आपदा के समय अधिकृत एजेंसीज के निर्देशों के अनुसार सहायता कर सकते हैं। जो NCC कम्युनिटी सर्विस और कौशल विकास की जिम्मेदारी सीखने का अच्छा माध्यम है। अपनी पढ़ाई, काम और नागरिक कर्तव्यों और ईमानदारी से निभाए और देश को मजबूत करने का यही तरीका है।
1: वायुसेना दिवस के अवसर पर कोई संदेश जो आप अपनी तरफ से युवाओं को देना चाहें?
0: मेरा संदेश यही है कि बड़े सपने देखिए, अपनी क्षमता पर काम कीजिए और अपने सपनों को देश की ज़रूरतों से जोड़िए। यूनिफॉर्म पहनने की इच्छा है तो सही जानकारी के साथ मेहनत कीजिए। अन्य क्षेत्र चुनते हैं तो वहाँ भी आप एक्सीलेंस और इंटीग्रिटी के साथ योगदान दें। हमारे वायु योद्धाओं को सच्चा सम्मान यही होगा कि हम जिम्मेदार और जागरूक और एक उपयोगी नागरिक बने। तो लर्न विद क्यूरियोसिटी, वर्क विद डिसिप्लिन एंड सर्व विद प्राइड।
1: क्या बात है, आपने बड़े सपने चुनने के लिए कहा। मेरा अंतिम प्रश्न यही है कि अंत में अगर आपको युवाओं के लिए एक पंक्ति में आकाश से बड़ा सपना चुनने को कहा जाए तो आप क्या कहेंगे?
0: जैसे कि मैंने कहा, सपना आकाश से ऊंचा रखिए, तैयारी हर दिन कीजिए और अपनी उड़ान राष्ट्र के नाम कीजिए।
1: क्या
0: जय
1: बात
0: हिंद।
1: है, जय हिंद, अपनी उड़ान राष्ट्र के नाम कीजिए। और हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी हमारे दोस्त हमारे माध्यम से इस वक्त देवर्थो जी को सुन रहे होंगे उनके अंदर वो सपना अगर जिंदा है

0: है तो फिर से फड़फड़ाया होगा, अगर कहीं कमजोर पड़ा है तो फिर से एक उनके अंदर आग जली होगी कि नहीं, हमको फोर्सेस से जुड़ना है, और खासकर वायुसेना दिवस के इस अवसर पर हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि एक अच्छे नागरिक बने और किसी भी प्रकार से कहीं से भी जुड़ करके देश को सशक्त करें, नेशन फर्स्ट। तो आज के हमारे इस इंटरव्यू में बस इतना ही। हमारे साथ स्टूडियो में थे डिफेंस फोर्सेस के PRO यानी कि जन सूचना अधिकारी, पब्लिक रिलेशन अफसर और स्पोक्स पर्सन देवर्थोधर जी। देवर्थो जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए और इस अवसर पर हमसे, हमारे युवाओं से संवाद किया।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: दोस्तों, अभी आपने सुनी वार्ता जिसका विषय था नभ स्पर्शम दीप्तम, देवर्थोधर की अभिनव प्रज्ञा पांडे से बातचीत। अब अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
3: बदलो बदलो, आदत बदलो।
4: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
3: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
6: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
5: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
6: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
5: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
6: 8700001-4242।
2: वेलकम बैक दोस्तों, अब अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं इस म्यूजिकल ट्रैक के साथ।

दोस्तों, अब बारी है अपने आज के अगले और लास्ट सेगमेंट की, जो कि है प्रेरणा पुंज, जिसमें आज हम बात करेंगे फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों के बारे में। एक ऐसे व्यक्तित्व जिनकी कहानी ने हमें बताया कि हीरो बनने के लिए बड़े बड़े कामों की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी एक इंसान, एक डिसीजन और एक मोमेंट पूरी हिस्ट्री में अपना नाम लिख देता है। एक ऐसा नाम जिनका सिर्फ हिस्ट्री की बुक्स में ही नहीं, बल्कि इंडियन एयरफोर्स के करेज और सैक्रिफाइस के हिस्ट्री में लिखा गया है। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों 17 जुलाई 1943 को पंजाब के लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में जन्मे सेखों इंडियन एयरफोर्स फाइटर के पायलट थे और नंबर 18 स्क्वाड्रन से जुड़े थे। वो नैट फाइटर एयरक्राफ्ट फ्लाई करते थे। 14 दिसंबर 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर के दौरान श्रीनगर एयरफील्ड पर 6 पाकिस्तानी F-86 सेबर एयरक्राफ्ट्स ने अटैक किया। एयरफील्ड पर अटैक हो रहा था, सिचुएशन एक्सट्रीमली डेंजरस थी, लेकिन फ्लाइंग ऑफिसर सेखों ने टेक ऑफ किया और अटैकिंग एयरक्राफ्ट्स को एंगेज किया। ऑफिशियल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग उन्होंने एक एनिमी एयरक्राफ्ट पर हिट्स किए और दूसरे को डैमेज किया, लेकिन कॉम्बैट के दौरान उनका एयरक्राफ्ट भी हिट हुआ और वो वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी करेज और डिटर्मिनेशन के लिए उन्हें पोस्ट ह्यूमसली परमवीर चक्र से ऑनर किया गया। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों इंडियन एयरफोर्स के एकमात्र परमवीर चक्र अवॉर्डी हैं, सिर्फ 28 साल की एज और इतनी बड़ी लेगेसी। शायद इसीलिए ब्रेवरी का मतलब सिर्फ फियरलेसनेस नहीं होता, ब्रेवरी का मतलब होता है फियर के सामने भी अपनी ड्यूटी को चूज़ करना।

दोस्तों, आज के इस सफ़र को यहीं पर देते हैं विराम। चलते चलते हमें ज़रूर बताएं कि आपके फीडबैक्स, आपके रिव्यूज़, आपके सजेशंस क्या है हमारी ईमेल आईडी पर, जो कि है yuvvaniald@gmail.com, और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो कि है 8004926250 पर। इसी के साथ मुझे यानी उन्नति को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: युववाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। 6 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दी है। जुर्माने और कार्यवास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया गया है। कर फाइलिंग में देरी, गलती या भुगतान करने में विलंब करने वाले करदाता को वसूली, ब्याज और आनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। नई दिल्ली में आज जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि जीएसटी दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्यवाही के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है।
2: जीएसटी परिषद ने आज नोटिस और कार्यवाही के लिए समान मानकों की सिफारिश की है। 10,000 रुपए के निर्धारित मौद्रिक सीमा से कम के नोटिस जारी नहीं करने की भी सिफारिश की है, जिसमें इस निर्धारित सीमा से कम के लंबित नोटिसों को वापस लेना भी शामिल है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार लगभग 25 करोड़ विद्यार्थियों को विभिन्न डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा मंचों से जोड़ने का प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने दीक्षा प्लेटफॉर्म से भारत में डिजिटल शिक्षा के बढ़ते महत्व के बारे में जानकारी दी।
3: ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमारा एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है। कोविड के दौरान जुलाई 2022 तक इस प्लेटफॉर्म पर 500 करोड़ से ज्यादा लर्निंग सेशन और करीब 6000 करोड़ लर्निंग मिनट दर्ज हुए। अब हमारा प्रयास है, हमारे जितने भी डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम है उनसे करीब 25 करोड़ स्टूडेंट्स को जोड़ सके। यानी साथियों, टेलीकॉम के क्षेत्र में जो रेवोल्यूशन आई है, इसका भारत के नागरिक को सीधा सीधा फायदा हुआ है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक आधार केंद्र हैं। 4 दिन का सम्मेलन कल शुरू हुआ। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने युवाओं से भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अपने कौशल, रचनात्मकता और नवाचार क्षमता का सदुपयोग करने का आह्वान किया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में आज एक संस्थान में श्री मुरुगन ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की केंद्रीय भूमिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। 2 दिन का सम्मेलन आज शुरू हुआ। ये शिखर सम्मेलन सभी राज्यों के महिला और बाल विकास क्षेत्र के साथ राजनीतिक नेतृत्व और आधिकारिक संबंध की भागीदारी का साक्षी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर आज विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र AI और साइबर सुरक्षा, AI के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। उन्होंने कहा कि इसमें AI के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने और लोगों को डीप फेक जैसे हानिकारक अनुप्रयोगों से बचाने पर बल दिया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने पिछले वर्ष 863 अरब डॉलर का निर्यात किया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 1 ट्रिलियन डॉलर के निर्यात का लक्ष्य है। श्री गोयल ने आज नई दिल्ली में 31वें CII साझेदारी शिखर सम्मेलन के पूर्वावलोकन में ये बात कही। ये शिखर सम्मेलन 12 और 13 नवम्बर को विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने आज नई दिल्ली में गंगा पुनरुद्धार पर गठित सशक्त कार्यबल की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में नमामि गंगे कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की गई और नदी पुनरुद्धार के लिए कार्य में तेजी लाने के उद्देश्य से किए जा रहे प्रमुख उपायों पर विचार विमर्श किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सकों को दिए जाने वाले उपहारों और अन्य लाभों सहित औषधि कंपनियों की विपणन प्रणालियों के वैधानिक नियमन की जांच के लिए केंद्र सरकार को 3 सदस्यीय समिति गठित करने का निर्णय

0: प्रदेश दिया है। भारत की पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने आज महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स और तरुण मन्नेपेली पुरुष सिंगल्स में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। पहले सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात में 10:30 पर सुनिएगा उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का ख्याल गायन। गजलों पर आधारित कहकशा प्रोग्राम आप सुनेंगे रात में 9:30 पर। रात में 8:30 पर प्रोग्राम सुनिएगा सबरस। सुगम संगीत के कार्यक्रम में शाम 7:45 पर कलाकार होंगी वर्षा तिवारी। हिंदी कार्यक्रम होगा शाम 7:31 पर। आज इस कार्यक्रम में आशीष कुमार मिश्र से सुनिएगा उनका काव्य पाठ। प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी आप सुनेंगे शाम 6:50 पर। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। और अब एक नज़र कल के प्रमुख कार्यक्रमों पर। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा सुनिएगा सुबह 6:20 पर। कृषि जगत कार्यक्रम होता है सुबह 6:35 पर। कल इस कार्यक्रम में डॉक्टर सूर्य नारायण से दिनेश यादव की बातचीत आप सुनेंगे ऑर्गेनिक सब्जी की खेती। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में सुबह 6:45 पर डॉक्टर ऋचा त्रिपाठी की वार्ता सुनिएगा सियाटिका एवं पैर दर्द का होम्योपैथी द्वारा उपचार। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन। दिन में 12:15 पर और रात में 10:30 पर सुनिएगा उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का गायन। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर कलाकार होंगे तरुण नंदी और शाम 7:45 पर कलाकार होंगे एस के घोष। सुबह 10:05 पर प्रोग्राम सुनिएगा वॉइस ऑफ प्रयागराज। हरविंद कुमार यादव और साथियों के गाए लोकगीतों का आनंद लीजिएगा सुबह 10:30 पर और शाम 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में। पंचायत घर कार्यक्रम में ही आप डॉक्टर विजय बहादुर की वार्ता सुनेंगे हॉर्टिकल्चर से इनकम। हेलो फरमाइश प्रोग्राम होगा दिन में 12:30 पर और हेलो गृह लक्ष्मी आप सुनेंगे दिन में 1:15 पर। एनसीईआरटी का स्पॉन्सर प्रोग्राम सुनिएगा दिन में 2:30 पर। अंग्रेजी कार्यक्रम में रात में 8:30 पर के राशि कुमार की वार्ता प्रसारित की जाएगी अ डायलॉग ऑन गिफ्ट ऑफ राइटिंग। गजलों पर आधारित कहकशा प्रोग्राम पेश किया जाएगा रात में 9:30 पर। अभी आप आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में सुन रहे थे। आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

हमें ये नहीं भूलना है कि हम पहले इंसान हैं, बाद में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। आइए सांप्रदायिक सद्भाव का प्रण लें।

0: 5G सेवया देशस्य सर्वे जनपदाः संयोजिताः। अंकीयशिक्षया 25 कोटि छात्राणाम् उज्ज्वल भविष्यं सुनिश्चीयते इति प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी। देशे AI इत्यस्य नियंत्रणाय आगामी मासे परामर्शपत्रं प्रस्तोष्यते इति सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः। औषध विपणने पारदर्शितायै महती घोषणा, अनैतिक प्रचाराणां नियंत्रणार्थं विशेष समितेः रचनायै सर्वोच्च न्यायालयस्य समादेशः। साहित्य जगत्सु एन कार्सन महोदयायाः महती विजयगाथा, 26th-2000 नोबेल पुरस्कारेण विभूषिता भविष्यति कनाडा देशस्य प्रख्याता कवयित्री। भारतीय चलचित्र जगतः सुप्रसिद्धः वरिष्ठ अभिनेता नाना पाटेकरः 75 वयसी दिवंगतः। अपि च आतंकवाद विषये पाकिस्तानस्य छलनीतिः निरस्ता, आतंकी संरक्षणं छद्मवेषेण गोपयितुं न शक्यते इति भारतस्य स्पष्टः संदेशः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। नवदेहल्याः यशोभूमि सभागारे भारत मोबाइल कांग्रेस इति महोत्सवस्य 10th संस्करणम् उद्घाटयन् प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी न्यगादीत् यत् एषः मञ्चः देशस्य दूरसञ्चारक्षेत्रे अंकीय संपर्क संवर्धने च अत्यन्तं महत्वपूर्णां भूमिकां निर्व्यूढवान्। श्री मोदी सप्रश्रयं प्रावोचत् यत् 5G सेवा अधुना देशस्य सर्वेषु जनपदेषु प्रसारिता अस्ति। तेन सविशेषं संसूचितं यत् प्रशासनं सम्प्रति 25 कोटि छात्रान् विभिन्नांकीय शिक्षा मञ्चैः सह संयोजयितुं द्रुतगत्या कार्यं विदधाति।
1: 2022 में इसी मंच से हमने देश में 5G की शुरुआत की थी। फिर 2023 में मैंने बताया था कि भारत कैसे 5G रोल आउट से 5G रीच आउट की दिशा में आगे बढ़ रहा है, और आज हम सभी देख रहे हैं देश के हर जिले तक 5G कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। आज 5.5 लाख से अधिक बेस स्टेशन भारत में हैं, जहां से 5G नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है, और मोबाइल इंटरनेट स्पीड 2022 की तुलना में 10 गुना बढ़ी है।
0: सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः अवोचत् यत् देशे कृत्रिम बुद्धेः AI इत्यस्य नियंत्रणाय आगामी मासे एकं परामर्शपत्रं प्रस्तुतं करिष्यते। विश्वविकास प्रतिवेदनं 20-26 इति पुस्तकस्य विमोचनानन्तरं मंत्री प्रोक्तवान् यत् अस्मिन् परामर्शपत्रे AI सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, एतस्याः लाभाः, संभाव्यहानयः च केन्द्रीकृताः विषयाः भविष्यन्ति। सर्वोच्च न्यायालयेन केन्द्र सर्वकाराय 3-सदस्यीया एका समितिः निर्मातुम् अद्य निर्देशः प्रदत्तः, या औषध निर्माण समवायै चिकित्सकेभ्यः प्रदीयमानानाम् उपहाराणाम् अथ च अन्यलाभानां विपणन पद्धतीनां वैधानिक नियन्त्रणस्य आवश्यकतां परीक्षेत। शीर्ष न्यायालयेन अस्य आदेशस्य अनुपालनार्थम् एकम् अनुपालन शपथ पत्रम उपस्थापयितुं केन्द्रपक्षः आदिष्टः। प्रकरणस्यास्य अग्रिमं वादश्रवणं आगामी जनवरी मासस्य 31st दिनांके भविष्यति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
2: यात्रारताः अपि जगद्वृत्तान्तेन सह एकीभूताः तिष्ठन्तु। एक्स् पटले @AIR न्यूज़ अलर्ट्स् इत्यनुगच्छन्तु। PB शब्दमाध्यमेन च आकाशवाणी वार्ताः शृण्वन्तु।
0: राष्ट्रेण अद्य भारतीय वायुसेनायाः 94वा वार्षिकी सोल्लासं परिपाल्यते। 23-19 शततमे अक्टूबर मासस्य

0: अभी आप संवेद स्वरों में देशभक्ति गीत सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। 6:20 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: इयम् आकाशवाणी। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः।

किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।

0: डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया दिमागी बुखार से बचेगी।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: अब ग्रामीण भाई सुनेंगे कार्यक्रम पंचायत घर।

0: पंचों राम राम। ओ किसान भैया, देखा है समय तो बढ़िया, खेती किसानी के काम जोर शोर पे है। हम जानते हैं कि धान के कटाई लगा है तो सब जने खेते में जरूर लगा हो गया, और साथे साथे पंचायती के आप इंतजार करत हो गया कि आज पंच भैया ने देखा का विशेष कार्यक्रम लाई के आवत हैं। तो पंच भैया आज बता दी, देखा आप खेती किसानी के साथे साथे आज एक बात ही करब कि आज अपने जो नहाए वायु सेना दिवस के रूप में आज के दिन मनावा जाते, तो ओकरे बारे में भी आप सब जाना। आज ही के दिन जो नहाए देखा वायु सेना के जो नहाए स्थापना भय रही, तो हम अपने पंचायती के माध्यम से जौन भी देश में अपने जवान भैया लोग देश के सेवा में लगा हैं और वायु सेना के माध्यम से देश के सुरक्षा कराता हैं ताकि हम लोग सुरक्षित तरीके से अपन खेती किसानी कर सकी, तो अपने सभी वायुसेना के जौन भी जवान हैं उनका भैया सबके प्रति अपन आदर जौन है अपन नमन है, उनके बलिदान के प्रति अपन बहुत हृदय से जौन है श्रद्धांजलि बाँटे। और भैया देखा आज के दिन उनके लिए विशेष है, और हमका सबके भी याद करे के चाहिए कि अगर देश में जितना भैया किसान भैया आप सबके महत्व बा, उतने जो नहाए अपने देश में जवान के अपने जो सेना है उनके महत्ता है, तो आज उनके विशेष दिवस पे बहुत सारी बधाई। और आप सबके तरफ से भी जो नहाए अपने पंचों के भैया की तरफ से, भैया देखा इस समय खेती किसानी में धान के कटाई चलती है, और जैसे धान की कटाई चली आप सब गेहूं की तैयारी करे शुरू कर दें, एलिए के समय से काम खेती किसानी हो जरूरी है। मुला पंच भैया देखा हम ये चाहिए थे कि अब दिन भरे के थकान हो तो गौना हो तो गीत गौना हो से पहले आपके स्वागत कीन जाए ताकि आपों के जो ना है काम और अच्छे से होए मन से होए, तो पहले लोकगीत सुन लीन जाए तो फिर बात बात कही कीन जाए। तो भैया देखा आज अपने पंचायती में राम सिंह पटेल और साथी के जो ना है गावा विकास गीत है, आवा हम तू सब सुना जाए।
1: अरे अरे हंसी हंसी के बोली सजनिया, अरे हंसी हंसी के बोली।

किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।

किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसान

0: के हित में जारी।
1: हाँ देखा हो पंच भैया लोकगीत रहा राम सिंह पटेल और साथी के, साथे साथे जौना है आपके संदेश भी हो गया। और एक बात और कहा भैया, देखा खेती किसानी में आप खाद के उपयोग करा था, बहुत रासायनिक खाद से बचा और कोशिश करा कि जैविक खाद के उपयोग हो। यही में देखा एक वर्मी कंपोस्ट खाद हो थे, ओकरे बारे में भी आप जानकारी लिया, ओका उपयोग करा, ओका बनावा, उसे आपके चार पैसा के जो ना है बचत हुई और खेत के उर्वरा शक्ति भी बनी। साथ ही साथ अगर खाद आपके ज़्यादा आ है तो का बेच के चार पैसा कमा भी सका थी, तो एक आप ध्यान रखें। और साथ ही भैया देखा आज किसान चर्चा के जो ना है आज आप सबके सुनवाई के समय हो गया है, तो आवाज सुबेदार सिंह भैया से सुरेश कुमार भैया के बातचीत सुन लीन जाए तो फिर बात बत कही होए।
2: खेती किसानी का काम धाम भैया हमार किसान भैया बहनी हैं, अगर अधिक जानकारी बढ़िया रहे तो किसान की पैदावार भी बढ़िया होत है। तो आज अपने कार्यक्रम किसान चर्चा में भैया एक जागरूक किसान भैया आए हैं जौन श्री सुबेदार सिंह, ग्राम बिगहिया पोस्ट बगवना ब्लॉक जसरा प्रयागराज से। तो भैया अपने कार्यक्रम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं और हम आपसे ये जानना चाहे थे कि आप एक जागरूक किसान हैं तो आपके पास कई बीघा खेती बा?
3: धन्यवाद भैया। 4 बीघा खेती में हम खेती करी थे।
2: हाँ हाँ।
3: और वही में जौन बा सब कुछ मिला के अनाज दाल सब्जी सारा कुछ उपजावा जा था और पूरे परिवार के 8 लोगों का परिवार बा भरपूर। हाँ। हो जाता भैया।
2: अच्छा, तो भैया आपके ये टेम जौन है लगभग खेती किसानी में कई बीघा खेती का प्रयोग करत हम?
3: भैया 4 बीघा कुल खेती है।
2: हाँ।
3: तो 4 बीघा खेती में अलग अलग तरीके के जींस लीन के बाबा।
2: हाँ हाँ।
3: जैसे अब 4 बीघा में 1 बीघा में तो आषाढ़ी में बरसाते के समय ज्वार बाजरा अरहर और उड़द।
2: अच्छा,
3: मिलुआ जोन बाई की खेती कीन गई रही।
2: हाँ हाँ।
3: हमें से ज्वार बाजरा और उड़द तो कट चुकी बा।
2: अच्छा।
3: लेकिन अरहर खड़ी बा और अरहर साल भर के चूँकि फसल है।
2: हाँ हाँ।
3: अभी साल भर बाद तैयार हो तो ही कट जाए।
2: हाँ।
3: फिर 2 बीघा में धान की खेती करी भैया।
2: अच्छा।
3: 2 बीघा में पर्याप्त धान हो जाते है, खाई के हो जाते है और कुछ बचे थे बेचे जाते।
2: हाँ।
3: और 1 बीघा में आधे में तो आलू मतलब चरी बाटे।
2: हाँ।
3: और फिर जब ये चरी मतलब माल मवेशी है तो चरी जरूरी बा।
2: हाँ हाँ।
3: उनके लिए तो चरी जब कट जाए तो ही में आलू बोआ जाए, फिर आलू कट जाए तो प्याज बोआ जाए, यहाँ तरह से प्लान बा।
2: अच्छा।
3: और भैया जो आधा मतलब 10-20 सौ और बचा हुआ हमें सब्जी की खेती की जाते।
2: हाँ। यानी कि मतलब यह है कि आप जौन है 1 बीघा में अपन जौन है अरहर की खेती है जौन है मिश्रित खेती ले रहे हैं और साथ ही साथ 2 बीघा में धान और 1 बीघा के आतर में जौन है कि जैसे चारा है हरी है अपने की अपने पशुओं की खातिर और साथ ही साथ साग सब्जी।
3: बिल्कुल भैया बिल्कुल।
2: और हम आपसे ये जानना चाहे थे कि जैसे कि ये टेम धान की फसल की अपन जोन है पके की स्थिति में है और हम समझे थे कि 10 दिन में अपन धान की फसल कट जाए, तो ऐसे टेम में अपन जोन है आगे रबी के फसल की तैयारी में का मन में बनाए हमें कैसे तैयारी करी है?
3: देखे भैया जो पूरा खेती हमार करे के जो तरीका बा।
2: हाँ।
3: ज़्यादातर इस्तेमाल करी थे कि घर के चीज़ बनी इस प्रयोग की जाए।
2: हाँ हाँ।
3: तो वहीं तरह से तैयारी खेत के तैयारी वहीं तरह से बोआई वहीं तरह से जुताई सारा कुछ वही जोन बा वहीं पर आधारित बा।
2: अच्छा।
3: अब जैसे मतलब कटाई हो जाए।
2: हाँ हाँ।
3: उकरे बाद जुताई करवाई के पूरे खेत में जोन बा कंपोस्ट खाद डलवा देवे।
2: अच्छा।
3: और कंपोस्ट खाद डलवा दे उसके बाद जोन बा उसका पलेवा होए, पलेवा के बाद जब वो खेत बनावे के होए तो वहाँ बर्मी कंपोस्ट और कंपोस्ट डाल के ओका जो तैयारी कर लेबे।
2: अच्छा।
3: और फिर हमें बुआई कर देवे।
2: अच्छा।
3: और बीच में जैसे जरूरत पड़े हमें जैसे जीवामृत की जरूरत बाटे जीवामृत डाल दे एक आध छिड़काव कई दिन जाए।
2: हाँ हाँ।
3: या फिर जोने तरह से खेत फसल मांगत रहे वहाँ तरह से ओकर उपचार कीन जाए उपचार या इलाज जो कुछ।
2: अच्छा।
3: इसी तरह से जैसे चरी वाला खेत बा, अब चरी वाले खेते में आलू बोए के बा।
2: हाँ
3: हाँ। तो का थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान तरीके से तैयार की जाए।
2: हाँ।
3: तो हमें कोशिश की जाते है कि अगर कतहूँ भेड़ पालक भाई मिल जाती।
2: हाँ हाँ।
3: तो जैसे आषाढ़ वाली फसल में रबी वाली खरीफ वाली फसल में भेड़ जरूरी रखवाई थे।
2: अच्छा।
3: तो यूँ वाली फसल में अगर भेड़ को बैठौकी करवाई दिया ना।
2: हाँ हाँ।
3: तो आधी तैयारी तो वही से हुई।

0: था। आ ओकरे बाद जो बचा तो फिर वो हमें जो बा कंपोस्ट, बर्मी कंपोस्ट और यह तरह से खाद, देसी खाद डाला जाता है।
1: अच्छा, यानी आपन जौन है गेहूं के फसल की तैयारी करे बदे अपने कंपोस्ट खाद का प्रयोग करत
0: जी
1: हवन।
0: भैया,
1: और साथे साथ हम आपसे यह जानना चाहे थे कि आपके जौन है कितने जौन है पशु बा, कि ताकि घर में गोबर की मात्रा भरपूर हो सके तो कितने गाय भैंस हवें।
0: भैया एक गाय है और एक भैंस है
1: अच्छा
0: और उही के बच्चा है दुठे,
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: यही चार मवेशी हैं। यही से जौन बा पर्याप्त मतलब तो गोबरों हो जात है, गाय हो जात है और लड़कियों के दूधों वाटा हो जात है।
1: अच्छा साथे साथ हम आपसे यह जानना चाहे थे कि जैसे कि अपन आलू के फसल की तैयारी करे बदे, आप जो उन्हें आलू के फसल की तैयारी में कैसे जो उन्हें तैयारी करी हैं, और साथे साथ हम आपसे जानना चाहती कि अच्छी पैदावार होए बदे आलू के जो उन्हें कैसे ना आप जो उन्हें के बीज की व्यवस्था करी हैं, यह बारे में बतावें।
0: देखे भैया, एक तो मतलब ऐसा होता कि ज़्यादातर बीज सीड स्टोर में रख दिए जाते हैं,
1: अच्छा
0: लेकिन यह साल जन बा रखा नहीं हुआ बा, यह वजह से कि हर साल जन बा उद्यान विभाग वाले फरुखाबाद से ले आए के या उन्नतशील प्रजाति ले आए के
1: हाँ
0: और
1: हाँ
0: उनका छूट पर दे थी।
1: अच्छा
0: तो यह बार प्लान यही बा कि वह वाला उद्यान विभाग वाला जन बा छूट वाला हमें उपज लोग बताओ थे, जो किसान भाई की ओकर बुआई कर चुका है
1: हाँ
0: कि उपज बहुत अच्छी होता और रोग अवरोधी होता, रोग नहीं लगत,
1: अच्छा
0: तो वह जो बा हमें बीज से बुआई करब और खेत की तैयारी यह तरह करे कि बाकी जिसे पहले तो बतावा है कि हमें भेड़ रखब,
1: हाँ हाँ
0: ओकरे बाद ओकरे के बाद पलेवा करे के बाद फिर हमें कंपोस्ट, बर्मी कंपोस्ट, और चूंकि हमें ज़्यादा पौष्टिक तत्व चाहिए
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: ये हमें खली के खाद के प्रयोग की जाए।
1: अच्छा
0: अच्छा, खली के खाद भैया बहुत मानत है ये फसल जमवा, जान लो कि बहुत ही माने, मतलब ये तैयारी बा
1: अच्छा
0: कि
1: भैया, जैसे कि खली वाली खाद जोन बताएं तो ये खली के खाद ये का होत है, कैसे तैयारी करत हमें।
0: भैया खली के खाद ये है कि किसान भाई के घरों में खली होते, जेके ना हो तो बाजारों में आराम से मिल जाता। तो जोन आपके जितना खेती हो वह हिसाब से देख लें कि अगर एक एक बिस्वा के हिसाब से 1 किलो खली पर्याप्त रहे एक
1: अच्छा
0: बार के लिए, तो यही मात्रा में जितना आपके खेत के खेत में डाले के बाद
1: हाँ
0: खली
1: हाँ
0: लेके और कर उही तरह से बर्तन में उका भिगोई दी जाए
1: अच्छा
0: और 8 से 10 दिन तक तो उका खूब भीगे दें, वो
1: हाँ
0: अच्छी
1: हाँ
0: तरह सड़ जाए। ओके बाद उका निकाल के जिसे मिश्रण आपके 1 किलो हुआ
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: 20 किलो में पानी मिला के चाहे कोई छिड़काव कर दें, या तो अगर आप पानी लगाए हैं तो यह तरह से कह दें कि ऊपर टुप टुप पानी गिरत रहे
1: हाँ हाँ
0: और पानी जात रहे तो पूरे खेत में फैल जाए। और ये ऐसा खाद है कि आज आप डलही
1: हाँ हाँ
0: और दुई मतलब कल परसों से उसका असर शुरू हो जाए। एक
1: अच्छा
0: और फायदा भैया, एका डाले से अगर कोनो मट्टी में मान लिया कोनो कीड़ मकोड़ हैं और खेती के नुकसान वाले हैं
1: हाँ हाँ
0: तो उन्हों खत्म हो जाती।
2: हाँ भैया, देखा किसान चर्चा में सूबेदार सिंह भैया से सुरेश कुमार भैया कितना बढ़िया बातचीत करें। हमारे किसान भैया ने एक सुन के जरूर लाभ उठाई। पंच भैया, देखा मौसम अब बदलत आए, ऐसे में अपने पशुअन के विशेष ध्यान रखें, अपन ध्यान रखें, खेती बाड़ी के काम करत भय अपन जौन भी जरूरी काम है उसका समय से करें। तो भैया देखा समय हो गया पर कि आपसे विदा लीन जाए, तो पंचों राम राम।

पंचायत घर कार्यक्रम समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में आप प्रायोजित कार्यक्रम सुनेंगे किसान वाणी।

0: पंचो जय हिंद। ज्योति बहनी,
1: हाँ रामजीत भैया,
0: देखो हम पंच खेती पाती तो करबे करी थे और कहे के यह अपन पहचान है। मूल अपने खेती पाती में हम तरह तरह के औरों काम करी थे जौन अपने खेती से जुड़े हुए रहा थे।
1: बिल्कुल भैया, देखो अगर हम खेती के साथे और बहुत काम करी जो एक दूसरे का सहयोगी हुए तो हम लोगन का मुनाफा भई और अपन लागत कम लागी भैया।
0: बिल्कुल। और यह मां हम पंच बागवानी कह सकी थे, पशुपालन हो गए, मछली पालन हो गए, मौन पालन हो गए और साथ ही साथ जौन जैविक खाद है वहू का हम पंच बनाई के आपन मुनाफा बढ़ा सकी थे।
1: बिल्कुल सही कह भैया। देखो इका इस तरह समझा जाए कि जैसे हम गाय भैंस पाले हैं तो हमरे खेतन में जो भूसा और पराली बचत है उका जो है अपने पशुओं का खिला दे और पशुओं से जो गोबर मिलत है उका खाद के रूप में अपने खेतन में पहुंचा दे।
0: ज्योति बहनी, यही का हम पंच कही थे समन्वित कृषि प्रणाली, जैसे हम पंच आपन लागत कम कर सकी थे और आपन फायदा बढ़ाए सकी थे। मूल इस सब बातन का हम जानी थे आज की खबरें में।
2: उत्तर प्रदेश में रबी फसलों की उत्पादकता बढ़ाने और किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों से जोड़ने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय रबी उत्पादकता गोष्ठी 2026 का आयोजन किया गया। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बुधवार को आयोजित गोष्ठी में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, सहकारिता राज्य मंत्री JPS राठौर और कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख की उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। गोष्ठी में बताया गया कि इस वर्ष रबी फसलों के उत्पादन का लक्ष्य 510 लाख मीट्रिक टन रखा गया है, जबकि पिछले वर्ष 480 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ था। प्रदेश के 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों के अनुरूप फसल चयन, संतुलित उर्वरक प्रबंधन और आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर प्रगतिशील किसानों को उन्नत बीजों के मिनी किट और कृषि यंत्रों के स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। वैज्ञानिकों ने फसल अवशेष प्रबंधन, शून्य जुताई विधि तथा सरसों और अलसी की उन्नत प्रजातियों के बारे में जानकारी दी। रबी सत्र के लिए यूरिया और DAP के पर्याप्त भंडार की भी जानकारी दी गई।
1: रामजीत भैया,
0: हाँ ज्योति बहनी,
1: खेती पाती काम में हम पंच इस समय आलू की बुवाई की तैयारी कर रहे हैं।
0: बिल्कुल, और साथ ही साथ हमें यह तैयारी में का कुछ ध्यान रखे है और कैसे अपन जौन उपज है वही का बढ़ावक है, यही की तय जौन नई तकनीक आ रही है वो का जानब बहुत जरूरी है और यही का हम पंच जानित है आज की बातें में।
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहां इस मौसम में आलू उत्पादन की योजना बनाए हैं तो इसकी उन्नत कृषि तकनीक क्या है, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद से उप महानिदेशक डॉक्टर संजीव कुमार साहब, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आलू उत्पादन जहां करना चाहते हैं किसान भाई बहन तो क्या कुछ संभावना है?
4: किसान भाइयों बहनों को नमस्कार। ये समय आलू की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। इस समय किसान भाई जो समय से आलू की प्रजातियां बोई जाती हैं उनकी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले सप्ताह से समय से बोई जाने वाली प्रजातियों की खेती के लिए सबसे अनुकूल समय है।
3: उपयुक्त तापमान क्या है आलू की खेती के लिए?
4: आलू की खेती के लिए जो तापमान की बात होती है तो फसल अवधि के दौरान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पूरे दिन का देखा जाता है। रात्रि का तापमान 4 से 15 डिग्री सेल्सियस पूरे फसल मौसम की जब बात करते हैं तो रहता है, और कंद जब बनते हैं तो उसमें 18 से 20 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना चाहिए। अगर ये तापमान कंद बनते समय 30 डिग्री या उससे ज्यादा हो जाता है तो कंद में गलन शुरू हो जाता है, फफूंद जनित रोग लग जाते हैं और पैदावार भी प्रभावित होती है।
3: डॉक्टर साहब, खेत का चुनाव और खेत की तैयारी में क्या कुछ खास है?
4: खेत के चुनाव के लिए ये बहुत जरूरी है कि आलू के लिए दोमट या बलुई दोमट भूमि होनी चाहिए जिसका pH मान सामान्य हो, लगभग 6 से 8 के बीच में हो। अगर pH मान कम या ज़्यादा है तो चूना या जिप्सम का उपयोग कर उसको सामान्य भी ला सकते हैं, और pH सामान्य रखना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे पोषक तत्वों का अवशोषण अच्छा होता है।
3: डॉक्टर साहब, आलू की उन्नत प्रजातियां कौन कौन सी हैं, क्योंकि अलग अलग परिस्थितियां हैं, कहीं अगेती फसल किसान भाई बहन लेते हैं, मुख्य फसल कौन कौन सी है, और कहीं कहीं पिछेती खेती करना चाहते हैं जब खेत बाद में खाली होगा तब।
4: जी, आलू के लिए अलग अलग उद्देश्य से अलग अलग प्रजातियां होती हैं। हालांकि अगेती फसल

0: का समय निकल गया है, लेकिन अगेती प्रजातियों में कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी पुखराज, कुफरी सूर्या, कुफरी ख्याति, कुफरी बहार, कुफरी किरण, कुफरी अशोका, ये सब प्रजातियां जो हैं ये 60 से 80 दिन में तैयार होती हैं और इनकी पैदावार लगभग 8 से 14 टन प्रति एकड़ तक मिल जाती है।
1: यानी 80 से 140 कुंतल प्रति एकड़।
0: जी।
1: और मुख्य फसल?
0: मुख्य फसल जो कि 90 से 110 दिन में तैयार होती हैं, इनकी पैदावार लगभग 10 से 16 टन प्रति एकड़ तक मिलती है। इसमें प्रमुख रूप से कुफरी बहार है, कुफरी आनंद है, कुफरी बादशाह, कुफरी सिंदूरी, कुफरी सतलज, कुफरी लालिमा, कुफरी पुखराज, कुफरी ख्याति, कुफरी मोहन,
1: कुफरी गंगा भी,
0: कुफरी गंगा भी है।
1: और जहां विलंब से खेत खाली होगा और पिछेती आलू लगाना चाहते हैं किसान भाई बहन, वहां?
0: हाँ, विशेष तौर से जहाँ धान की फसल की कटाई थोड़ा विलंब से होती है और खेत थोड़ा देर में खाली होते हैं, वहाँ के लिए पछेती फसल जो लगभग 100 से 120 दिन में तैयार होती है, अच्छी से उसकी देखभाल फसल की करते हैं तो 10 से 18 टन तक हमें प्रति एकड़ पैदावार मिल जाती है। उसके लिए जो मुख्य प्रजातियाँ हैं उसमें कुफरी सतलज, कुफरी आनंद, कुफरी बादशाह और कुफरी सिंदूरी।
1: डॉक्टर साहब, आजकल प्रसंस्करण के लिए बहुत सारी प्रजातियां आ गई हैं जो किसान भाई बहन अपने खेत पर लगाना चाहते हैं।
0: जी, प्रसंस्करण के लिए प्रजातियां अलग होती हैं। ऐसी प्रजातियों में शुष्क पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होती है और जो रिड्यूसिंग शुगर है उसकी मात्रा बहुत कम होती है। ऐसी प्रजातियां जो चिप्स प्रसंस्करण के योग्य होती हैं उसमें कुफरी चिप्सोना 1, कुफरी चिप्सोना 3, कुफरी चिप्सोना 4, कुफरी चिप्सोना 5, कुफरी चिप भारत 1, कुफरी चिप भारत 2, कुफरी फ्राई सोना और कुफरी फ्राई ओम, ये बहुत प्रमुख प्रजातियां हैं।
1: और लेटेस्ट वैरायटी?
0: कुछ नई वैरायटीज निकली हैं जो खाने के लिए और प्रसंस्करण दोनों के लिए उपयोगी हैं, उसमें कुफरी संगम प्रमुख है और एक वैरायटी बायो फोर्टिफाइड निकली है, कुफरी जमुनिया। इसका छिलका और गूदा दोनों बैंगनी रंग का होता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण भी होते हैं और ये भारत की पहली प्रजाति है जो बैंगनी रंग की विकसित हुई है।
1: और इसमें एंथोसाइनिन, विटामिन सी और कैरोटीनाइड भी होता है?
0: ये होते हैं, एंथोसाइनिन लगभग 32 मिलीग्राम और विटामिन सी की मात्रा लगभग 52 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम तक होती है और कैरोटीनाइड लगभग 162 माइक्रोग्राम तक इसमें पाया जाता है।
1: डॉक्टर साहब, कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहाँ कम पानी है तो वहाँ भी आलू की कुछ उन्नत प्रजातियाँ हैं?
0: हाँ, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान से कुछ ऐसी प्रजातियाँ भी विकसित हुई हैं जो 90 से 100 दिन में तैयार होती हैं और इनकी पैदावार लगभग 12 से 14 टन प्रति एकड़ तक प्राप्त हो जाती है। इसमें प्रमुख प्रजातियाँ कुफरी थार 1, कुफरी थार 2, कुफरी थार 3 और कुफरी दक्ष है।
1: आलू की बुआई का सबसे उपयुक्त समय क्या है डॉक्टर साहब?
0: आलू की बुआई का सबसे उपयुक्त समय अगर देखा जाए तो ये समय चल रहा है, ये 10 अक्टूबर के आसपास से शुरू होकर के 25 अक्टूबर तक
1: सामान्य फसल के लिए।
0: और जब हमारी धान की कटाई थोड़ा विलंब से होती है, देर से खेत खाली होता है, तो पछेती फसल नवम्बर से दिसंबर तक बोई जाती है।
1: आलू की बुआई में तकनीक कौन सी अपनाएं और अंतरण क्या रखें किसान भाई बहन डॉक्टर साहब?
0: आलू की बुआई अगर कुणों में करते हुए मिट्टी चढ़ाकर कर सकते हैं, यदि प्लांटर से आलू की बुआई करते हैं तो बुआई करते समय ही मिट्टी चढ़ जाती है। और जहां तक अंतरण की बात है तो भोज आलू में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर और कंद से कंद की दूरी 20 सेंटीमीटर रखते हैं, लेकिन जो प्रसंस्करण की प्रजातियां हैं उसमें पंक्ति से पंक्ति की दूरी थोड़ी बढ़ा देते हैं, वो करीब 67 सेंटीमीटर रखते हैं और कंद से कंद की दूरी 20 सेंटीमीटर ही रखी जाती है।
1: डॉक्टर साहब, आजकल पोटैटो प्लांटर आ गया है तो उससे बुआई आसान भी है और अच्छी भी होती है?
0: हाँ, उससे बुआई जल्दी भी हो जाती है और प्लांटर से बुआई करने पर साथ ही साथ मिट्टी चढ़ने का काम भी हो जाता है।
1: आलू की फसल चूंकि अधिक पैदावार देने वाली फसल है तो फसल को भूख भी ज्यादा लगती है।
0: जी, आलू
1: तो पोषक तत्वों का प्रबंधन कैसे हो?
0: आलू में मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ती है। इसमें जो हमारे भोज आलू हैं उसमें लगभग 70 से 75 किलोग्राम नाइट्रोजन, 32 से 35 किलोग्राम फास्फोरस और लगभग 40 किलोग्राम पोटाश की प्रति एकड़ आवश्यकता होती है, लेकिन यह उपयोग मृदा परीक्षण के आधार पर ही करना चाहिए। प्रसंस्करण के लिए जो हमारी प्रजातियां हैं उसमें लगभग 110 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 से 35 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटाश प्रति एकड़ पर प्रयोग करना चाहिए।
1: लेकिन आलू के बीज का चुनाव भी तो महत्वपूर्ण है डॉक्टर साहब?
0: जी, आलू के बीज का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आलू की खेती में लगभग आधा व्यय जो होता है आलू के बीज पर होता है। आलू का बीज सदैव स्वस्थ, रोग रहित होना चाहिए और इसको हमेशा विश्वसनीय स्रोतों जैसे उद्यान विभाग, राज्य बीज निगम या प्रमाणित बीज उत्पादक इकाइयों से ही प्राप्त करना चाहिए। और किसानों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो आलू का बीज है वो

0: अपने स्तर से भी पैदा अगर करते हैं तो 3-4 वर्षों के बाद उसको बदलते रहना चाहिए ताकि शुद्धता बनी रहे। बुआई के लिए 30 से 50 ग्राम भार का जो कंद होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है और 1 एकड़ के लिए 14 से 16 कुंतल तक बीज की आवश्यकता पड़ती है।
1: डॉक्टर साहब, आलू की फसल कई बार फरदा भी होती है, क्या इसके साथ कोई सह फसल भी ले सकते हैं?
0: यहाँ गन्ने के साथ आलू की सह फसली खेती की जाती है और सरसों और आलू की सह फसली खेती की जाती है। इसके अलावा जो धान और गेहूं के बीच का समय होता है उसमें भी हम आलू की फसल 60 से 70 दिन वाली जो होती है वो ले सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे आलू की उन्नत कृषि तकनीक के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: मेरा मोबाइल नंबर है 9415195278, 94151-95278, 94151-95278।
1: डॉक्टर संजीव कुमार साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और आलू की उन्नत कृषि तकनीक क्या है, जहां किसान भाई बहन आलू उत्पादन की योजना बनाए हैं तो कौन कौन सी उन्नत प्रजातियां चुनें और कौन सी तकनीक, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: ज्योति बहनी।
4: हाँ रामजीत भैया।
3: देखो अपने पंच भाई का हम पंच जानकारी तो देन रहे हैं, अब कुछ गीत गाव नहीं हो जाए
4: तो भैया चलो दिग्विजय नाथ सिंह भैया की आवाज में यह लोकगीत सुन लीन जाए।

0: रामजीत भैया,
1: हाँ ज्योति बहनी।
0: देखो हम पंच खेती किसानी करी थे और कुछ किसान ऐसे हुए थे जो अपने काम में इतनी महारत हासिल कर लिए थे कि वे आसपास के किसानन का प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं।
1: बिल्कुल बहनी, और वो नहीं का हम बात करी थे आज के किसान मा।
2: किसान भाइयों बहनों, आइए आज आपको ले चलते हैं बस्ती जनपद के बिक्रमजोत ब्लॉक के देवखर गांव, जहां व्यावसायिक बकरी पालन से जुड़े अमन सिंह भैया टेलीफोन लाइन पर हैं। अमन सिंह भैया नमस्कार।
3: नमस्कार डॉक्टर साहब।
2: अमन सिंह भैया, ये बताएं कि आप व्यावसायिक बकरी पालन के लिए जाने जा रहे हैं, इसकी शुरुआत हुई कब से?
3: सर, इसकी शुरुआत मैंने किया था 2011 से।
2: यानी 15 साल हो गए।
3: जी,
2: तो कहीं से प्रेरणा आपको जगी होगी कि बकरी पालन शुरू करें?
3: ऐसे ही कुछ व्यवसायिक क्लास थी हम लोगों की, एग्रीकल्चर से रिलेटेड रहा, बहुत सारे सर्वे करते हुए गोट फार्मिंग हम लोगों ने अच्छा समझा।
2: आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई?
3: MA हुआ था हमारा।
2: यानी दिमाग में था कि कुछ कृषि को उद्यम बनाना है।
3: जी,
2: तो शुरुआत में कितने बकरियों से आपने बकरी पालन की शुरुआत की?
3: करीब करीब 500 बकरियां थी हमारी शुरुआत में। 800 का मैंने सेट बनाया।
2: हाँ,
3: और 500 से मैंने शुरुआत किया इसकी।
2: और अभी?
3: अभी लगभग 500-700 बकरियां हैं। एक्चुअली उसमें हमारे किसान जो महिलाएं हैं
2: जी,
3: तो उसमें हमने एक अपने खुद से समूह बनाया महिलाओं का।
2: अच्छा।
3: और उसमें क्या किया कि वो किसानों को एक दो बकरी, चार बकरी, पांच बकरी तक हमने एक, जैसे गांव गांव में बटैया होता है
2: जी,
3: इस तरह से मैंने दिया उन सबको।
2: हाँ।
3: और उनकी देखभाल मैंने की, जैसे ट्रीटमेंट वगैरह करना हुआ तो एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया कि उस पर कोई दिक्कत होती है तो इस पर फोन करिए, हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। और उस बकरियों की क्रॉस कराने की जो विधि है, हमने मेल दे रखा है, उससे आप क्रॉस कराएंगे, नस्ल सुधार होगा, अच्छे नस्ल आएंगे
2: जी।
3: जो उनसे पैदावार होती है उससे 50% मेरा, 50% उनका रहता है। यदि उनको नहीं रखना है तो वो बकरियों को वापस कर देंगे। इस तरह से हमारे पास में भी व्यवस्थाएं हैं।
2: जो आपका बकरी पालन का शेड है उसमें 500 बकरियां ऑलरेडी हैं
3: जी,
2: और इसके अलावा आपने समूह में जोड़ रखा है बहनों को
3: जी, 500-700 बकरियां वहां भी फील्ड में।
2: अच्छा
3: जी,
2: तो ये जो 500 बकरियां इस समय आपके यहाँ हैं, तो कौन कौन सी नस्ल है?
3: सर, मेरे पास सिरोही हैं, बारबरी हैं, उस्मानाबादी, जकराना, जमुनापारी, इस तरह की बकरियां हैं।
2: तो शुरुआत में इतनी बकरियों का बच्चा ले आए कहाँ से आप?
3: हमने वहां पे ट्रेनिंग किया था CIRG में,
2: यानी केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा
3: मखदूम में।
2: हाँ।
3: तो उस समय हमारे डॉक्टर वहां पे थे, MK सिंह।
2: हाँ।
3: प्रधान वैज्ञानिक, और वहाँ के इकोनॉमिक साइंटिस्ट जो थे, AK दीक्षित जी,
2: जी
3: उनके द्वारा भी बहुत ज्यादा सपोर्ट हम सबको मिला। और संशोधन करके, कुछ डॉक्टरों से रिसर्च करके बकरियों का

0: वैक्सीनेशन करके धीरे धीरे करके एकत्र किया गया बकरियों को,
1: अच्छा,
0: फिर फील्ड से लाना हम लोग बंद कर दिए और प्रोडक्शन करना शुरू कर दिए
1: अपना ही बढ़ाने लगे आगे।
0: जी। और उसमें वैक्सीनेशन वगैरह सब कुछ करने लगे धीरे धीरे, हम लोगों ने ट्रीटमेंट खुद करना शुरू किया,
1: जी
0: बहुत सारे डॉक्टरों से सलाह रहा धीरे धीरे करके।
1: हाँ,
0: फिर 2018 में हम लोगों ने क्या किया, आकर के यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में कई स्टेट में यहाँ से लोग बकरियाँ ले जाते हैं
1: जी
0: फार्मिंग के लिए, किसान
1: हाँ
0: और बिजनेसमैन जितने होते हैं, अगर कोई कमर्शियल फार्मिंग करना चाहता है, साइंटिफिक तरीके से करना चाहता है,
1: जी
0: तो उनको भी हम लोग बकरियाँ देते हैं, उनको सेट की गाइडलाइन देते हैं, उनको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में बताते हैं, और वहाँ ट्रीटमेंट करने के विषय में यहाँ हम लोग प्रैक्टिकली करा देते हैं उनको,
1: जी
0: और फिर हेल्पलाइन नंबर दिया जाता है कि अगर उनको दवा करना है कुछ तो आप फोन करके उनके सिम्टम को बताइए, उनका वीडियो दिखाइए, फिर उस तरह से हम लोग दवा उनके फार्म पे रखवा देते हैं, और जरूरत पड़ने पर वो हमसे कंसल्ट करते हैं, फिर हम उनको रिकमेंड करते हैं कि क्या क्या चीजें दवा करनी होगी, कहाँ पे लगाना
1: यानी
0: है।
1: 15 साल में आपके पास बहुत सारा तजुर्बा हो गया
0: जी
1: बकरी
0: जी
1: पालन का।
0: जी
1: तो आपकी दिनचर्या क्या है, अपनी जो 500 बकरियां पाले हैं अपने शेड में?
0: सर, देखिए उनका देखभाल करना पड़ता है, और सुबह होने पर बकरियों का एक बार स्टडी करना पड़ता है फील्ड में, वहां जाकर के फार्म के अंदर, तो उसमें बहुत सारी बकरियां प्रेग्नेंट होती हैं, 1 महीने की कोई है, कोई 2 महीने की है, 3 महीने की है, 4 महीने की है, 5 महीने में बच्चा देती हैं 150 दिन में,
1: जी
0: तो सबका अलग अलग शेड, अलग अलग चैम्बर बनाया गया है।
1: जी
0: जैसे जैसे करीब आती जाती हैं बकरियां, तो जो सबसे करीब में होती हैं उनका देखभाल ज्यादा करना पड़ता है कि कौन सी बकरी आज बच्चा देने वाली है, उसका देखभाल करना। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो सुबह सुबह ही जांच पड़ताल कर लेना चाहिए ताकि उनको ट्रीटमेंट तुरंत किया जा सके,
1: जी
0: या रात में कोई उनके जो डिजीज आए या दिक्कत खड़ी हुई तो उससे अगर हम सुबह देखभाल करते हैं तो उनको बचाना आसान होगा, क्योंकि रात में ट्रीटमेंट हो नहीं पाया तो दिन में सुबह सुबह करके, फिर उसके बाद में साफ सफाई होती है, और वर्कर्स होते हैं वो अपना चारा तैयार करेंगे, फिर उनको अलग अलग स्टॉल में उनको खाना दिया जाता है।
1: यानी स्टॉल फीडिंग कराते हैं
0: जी
1: क्या, अलग से चराई का भी प्रबंध करते हैं क्या?
0: चराई का उसमें अप्रैल मई जून में आसपास में जब किसानों की फसल कटती है
1: जी
0: तब उसमें थोड़ा सा फील्ड में दिया जाता है घूमने का।
1: तो चारे दाने का प्रबंधन रोज का रोज कैसे करते हैं?
0: जी जैसे हमारे पास भूसा का स्टॉक हम लोग कर लेते हैं पहले से अप्रैल मई में,
1: जी
0: और उसके राशन जो उनके खाने के लिए होता है, मक्का हुआ, जौ हुआ, गेहूं हुआ, दाल का छिलका हुआ, ये सब भी हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं,
1: जी
0: और खुद मशीन रखे हैं, चाप कटर मशीनें हैं, और वो दाना मिक्सर मशीन है, उसमें हम लोग उसको दाना को तैयार करते हैं।
1: तो उनके वजन के हिसाब से उनको दाना मिश्रण देते होंगे, चारा देते होंगे।
0: हाँ, एक औसत निकाला जाता है कि अगर हम 200 ग्राम देना चाहते हैं तो 500 बकरियां हैं, तो उसी हिसाब से वो वेटिंग करके अपना जो है दाना को रोज निकालते हैं और उनको खिलाते हैं।
1: चूंकि 15 सालों से लगातार आप व्यावसायिक बकरी पालन कर रहे हैं, आपके शेड में 500 बकरियां हैं, पूरे साल में लागत कितना गिरती है, उत्पादन कितना तक ले लेते हैं और आपका मुनाफा होता कितना है?
0: 1.5 से 2 लाख रुपए लग जाते हैं इनके चारे का
1: जी
0: साल में, चारे का जो होता है भूसे वगैरह का, घास वगैरह का,
1: जी
0: और उसमें दाना जो होता है उनका लगता है 2.5-3 लाख रुपए, और वर्कर्स के जो लगते हैं करीब 9 लाख रुपए, तो वर्कर के लग जाते हैं 9 से 10 लाख,
1: जी
0: हमारे जो फील्ड में है उनका नहीं, जो हमारे फार्म के
1: हाँ, जो
0: हैं
1: आपके पास जो बकरी पालन 500 बकरियों का।
0: जी। और साल में करीब 4 से 5 करोड़ का टर्नओवर भी हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट सप्लाई और बहुत सारी समूह हैं तो उनको भी हम लोग देते हैं, और जो कोई फार्मिंग करना चाहता है 100 बकरी 200 बकरी का कमर्शियल फार्मिंग,
1: जी
0: उनको भी हम लोग जो है सेट का गाइडलाइन, और उनको बकरियां दी जाती हैं ब्रीडिंग पर्पज की,
1: हाँ,
0: और उनको भी बहुत सारी चीज रिकमेंड किए जाते हैं मैनेजमेंट के बारे में।
1: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे
0: जी
1: बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 7311004985, 7311004985, 7710004945।
1: अमन सिंह भैया, आज आपसे इतनी अच्छी बातचीत हुई कि आप परास्नातक की पढ़ाई के बाद सीधे व्यावसायिक बकरी

पालन में जुट गए। आपने केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम फरह मथुरा से प्रशिक्षण लेकर के एक शुरुआत की और 15 साल में आज एक मुकाम पर हैं और किसान भाइयों बहनों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
1: मतलब?
0: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे पहली वाली बात कहाँ,
1: पर हम तो सभी डाले हैं।
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है?
0: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
3: मौसम का बदले में यहाँ भैया दुई पल लागत है, तो अगर सही जानकारी हमका मिल जाए तो हम पंच बहुत अच्छे से अपन काम कर सकी।
4: बिल्कुल, यही बदे अपने पंचन का मौसम केर जानकारी दे दीन जाए। तो भारत सरकार, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग, प्रादेशिक मौसम केंद्र लखनऊ के अनुसार अगले 7 दिन तक के जो वर्षा केर पूर्वानुमान है पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 8 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक गरज चमक के साथ बौछार पड़े केर संभावना है, और 12 से 14 तक मौसम शुष्क रही, साथ ही साथ कौनो विशेष चेतावनी नहीं है। तो ज्योति बहनी, ई रहे मौसम केर हाल, अब अपने पंच भाई का कार्यक्रम केर पता बताए दिन जाए।
3: कार्यक्रम किसानवाड़ी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, और पिन कोड है 226001।
4: साथे बहनी, जे पंच हम पंचन का मेल करे चाहें वह मेल लिखें।
3: तो मेल आईडी है अपन farmandhomeairlko@gmail.com।
4: तो देखो बहनी, अब अपने बैठकी का समय हो रहा है, तो पंचन से लीन जाए आज्ञा। जय हिंद।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। शाम के 7:20 होने को है, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: 10,000 रुपए से कम के लंबित नोटिस लिए जाएंगे वापस। केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन ने नोएडा में युवाओं को किया संबोधित, विकसित भारत के लिए कौशल, रचनात्मकता और क्षमताओं के इस्तेमाल का किया आह्वान। और भारतीय वायुसेना के 94वें स्थापना दिवस पर गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ भव्य समारोह, ब्रह्मोस मिसाइल के साथ स्वदेशी विमान तेजस आकाश और ध्रुव का हुआ प्रदर्शन। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में पुलिस के कुशल खिलाड़ी कोटे से चयनित 470 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। नियुक्ति पाने वालों में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता शामिल हैं। इनमें नागरिक पुलिस के 43 उपनिरीक्षक, 295 आरक्षी और पीएसी के 132 आरक्षी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 9 वर्षों में खिलाड़ियों को 200 करोड़ रुपए से अधिक प्रोत्साहन राशि दी गई है। करीब 1,000 खिलाड़ियों को पहले नियुक्ति मिल चुकी है और 555 अन्य की चयन प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव से लेकर शहरों तक खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाया जा रहा है।
1: गांव से लेकर के ब्लॉक तक, ब्लॉक से लेकर जनपद स्तर तक, जनपद स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक, खेल के मैदान से लेकर के मिनी स्टेडियम, मिनी स्टेडियम से स्टेडियम और स्टेडियम से इंटरनेशनल स्टेडियम आज उत्तर प्रदेश के अंदर विकसित हो रहे हैं। हर कमिश्नरी में एक स्पोर्ट्स कॉलेज दे रहे हैं, स्पोर्ट्स कॉलेज में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दे रहे हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की प्रैक्टिस करने की सुविधा हो और उस प्रकार के कोचेज भी हों, उस प्रकार की टीम वहां पर उनके साथ कार्य करती हुई दिखाई देनी चाहिए।
0: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की 6वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने भारतीय राजनीति के माध्यम से अपना जीवन सामाजिक चेतना को जागरूक करने के लिए समर्पित किया।
2: आजीवन उन्होंने अपने स्वर को भारत की राजनीति के माध्यम से उस सामाजिक चेतना को जागरूक करने के लिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपने का भारत बनाने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। एक दलित और वंचित को न्याय मिले, समाज की मुख्य धारा में उन्हें सम्मान मिले, उचित स्थान मिले और आजीवन उन्होंने अपने संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए, उस लड़ाई को एक मंच तक पहुंचाने के लिए कार्य किया।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में कर वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना समेत महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के मुख्यमंत्री और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों ने हिस्सा लिया। बैठक में जीएसटी विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि बैठक में दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद ने आज नोटिस और कार्यवाही के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है और 10,000 रुपये या उससे कम की मौद्रिक सीमा के लिए नोटिस जारी नहीं किए जाएंगे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन आज नोएडा में एक निजी इंस्टीट्यूट के समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित किया। उन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का संदेश विद्यार्थियों के सामने रखते हुए कहा कि युवा अपना भविष्य ऐसे क्षेत्रों में तलाशें जहां वो आत्मनिर्भर बनने के साथ ही बाकी युवाओं को भी रोजगार दे सकें। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवैधानिक पद पर 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 2 दिवसीय नमो बुक फेस्ट में शामिल हुए। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति का लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतनी लंबी अवधि तक निरंतर सरकार का नेतृत्व करना दुर्लभ है।
3: आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को एज हेड ऑफ गवर्नमेंट 25 साल मुकम्मल हुए हैं 7 अक्टूबर को। पहले निरंतर 12-12.5 बरस तक मुख्यमंत्री और फिर लगभग उतने ही अवधि के लिए प्रधानमंत्री। मुझे नहीं लगता विश्व में कोई ऐसा और उदाहरण है जहां निरंतर बिना ब्रेक कोई भी व्यक्ति किसी सरकार का मुखिया रहा हो इतने लंबे अंतराल।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पुलिस कोटे से चयनित 470 खिलाड़ियों को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश भर में बेहतरीन खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का हो रहा है विकास। नई दिल्ली में हुई जीएसटी परिषद की बैठक में दरों में नहीं किया गया बदलाव। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बताया।

0: मामले में कीर्तिमान है, विशेषकर लोकतांत्रिक व्यवस्था में, और ये हमारे लिए गर्व की बात हुई।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे किए हैं। उनकी यह यात्रा सेवा और सुशासन के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता की मिसाल रही है। आज की हमारी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि परीक्षा पे चर्चा पहल ने कैसे युवाओं में परीक्षा का दबाव कम करके उनके आत्मविश्वास को बढ़ावा दिया है।
2: परीक्षा पे चर्चा एक वार्षिक संवाद कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत करते हैं और परीक्षा के तनाव को कम करने के साथ साथ पढ़ाई को आनंददायक बनाने के तरीकों पर चर्चा करते हैं। परीक्षा पे चर्चा के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में छात्रों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें खुद को मजबूत बनाने और इस तरह के दबाव का सामना करने में सक्षम बनने की सलाह दी।
3: किसी भी प्रकार के प्रेशर को झेलने के लिए सामर्थ्यवान बनाना चाहिए, रोते बैठना नहीं चाहिए, मान के चलना चाहिए कि जीवन में आता रहता है, दबाव बनता रहता है, तो खुद को तैयार करना पड़ता है। दबाव को हमने अपने तरीके से मन से एक बार इस स्थिति से जीतना है, एक तो संकल्प करना।
2: गोरखपुर की छात्रा पिंकी ने बताया कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम ने न सिर्फ उनके मन से परीक्षा का डर निकाला बल्कि काफी कुछ सिखाया भी है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चलाए जा रहे परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम से काफी हमें सहायता मिली है। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और परीक्षा को लेकर काफी हिचक भी दूर होता है।
2: इस कार्यक्रम के जरिए छात्राओं के समग्र विकास पर ध्यान दिया जाता है। यह परीक्षा से जुड़े तनाव को कम करने के साथ साथ छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान केंद्रित करता है। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
1: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज वाराणसी में युवाओं से संवाद किया। उन्होंने युवाओं के सवाल सुने और शिक्षा, रोजगार, स्टार्टअप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मीडिया और विकसित भारत के लक्ष्य से जुड़े विषयों पर अपने विचार रखे। श्री नवीन ने कहा कि भारत युवाओं का देश है और हमें उनकी क्षमता को समझना होगा।
5: भारत का युवा पूरी तरह से देश के विकास के लिए काम करता है। देश का युवा बटेगा नहीं, देश का युवा इस देश की ताकत बनकर इस देश के विकास में देश की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए लगेगा।
1: भारतीय वायुसेना के 94वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज गाजियाबाद के साहिबाबाद स्थित हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे। इस दौरान एयर शो में विमानों ने प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में लड़ाकू विमानों और हथियारों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। इनमें ब्रह्मोस मिसाइल के साथ स्वदेशी विमान तेजस, आकाश और ध्रुव को भी प्रदर्शित किया गया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने एयरफोर्स डे परेड की सलामी ली और जवानों के पराक्रम व अनुशासन की सराहना की। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज शाम पुणे के पास डोंजे में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। आज सुबह गोवा में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। नाना पाटेकर हिंदी और मराठी सिनेमा के जाने माने अभिनेता थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर शोक जताया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रख्यात अभिनेता, रंगमंच के सशक्त कलाकार और संवेदनशील समाजसेवी पद्मश्री नाना पाटेकर का निधन कला जगत की अपूर्णीय क्षति है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पुलिस कोटे से चयनित 470 खिलाड़ियों को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश भर में बेहतरीन खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का हो रहा है विकास। नई दिल्ली में हुई जीएसटी परिषद की बैठक में दरों में नहीं किया गया बदलाव। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बताया, 10,000 रुपये से कम के लंबित नोटिस लिए जाएंगे वापस। केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन ने नोएडा में युवाओं को किया संबोधित। विकसित भारत के लिए कौशल, रचनात्मकता और क्षमताओं के इस्तेमाल का किया आह्वान। और भारतीय वायुसेना के 94वें स्थापना दिवस पर गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ भव्य समारोह। ब्रह्मोस मिसाइल के साथ स्वदेशी विमान तेजस, आकाश और ध्रुव का हुआ प्रदर्शन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन

0: समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत काव्य कौमुदी में लीजिए पहले सुनिए आशीष कुमार मिश्र से उनका काव्य पाठ।
2: पहली कविता, वो आएंगे जब थक जाएंगे, रोज भागते ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, तरक्की खोजते, पैसा खोजते, मकान खोजते, आराम खोजते, जब थक जाएंगे वो आएंगे। इन्हीं खेतों की मेढ़ों पर, पेड़ों की छाओं के पास बैठेंगे एक साथ, देखेंगे घास, सूंघेंगे हवा, लिपटेंगे मिट्टी से, खेलेंगे केचुओं से, मेंढकों से, घोंघों से, देखेंगे तीतर, ततैया, धूप और आसमान। तब हो सकता है शायद उतर जाए उनकी थकान। अगली कविता है जिसका शीर्षक है तुम। तुम जब आती हो तो ऐसा लगता है जैसे एक नदी चली आई हो मेरे पास, एक छोटी पहाड़ी नदी, अपनी चंचलता और मौलिकता में भरपूर, और मैं देखता रह जाता हूँ तुम्हें कुछ देर तक, एक पहाड़ी चरवाहे की तरह, ऐसे जैसे कोई अजीविका हो गई हो तुम। अगली कविता है जिसका शीर्षक है थोड़ा। थोड़ा सा होना, थोड़ा सा होना, जैसे पेड़ की जड़ों में पानी, हवा में नमी, जैसे सुबह की मीठी धूप, खेतों की मेढ़ों में उगी हुई दूब, इस बेतहाशा बढ़ती दुनिया में जहां सबके अपने अपने सपने हैं, थोड़ा होना ही सही है सबके अस्तित्व के लिए। अगली कविता है संगीत। हर बार चिड़िया का चहचहाना संगीत नहीं होता, कई बार होता है भूख, कई बार होती है प्यास, कई कई बार होता है अपने साथी से बिछड़ जाना, एक घोंसला ना बना पाना। चिड़िया का चहचहाना बदल जाता है जब वह गांव से शहर आती है, सुनने वाले की इच्छा पर भी करता है यह निर्भर। शायद यही वजह होगी कि मुंडेरे पे सुबह वैसी आवाजें नहीं आती जैसी बागों से आती हैं। चिड़िया के चहचहाने का संगीत नदी किनारे मिलता होगा शायद, या जंगलों में, या पहाड़ों में। अगली कविता है जिसका शीर्षक है बुजुर्ग। पुराने मकान में पुरानी दीवार ने छोड़ दिया है प्लास्टर, जैसे बुजुर्ग छोड़ देते हैं घर का आंगन धीमे धीमे, दीवार झांक रही है उस प्लास्टर से, जैसे बुजुर्ग झांक लेते हैं चबूतरे से आंगन में, दीवार की मरम्मत हो जाएगी, दीवार की मरम्मत हो जाएगी, बुजुर्ग छोड़ देंगे एक दिन चबूतरा भी धीमे धीमे। अगली कविता है जिसका शीर्षक है बाजार। एक मॉल खुल गया है बाजार में, जैसे एक मगरमच्छ चला आया हो नदी से गांव के तालाब में, बाजार में हलचल बढ़ सी गई है, दुकानदारों में बेचैनी बढ़ सी गई है, लोग लुटा रहे हैं पैसा ऑफर्स पे, दुकानों की सस्ताई लगने लगी है महंगाई, मॉल जकड़ने लगा है बाजार को एक अजगर सहीखे, दुकानों का दम घुटने लगा है, लोग बेफिक्र हैं फैशन के इस दौर में, सब कुछ नया नया है, सालों तक पेट भरने वाला दुकानदार आज शायद भूखा सोया हुआ है। अगली कविता है लौटना। जैसे पक्षी लौटते हैं घोंसलों पे, जैसे पक्षी लौटते हैं घोंसलों पे, डॉल्फिन लौटती है सतह पे, इंसान नहीं लौटते वैसे अपने रोजगार से, इंसान लौटते हैं दुनियावी चिंताओं का कर्ज लेकर, जिनके सूद वो अपने मालिकों के खातों में चढ़ाकर आए हैं, सूद मूल का दुष्चक्र उन्हें घुन बनकर खाता जाता है, लौटना असंभव होता जाता है, लौटना उतना ही आवश्यक है

जितना मृत्यु जैसे मौत लौटती है जिंदगी की ओर, वैसे ही इंसानों का लौटना जरूरी है इंसान बने रहने के लिए। अगली कविता है जिसका शीर्षक है बिटिया भाग गई थी। बिटिया भाग गई थी, जाति छोड़ गई थी। भागना थी एक प्रतिक्रिया जो दाग दी थी समाज ने माथे पे उसके मनगढ़ंत कहानियों के लोहे से। बच्चे पूछेंगे जीवन भर उससे, माँ ये दाग कहाँ मिला तुम्हें। चैत्र धर्मिता का कोई भी सर्टिफिकेट, कोई भी डिग्री शायद ही ढक पाए उस बिटिया का भागना। अपने प्रेमी के घर से देखती होगी हर रोज वह दागदार चांद, और ढूंढती होगी पिता को उसमें उसी रौबदार चेहरे और चौड़ी छाती के साथ। कुछ चुना ही तो था उसने, ठीक वैसे ही जैसे एक भौंरा चुनता है फूलों को, पक्षी चुनते हैं फलों को, कीटों को, जैसे चुनती है नदी एक रास्ता, ठीक वैसे ही चुना था उसने किसी को। हाँ, उसने नहीं चुनी थी एक बनी बनाई विधियाँ, परंपराएं चुने जाने की, उसने चुनी स्वच्छंदता, मन का बौड़मपन। उसने खुद को ही चुना होगा शायद, पर यह सामाजिक दुर्भाग्य ही है उसका कि स्वयंभू स्वच्छंद होकर भी वह जकड़ ली गई जीवन भर के लिए उस माथे पे दाग देने की वजह से कि बिटिया भाग गई थी।

0: अभी आप आशीष कुमार मिश्र से उनका काव्य पाठ सुन रहे थे और अब वीरेंद्र कुमार तिवारी से सुनिए उनका काव्य पाठ।
1: मेरा पहला गीत है तरसे हो जो प्यार की खातिर। तरसे हो जो प्यार की खातिर,

जी ये दूसरी कविता है, वसुधैव कुटुंबकम। जीने की चाहत ने हमको बना दिया बंजारा, किससे घृणा करें बतलाओ सारा जगत तुम्हारा। जिसकी जो कामना उसी की पूर्ति हेतु कुछ करता, निज अभाव की पूर्ति के लिए घूम रहा जग सारा। सब में एक चेतना फिर भी सबकी पृथक पृथक रुचि, क्यों कैसे होता है ऐसा हमने नहीं विचारा। यह दुखिया संसार हमें सुख देगा यह भ्रम केवल, जो असहाय समय के आगे देगा नहीं सहारा। देश काल की सीमा में बदसू रहना हमें न आया, आज यहाँ कल वहाँ घूमते हमने समय गुजारा। चिंता तनिक भविष्य की नहीं वर्तमान में जीते, जो कुछ भी समक्ष आँखों के वही हो गया प्यारा। कोई नहीं पराया अपना, सभी तुम्हारे नाते, इसीलिए मान कर चलते जग परिवार हमारा। तीसरा गीत है, पोथियों में ही न मिलते जगत के प्रश्नों के हल, साथ अपने भी बिताने पड़ते हैं अनमोल पल। आज कुछ कल और कुछ यों बदलती रहती समस्या, समय के अनुरूप करनी पड़ती है सबको तपस्या। पात्रता अनुसार मिलता हर किसी को पृथक फल, पोथियों में ही न मिलते जगत के प्रश्नों के हल। जो दिखाई दे रहा था उसी को सच मान बैठे, जननी खुश थी जिन्हें जन कर वही बेटे भुला बैठे। असंभव पहचानना है, असंभव पहचानना है कौन अपना आजकल, पोथियों में ही न मिलते जगत के प्रश्नों के हल। राम का आदर्श अब तो बात केवल ग्रंथ की है, अर्थ ही मंजिल है सबकी, बात होती पंथ की है। लोभ का मारा मनुज, लोभ का मारा मनुज नित धर्म।

0: प्राणी मृत्यु तक कुछ सीखता है। सत्य जो अब तक छुपा था मन दृगों से दिखता है, अन्यथा संसार है मृग मरीचिका सदृश जल।
1: हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत काव्य कॉमेडी में अभी आप वीरेंद्र कुमार तिवारी से उनका काव्य पाठ सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में हमारी आज की कलाकार हैं वर्षा तिवारी। लीजिए पहले इनके स्वर में सुनिए सितेश आलोक का लिखा ये गीत।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में हमारी आज की कलाकार थी वर्षा तिवारी। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। श्रोताओं, आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समर्पित है महान अभिनेता नाना पाटेकर साहब को, जो आज हमारे बीच नहीं रहे। उन्हें हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। श्रोताओं, भारतीय सिनेमा में बहुत से ऐसे चेहरे आए और गए। कुछ ने अपनी खूबसूरती से दिल जीता तो कुछ ने अपनी अदाकारी से, लेकिन एक चेहरा ऐसा है जिसने ना तो परंपरागत हीरो का ढांचा माना और न ही विलेन का। जब वो पर्दे पर आते हैं तो संवाद उनकी आंखों से पहले बहते हैं।

वो बोलते हैं तो पूरा सिनेमा हॉल खामोश होकर सिर्फ उन्हें सुनता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेमिसाल और अद्भुत कलाकार नाना पाटेकर साहब की। 80 के दशक में जब समानांतर सिनेमा और व्यावसायिक सिनेमा के बीच एक लकीर खींची थी, तब नाना साहब ने उस लकीर को मिटाकर अपनी एक नई राह बनाई। फिल्म परिंदा का अन्ना एक ऐसा किरदार जिसने खलनायक की परिभाषा ही बदल दी, जिसके लिए नाना साहब को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। नाना साहब की सबसे बड़ी खासियत क्या है जानते हैं श्रोताओं? उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनकी आवाज में वो ठहराव, वो कड़कपन और फिर अचानक एक अजीब सी हंसी, ये सब सिर्फ और सिर्फ नाना पाटेकर साहब ही कर सकते हैं।

श्रोताओं, नाना साहब सिर्फ एक कड़क या गुस्से वाले किरदार तक सीमित नहीं रहे। उनके भीतर एक संवेदनशील प्रेमी और एक भावुक कलाकार भी छुपा था। फिल्म खामोशी, क्रांतिवीर और तिरंगा जैसे फिल्मों ने साबित किया कि वो हर रंग में ढल सकते हैं। फिल्म खामोशी द म्यूजिकल में नाना पाटेकर साहब ने एक मूक बधिर पिता की भूमिका निभाई थी, जिसमें उन्होंने बिना एक शब्द बोले सिर्फ अपने हाव भाव से दर्शकों को रुला दिया था। आइए सुनते हैं इस फिल्म का एक बेहद खूबसूरत गाना।

श्रोताओं, सीरियस रोल और एक्शन में तो नाना पाटेकर साहब का कोई जवाब नहीं था, लेकिन जब उन्होंने कॉमेडी में कदम रखा तो लोगों ने पेट पकड़कर हंसना शुरू कर दिया। फिल्म वेलकम का उदय भाई याद है ना आपको? भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है। इसे किरदार ने नई पीढ़ी को भी नाना पाटेकर साहब का दीवाना बना दिया।

श्रोताओं, 90 के दशक में जहाँ नाना पाटेकर साहब ने राजकुमार साहब के साथ फिल्म तिरंगा में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया, तो वहीं क्रांतिवीर में समाज को आईना दिखाया। क्या आप जानते हैं कि नाना साहब के गानों में एक अलग ही मस्ती और देसीपन भी होता था?

श्रोताओ, नाना पाटेकर साहब सिर्फ एक महान अभिनेता ही नहीं थे, बल्कि पर्दे के पीछे एक बेहतरीन इंसान और समाज सेवक भी थे। नाम फाउंडेशन के जरिए उन्होंने किसानों और ज़रूरतमंदों की जो सेवा की है, वो ये साबित करती है कि उनका दिल उनके किरदारों से भी बड़ा है। उनकी अदाकारी, उनकी सादगी और उनके संगीत में सफ़र को हमारा सलाम। लेकिन जाने से पहले सुनिए फिल्म वजूद का ये गाना, जो उनकी ही आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था।

कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो, कैसे बताऊं, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत हो, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, तुम हर खुशी, तुम प्यार हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, आंखों में तुम, यादों में तुम, सांसों में तुम, आहों में तुम, नींदों में तुम, ख्वाबों में तुम हो, मेरी हर बात में तुम हो, मेरे दिन रात में तुम, सुबह में तुम, शाम में तुम, सोच में तुम, काम में, मेरे लिए पाना भी तुम, मेरे लिए खोना भी तुम, मेरे लिए हंसना भी तुम, मेरे लिए रोना भी तुम, और जागना सोना भी तुम, जाऊं कहीं देखू कहीं तुम हो वहां, तुम हो मैं, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम बिन तो मैं कुछ भी नहीं, कैसे बताऊं मैं तुम्हें?

ये जो तुम्हारा रूप है ये जिंदगी की धूप है। चंदन से तरसा है बदन, बहती है जिसमें एक अगन। ये शोखियां ये मस्तियां तुमको हवाओं से मिली, जुल्फे घटाओं से मिली, होठों में कलियां खिल गई, आंखों को छीले मिल गई, चेहरे में सिमटी चांदनी, आवाज में है रागिनी। शीशे के जैसा अंग है, फूलों के जैसा रंग है, नदियों के जैसी चाल है, क्या हुस्न है क्या हाल है। ये जिस्म की रंगीनियां जैसे हजारों तितलियां बाहों

की ये गोलाइयां, आंचल में ये परछाइयां, ये नगरियां हैं खाब की। कैसे बताओ मैं तुम्हें हालत दिले बेताब की, कैसे बताओ मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो, कैसे बताओ।

कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम धर्म हो, मेरे लिए ईमान हो, तुम ही इबादत हो मेरी, तुम ही तो चाहत हो मेरी, तुम ही मेरा अरमान हो। तकता हूं मैं हर पल जिसे, तुम ही तो वो तस्वीर हो, तुम ही मेरी तकदीर हो, तुम ही सितारा हो मेरा, तुम ही नजारा हो मेरा। यूं ध्यान में मेरे हो तुम, जैसे मुझे घेरे हो तुम, पूरब में तुम, पश्चिम में तुम, उत्तर में तुम, दक्षिण में तुम, सारे मेरे जीवन में तुम, हर पल में तुम, हर चिर में तुम। मेरे लिए रास्ता भी तुम, मेरे लिए मंजिल भी तुम, मेरे लिए सागर भी तुम, मेरे लिए साहिल भी तुम। मैं देखता बस तुमको हूं, मैं सोचता बस तुमको हूं, मैं जानता बस तुमको हूं, मैं मांगता बस तुमको हूं, तुम ही मेरी पहचान हो। कैसे बताओ मैं तुम्हें, देवी हो तुम मेरे लिए भगवान हो, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए कौन है।

प्रोग्राम के आखिर में बस यही कहना चाहूंगी, महान दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर साहब को आकाशवाणी प्रयागराज की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम के आरंभ में लीजिए सुनिए कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये भक्ति रचना।

इसी के साथ सबरस का ये प्रोग्राम अब ख़त्म होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला प्रसारण होगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वस्तु और सेवा कर परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त किया। अभियोग की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए की गई। कर दरों में कोई बदलाव नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग के कारण फोन और नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना आवश्यक। डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार अगले महीने तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुरक्षा सुनिश्चित करने और डीप फेक से निपटने के लिए नियमों पर परामर्श पत्र जारी करेगी। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की। कनाडा की कवित्री एनी कार्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा। और पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। वस्तु और सेवा कर परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में आज परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि परिषद ने जुर्माने और कारावास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया है।
2: The count-

0: council recommended removing arrest powers under GST.
1: जीएसटी परिषद ने गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने की सिफारिश की है. परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की भी सिफारिश की है. इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम की कर चोरी के मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा. सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गई है.
2: कर फाइलिंग में गलती या भुगतान करने में विलंब करने पर करदाता को वसूली, ब्याज और आनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा. वित्त मंत्री ने बताया कि दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्यवाही के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है.
0: जीएसटी काउंसिल टुडे हैज रेकमेंडेड.
1: जीएसटी परिषद ने आज नोटिस और कार्यवाही के लिए समान मानकों की सिफारिश की है. 10,000 रुपए की निर्धारित मौद्रिक सीमा से कम के नोटिस जारी नहीं करने की भी सिफारिश की है, जिसमें इस निर्धारित सीमा से कम के लंबित नोटिसों को वापस लेना भी शामिल है.
0: पेंडिंग नोटिसेस बिलो द सेड थ्रेशोल्ड.
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए सुरक्षा ढांचा मजबूत करना बहुत आवश्यक हो गया है. श्री मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए ये बात कही.
3: आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है, तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है. फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी, ये हम सभी की प्राथमिकता है. एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है. जब उसको फोन पर आए तो उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा है.
2: श्री मोदी ने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया.
3: डीप फेक कितनी बड़ी चुनौती बन चुकी है, ये भी हम देख रहे हैं. इसलिए जरूरी है कि हम इसके लिए एक ग्लोबल फ्रेमवर्क पर काम करें. सरकारें, टेक्नोलॉजी कंपनी, टेलीकॉम ऑपरेटर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सभी को इस फ्रेमवर्क से जुड़ना होगा. मैं जीएसएमए और दुनिया के टेलीकॉम ऑपरेटर से भी आग्रह करता हूं, आइए एक ऐसा ग्लोबल मैकेनिज्म बनाएं जो ऐसे फ्रॉड को लोगों तक पहुंचने से पहले ही रोक सके.
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है. श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक आधार स्टेशन हैं. संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार संचालकों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की.
4: 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें एक विजन दिया था. उन्होंने कहा था कि भविष्य का भारत कनेक्टेड रहे, भविष्य के भारत में डिजाइन रहे और भविष्य का भारत नेतृत्व करे. प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस एक दशक में जो संपूर्ण भारत की टेलीकॉम और डिजिटल फ्रेटर्निटी ने करके दिखाया है, वो शायद कई और देशों को सदियों लग जाती जो 10 वर्ष की अवधि में भारत ने करके दिखाया है.
2: श्री सिंधिया ने किफायती और सार्थक डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए निवेश और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा सहायक नीतिगत ढांचे के महत्व पर बल दिया. उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी को बिना किसी सीमा के हासिल करना चाहिए. स्केल विदाउट बाउंड्रीज विषय के अंतर्गत इस कार्यक्रम में पॉलिसी, रेगुलेशन, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर चर्चा की गई. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा. आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर विश्व विकास रिपोर्ट जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र AI और साइबर सुरक्षा, AI के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा. उन्होंने कहा कि इसमें AI के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने और लोगों को डीप फेक जैसे हानिकारक अनुप्रयोगों से बचाने पर बल दिया जाएगा. श्री वैष्णव ने कहा कि कृषि, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में AI के उपयोग से समाज को अधिक लाभ मिलेगा.
5: वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर एक एक्सटेंसिव स्टडी की गई है, किस तरह से समाज के उन वर्गों को AI का बेनिफिट मिले जो नॉर्मली टेक्नोलॉजी से वंचित रहते थे. जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने का एक मार्गदर्शन दिया है, उसी भावना के साथ कई ऐसे एग्जाम्पल, जैसे किसानों के लिए एक एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा हुआ है AI का, जिसमें 40% के आसपास यील्ड बढ़ी है और पानी का उपयोग कम हुआ और साथ ही साथ फर्टिलाइजर का रिक्वायरमेंट भी कम हुआ.
2: ये समाचार आकाशवाणी

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने देश की जनता को एक खुला पत्र लिखकर निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने लिखा कि इसके केंद्र में निर्वाचन आयोग है और उच्च न्यायपालिका तथा वैधानिक एजेंसियां भी इससे अछूती नहीं है। एक रिपोर्ट।
2: पत्र में चिंता व्यक्त की गई है कि भारत के संवैधानिक निकायों पर लगातार हमले हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये निहित राजनीतिक स्वार्थों द्वारा चलाया जा रहा अभियान है। पत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(3) के अंतर्गत वैध है। उन्होंने बताया कि पिछला SIR लगभग 2 दशक पहले पूरा हुआ था और किसी ने भी उन संशोधनों को साजिश नहीं कहा था। हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा कि उच्च न्यायालय ने SIR को वैध और चुनाव आयोग की शक्तियों के दायरे में माना है। उन्होंने मीडिया से आग्रह किया कि वे दावों की जांच पड़ताल और पुष्टि किए बिना अटकलों और अनुमानों को बढ़ावा ना दें। पत्र में संवैधानिक निकायों से दृढ़ रहने, पारदर्शिता बनाए रखने और राजनीतिक खींचतान से दूर रहने का आग्रह किया गया। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवैधानिक पद पर 25 साल का लगातार कार्यभार लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक रिकॉर्ड है। इस अवसर पर वाराणसी के रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में 2 दिवसीय नमो बुक फेस्ट को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 12-13 वर्ष में दुनिया भर में प्रधानमंत्री मोदी के बहुआयामी व्यक्तित्व में काफी दिलचस्पी देखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर जारी रहने वाली अथक वचनबद्धता से परिभाषित है। सेवा और सुशासन के इस दृष्टिकोण से प्रेरित सरकार ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य किया है। समेकित विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। आज हम इस विशेष श्रृंखला में एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि दृष्टिकोण नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसी पहलों के जरिए किस तरह कार्यान्वित हुआ।
3: वर्ष 2023 में संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। यह देश में महिलाओं को सार्वजनिक जीवन के हर स्तर पर समान अवसर और प्रतिनिधित्व देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की थी कि वे वर्षों से लंबित महिला आरक्षण को जल्द लागू करने के लिए मिलकर काम करें।
4: आज पंचायतों में, नगर पालिका में, महानगरपालिका बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता, आग्रह करता, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए।
3: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार से राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता ने कहा कि इस कानून के जरिए मोदी सरकार ने देश की आधी आबादी को राजनीति और नीति निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाने का रास्ता खोल दिया है।
5: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण सुनिश्चित कर मोदी सरकार ने देश की आधी आबादी को राजनीति और नीति निर्माण में निर्णायक भागीदारी देने का मार्ग प्रशस्त किया है। यह केवल आरक्षण नहीं बल्कि महिलाओं के नेतृत्व एवं उनके सामर्थ्य पर विश्वास किया है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूँ।
3: नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होने के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा। यह भारत की नारी शक्ति को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और उन्हें देश के भविष्य को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध

0: शब्द हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। दो दिन का विभागीय शिखर सम्मेलन आज शुरू हुआ। ये सम्मेलन सभी राज्यों के महिला और बाल विकास क्षेत्र के साथ राजनीतिक नेतृत्व और आधिकारिक संबंध की भागीदारी का साक्षी है। कनाडा की लेखिका एन कार्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। उन्हें यह सम्मान साहसिक और कल्पनाशील लेखन के लिए मिला है। स्वीडिश एकेडमी ने स्टॉकहोम में पुरस्कार की घोषणा की। पुरस्कार राशि 1,02,00,000 स्वीडिश क्रोनर यानी करीब 11.5 करोड़ रुपए है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: सेंसेक्स 1045 अंक गिरकर 71,593 पर बंद हुआ। निफ्टी 371 अंक लुढ़ककर 22,232 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले मामूली गिरावट के साथ 96.79 रुपए पर बंद हुआ।
0: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में तपेदिक मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत संयुक्त स्वास्थ्य दल जोश टीम का शुभारंभ किया। ये भारत में तपेदिक उन्मूलन के प्रयासों में युवाओं के नेतृत्व वाली सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
2: मोदी जी ने इस बात की चिंता की है कि हर ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट को हर महीने ₹1,000 दिए जाएंगे और साथ में खुराक की व्यवस्था दी जाएगी और मुफ्त दवाई दी जाएगी, इसकी व्यवस्था की। अब हमारा काम यह है कि हम केस को डिटेक्ट करें और उनको दवाई तक पहुंचाएं और उनको दवा भी दिलाएं, खुराक भी दिलाएं। इस बात के लिए हम काम में जुटे। आज हमारे 55 जिलों में लगभग सभी ब्लॉक्स में 11 स्टेट्स में जोश की टीम को ये टास्क दिया गया है।
0: भारत की पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने आज महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स और तरुण मन्नेपल्ली पुरुष सिंगल्स में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरगन ने भारतीय पैरा तैराक और खेल जगत की जानी मानी हस्ती पद्मश्री से सम्मानित सत्येंद्र सिंह लोहिया से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मुरगन ने कहा कि सत्येंद्र सिंह का साहस, दृढ़ता और खेल में बेहतरीन प्रदर्शन का प्रेरणादायक सफर देश भर में लाखों लोगों को प्रेरित और प्रोत्साहित करता रहता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वस्तु और सेवा कर परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त किया। अभियोग की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए की गई। कर दरों में कोई बदलाव नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग के कारण फोन और नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना आवश्यक। डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार अगले महीने तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुरक्षा सुनिश्चित करने और डीप फेक से निपटने के लिए नियमों पर परामर्श पत्र जारी करेगी। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की और कनाडा की कवित्री एनी कार्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashwani. I am VC Pramod with the news at 9. The headlines. GST Council scraps arrest power of tax officers, raises prosecution threshold to 5 crore from 1 crore rupees, no changes made to GST rates. Prime Minister Narendra Modi says, growing use of digital technology makes stronger phone and network security essential, calls for global framework to tackle deepfakes and cyber frauds. Government to release consultation paper on artificial intelligence regulations within next month to ensure AI safety and tackle deepfakes, announces Electronics and IT Minister Ashwini Vaishnav. 42 former judges write open letter expressing concern over attempts to undermine Election Commission, judiciary and other constitutional institutions. Canadian poet Anne Carson wins Nobel Prize in Literature for bold and innovative work blending classical tradition with contemporary forms. And in badminton, PV Sindhu sails into women's singles quarterfinal of Arctic Open at Vantaa in Finland. The GST Council, during its 57th meeting in New Delhi today, approved a series of measures to ease compliance for taxpayers. The decisions include scrap.

0: civilians and injuring 36 others. In a statement, the Ministry of External Affairs said the targeting of civilian infrastructure is completely unacceptable. The 2026 Nobel Prize in Literature has been awarded to Canadian poet and essayist Anne Carson. The Swedish Academy, which announced the prize in Stockholm, said the author was honored for her bold and inventive work that, through a playful dialogue with the classical tradition, has created new norms for contemporary literature. The Nobel Prize in Literature carries a prize money of around $1.2 million. The nation is celebrating the 94th anniversary of Indian Air Force today. Addressing the gathering at Hindon Air Base in Ghaziabad on the occasion, Air Chief Marshal A.P. Singh highlighted the Indian Air Force's growing capabilities while stressing that its true strength lies not merely in advanced equipment and technology, but in its air warriors. On this occasion, the President, Vice President and Prime Minister extended greetings to all air warriors, veterans and their families. Veteran actor Nana Patekar passed away at the age of 75 after suffering a severe cardiac arrest at his residence in Goa this morning. One of India's most acclaimed actors, Patekar was known for his performances across Hindi and Marathi cinema with a career spanning several decades. His notable Hindi movies include Parinda, Praha, The Final Act, Tiranga, Krantivir, Khamoshi, The Musical, Ab Tak Chhappan and Welcome. The President, Vice President and Prime Minister have expressed grief at the demise of the veteran actor. Benchmark domestic equity indices extended losses today amid weak global cues. The Sensex tanked 1,045 points to close at 71,593. The Nifty dropped 371 points to settle at 22,232. In badminton, two-time Olympic medalist P.V. Sindhu advanced to the quarterfinals of the women's singles at the Arctic Open Super 500 tournament at Vantaa in Finland today. Sindhu defeated Japan's Riko Gunji 21-15 in the second round. The six-seeded Indian will now face top seed and former world champion Ratnachok Itanon from Thailand. However, the campaign came to an end for all Indian men singles players. And now before we end the bulletin, the headlines once again. GST Council scraps arrest power of tax officers, raises prosecution threshold to 5 crore from 1 crore rupees. No changes made to GST rates. Prime Minister Narendra Modi says growing use of digital technology makes stronger phone and network security essential, calls for global framework to tackle deepfakes and cyber frauds. Government to release consultation paper on artificial intelligence regulations within the next month to ensure AI safety and tackle deepfakes. 42 former judges write open letter expressing concern over attempts to undermine Election Commission, judiciary and other constitutional institutions. Canadian poet Anne Carson wins Nobel Prize in Literature for bold and innovative work blending classical tradition with contemporary forms. And in badminton, P.V. Sindhu sails into women's singles quarterfinal of Arctic Open at Vantaa in Finland. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। जीएसटी काउंसिल ने टैक्स अफसरान के जरिए गिरफ्तारी के अख्तियारात खत्म कर दिए हैं और कानूनी कार्रवाई किए जाने की हद में 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दी है। जीएसटी की शर्तों में कोई तब्दीली नहीं की गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए इस्तेमाल के सबब फोन और नेटवर्क की मजबूत सिक्योरिटी निहायत जरूरी हो गई है। उन्होंने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निमटने के लिए एक आलमी फ्रेमवर्क की तश्कील देने की भी अपील की। इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाआती टेक्नोलॉजी के वजीर जनाब अश्वनी वैष्णव ने ऐलान किया है कि हुकूमत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जाब्तों से मुतालिक एक मशावरती दस्तावेज अगले माह जारी करेगी ताकि एआई की सेफ्टी को यकीनी बनाया जा सके और डीप फेक से मुतालिक मसाइल का मुकाबला किया जा सके। 42 साबिक जजों ने एक खुला खत तहरीर किया है जिसमें इलेक्शन कमीशन, अदलिया और दीगर आईनी इदारों को कमजोर करने की कोशिशों पर तश्वीश का इजहार किया गया है। कनाडा की शायरा एन कैरसन को अदब का नोबेल इनाम दिया गया है। यह इनाम उन्हें क्लासिकी रिवायत को मौजूदा दौर के तख्लीकी अंदाज के साथ हम आहंग करने वाली उनकी अदबी खिदमात के एतराफ में दिया गया है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु फिनलैंड के शहर वांटा में जारी आर्कटिक ओपन के खवातीन के सिंगल्स मुकाबलों के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं।

अब खबरें तफसील से। जीएसटी काउंसिल ने टैक्स अफसरान की गिरफ्तारी के अख्तियार को खत्म कर दिया है और मुकदमा चलाने की हद को 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया है। ये फैसला आज नई दिल्ली में काउंसिल की 57वीं मीटिंग में किया गया। टैक्स से मुतालिक मामले में जुर्माना कैद या दोनों की सजा का फैसला अदालत की सौबिदीद पर छोड़ दिया गया है। ऐसा टैक्स दहिंदा जो देर से रिटर्न दाखिल करता है, कोई गलती करता है या टैक्स की अदायगी में ताखीर करता है, उसे रकम की वसूली, सूद और मुतनासिब जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। मीटिंग के बाद आज शाम सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में टैक्स की शरहों में कोई तब्दीली नहीं की गई है और मौजूदा शरहों का ढांचा तय हो चुका है। उन्होंने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने आज नोटिस जारी करने और कार्रवाई के लिए यकसा मेयारात की सिफारिश की है। इसके अलावा 10,000 रुपए या इससे कम रकम से मुतालिक कोई नोटिस जारी नहीं किया जाएगा और इस हद से कम मालियत के जेर इल्तवा नोटिस भी वापस लिए जाएंगे।

0: सजा का फैसला अदालत की सौबेदीद पर छोड़ दिया गया है। ऐसा टैक्स दहिंदा जो देर से रिटर्न दाखिल करता है, कोई गलती करता है या टैक्स की अदायगी में ताखीर करता है, उसे रकम की वसूली, सूद और मुतनासिब जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। मीटिंग के बाद आज शाम सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में टैक्स की शरहों में कोई तब्दीली नहीं की गई है और मौजूदा शरहों का ढांचा तय हो चुका है। उन्होंने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने आज नोटिस जारी करने और कार्रवाई के लिए यकसा मेयारात की सिफारिश की है। इसके अलावा 10,000 रुपए या इससे कम रकम से मुताल्लिक कोई नोटिस जारी नहीं किया जाएगा और इस हद से कम मालियत के जेर इल्तवा नोटिस भी वापस लिए जाएंगे। उन्होंने वाजे किया कि 10,000 रुपए या इससे कम मालियत के मामलात में नोटिस जारी नहीं किए जाएंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि टेली मवासलात और डिजिटल टेक्नोलॉजी की बढ़ती हुई अहमियत के तनाजुर में सिक्योरिटी के निजाम को मजबूत बनाना निहायत जरूरी है। जनाब मोदी ने यह बात आज नई दिल्ली के यशु भूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें एडिशन का इफ्तिताह करते हुए कही।
1: आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है, तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है। फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी, ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको फोन पर आए तो उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा।
0: वजीर आजम ने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते हुए चैलेंजेस को भी उजागर किया और इस खतरे से निमटने की खातिर आलमी सतह पर एक मुश्तरका फ्रेमवर्क तैयार करने की जरूरत पर जोर दिया।
1: डीप फेक कितनी बड़ी चुनौती बन चुकी है, ये भी हम देख रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि हम इसके लिए एक ग्लोबल फ्रेमवर्क पर काम करें। सरकारें, टेक्नोलॉजी कंपनी, टेलीकॉम ऑपरेटर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सभी को इस फ्रेमवर्क से जुड़ना होगा। मैं जीएसएमए और दुनिया के टेलीकॉम ऑपरेटर से भी आग्रह करता हूं, आइए एक ऐसा ग्लोबल मैकेनिज्म बनाएं जो ऐसे फ्रॉड को लोगों तक पहुंचने से पहले ही रोक सके।
0: वजीर आजम मोदी ने कहा कि भारत का टेली मवासलात का शोबा रफ्ता रफ्ता खुद किफालत की जानिब बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस ने मुल्क में टेली मवासलात के शोबे और डिजिटल राबते की तरक्की में अहम रोल अदा किया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया मुहिम मुल्क की डिजिटल तब्दीली के अमल का बुनियादी हिस्सा रही है। इस मुहिम में मोबाइल फोन को मरकजी हैसियत दी गई है ताकि डिजिटल फर्क को खत्म किया जा सके और टेक्नोलॉजी को हर शख्स के लिए ज्यादा काबिल रसाई बनाया जा सके। वजीर आजम ने कहा कि 5G कनेक्टिविटी अब मुल्क के हर जिले तक पहुंच चुकी है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत मुख्तलिफ डिजिटल और ऑनलाइन तालीमी प्लेटफॉर्म्स के जरिए तकरीबन 25 करोड़ तलबा को जोड़ने के लिए काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के महकमे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि हुकूमत का आइंदा एक माह के अंदर मस्नूई जहानत एआई के मुस्तकबिल के जाब्तों से मुतालिक एक मशावरती दस्तावेज जारी करने का मंसूबा है। इसमें एआई की हिफाजत को यकीनी बनाने और डीप फेक के बढ़ते हुए खतरे से निमटने पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। वजीर मौसूफ ने आलमी तरक्याती रिपोर्ट 2026 जिसका उन्वान मस्नूई जहानत का वादा है जारी करने के बाद सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए ये बात कही। जनाब वैष्णव ने कहा कि मुजव्वजा मशावरती दस्तावेज में एआई की हिफाजत, साइबर सिक्योरिटी, मस्नूई जहानत के फवायद और इसके मुमकिन नुकसान पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। उन्होंने कहा कि मस्नूई जहानत के फवायद माशरे के तमाम तबकात तक पहुंचाने और लोगों को डीप फेक जैसी नुकसानदेह एप्लीकेशन से महफूज रखने को यकीनी बनाने की जरूरत पर गौर किया जाएगा। मस्कूरा रिपोर्ट के मुताबिक जनाब वैष्णव ने कहा कि आलमी बैंक के तावुन से एक वसी मुताला किया गया है ताकि ये मालूम किया जा सके कि माशरे के वो तबकात जो रिवायती तौर पर टेक्नोलॉजी की सहूलतों से महरूम रहे हैं वो भी मस्नूई जहानत एआई से फायदा उठा सकें।
2: वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर एक एक्सटेंसिव स्टडी की गई है किस तरह से समाज के उन वर्गों को एआई का बेनिफिट मिले जो नॉर्मली टेक्नोलॉजी से वंचित रहते थे। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने का एक मार्गदर्शन दिया है, उसी भावना के साथ कई ऐसे एग्जाम्पल जैसे किसानों के लिए एक एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा हुआ है एआई का, जिसमें 40% के आसपास यील्ड बढ़ी है और पानी का उपयोग कम हुआ और साथ ही साथ फर्टिलाइजर का रिक्वायरमेंट भी कम हुआ।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र

0: मोदी की अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं जो जनसेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इस अंथक अजम का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नजरिए के तहत हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने के खातिर अंथक काम कर रही है। खुसूसी सीरीज के तहत आज इस बात पर रोशनी डाली जा रही है कि किस तरह नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे इकदाम के जरिए इस विजन को हकीकी शक्ल दी जा रही है। पेश एक रिपोर्ट।
1: पार्लियामेंट ने 2023 में आईन में 106 तरमीम करके नारी शक्ति वंदन अधिनियम कानून को मंजूरी दी, जो वफाकी निज़ाम की सभी सतह पर ख़वातीन की मसावी नुमाइंदगी को फ़रोग देने में एक तारीख साज कदम है। इस अहम कानून के तहत लोकसभा और रियासती कानून साज असम्बलियों में ख़वातीन के लिए एक तिहाई सीटें रिजर्व हैं। इस साल योम आज़ादी के अपने खिताब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सभी सियासी पार्टियों से अपील की कि वो पार्लियामेंट और रियासती असम्बलियों में ख्वातीन की एक तिहाई नुमाइंदगी के कानून में कई दहाइयों से जारी ताखीर को खत्म करें और इसके जल्द अज जल्द निफाज को यकीनी बनाएं।
2: आज पंचायतों में नगर पालिका बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन करें और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से ये सपना हमेशा राजनीतिक अखाड़े का शिकार हो गया। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से आग्रह करता हूं, आइए महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए।
1: आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए बिहार से राज्यसभा एमपी धर्मशीला गुप्ता ने कहा कि इस कानून के जरिए मोदी सरकार ने मुल्क की निस्फ आबादी के लिए सियासत और पॉलिसी साजी के अमल में फैसलाकुन रोल अदा करने का रास्ता हमवार किया है।
3: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण सुनिश्चित कर मोदी सरकार ने देश की आधी आबादी को राजनीति और नीति निर्माण में निर्णायक भागीदारी देने का मार्ग प्रशस्त किया है। यह केवल आरक्षण नहीं बल्कि महिलाओं के नेतृत्व एवं उनके सामर्थ्य पर विश्वास किया है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूँ।
1: नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नफाज के साथ ही लोकसभा और रियासती असम्बलियों में खवातीन की नुमाइंदगी में तेजी से इजाफा होगा। भारत की नारी शक्ति को बाख्तियार बनाने की समत में ये एक फैसला कुन कदम है जिसके जरिए फैसला साजी और मुल्क के मुस्तकबिल की तामीर में खवातीन को एक मजबूत आवाज फराहम होगी। नई दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जापान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म आजहानी शिंज़ो आबे की अहलिया आके आबे से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो भारत के साथ आके आबे के मुसलसल और देरीना ताल्लुक को निहायत कद्र की निगाह से देखते हैं। उन्होंने कहा कि शिंज़ो आबे उनके अजीज दोस्त और एक दूरंदेश रहनुमा थे जिन्होंने भारत और जापान के ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक पहुंचाने में अहम और फैसलाकुन रोल अदा किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। 42 साबिक जजों ने मुल्क के अवाम के नाम एक खुला खत लिखा है जिसमें चुनाव कमीशन, अदलिया और दीगर आईनी इदारों को कमजोर करने की कोशिशों पर तश्वीश का इजहार किया गया है। खत में कहा गया है कि भारत के आईनी इदारे मुसलसल हमलों की जद में हैं। साबिक जजों ने कहा कि इस मामले में इंतखाबी कमीशन तवज्जो का मरकज बना हुआ है और आला अदलिया और दीगर कानूनी इदारे भी इससे महफूज नहीं रहे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि यह एक ऐसी मुहिम है जिसे मफाद परस्त सियासी अनासिर चला रहे हैं और उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत को गैर मुस्तहकम करने के मुमकिना संगीन नतीज की कोई परवाह नहीं है। खत में इस बात को उजागर किया गया है कि वोटर फहरिस्तों की खसूसी जाम नजरसानी SIR अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1950 की दफा 21(3) के तहत कानूनी तौर पर दुरुस्त है। साबिक जजों ने इस बात को उजागर किया कि आखिरी मरतबा SIR का अमल तकरीबन 2 दहाई कबल मुकम्मल हुआ था और उस वक्त किसी ने भी वोटर फहरिस्त पर नजरसानी के अमल को साजिश करार नहीं दिया था। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने पिछले बरस 863 अरब डॉलर मालियत की बरामदात रिकॉर्ड की और इस साल वो 1 ट्रिलियन डॉलर की बरामदात का हदफ हासिल करने का इरादा रखता है। वजीर मौसूफ ने यह बात आज नई दिल्ली में मुनाकिदा 31वें CII साझेदारी समिट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कही। इत्तला तो नशरियात के वजीर मुमलिका डॉक्टर एल मुरुगन ने आज भारतीय नौजवानों से अपील की है कि वो अपनी महारतों, तख्लीकी इस्तेदाद और इख्तराई सलाहियतों को बरूएकार लाते हुए 2047 तक विकसित भारत के विजन को हकीकत बनाने में अपना रोल अदा करें। जनाब मुरुगन ने यह बात आज नोएडा के एक इदारे में तलबा और सीखने वालों से खिताब करते हुए कही। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने आज कहा कि कोचीन शिपयार्ड को अमेरिका, जर्मनी और नॉर्वे समेत कई ममालिक से 40 से ज्यादा बहरी जहाज तैयार करने के ऑर्डर मौसूल हुए।

0: हैं। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब सोनोवाल ने कहा कि उनकी वजारत मुल्क में बहरी जहाज साजी के लिए एक साजगार इको निज़ाम तश्कील दे रही है। जनाब सोनोवाल ने कहा कि इस तरह के ऑर्डर से भारत के लिए आलमी सतह पर बढ़ते हुए एतमाद की अक्कासी होती है। कनाडा की शायरा और मजमून निगार एन कैरसन को 2026 का अदब का नोबेल इनाम दिया गया है। स्टॉकहोम में स्वीडिश एकेडमी ने इनाम का ऐलान करते हुए कहा कि एन कैरसन को उनकी जुर्रात मंदाना और इख्तराई अदबी तख्लीकात के लिए एजाज से नवाजा गया है। उनकी तहरीरें क्लासिकी अदबी रिवायात के साथ मुनफरिद और तख्लीकी अंदाज में मुकालमा करते हुए असर हाजिर के अदब के लिए नई अदबी असनाफ और असालीब तश्कील देती हैं। और बैडमिंटन में दो मरतबा की ओलंपिक फातह पीवी सिंधु आज फिनलैंड के वांटा में आर्कटिक ओपन सुपर 500 टूर्नामेंट के खवातीन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने जापान की रिको गुंजी को दूसरे राउंड में 21-15 21-15 से शिकस्त दी। छठे सीड के भारतीय खिलाड़ी का अगला मुकाबला थाईलैंड के पहले सीड और साबिक आलमी चैंपियन रशनॉक इटानो से होगा। इसके बाद दिन में कृष्णा प्रसाद और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय के मर्दों की डबल्स की जोड़ी का मुकाबला इंग्लैंड के ओलिवर बटलर और सैमुअल जोनस से होगा। सरकर्दा अदाकार नाना पाटेकर का आज सुबह गोवा में उनकी रिहायशगाह पर दिल का शदीद दौरा पड़ने के बाद इंतकाल हो गया। वो 75 बरस के थे। नाना पाटेकर हिंदी और मराठी सिनेमा में अपनी शानदार अदाकारी किए जाने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कई दहाइयों तक सिनेमा में काम किया। नाना पाटेकर को परिंदा, प्रहार, द फाइनल एक्ट, तिरंगा क्रांति, वीर, खामोशी, अब तक 56 और वेलकम जैसी फिल्मों के लिए काफ़ी मकबूलियत हासिल हुई। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियाँ एक बार फिर। जीएसटी काउंसिल ने टैक्स अफसरान के जरिए गिरफ्तारी के अख्तियारात खत्म कर दिए हैं और कानूनी कार्रवाई किए जाने की हद 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दी है। जीएसटी की शरहों में कोई तब्दीली नहीं की गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए इस्तेमाल के सबब फोन और नेटवर्क की मजबूत सिक्योरिटी निहायत जरूरी हो गई है। उन्होंने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निमटने के लिए एक आलमी फ्रेमवर्क की तश्कील देने की भी अपील की। इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाआती टेक्नोलॉजी के वजीर जनाब अश्वनी वैष्णव ने ऐलान किया है कि हुकूमत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जाब्तों से मुतालिक एक मशावरती दस्तावेज अगले माह जारी करेगी ताकि एआई की सेफ्टी को यकीनी बनाया जा सके और डीप फेक से मुतालिक मसाइल का मुकाबला किया जा सके। 42 साबिक जजों ने एक खुला खत तहरीर किया है जिसमें इलेक्शन कमीशन, अदलिया और दीगर आईनी इदारों को कमजोर करने की कोशिशों पर तशवीश का इजहार किया गया है। और कनाडा की शायरा एन कैरसन को अदब का नोबेल इनाम दिया गया है। यह इनाम उन्हें क्लासिक की रिवायत को मौजूदा दौर के तख्लीकी अंदाज के साथ हम आहंग करने वाली उनकी अदबी खिदमत के एतराफ में दिया गया है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। पेश है प्रोग्राम कहकशा। प्रोग्राम की शुरुआत में सुनिए जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज में ये गजल।

और अब मनहर उदास की आवाज में सुनिए पंडित के राजदान और हुल्लड़ मुरादाबादी की गजल।

प्रोग्राम के आखिर में पेश है सनी असलम की गजल असलम साबरी की आवाज में।

श्रोताओं नमस्कार। नभास प्रशम दीप्तम यानी आकाश को स्पर्श करने वाले जाबाज, जिनकी गूंज से दुश्मनों का दिल दहल जाता है और जिनकी मौजूदगी से हमारे देश चैन की नींद सोता है, आज वायुसेना दिवस के इस पावन अवसर पर आइए सुरों के पंख लगाकर उड़ान भरते हैं उस नीले आसमान में जहां हमारे वायुसेना के वीर जवान हर पल वतन की हिफाजत में तैनात हैं।

श्रोताओं, जब देश पर कोई आ जाती है तो हमारे ये जाबाज पायलट अपने सुखचैन को दरकिनार कर केवल एक ही बात याद रखते हैं, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहें।

बादलों को चीरकर आगे बढ़ना, हवाओं से बातें करना और तूफानों से टकरा जाना, यही तो वायुसेना का असली अंदाज है। जब लड़ाकू विमान आसमान में कलाबाजियां खाते हैं तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। इसी जुनून और रफ्तार को महसूस करने आ रहा है ये गीत।

श्रोताओं, आज का दिन खास तौर पर उन युवा जाबाजों का है जो मिग, सुखोई और राफेल जैसी मशीनों पर सवार होकर आसमान में भारत की ढाल बनते हैं।

क्या अद्भुत और भावुक कर देने वाला माहौल है। ये संगीत हमें याद दिलाता है कि जब हम अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं, तब कोई सरहद पर गगन की छाव में रात दिन एक किए हुए है। लेकिन वायु योद्धाओं की जिंदगी सिर्फ अनुशासन ही नहीं, बल्कि उस असीम उड़ने की जुनून की कहानी भी है। जब वे लड़ाकू विमानों के कॉकपिट पर बैठते हैं, तो उनके लिए सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, मिशन सक्सेस।

आकाश को स्पर्श करने वाली उस दिव्य दीप्ति को, उन अदम्य हौसलों को और भारत माँ के सच्चे रक्षकों को हमारा कोटि कोटि नमन। आप सभी को वायुसेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए उस्ताद बड़े गुलाम अली खां से राग बिहाग में ख्याल।

ಸಾಮಗ ಪಾಮ ದ ಗ ಮ

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप उस्ताद बड़े गुलाम अली खान से राग बिहाग में ख्याल सुन रहे थे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कर अधिकारियों का गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में आज जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि परिषद ने जुर्माने और कारावास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया है।
2: The council recommended removing arrest powers under GST.
3: जीएसटी परिषद ने गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने की सिफारिश की है। परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की भी सिफारिश की है। इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम की कर चोरी के मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गई है।
2: From 25,000 to ₹10,000।
1: टैक्स फाइलिंग में गलती या भुगतान करने में विलंब करने पर करदाता को वसूली, ब्याज और आनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्रवाई के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए सुरक्षा ढांचा मजबूत करना बहुत आवश्यक हो गया है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
4: आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है। फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको फोन पर आए उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा है।
1: श्री मोदी ने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक आधार स्टेशन हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में सबसे तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार संचालकों

0: और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर आज विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र एआई और साइबर सुरक्षा, एआई के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने देश की जनता को एक खुला पत्र लिखकर निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने लिखा कि इसके केंद्र में निर्वाचन आयोग है और उच्च न्यायपालिका और वैधानिक एजेंसियां भी इससे अछूती नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में तपेदिक मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत संयुक्त स्वास्थ्य दल जोश टीमों का शुभारंभ किया। ये भारत में तपेदिक उन्मूलन के प्रयासों में युवाओं की नेतृत्व वाली सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में भारतीय सेना की 94वीं वर्षगांठ के समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने वायु सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के सदस्यों से बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने भी वायुसेना दिवस पर देश के सभी बहादुर वायु योद्धाओं को सलाम किया। भारत की पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने आज महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिकू कुंजी को हराया। तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स और थरुण मान्यपली पुरुष सिंगल्स में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renuka. The GST Council, during its 57th meeting in New Delhi today, approved a series of measures to ease compliance for taxpayers. The decisions include scrapping the arrest powers of tax officers under the GST regime and raising the threshold for prosecution from 5 crore rupees to 1 crore rupees. Finance Minister Nirmala Sitharaman made the announcement while addressing the media in National Capital this evening.
2: The council recommended removing arrest powers under GST. Council recommended raising the prosecution threshold from 1 crore to 5 crore. So prosecution is not going to happen for anything below 1 crore. Till now, that's been the threshold. Now it's taken up to 5 crores.
1: The punishment, whether a fine, imprisonment or both, will be left to judicial discretion in each case. A taxpayer who files a return late, makes a mistake or falls behind on payment will face recovery proceedings, interest and a proportionate penalty. The finance minister said no changes has been made to GST rates at the meeting and that the rate structure is settled. She said the GST council has recommended common standards for notices and proceedings. Ms. Sitharaman said the council had also taken steps to facilitate the smoother movement of goods. Prime Minister Narendra Modi has emphasized that strengthening the security framework has become essential in view of the growing importance of telecom and digital technology. Mr. Modi stated this while inaugurating the 10th edition of the India Mobile Congress at Yashobhoomi in New Delhi today. Mr. Modi also highlighted the growing challenges of deepfakes and cyber fraud and called for the development of a global framework to tackle the threat. Prime Minister Modi said India's telecom sector is steadily moving towards greater self-reliance. He also said the Digital India campaign has been at the core of the country's digital transformation, with a mobile phone placed at the center of the initiative to bridge the digital divide and make technology more accessible to all. Mr. Modi said that 5G connectivity has now reached every district of the country. Electronics and IT Minister Ashwini Vaishnaw has said that the government plans to release a consultation paper on the future regulations of artificial intelligence AI within the next month, with a key focus on ensuring AI safety and addressing the growing threat posed by deepfakes.